सुप्रभात। एफएम 107.2 मेगाहर्ट्ज पर यह आकाशवाणी है और आप सुन रहे हैं विविध भारती का चंडीगढ़ केंद्र। आज बुधवार है, शक संवत 1948 के आश्विन माह की 8 तारीख, तदनुसार 30 सितंबर वर्ष 2026। इस समय प्रातः के 5:58:37 हुए हैं। हमारी आज की सभा आरंभ होती है। आप सभी सुनने वालों का हार्दिक स्वागत।

0: ये आकाशवाणी है और आप सुन रहे हैं विविध भारती का चंडीगढ़ केंद्र। कुछ ही क्षणों में प्रातः के 6 बजने वाले हैं और आप सुनेंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से हिंदी समाचार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जया भारती। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि बदलती प्रौद्योगिकी, अनिश्चित परिस्थितियों और भौगोलिक चुनौतियों के बीच भारत को अपनी तैयारियों में भूसामरिक सोच और आकस्मिक परिस्थितियों से निपटने की योजना को महत्वपूर्ण स्थान देना होगा। नई दिल्ली में भारतीय नौसेना कमांडर सम्मेलन में श्री सिंह ने कहा कि भारत का लक्ष्य स्पष्ट है कि संकट आने से पहले ही हमारी तैयारियां इतनी मजबूत होनी चाहिए कि देश उससे निपटने के लिए तैयार रहे।
2: रक्षा मंत्री ने कहा है कि ऑपरेशन ऊर्जा सुरक्षा ने देश की ऊर्जा आपूर्ति,

0: लाइनों और राष्ट्रीय हितों की रक्षा में भारतीय नौसेना की पेशेवर क्षमता और परिचालन तत्परता को एक बार फिर साबित किया है। उन्होंने कहा कि भारत हिंद महासागर क्षेत्र में फर्स्ट रिस्पार और भरोसेमंद सहयोगी के रूप में अपनी भूमिका लगातार मजबूत कर रहा है। रक्षा मंत्री ने कहा कि दक्षिण चीन सागर, भूमध्य सागर और अटलांटिक महासागर में भारतीय युद्धपोतों की तैनाती देश की ब्लू वाटर नौसेना क्षमता को दर्शाती है। नीतिका गुप्ता, आकाशवाणी समाचार, नई दिल्ली।
1: भारत ने संयुक्त राष्ट्र महासभा में जम्मू कश्मीर के संदर्भ में तुर्की के राष्ट्रपति तैयब एर्दोगान की अनुचित टिप्पणियों को खारिज कर दिया है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने नई दिल्ली में कहा कि जम्मू कश्मीर भारत की क्षेत्रीय अखंडता और संप्रभुता से जुड़ा विषय है। रक्षा उद्योग और लॉजिस्टिक सहयोग पर भारत कोरिया गणराज्य की 10वीं संयुक्त समिति JCM की बैठक कल नई दिल्ली में आयोजित की गई। रक्षा मंत्रालय ने बताया कि दोनों देशों ने रक्षा संबंधों को और मजबूत तथा विस्तारित करने के लिए तरीकों पर चर्चा की। बैठक की सह अध्यक्षता भारत के रक्षा उत्पादन सचिव दिनेश माहौर और कोरिया गणराज्य के रक्षा अधिग्रहण कार्यक्रम प्रशासन के अपर और उप मंत्री किम इल डोंग ने की। भारत ने परमाणु हथियार मुक्त दुनिया बनाने के लिए सभी परमाणु हथियारों को पूरी तरह से खत्म करने के लिए अपने संकल्प को दोहराया है। विदेश मंत्रालय में पश्चिमी मामलों के सचिव सीबी जॉर्ज ने न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में परमाणु हथियारों के पूरी तरह खत्म किए जाने के अंतर्राष्ट्रीय दिवस के अवसर पर आयोजित उच्च स्तरीय बैठक में भारत का वक्तव्य दिया। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय आज नई दिल्ली में स्वच्छता ही सेवा अभियान के तहत सफाई मित्र सुरक्षा और सम्मान शिविर आयोजित करेगा। सम्मान सफाई मित्रों का, संकल्प स्वच्छ भारत का विषय पर आयोजित इस शिविर का उद्देश्य सफाई मित्रों के अहम योगदान को पहचानना और उन्हें सम्मानित करना है। वहीं देश भर से शहरी तथा ग्रामीण स्थानीय निकाय और संबंधित विभाग इसमें वर्चुअल रूप से शामिल होंगे। प्रधानमंत्री स्मृति चिन्ह ई नीलामी में इस वर्ष उत्तर प्रदेश की सांस्कृतिक विरासत, ऐतिहासिक धरोहर और समकालीन उपलब्धियों को 99 स्मृति चिन्हों के माध्यम से प्रदर्शित किया जाएगा। इस संग्रह में आध्यात्मिक कलाकृतियां, पारंपरिक कला, खेल से संबंधित यादगार वस्तुएं और राज्य भर की प्रमुख अवसंरचना परियोजनाओं के मॉडल शामिल हैं। जापान एशियाई खेलों में भारत ने कल महिला 4x400 मीटर रिले टीम स्पर्धा में स्वर्ण और कांस्य पदक जीता। वहीं 4x100 मीटर मिक्स्ड रिले स्पर्धा में भारत ने कांस्य पदक हासिल किया। नीरू ढांडा ने महिला ट्रैप व्यक्तिगत निशानेबाजी स्पर्धा में पहला स्वर्ण पदक जीता। पदक तालिका में भारत 6 स्वर्ण, 21 रजत, 25 कांस्य सहित 52 पदकों के साथ 10वें स्थान पर आ गया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने पदक विजेताओं को बधाई दी है। भारत और वेस्टइंडीज के बीच 3 मैचों की एक दिवसीय क्रिकेट श्रृंखला का दूसरा मैच आज गुवाहाटी के बरसापारा क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा। मैच भारतीय समयानुसार दोपहर 2 बजे शुरू होगा। नेपाल में पिछले सप्ताह हुई तेज बारिश से आई बाढ़ और भूस्खलन में मरने वालों की संख्या बढ़कर 35 हो गई है। पानी का स्तर कम होने के बाद भी पश्चिम नेपाल में भारी तबाही देखने को मिली है। इधर मौसम विभाग ने आज कर्नाटका के भीतरी इलाकों, केरलम, माहे, कारेकाल और पूर्वोत्तर राज्यों में मूसलाधार वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। अगले 3 से 4 दिनों के दौरान रायलसीमा, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कारेकल में बिजली चमकने और तेज हवाओं के साथ आंधी तूफान की संभावना है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: FM 107.2 MHz पर ये आकाशवाणी है और आप सुन रहे हैं विविध भारती का चंडीगढ़ केंद्र। आइए अब सुनते हैं भक्ति संगीत कार्यक्रम के अंतर्गत आज का चिंतन वंदन वार। ये कार्यक्रम हम विविध भारती मुंबई से रिले करेंगे।
3: ये है विविध भारती।

चिंतन। रामकृष्ण परमहंस ने कहा है कि मन ही इंसान को ज्ञानी अज्ञानी सुखी या गुलाम बनाता है। बंधन और मुक्ति दोनों का कारण मन ही है। मन एक खेत या मंदिर की तरह है, जहां आप जैसे विचार रूपी बीज बोएंगे वैसी ही फसल या जीवन का सत्य प्राप्त होगा। ये था आज का चिंतन। लीजिए अब सुनिए भक्ति रचनाएं।

विविध भारती मुंबई से अभी आप सुन रहे थे भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदनवार। हम आकाशवाणी के चंडीगढ़ केंद्र से बोल रहे हैं FM 107.2 MHz पर। लीजिए अब प्रस्तुत है झरोखा के अंतर्गत आज प्रसारित होने वाले मुख्य कार्यक्रमों का विवरण। विविध भारती मुंबई से प्रातः 6:35 पर आप सुनेंगे श्री रामचरितमानस, 6:45 पर संगीत सरिता और 7 बजे आप सुनेंगे भूले बिसरे गीत।

हम हैं राही प्यार के युगल गीतों का ये कार्यक्रम प्रस्तुत किया जाएगा सुबह 7:30 पर। 8 बजे आप सुनेंगे समाचार प्रभात और 8:15 पर आप सुनेंगे त्रिवेणी। चित्रलोक ये कार्यक्रम प्रस्तुत किया जाएगा सुबह 8:30 पर। 9:30 पर आकाशवाणी के चंडीगढ़ केंद्र से आप सुनेंगे कार्यक्रम आज का अखबार। सुबह 10 बजे का समय रहेगा हिंदी समाचारों का। 10:05 पर आप सुनेंगे लाइव फोन इन प्रोग्राम हेलो चंडीगढ़ और आज का विषय है ना करें जाया अन्न का एक भी दाना, जितना है खाना उतना ही पकाना। इंटरनेशनल डे ऑफ अवेयरनेस ऑफ फूड लॉस एंड वेस्ट पर आधारित है आज का ये कार्यक्रम।

10:05 पर आप सुनेंगे लाइव फोन इन प्रोग्राम हेलो चंडीगढ़ और आज का विषय है ना करें जाया अन्न का एक भी दाना, जितना है खाना उतना ही पकाना। इंटरनेशनल डे ऑफ अवेयरनेस ऑफ फूड लॉस एंड वेस्ट पर आधारित है आज का ये कार्यक्रम। प्रायोजित कार्यक्रम हमारी बेड़ियां प्रस्तुत किया जाएगा सुबह 11 बजे, 11:15 पर सुरबहार, 11:30 पर संजीवनी। आज का विषय रहेगा त्रिदोष। दोपहर 12 बजे आप सुनेंगे हिंदी समाचार, 12:05 पर यादों की महफिल और 1:05 का समय रहेगा प्रादेशिक हिंदी समाचार का, और प्रादेशिक पंजाबी समाचार प्रस्तुत किए जाएंगे 1:10 पर। विविध भारती मुंबई से दोपहर 2 बजे आप सुनेंगे कार्यक्रम त्रिवेणी, 2:15 पर हिंदी समाचार, 2:30 पर सदाबहार नगमे गोल्डन हिट्स, और 3 बजे का समय रहेगा कार्यक्रम सखी सहेली का। शाम 4 बजे पिटारा के अंतर्गत आप सुनेंगे कार्यक्रम आज के मेहमान, और आज आप सुनेंगे साहित्यकार लेखक मनोज रुपड़ा से ममता सिंह की बातचीत। शाम 6:10 पर आप सुनेंगे प्रादेशिक हिंदी समाचार और 6:20 पर प्रादेशिक पंजाबी समाचार। शाम 7 बजे आप सुनेंगे कार्यक्रम जयमाला, 7:45 पर प्रादेशिक मुख्य समाचार, और 7:47 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम रेडियो डायरी।

0: सुनेंगे प्रहसन महीने की आखिरी तारीख और 8:15 का समय रहेगा प्रायोजित कार्यक्रम फार्म टू सिटी का। आज के फनकार 9:30 पर आज आप सुनेंगे ये कार्यक्रम। आज का कार्यक्रम आधारित है फिल्मकार ऋषिकेश मुखर्जी पर। 9:00 आप सुनेंगे आपके लिए 10:00 का समय रहेगा छाया गीत का और कुछ पंजाबी गीत आपको सुनवाएंगे रात 10:32 पर। तो श्रोताओ, अभी आप सुन रहे थे झरोखा के अंतर्गत कार्यक्रम विवरण। हम आकाशवाणी के चंडीगढ़ केंद्र से बोल रहे हैं FM 107.2 MHz पर। आइए अब सुनते हैं विविध भारती मुंबई से श्री रामचरित मानस।
1: ये है विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। आइए अब सुनते हैं श्री रामचरित मानस का भाग 327।

कई अन्य योद्धाओं को उसने धूल चटा दी। वानर सेना को भागते देख उसने अंगद, सुग्रीव आदि को अपनी कांख में दबा लिया। पार्वती को युद्ध वर्णन सुनाते हुए भगवान शिव कहते हैं, हनुमान संभल कर एक बार फिर उठे और सुग्रीव को खोजने लगे। सुग्रीव की मूर्छा भी टूटी और मृतक का स्वांग करके वो कुंभकर्ण की कांख से फिसल निकले। फिसल कर निकलते हुए उन्होंने अपने दांतों से कुंभकर्ण के नाक कान काट दिए। घोर गर्जन करते हुए जैसे ही सुग्रीव आकाश की ओर उड़े कि कुंभकर्ण ने उनके पैर पकड़कर उन्हें धरती पर दे मारा। सुग्रीव संभल कर उठे और कुंभकर्ण पर फिर प्रहार किया। नाक कान कट जाने का बोध होते ही कुंभकर्ण का मन क्रोध और ग्लानी से भर गया। कानों और नाक के बिना उसका अत्यंत भयकारी रूप देखकर वानर सेना आतंकित हो गई। काल के समान बढ़ते आ रहे कुंभकर्ण ने करोड़ों वानरों को अपना ग्रास बना लिया और उतनी ही संख्या में उन्हें कुचल मसल डाला।

विभीषण से कुंभकर्ण के युद्धभूमि में आने के समाचार ने वानर सेना को उद्वेलित कर दिया। दांत किटकिटाते हुए वानरों ने शिलाखंड और वृक्ष उखाड़कर उस पर प्रहार करना आरंभ कर दिया, पर इसका कोई प्रभाव न होता देख हनुमान ने घूंसे से जो प्रहार किया तो कुंभकर्ण धरती पर आ गिरा। उठकर उसने जो घूंसा मारा तो हनुमान धरती पर थे। फिर तो नील नल समेत

0: संगीत सरिता।
1: नमस्कार मित्रों, प्रस्तुत है विविध भारती के खजाने से। आज हम एक ऐसी भेंट वार्ता चुन लाए हैं, मतलब वर्ष 1985 की संगीत सरिता की उद्घोषणाओं के साथ सुनते हैं ये बातचीत। इस कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता थी छाया गांगुली। आइए सुनते हैं।
2: ये विविध भारती है। आज संगीत सरिता कार्यक्रम में प्रसिद्ध स्वर मंडल और बांसुरी वादक श्री अरविंद गजेंद्र गढ़कर से ली गई भेंट वार्ता सुनिए। भेंट कर रहे हैं के शैलेंद्र।

0: श्रोताओं, आपने इस तारवाद्य की झनकार सुनी और उसके साथ साथ वंशी की मधुर आवाज पेंगे लगा रही थी। जाहिर है आज हम एक ऐसे कलाकार से आपको मिलवा रहे हैं जिनका इन दोनों साजों से विशेष संबंध है। ये जो तारवाद्य था स्वरमंडल और वंशी तो आप जानते ही हैं, और ये कलाकार नहीं बल्कि हम इन्हें साधक कहेंगे। बहुमुखी प्रतिभा के धनी, संगीत साहित्य और शिक्षा की त्रिवेणी जिसके जीवन को निखारती पखारती रही है, वो कलाकार आज आपके बीच होंगे और उनका नाम है अरविंद गजेंद्र गडकर। आइए अरविंद जी।
1: नमस्ते जी। नमस्ते
0: अरविंद भाई जी। सबसे पहले ये श्रोताओं को हम आपके स्वर मंडल के बारे में ही कुछ बताएं, आप ये बताइए।
1: बात ऐसी है कि स्वर मंडल तो ये संगत का साज है, सब जानते हैं, गाने वाले संगत के लिए इस साज को इस्तेमाल करते हैं,
0: लेकिन हम लोगों को जहाँ तक जानकारी है आपने इसे एक नया आयाम दिया है।
1: जी हाँ।
0: आपने इसे नए ढंग से सोलो में प्रयोग में लाया है आप, तो उसके बारे में आप बताइए ना कुछ।
1: बात ऐसी हुई कि 30 साल पहले मैंने जब इस साज को सुना, ऐसे ही छेड़ते, बड़े गुलाम अली खान साहब छेड़ते थे इसको, तो मुझे लगा कि इसमें पोटेंशियलिटीज इतनी है कि क्यों नहीं इसको डेवलप किया जाए कि एक स्वतंत्र रूप में, सोलो के रूप में। तो मैं इसके पीछे पड़ा, तो फिर पहले तो चलते रहा कि इस पे बजाए क्या, आखिर एक बार छेड़ दिया तो खत्म हो गया, फिर क्या करें आगे। तो मैंने सोचा कि दोनों हाथ पियानो की तरह अलग अलग चलाएं। देखिए ऐसे, देखिए ये हाथ।

0: कैसा लगा?
1: इतने सारे तारों को नियंत्रित ढंग से एक उंगली के कमाल से बजा कर रखना। अच्छा, इसमें तार कितने होते हैं?
0: 36।
1: अच्छा,
0: अब इस पे तो मीन निकल नहीं सकती।
1: हाँ,
0: तो इस पर हमने प्रयास किया है कि मीन निकाले। देखिए, प्रयास है, प्रयोग है।
1: वाह, आपने इसमें सितार का भी संमिश्रण कर दिया है।
0: जी हाँ।
1: वाह। अच्छा, ये एक बात श्रोताओं को हम जरूर बताना चाहेंगे कि आपकी रुचि संगीत में कैसे हुई शुरू से?
0: बात ऐसे, वो तो एक इत्तेफाक की बात है ना, एक्सीडेंट था वो, कि मैं भोसला मिलिट्री स्कूल में पढ़ता था
1: जी,
0: और वहाँ बैंड मास्टर जो हमारे थे वो एक बैंड पर धुन बिठा रहे थे, और तो एक दिन क्या हुआ कि बंसी बजाने वाला जो लड़का था वो आया ही नहीं, तो उन्होंने मुझे पकड़ लिया और कहा कि तू बजाएगा जरूर। मैंने कहा मुझे कुछ नहीं आता। उन्होंने कहा तुझमें वो गुण है, संगीत की कुछ रुचि है तू, और तुम्हें गिफ्ट है, तो ये बंसी ले लो और घर जाके रियाज करो और कल जा आके ये धुन बजा।
1: अच्छा, तो सबसे पहले मतलब वंशी से शुरुआत किया?
0: जी हाँ, जी हाँ।
1: और वंशी के बाद फिर तब आपने स्वरमंडल?
0: स्वरमंडल तो मैं 31 साल है, वंशी तो मेरे बचपन से, यानी समझे कि 47 साल से मैं बंसी बजा रहा हूँ।
1: अच्छा,
0: जी हाँ। और शुरू शुरू में तो यहाँ जो DML ऑल इंडिया रेडियो के डायरेक्टर थे, दिनकर राव आमिम्बल, उनके स्टाइल में कॉपी करता था। उसके बाद पन्ना बाबू, पन्ना लाल जी घोष, उनसे थोड़ा सा सीखा। और मेरे असली गुरु तो मथुरा के मुरलीधर शास्त्री हैं।
1: अच्छा।
0: उन्होंने मुझे संगीत में कर्नाटक शैली और हिंदुस्तानी दोनों का मुझे ज्ञान दिया।
1: मतलब संगीत का सफर आपका काफी पुराना है।
0: जी हाँ,
1: बचपन से आप इसमें साधना करते रहे हैं। अच्छा, एक और बात कि आप शिक्षा में भी डिग्रियां काफी हैं आपको, और वो भी कुछ ऐसी डिग्रियां हैं जिनका विशेष रूप से लोग कहते हैं संगीत के साथ सामंजस्य नहीं होता, जैसे आप साइकोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स, मैथ्स, साइंस, तो ये सारी डिग्रियां और उसके साथ साथ संगीत की साधना, ये दोनों का मेल कैसे कर पाए आप?
0: अब देखिए, मैं फिजिक्स के तरफ आकर्षित हुआ साउंड जानने के लिए, कि म्यूजिक तो साउंड की दुनिया है,
1: मतलब संगीत में भी जो विज्ञान का पक्ष है।
0: हाँ, तो फिर उसके बाद आपके मानसिक स्तर पर उसका परिणाम होता है, तो साइकोलॉजी में हमने एमए कर दिया। फिर पढ़ाना अच्छा चाहिए, तो इसलिए मैंने एजुकेशन की एक डिग्री ले ली, कि चाइल्ड साइकोलॉजी और साइकोलॉजी करके बैचलर ऑफ एजुकेशन भी हो गए।
1: मतलब संगीत का मंथन आपने हर तरह से करने की कोशिश की,
0: जी,
1: ताकि उसमें से जितने भी रत्न निकाले जा सकते हैं वो कर लिया जाए। अच्छा, जब

0: इतनी सारी विधाएं और इतने सारे पक्षों में आप बटे हुए हैं, तो संगीत के लिए रियाज का वक्त कैसे निकालते हैं?
1: देखिए, 24 घंटे भगवान ने दिए हैं अपने को, है ना। उसमें से 8 घंटा आप रेस्ट लें और कुछ करें, 16 घंटे तो पड़े हैं। अगर हर मिनट आप अगर उसके तरफ लगाएं आपकी जो चीज है, तो आपको बहुत कुछ आ सकता है।
0: अच्छा, और संगीत रचना में
1: जी
0: तो जाहिर है कि आपने काफी योगदान दिया होगा।
1: जी हाँ,
0: तो उस बारे में कुछ बताइए।
1: ऑल इंडिया रेडियो में मैं प्रोड्यूसर था।
0: अच्छा।
1: तो फिर लाइट म्यूजिक और क्लासिकल दोनों देखता था, तो फिर वहाँ ऑपेराज करना, संगीत रूपक करना, फिर हर महीने का गीत, ये सब मैं करता
0: था। ख्याल काफी वर्षों तक आपने आकाशवाणी में भी सेवा की है।
1: 20 साल, ये मेरा बड़ा सौभाग्य था कि आकाशवाणी की वजह से मुझे बहुत कुछ सीखना है मुझे।
0: अच्छा, ये संगीत के साथ साहित्य एक और पक्ष है जिसमें भी काफी लोकप्रिय है आप, और आपने काफी उसमें नाम भी पाया है।
1: मैंने
0: तो साहित्य को आप अपने संगीत से और विज्ञान से कैसे?
1: क्या हुआ कि जब संगीत मेरा प्रोफेशन बन गया तो कुछ आउटलेट मुझे चाहिए था एनर्जी को, तो मैंने लिखना शुरू कर दिया। तो ह्यूमरस स्टोरीज पहले लिखता रहा, फिर संगीत समीक्षा, फिर किसी ने कहा कि आप नॉवेल लिख के देखिए, तो वो भी लिखी, तो 10 नॉवेल्स लिख दी मैंने, और आजकल एक बड़े नॉवेल पे मैं काम कर रहा हूँ।
0: अच्छा, संगीत से संबंधित कोई किताब आपने लिखी?
1: जी हाँ, स्वरांचा बनात, और बड़ी बड़ी अच्छी किताब
0: मराठी में।
1: जी हाँ, वो लोगों को बहुत पसंद आई।
0: अच्छा, आप तो देश के अलावा विदेशों में भी काफी भ्रमण कर चुके हैं, क्या कुछ विदेशों की अपनी अनुभूति बताइए।
1: हाँ जी, टोक्यो यूनिवर्सिटी ने मुझे बुलाया टॉक्स के लिए, हाउ टू अंडरस्टैंड इंडियन म्यूजिक। तो वहाँ मैं गया था, तो फिर मैंने कहा कि फिर चलो हांगकांग चलें, मलेशिया, बैंकॉक वगैरह वगैरह, तो बहुत से देश घूम के आया। तो मैंने ये देखा कि स्वर मंडल और बंसी दोनों का वहाँ बहुत प्रभाव।
0: अच्छा, विदेश में लोग काफी पसंद करते हैं इसको।
1: और स्पेशली स्वर मंडल तो बहुत ही लोगों को पसंद आता है।
0: अच्छा
1: जी हाँ,
0: अच्छा अब श्रोताओं को कुछ सुनाए।
1: जरूर सुनिए।

0: वाह, अच्छा तो हम श्रोताओं से विदा लें, और पहले हम श्रोताओं की तरफ से और अपनी तरफ से आपका बहुत बहुत आभार, नमस्कार।
1: नमस्कार जी, धन्यवाद।
2: आज के संगीत सरिता कार्यक्रम में आपने प्रसिद्ध स्वर मंडल और बांसुरी वादक अरविंद गजेंद्र गडकर से भेंट वार्ता सुनी। भेंट कर रहे थे के शैलेंद्र,
3: और अब सुनते हैं अरविंद गजेंद्र गडकर की बांसुरी पर बजाई।

बांसुरी पर पहाड़ी धुन आप सुन रहे थे। कलाकार थे अरविंद गजेंद्र गढ़कर। आज विविध भारती के खजाने से हम ले आए थे उनके साथ की गई के शैलेंद्र की बातचीत। और अब इसके साथ ही आज का संगीत सरिता कार्यक्रम समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: ये है विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। कुछ ही पलों में होगा कार्यक्रम भूले बिसरे गीत, कीजिए बस थोड़ा सा इंतजार।
1: इस प्रोग्राम के प्रायोजक वीको वज्रतंती, भारत का गम एक्सपर्ट।

0: बीको वज्रदंती, भारत का गम एक्सपर्ट।
1: सुनो सुनो सुनो गांव वालों, केवाईसी अपडेट का मैसेज अनदेखा ना करें, तुरंत केवाईसी अपडेट कराएं। अगर पहचान या पते में कोई बदलाव नहीं है तो अपने बैंक या एटीएम या बिजनेस कॉरेस्पोंडेंट यानी बीसी के पास जाएं, या बैंक में रजिस्टर्ड ईमेल या मोबाइल नंबर या मोबाइल बैंकिंग ऐप या पत्र द्वारा उसकी स्वघोषणा दें। और अगर कोई बदलाव है तो पहचान और पते का नवीनतम प्रमाण दिखाएं। खाता सक्रिय रखकर बैंकिंग सेवाओं का लाभ उठाएं।

0: अपना केवाईसी अपडेट कराने के लिए अपने नजदीकी ग्राम पंचायत के कैंप या बैंक शाखा में जाएं।
1: आरबीआई कहता है,
2: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
3: घर का सपना हो, नई गाड़ी की ख्वाहिश या किसी जरूरत के लिए पैसे,
4: SBI देता है बेहतरीन लोन ऑप्शंस आकर्षक ब्याज दरों के साथ। होम, ऑटो, पर्सनल, पेंशन और गोल्ड लोन के लिए संपर्क करें अपनी नजदीकी शाखा से। SBI, the banker to every Indian। नियम और शर्तें लागू।

अभी आपने सुना फिल्म तुम सा नहीं देखा का गाना। स्वर थे आशा भोसले और मोहम्मद रफी के, शब्दकार थे मजरूह सुल्तानपुरी, संगीत ओपी नैयर का। आइए सुनते हैं अगला गाना।

0: अभी आपने सुना फिल्म उस्ताद का गीत, जहां निसार अख्तर की रचना, संगीत था ओपी नैयर का, आवाज थी मोहम्मद रफी की।
1: एक विलक्षण गायक।
2: अरे ओरे हे।
1: संगीत के साधक।
2: ओरे पथिकवा मत जइयो तू वृंदावन।
1: उनके सुरों में भक्ति की निर्मलता है, संगीत की गहराई है, भावों में मिठास

0: वो हैं संगीतकार, गायक और अभिनेता शेखर सेन।
1: बहुत कम लोग ये जानते हैं कि जो मीरा के भजन इस समय हम लोग सुनते हैं, अभी मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों ना कोई, ये जो भाषा है ये सधुखड़ी भाषा है। मीराबाई ने जो भी लिखा वो सारे भजन जो थे वो मेवाड़ की भाषा में।
0: पहली अक्टूबर से हम शुरू कर रहे हैं नई श्रृंखला शताब्दी की भक्ति रचनाएं। सुनिए संगीत सरिता सुबह और शाम 6:45 सिर्फ विविध भारती पर।
2: अब समय हो चला है अंतराल का, तो मिलते हैं एक छोटे से अंतराल के बाद।

0: राणा पाइल्स हॉस्पिटल। कॉल करें 9814128667 पर और पाइल्स से मुक्ति पाएं।
1: मैं ता टीका ला लिया, और तू भी ला ले।
2: नहीं यार, मैं नहीं लौना।
1: ए ता फिर यार मार वाली गल होगी।
2: नशा करन ली मजबूर करन वाले दोस्त दोस्त नहीं, दुश्मन हुंदे आ। नाले ए तेरी सुइयां सांझी करन नाल तेनू एचआईवी दा भी खतरा हो सकदा है।
3: अज ही सरकार दी युद्ध नशा विरुद्ध मुहिम दा हिस्सा बनो ते दोस्तां दा भी नशा छुड़वाओ। बाकी जेकर एचआईवी होण दा शक है ता सरकारी हॉस्पिटल विच एचआईवी दा टेस्ट मुफ्त करवाओ। वधेरे जानकारी लई डायल करो टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर 1097। पंजाब स्टेट एड्स कंट्रोल सोसाइटी वल्लों जनहित विच जारी।

0: अभी आपने सुना फिल्म सती परीक्षा का गाना, आवाजें आशा भोसले और साथियों की थी, शब्द रचना नाजिम की और संगीत सन्मुख बाबू का।
1: हम मनाएंगे जश्न 3 अक्टूबर विविध भारती की सालगिरह पर। जाने माने फिल्म निर्देशक तिग्मांशु धूलिया आएंगे विविध भारती के सजीव प्रसारण स्टूडियो में।
2: विविध भारती एक ऐसा चैनल है जहां हर दौर के गाने और हर तरह के कार्यक्रम आप सुन सकते हैं। 3 अक्टूबर विविध भारती चैनल अपने 70 बरस पूरे कर रहा है। मैं फिल्मकार तिग्मांशु धूलिया अपनी फिल्मी यात्रा के साथ सजीव प्रसारण में आपसे मिलने आऊंगा।
1: कुछ दिलचस्प किस्से, कुछ खुशगवार बातें,
3: आंखें भी होती हैं दिल की सुबह।
1: तो आप सब जुड़िए और सुनिए दिन में 2:30 बजे से विविध भारती।
0: हम विविध भारती से बोल रहे हैं, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम भूले बिसरे गीत। लीजिए अब सुनिए फिल्म रानी रूपमती का गाना, स्वर मन्ना डे का, रचना भरत व्यास की, सुरों में डाला एस एन त्रिपाठी ने।

0: मिलिए जानी मानी गायिका पूर्णिमा से एक खास बातचीत में।
1: उसका अंतरा हमेशा पंचमदा मेरे लिए पता नहीं क्यों गाते थे। कभी शोज के लिए गए, बस में साथ में बैठे तो मेरा हाथ पकड़ के, वो अंतरा था ना कि रखना भरोसा उस पे सदा।
0: बॉम्बे टॉकीज में 3 अक्टूबर शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: यह है विविध भारती राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन। कार्यक्रम चल रहा है भूले बिसरे गीत। आइए सुनिए पवन पुत्र फिल्म का गाना आवाज शमशाद बेगम की और साथियों की। गीतकार थे दीपक और संगीतकार दीपक और संगीत चित्रगुप्त का।

0: इस गीत के साथ ही आज का भूले बिसरे गीत कार्यक्रम यहीं पर संपन्न होता है।
1: इस प्रोग्राम के प्रायोजक थे वीको वज्रदंती, भारत का गम एक्सपर्ट।
2: वीको टर्मरिक

अपनी त्वचा के लिए मैं चुनती हूँ वही जो है सबसे सही। वीको टर्मर क्रीम मेरी त्वचा का पोषण करे, उसे कोमल, सौम्य और उज्जवल बनाए। वीको टर्मरिक क्रीम, मैंने चुनी खूबसूरती।

दोस्तों, विविध भारती से प्रस्तुत है कार्यक्रम हम है राही प्यार के। आप सभी को आपकी दोस्त मंजरी वर्मा का प्यार भरा नमस्कार। श्रोताओं, आज फिल्मकार ऋषिकेश मुखर्जी का जन्मदिन है। आज हम इस कार्यक्रम में उन्हीं को याद कर रहे हैं, उन्हीं के फिल्मों के माध्यम से। आइए सुनते हैं इस कार्यक्रम का ये गाना।

अभी आपने सुना फिल्म छाया का गीत, गीत के बोल थे राजेंद्र कृष्ण के, संगीत सलील चौधरी का और युगल स्वर लता मंगेशकर और तलत महमूद के। आइए सुनते हैं कार्यक्रम का अगला गाना।

0: आता है पसीना।
1: बाप रे,
0: कल मैंने देखी अजब हसीना। प्यार में उसके धड़के मेरा दिल जलता है सीना। धक धक धक बात को आई बड़ी अदा से, बोली क्यों हो खफा खफा से।
1: हाय मर जाऊं,
0: हम भी थे एक नजर के प्यासे।
1: क्यों नहीं,
0: दिल पे उसने जो हाथ रखा आ गया आराम।

अभी आपने सुना बुढ़ा मिल गया का गाना, युगल स्वर थे आशा भोसले और किशोर कुमार के, गीत रचना मजरू सुल्तानपुरी की और संगीत राहुल देव बर्मन का। लीजिए सुनिए इस कार्यक्रम का अगला गाना, फिल्म अभिमान से लिया है हमने। आवाज़ें हैं मोहम्मद रफ़ी और लता मंगेशकर की, स्वरबद्ध किया मजरू सुल्तानपुरी ने और संगीत दिया SD बर्मन ने।

0: एक विलक्षण कथाकार जिनकी लेखनी में गहरी संवेदना है, विचार है, जीवन के अनुभव हैं। वो हैं जाने माने कहानीकार, उपन्यासकार और अनुवादक मनोज रूपड़ा।
1: मैंने एक लंबा लेख लिखा इन सब चीजों को, उसका पहल में वो लेख छपा था, कहानी की काया और फिल्म की छाया। उसमें मैंने एशियन फिल्मों पर लिखा और उसमें किस तरह से कहानियों को फिर से वापस स्थापित किया गया, इस बात को रेखांकित किया।
0: आज के मेहमान 30 सितंबर शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: हम हराही प्यार के इस कार्यक्रम में अब वक्त हो चला है अंतराल का।

0: हाँ ये रिंग अच्छी है, बीवी को पसंद भी आ जाएगी।
1: अरे यस सर, आपकी चॉइस बहुत अच्छी है और ये डिजाइन भी नया है।
0: डिजाइन नया है वो तो ठीक है, लेकिन सोने की प्योरिटी का प्रूफ कहाँ मिलेगा?
2: बनिए एक जागरूक ग्राहक, आज ही डाउनलोड कीजिए BIS केयर ऐप। सोना खरीदने से पहले BIS केयर ऐप पर HUID कोड अवश्य वेरीफाई करें।

अभी आपने सुना फिल्म चिपके चिपके का गाना। युगल स्वर थे लता मंगेशकर और मुकेश के। गीत के बोल लिखे थे आनंद बख्शी ने और संगीत दिया था एस डी बर्मन ने।

अभी आपने सुना गबन फिल्म का गीत, आवाज़ें थी मोहम्मद रफ़ी और लता मंगेशकर की, गीत के बोल लिखे थे शैलेंद्र ने और संगीत से सजाया था शंकर जयकिशन ने। लीजिए अब सुनिए फिल्म प्यार का सपना का गाना, युगल स्वर लता मंगेशकर और मोहम्मद रफ़ी के, गीतकार राजेंद्र कृष्ण और संगीतकार चित्रगुप्त।

विविध भारती मुंबई से अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम हम हैं राही प्यार के। हम आकाशवाणी के चंडीगढ़ केंद्र से बोल रहे हैं FM 107.2 MHz पर। कुछ ही पलों में सुबह के 8 बजने वाले हैं और आप सुनेंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से समाचार प्रभात। बस कीजिए थोड़ा सा इंतजार।

नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं मुकेश कुमार बल। नौसेना इस वर्ष अपने बेड़े में रिकॉर्ड 18 युद्धपोत शामिल करेगी। ये इतिहास में एक वर्ष का सबसे बड़ा सैन्य बल विस्तार। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल आज अमेरिका में G20 व्यापार मंत्रियों की बैठक में भाग लेंगे। भारत ने विश्व को परमाणु हथियार मुक्त बनाने और सभी परमाणु हथियारों को समाप्त करने की प्रतिबद्धता दोहराई। जम्मू कश्मीर के बडगाम जिले में सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में लश्करे तैयबा का शीर्ष आतंकवादी ढेर। आंतरिक कर्नाटक, तमिलनाडु, केरलम और उत्तर पूर्वी राज्यों में आज मूसलाधार बारिश का अनुमान। एशियाई खेलों में भारतीय महिला कंपाउंड तीरंदाजी टीम ने स्वर्ण पदक जीता। और भारत वेस्टइंडीज के बीच दूसरा एक दिवसीय क्रिकेट मैच आज गुवाहाटी में। अब समाचार विस्तार से। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने मौजूदा वर्ष को भारतीय नौसेना के लिए ऐतिहासिक वर्ष बताया है। इस वर्ष 18 युद्धपोतों को नौसेना के बेड़े में शामिल करने की योजना है। नई दिल्ली में कल भारतीय नौसेना के द्विवार्षिक कमांडर सम्मेलन 2026 के दूसरे संस्करण में श्री सिंह ने कहा कि ये घटनाक्रम भारतीय नौसेना के घरेलू जहाज निर्माण तंत्र की बढ़ती परिपक्वता को दर्शाते हैं। रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता प्राप्त करने की दिशा में नौसेना के प्रयासों को दर्शाते हुए रक्षा मंत्री ने कहा कि भारतीय नौसेना का युद्धपोत विनिर्माण तंत्र अब वैश्विक मानकों को पूरा कर रहा है। उन्होंने कहा कि हाल ही में कमीशन किए गए युद्धपोतों में 75% से अधिक स्वदेशी सामग्री है। रक्षा मंत्री ने मौजूदा प्रणालियों के महत्व को पहचानते हुए भारत की समुद्री

0: निगरानी प्रणाली के महत्वपूर्ण उन्नयन का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि समुद्री यातायात की बढ़ती मात्रा और जटिलता के लिए उन्नत विश्लेषणात्मक क्षमताओं की आवश्यकता है। एक रिपोर्ट।
1: रक्षा मंत्री ने कहा है कि ऑपरेशन ऊर्जा सुरक्षा ने देश की ऊर्जा आपूर्ति लाइनों और राष्ट्रीय हितों की रक्षा में भारतीय नौसेना की पेशेवर क्षमता और परिचालन तत्परता को एक बार फिर साबित किया है। उन्होंने कहा कि भारत हिंद महासागर क्षेत्र में फर्स्ट रिसार और भरोसेमंद सहयोगी के रूप में अपनी भूमिका लगातार मजबूत कर रहा है। रक्षा मंत्री ने कहा कि दक्षिण चीन सागर, भूमध्य सागर और अटलांटिक महासागर में भारतीय युद्धपोतों की तैनाती देश की ब्लू वाटर नौसेना क्षमता को दर्शाती है। उन्होंने कहा कि नौसेना वर्ष 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य को हासिल करने में एक महत्वपूर्ण रणनीतिक आधार के रूप में कार्य कर रही है। नीतिका गुप्ता, आकाशवाणी समाचार, नई दिल्ली।
0: रक्षा उद्योग और लॉजिस्टिक्स सहयोग पर भारत कोरिया गणराज्य की 10वीं संयुक्त समिति JCM की बैठक कल नई दिल्ली में आयोजित की गई। रक्षा मंत्रालय ने बताया कि दोनों देशों ने रक्षा उद्योग और लॉजिस्टिक्स क्षेत्र में जारी द्विपक्षीय सहयोग की समीक्षा की। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल आज अमेरिका में G20 विदेश मंत्रियों के साथ बैठक में शामिल होंगे। ये बैठक अमेरिका के व्यापार प्रतिनिधि जेमिसन ग्रीर के निमंत्रण पर आयोजित की जा रही है। अमेरिका की यात्रा के दौरान श्री गोयल अपने अमेरिका के समकक्ष के साथ भारत अमेरिका द्विपक्षीय व्यापार समझौते पर बातचीत को आगे बढ़ाने के लिए भी चर्चा करेंगे। वाणिज्य मंत्रालय ने कहा कि बातचीत इस वर्ष 7 फरवरी को जारी संयुक्त बयान के अनुरूप अंतरिम समझौते को अंतिम रूप देने पर केंद्रित होगी। श्री गोयल 29 सितम्बर से 5 अक्टूबर तक अमरीका की यात्रा पर हैं, जहां वे G20 बैठक में भारत विश्व व्यापार संगठन को केंद्र में रखते हुए नियम आधारित खुले, समावेशी और पारदर्शी बहुपक्षीय व्यापार व्यवस्था को मजबूत करने के मुद्दे पर चर्चा करेंगे। यात्रा के दौरान श्री गोयल विनिर्माण, उपभोक्ता वस्तुओं, कृषि व्यवसाय, खुदरा और प्रौद्योगिकी सहित विभिन्न क्षेत्रों की प्रमुख अमरीका की कंपनियों के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों से भी मुलाकात करेंगे। भारत ने परमाणु हथियारों से मुक्त और सार्वभौमिक, गैर भेदभावपूर्ण और सत्यापन योग्य निशस्त्रीकरण के माध्यम से परमाणु हथियारों के पूर्ण उन्मूलन के प्रति अपनी प्रतिबद्धता की पुष्टि की है। विदेश मंत्रालय में पश्चिमी देशों के मामलों के सचिव CB जॉर्ज ने कल न्यूयॉर्क में परमाणु हथियारों के पूर्ण उन्मूलन के अंतर्राष्ट्रीय दिवस के उपलक्ष्य में आयोजित संयुक्त राष्ट्र की उच्च स्तरीय बैठक में भारत का ये बयान दिया। विदेश मंत्रालय ने कहा कि श्री जॉर्ज ने संयुक्त राष्ट्र महासभा में डर्बन घोषणा और कार्य योजना की 25वीं वर्षगांठ के अवसर पर आयोजित एक बैठक में नस्लीय भेदभाव, विदेशियों के प्रति नफरत और संबंधित असहिष्णुता से लड़ने के प्रति भारत की अटूट प्रतिबद्धता की भी पुष्टि की। गृहमंत्री अमित शाह आज पंजाब दौरे पर रहेंगे और जालंधर में नशा मुक्त पंजाब यात्राओं को झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। इन यात्राओं का उद्देश्य पंजाब में मादक पदार्थों के खिलाफ अभियान को जन आंदोलन में बदलना है। इन यात्राओं का मुख्य केंद्र पंजाब के सामने मौजूद 3 प्रमुख चुनौतियां हैं। इनमें मादक पदार्थों के बढ़ते दुरुपयोग, बिगड़ती कानून व्यवस्था और शासन के सभी स्तरों पर भ्रष्टाचार शामिल है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनसेवा में 25 वर्ष पूरे कर रहे हैं। यह यात्रा जनसेवा से देश सेवा के मंत्र और अटूट प्रतिबद्धता से प्रेरित है, जो आज भी जारी है। सेवा और सुशासन की इसी दृष्टि से प्रेरित होकर सरकार वर्ष 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में लगातार कार्य कर रही है। समावेशी विकास और सामाजिक सशक्तिकरण के माध्यम से ये समर्पण लोगों के जीवन में बदलाव ला रहा है। आज इस विशेष श्रृंखला में हम चर्चा कर रहे हैं कि कैसे इस दृष्टि को जल सुधारों के माध्यम से साकार किया गया है।
2: दशकों तक गुजरात बार बार पड़ने वाले सूखे और भीषण जल संकट की त्रासदी झेलता रहा। इस परिस्थिति को बदलते हुए तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जल प्रबंधन को एक स्थायी व्यवस्था के रूप में स्थापित किया। चेक डैम, खेत तालाब, रिचार्ज वेल और नहरों के एक विशाल नेटवर्क की योजना तैयार की गई। सुजलाम सुफलाम जैसी दूरगामी पहल के जरिए बाढ़ के अधिशेष जल को 332 किलोमीटर से अधिक की लंबी नहरों के माध्यम से उत्तरी गुजरात के सैकड़ों गाँव तक पहुँचाया गया। वहीं ऐतिहासिक योजना के तहत नर्मदा के पानी को सौराष्ट्र के जलाशयों तक पहुंचाकर 10 लाख एकड़ से अधिक भूमि को सिंचाई सुविधा से जोड़ा गया। राज्य भर में 1.85 लाख से अधिक चेक डैम बनाए गए। जल संकट से जल सुरक्षा की इस अभूतपूर्व

0: सफर को याद करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा,
1: मैंने दशकों से लटके पड़े सरदार सरोवर डैम का काम पूरा करवाया। गुजरात में सौनी योजना शुरू हुई, जहां पानी की अधिकता थी वहां से पानी जल संकट वाले इलाकों में पहुंचाया गया। आज गुजरात में हुए प्रयासों के परिणाम सारी दुनिया के सामने हैं।
0: जल सुरक्षा के इस विस्तृत तंत्र ने राज्य के लाखों किसानों के जीवन में स्थायित्व और आर्थिक समृद्धि का संचार किया है। सौनी योजना से अपने जीवन और खेती में आए सकारात्मक बदलाव को बयां करते हुए अमरेली जिले की महिला किसान लाभूबेन सरोला कहती है,
2: सौनी योजना के आने से हमारे गांव में नहर आई। पानी का इस्तेमाल करके मैंने मूंगफली और कपास जैसी फसलों का उत्पादन बढ़ाया है और कमजोर सालों में भी हमने अपनी रोजी रोटी कमा सकते, इसीलिए हम गुजरात सरकार और केंद्र सरकार का आभार व्यक्त करते हैं।
0: आज गुजरात का यह दूरदर्शी जल प्रबंधन मॉडल पूरे देश के लिए जल संरक्षण, कृषि समृद्धि और सतत विकास की एक बेहतरीन मिसाल बना हुआ है। अपर्णा खुंड, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
3: प्रधानमंत्री मोदी ने वर्ष 2018 में असम में बोगी पुल का उद्घाटन किया। ये पुल ब्रह्मपुत्र नदी के उत्तरी तट पर स्थित धेमाजी जिले को दक्षिणी तट पर स्थित डिब्रूगढ़ से जोड़ता है।
4: बोगीबील पुल ने ऊपरी असम के सामाजिक, आर्थिक, औद्योगिक, स्वास्थ्य तथा शिक्षा क्षेत्रों में व्यापक बदलाव लाए हैं। 4.94 किलोमीटर लंबा यह दो स्तरीय रेल सह सड़क पुल भारत में अपनी तरह का सबसे लंबा पुल माना जाता है। यद्यपि इसकी आधारशिला वर्ष 1997 में तत्कालीन प्रधानमंत्री HD देवेगौड़ा ने रखी थी, लेकिन कई वर्षों तक इसका निर्माण कार्य धीमी गति से चलता रहा। बाद में NDA सरकार के दौरान परियोजना को गति मिली और लंबे समय से प्रतीक्षित इस पुल का निर्माण सफलतापूर्वक पूरा हुआ। आज उस क्षेत्र के उत्तरी तट के लोग चिकित्सा, आपात स्थितियों, शिक्षा तथा अन्य कार्यों के लिए कुछ ही मिनटों में डिब्रूगढ़ पहुंच सकते हैं। धेमाजी से हरेंद्रनाथ शर्मा के साथ राकेश दोले, आकाशवाणी समाचार, गुवाहाटी।
3: निर्वाचन आयोग युवा मतदाताओं के नाम मतदाता सूची में जोड़ने के लिए दिल्ली के कॉलेजों और विश्वविद्यालयों में विशेष नामांकन शिविर चला रहा है। एक रिपोर्ट।
5: अगले महीने की 4 और 11 तारीख को सभी मतदान केंद्रों पर विशेष शिविर भी आयोजित किए जाएंगे। निर्वाचन आयोग ने कहा कि इस वर्ष 1 अक्टूबर या उससे पहले 18 वर्ष की आयु पूरी करने वाले नए आवेदक मतदाता सूची में अपना नाम शामिल कराने के लिए फॉर्म 6 में आवेदन करें। निर्वाचन आयोग ने बताया कि अब तक दिल्ली में 400,000 से अधिक सुनवाइयां की जा चुकी हैं। आयोग ने यह भी कहा कि जिन मतदाताओं को तार्किक विसंगतियों से संबंधित नोटिस मिले हैं, उन्हें बूथ लेवल अधिकारी सहायता प्रदान करेंगे। बूथ लेवल अधिकारी ऐसे मतदाताओं के घर जाकर आवश्यक दस्तावेज एकत्र करेंगे। निर्वाचन आयोग ने दिल्ली में चल रहे मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण के कार्यक्रम में संशोधन किया है। दावे और आपत्तियां दाखिल करने की अवधि अगले महीने की 30 तारीख तक जारी रहेगी, जबकि अंतिम मतदाता सूची इस वर्ष 4 दिसंबर को प्रकाशित की जाएगी। अक्षित वैद्यान, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
3: ये समाचार हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध है।
6: चलते फिरते खबरों से जुड़े रहिए। expert@airnewshindi को फॉलो करें और PB शब्द पर आकाशवाणी समाचार सुने।
3: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। जम्मू कश्मीर के बडगाम जिले के पहाड़ी इलाकों में कल देर शाम सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में लश्कर-ए-तैयबा का एक शीर्ष आतंकवादी मारा गया। भारतीय सेना की कश्मीर स्थित चिनार कोर ने मारे गए आतंकवादी की पहचान उजागर नहीं की, लेकिन अधिकारियों ने उसकी पहचान सुलेमान शाह उर्फ मूसा के रूप में की। मूसा पाकिस्तान स्थित लश्कर-ए-तैयबा का मोस्ट वॉन्टेड आतंकवादी था। एशियाई खेल 2026 में भारतीय महिला कंपाउंड तीरंदाजी टीम ने फाइनल मैच में चीन को 238-234 से हराकर स्वर्ण पदक जीत लिया है। ज्योति सुरेखा वेन्नम, चिकिता तनिपार्थी और प्रथिका प्रदीप की भारतीय टीम ने सेमीफाइनल में दक्षिण कोरिया को 234-233 से हराकर फाइनल में अपनी जगह पक्की की थी। भारत ने हांगझोऊ में आयोजित 2023 एशियाई खेलों में महिला कंपाउंड टीम स्पर्धा में भी स्वर्ण पदक जीता था। भारत प्रतियोगिता में अब 7 स्वर्ण, 21 रजत और 25 कांस्य पदकों सहित कुल 53 पदकों के साथ 9वें स्थान पर है। भारत और वेस्टइंडीज के बीच 3 मैचों की क्रिकेट श्रृंखला का दूसरा मुकाबला आज गुवाहाटी के बरसापारा क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा। मैच दोपहर 2 बजे से शुरू होगा। मौसम विभाग ने आज आंतरिक कर्नाटक, केरलम, माहे, तमिलनाडु और पूर्वोत्तर राज्यों के कुछ हिस्सों में मूसलाधार बारिश का

0: अनुमान व्यक्त किया है। आज तटीय आंध्र प्रदेश, पुदुचेरी, ओडिशा, मध्य प्रदेश, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में बिजली कड़कने और तेज हवाओं के साथ आंधी तूफान की भी संभावना है। मौसम विभाग ने दिल्ली में आज आसमान साफ रहने का अनुमान व्यक्त किया है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं जया भारती।
1: धन्यवाद मुकेश। राजधानी दिल्ली से प्रकाशित प्रमुख समाचार पत्रों ने आज अलग अलग खबरों को अपने मुख्य पृष्ठ पर जगह दी है। पाकिस्तान और अमेरिका के बीच हाल में मजबूत होते रिश्तों पर विदेश मंत्री एस जयशंकर की तल्ख टिप्पणी अमर उजाला में है। पत्र लिखता है, अमेरिका ने आतंकवाद पर भारत की चिंता नहीं समझी तो रिश्तों पर असर। इसी खबर पर दैनिक जागरण के विदेश पन्ने की सुर्खी है, पाकिस्तान से गलबहिया पर अमेरिका से बोले जयशंकर, आतंकवाद पर कोई सहानुभूति नहीं, इससे रिश्ते प्रभावित होंगे। दैनिक जागरण ने कैंसर की दवाओं पर अस्पतालों द्वारा 10 गुना तक कीमत बढ़ाए जाने पर सर्वोच्च न्यायालय की सख्त टिप्पणी प्रकाशित की है। अस्पतालों में 10 गुना कीमतों पर दवा बेचना नरसंहार। राजधानी में यातायात को नई रफ्तार देने के लिए बनाए गए बारापोला फेज 3 एलिवेटेड कॉरिडोर और मुकरबा चौक अंडरपास के उद्घाटन की भी खबर कई समाचार पत्रों ने सचित्र प्रकाशित की है। हिंदुस्तान ने सौगात शीर्षक से लिखा है, मयूर विहार से एम्स तक बिना रुके सफर करें। नवभारत टाइम्स की सुर्खी है, मयूर विहार से एम्स की यात्रा 15 मिनट में। राजस्थान पत्रिका ने बदलाव शीर्षक से खबर छापी है, सामाजिक विज्ञान की नई पुस्तक जारी, जाट सिख प्रतिरोध भी नवी के कोर्स में शामिल। लिखा, एनसीईआरटी की नई किताब में मेवाड़ के रणबांकुरों की कहानी। पत्र ने कोलकाता में होने वाले एक भव्य दुर्गा पूजा पंडाल का भी चित्र प्रकाशित किया है। पंडाल में 1000 किलोग्राम पुराने अखबारों से पंडाल से सजाएगा।
0: धन्यवाद जया। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। नौसेना इस वर्ष अपने बेड़े में रिकॉर्ड 18 युद्धपोत शामिल करेगी। ये इतिहास में एक वर्ष का सबसे बड़ा सैन्य बल विस्तार। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल आज अमेरिका में G20 व्यापार मंत्रियों की बैठक में भाग लेंगे। भारत ने विश्व को परमाणु हथियार मुक्त बनाने और सभी परमाणु हथियारों को समाप्त करने की प्रतिबद्धता दोहराई। जम्मू कश्मीर के बडगाम जिले में सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में लश्कर ए तैयबा का शीर्ष आतंकवादी ढेर। आंतरिक कर्नाटक, तमिलनाडु, केरलम और पूर्वी राज्यों में आज मूसलाधार बारिश का अनुमान। एशियाई खेलों में भारतीय महिला कंपाउंड तीरंदाजी टीम ने स्वर्ण पदक जीता और भारत वेस्टइंडीज के बीच दूसरा एक दिवसीय क्रिकेट मैच आज गुवाहाटी में। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: हम आकाशवाणी के चंडीगढ़ केंद्र से बोल रहे हैं FM 107.2 मेगाहर्ट्ज पर। आइए अब सुनते हैं विविध भारती मुंबई से अगला कार्यक्रम त्रिवेणी।
3: आइए सुने त्रिवेणी।

आज की त्रिवेणी में बात करेंगे शहर की। साथियों, शहर सिर्फ इमारतों, सड़कों और भीड़ का नाम नहीं, बल्कि अपने आप में एक पूरी दुनिया है। हर शहर का अपना मिजाज होता है, अपनी रफ्तार होती है और अपनी एक अलग पहचान। कहीं सुबह की शुरुआत चाय की प्याली और अखबार से होती है, तो कहीं रात तक जगमगाती सड़कों पर जिंदगी दौड़ती रहती है। किसी शहर में सुकून मिलता है तो कोई शहर अपनी चहल पहल से दिल जीत लेता है, और कुछ शहर ऐसे होते हैं जिनसे पहली मुलाकात में ही अपनापन महसूस होने लगता है। शायद इसी खूबसूरत, रंगीन और थोड़े शरारती अंदाज के लिए कहा गया होगा, ये शहर बड़ा अलबेला। तो चलिए शहर के इसी दिलकश अंदाज को महसूस करते हैं फिल्म सिंगापुर के इस गीत के साथ।

0: परियां
1: नमस्ते।
0: ये शहर बड़ा अलबेला, हर तरफ हसीनों का मेला। ये शहर बड़ा अलबेला, हर तरफ

0: शहर की एक खासियत ये भी है कि ये अपने भीतर न जाने कितने सपने समेटे रहता है। छोटे शहरों से बड़े शहरों की ओर आते लोग अपने साथ उम्मीदें लेकर आते हैं, कुछ नया करने की, अपनी पहचान बनाने की और शायद किसी अपने के साथ एक छोटी सी दुनिया बसाने की। शहर की भीड़ में जब दो लोग एक दूसरे का हाथ थाम लेते हैं तो वही अनजान शहर उन्हें अपना लगने लगता है। फिर ऊंची इमारतों और व्यस्त सड़कों के बीच भी एक घर, एक साथी और एक सपना काफी होता है। कुछ ऐसा ही एहसास है अगले गीत में, जहां शहर सिर्फ जगह नहीं बल्कि दो दिलों के सपनों का पता बन जाता है। सुनते हैं घरौंदा फिल्म का ये खूबसूरत गीत।
1: दो दीवाने शहर में

हर शहर की अपनी एक रौनक होती है और उस रौनक में वहाँ के लोग सबसे खास रंग भरते हैं। बाजारों की चहल पहल, सड़कों की रफ्तार, कॉलेज जाते युवा, दोस्तों की महफिलें और शाम ढलते ही रोशन होती गलियां। शहर की जिंदगी कई रंगों से मिलकर बनती है। खासकर बड़े शहरों में फैशन, स्टाइल और आत्मविश्वास का अपना ही अंदाज देखने को मिलता है। यही वजह है कि फिल्मों में भी शहर को अक्सर युवा ऊर्जा और आकर्षण के प्रतीक के रूप में पेश किया गया है। अब हमारे इस शहर सफर का आखिरी पड़ाव भी कुछ ऐसा ही चुलबुला और मस्ती भरा सा है। तो तैयार हो जाइए शहर की रौनक और युवा अंदाज से रूबरू होने के लिए फिल्म रक्षक के इस गीत के साथ।

0: घर का सपना हो, नई गाड़ी की ख्वाहिश या किसी जरूरत के लिए पैसे, SBI देता है बेहतरीन लोन ऑप्शंस आकर्षक ब्याज दरों के साथ। होम, ऑटो, पर्सनल, पेंशन और गोल्ड लोन के लिए संपर्क करें अपनी नजदीकी शाखा से। SBI, द बैंकर टू एवरी इंडियन। नियम और शर्तें लागू।
1: इसके बाद वो बने म्यूजिक अरेंजर और फिर म्यूजिक डायरेक्टर। पहले उत्तम जगदीश और उसके बाद संगीतकार उत्तम सिंह। एक उत्तम जीवन
2: मैं निकला ओ गटले
1: जो संगीत की साधना में बीता। एक विराट जीवन की कहानी।
2: दिल तो पागल है, दिल दीवाना है।
3: जब इसका म्यूजिक रिलीज हो रहा था तो रिदम हाउस में लाइन लगी होती।
1: उजाले उनकी यादों के एक सर्वोत्तम श्रृंखला उत्तम सिंह के साथ।
4: चिट्ठी न कोई संदेश।
1: 20 सितंबर से हर रविवार शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
5: आपने अभी ट्यून किया है देश का नंबर 1 चैनल विविध भारती राष्ट्रीय सेवा चित्रलोक कार्यक्रम कुछ ही पलों में।

0: कुछ कहानियां किताबों में नहीं मिलती, वो मिलती हैं हमारे शहरों की गलियों में, गांव की मिट्टी में,
1: लोक परंपराओं में और उन लोगों में जो अपनी विरासत को आज भी संजोए हुए हैं।
0: इन्हीं अनमोल कहानियों को देश और दुनिया तक पहुंचाने का डिजिटल क्रिएटर्स के लिए अनोखा अवसर है
1: सूचना और प्रसारण मंत्रालय भारत सरकार का जेम्स ऑफ इंडिया चैलेंज।
0: अपने शहर की खास जगह, परंपरा, प्रतिभा या फिर कहानी पर 1 से 3 मिनट तक का वीडियो बनाएं। माई वेव्स OTT प्लेटफॉर्म पर अपने मोबाइल नंबर से लॉगिन करें,
1: मोबाइल पर आए OTP को दर्ज करें और फिर जेम्स ऑफ इंडिया चैलेंज चुनकर अपनी 1 से 3 मिनट की वीडियो अपलोड कर सबमिट करें।
0: अपनी 1 से 3 मिनट की वीडियो अब आप माई वेव्स OTT प्लेटफॉर्म पर 30 सितंबर तक अपलोड कर सकते हैं। तो कहिए अपने शहर, अपने गांव की कहानी अपनी जुबानी।
1: जेम्स ऑफ इंडिया चैलेंज।
2: विविध भारती मुंबई से आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम चित्रलोक।

0: फिल्म पीके का गाना आपने सुना, शान और श्रेया घोषाल की आवाजों में, गीत लिखा स्वानंद किरकिरे ने और संगीत शांतनु मोइत्रा का।
1: मैं ता टीका ला लिया, हुण तू भी ला ले।
2: नहीं यार, मैं नहीं लाना।
1: ए ता फिर यार मार वाली गल होगी।
2: नशा करन ले मजबूर करन वाले दोस्त दोस्त नहीं दुश्मन हुंदे आ। नाले ए तेरी सुइयां सांझी करन नाल तेनू एचआईवी दा भी खतरा हो सकदा है।
3: अज ही सरकार दी युद्ध नशा विरुद्ध मुहिम दा हिस्सा बनो ते दोस्तां दा भी नशा छुड़वाओ। बाकी जेकर एचआईवी होण दा शक है ता सरकारी हॉस्पिटल विच एचआईवी दा टेस्ट मुफ्त करवाओ। वधेरे जानकारी लई डायल करो टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर 1097। पंजाब स्टेट एड्स कंट्रोल सोसाइटी वल्लों जन हित विच जारी।
4: फिल्मी यात्रा के साथ सजीव प्रसारण में आपसे मिलने आऊंगा।
5: कुछ दिलचस्प किस्से, कुछ खुशगवार बातें,
6: आंखें भी होती हैं दिल की सुबह।
5: तो आप सब जुड़िए और सुनिए दिन में 2:30 बजे से विविध भारती।
7: तीन अक्टूबर विविध भारती की सालगिरह का जश्न। विविध भारती के लाइव ट्रांसमिशन में आ रहे हैं जाने माने संगीतकार अन्नू मलिक।
8: किसका है ये तुमको इंतजार, मैं हूं ना।
7: दिन में 12 बजे से 2 बजे के बीच
9: अगर तुम मिल जाओ।
7: अन्नू मलिक की बातें, गाने और कुछ दिलचस्प कहानियां। 3 अक्टूबर विविध भारती की सालगिरह का जश्न।
10: बंदा ये बिंदास है, बंदा ये बिंदास है।
0: दोस्तों, आज हम लोकप्रिय गायक शान को उनके जन्मदिन पर विविध भारती परिवार की ओर से बधाई दे रहे हैं। शान ने पॉप संगीत से लेकर हिंदी फिल्मों के गीतों तक अपनी अलग पहचान बनाई और बड़ी सुरीली और मधुर आवाज़ में उनके गीत हम सुनते आए हैं। तो लीजिए सुनते हैं कार्यक्रम में अगला गाना।

0: ये था गाना फिल्म चल पिक्चर बनाते हैं का, जिसे गाया शान और सुनिधि चौहान ने, गीत के बोल लिखे सीमा ने और संगीत दिया गौरव ने।
1: वो बताएंगे फिल्म की शूटिंग की कहानियाँ, सृजन की बातें, साझा करेंगे सिनेमा की बातें, अपने जीवन के कुछ दिलचस्प किस्से।
2: वो इवेंट जो मेरे साथ में हुआ कि मेरी कार वहाँ पे अचानक से रुक जाती है और मुझे पता भी नहीं होता कि वो जगह कौन सी है, दरवाजा खोलता हूँ तो कैंची धाम के गेट के नीचे खुलता है, वो एक इवेंट मेरे दिमाग में रह जाता है।
1: वो है हनुमान अंश के निर्देशक विशाल चतुर्वेदी,
2: और वो इवेंट आज मुझे 20 साल के बाद में, एग्जैक्टली आफ्टर 20 इयर्स आई एम मेकिंग द फिल्म, एंड द सक्सेस ऑफ द फिल्म इज प्रॉब्ली आई थिंक वाज डेस्टिन्ड।

0: और डिसाइडेड बाय हिम, तो इसको लीला बोलते हैं।
1: आज के मेहमान 7 अक्टूबर शाम 4 बजे विविध भारती पर।
2: ओ मैंने तेरे ही भरोसे हनुमान सागर में नैया डारे दई।
3: आइए सुनते हैं कार्यक्रम का अगला गाना।

0: कार्यक्रम में समय हो चला है अंतराल का।
1: हाँ, ये हेलमेट अच्छा है, सेफ है क्या?
2: चिंता मत कीजिए, इस हेलमेट पर ISI मार्क है।
1: और मुझे कैसे पता चलेगा कि ये असली है?
2: BIS केयर ऐप से, जहाँ आपको ये इम्पोर्टेंट डिटेल एक ही क्लिक में मिल जाएगी।
3: बनिए जागरूक ग्राहक और कोई भी प्रोडक्ट खरीदने से पहले उसकी प्रामाणिकता चेक करने के लिए आज ही डाउनलोड करें BIS केयर ऐप।
4: मैं तो टीका ला लिया, और तू भी ला ले।
5: नहीं यार, मैं नहीं लाना।
4: ए तो फिर यार मार वाली गल होगी।
5: नशा करन ले मजबूर करन वाले दोस्त दोस्त नहीं, दुश्मन हुंदे आ। नाले ए तेरी सुइयां सांझी करन नाल तेनू HIV दा भी खतरा हो सकदा है।
6: अज ही सरकार दी युद्ध नशा विरुद्ध मुहिम दा हिस्सा बनो ते दोस्तां दा भी नशा छुड़वाओ। बाकी जेकर HIV होण दा शक है ता सरकारी हॉस्पिटल विच HIV दा टेस्ट मुफ्त करवाओ। वधेरे जानकारी ले डायल करो टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर 1097। पंजाब स्टेट एड्स कंट्रोल सोसाइटी वल्लों जन हित विच जारी।
0: लोग अभी आपने सुना था फिल्म सनम रे का गाना, और इसे गाया था शान ने, और गीत लिखा मनोज मुंतशिर ने, संगीत दिया जीत गांगुली ने।
7: 3 अक्टूबर विविध भारती की सालगिरह का जश्न, विविध भारती के लाइव ट्रांसमिशन में आ रहे हैं जाने माने संगीतकार अन्नू मलिक।
8: किसका है ये तुमको इंतजार, मैं हूं ना।
7: दिन में 12 बजे से 2 बजे के बीच
8: अगर तुम मिल जाओ।
7: अन्नू मलिक की बातें, गाने और कुछ दिलचस्प कहानियां। 3 अक्टूबर विविध भारती की सालगिरह का जश्न।

0: एक विलक्षण गायक।
1: अरे ओरे हे।
0: संगीत के साधक।
1: ओरे पथिकवा मत जइयो तू वृंदावन।
0: उनके सुरों में भक्ति की निर्मलता है, संगीत की गहराई है, भावों में मिठास है।
1: राम नाम घन श्याम नाम शिव नाम सुमिर दिन रात।
0: वो हैं संगीतकार, गायक और अभिनेता शेखर सेन।
2: बहुत कम लोग ये जानते हैं कि जो मीरा के भजन इस समय हम लोग सुनते हैं, अभी मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों ना कोई, ये जो भाषा है ये सधुखड़ी भाषा है। मीराबाई ने जो भी लिखा वो सारे भजन जो थे वो मेवाड़ की भाषा में।
0: पहली अक्टूबर से हम शुरू कर रहे हैं नई श्रृंखला शताब्दी की भक्ति रचनाएं। सुनिए संगीत सरिता सुबह और शाम 6:45 सिर्फ विविध भारती पर।
3: कार्यक्रम चल रहा है चित्रलोक, आइए सुनिए अगला गाना। किसी का भाई किसी की जान फिल्म से हमने लिया है, गायक कमाल खान पलक मुछाल और गीत रचना शब्बीर अहमद की और संगीत दिया हिमेश रेशमिया ने।

0: 3 अक्टूबर विविध भारती की सालगिरह का जश्न। विविध भारती के लाइव ट्रांसमिशन में आ रहे हैं जाने माने संगीतकार अन्नू मलिक।
1: किसका है ये तुमको इंतजार, मैं हूं ना।
0: दिन में 12 बजे से 2 बजे के बीच
2: अगर तुम मिल जाओ।
0: अन्नू मलिक की बातें, गाने और कुछ दिलचस्प कहानियां। 3 अक्टूबर विविध भारती की सालगिरह का जश्न।
3: बंदा ये बिंदास है, बंदा ये बिंदास है।
4: लीजिए सुनिए अब अजब गजब लव का गाना। मोहम्मद इरफान और अंतरा मित्रा की आवाज़ों में गीत लिखा कौसर मुनीर ने और संगीत साजिद वाजिद का।

0: हम मनाएंगे जश्न 3 अक्टूबर विविध भारती की सालगिरह पर। जाने माने फिल्म निर्देशक तिग्मांशु धूलिया आएंगे विविध भारती के सजीव प्रसारण स्टूडियो में।
1: विविध भारती एक ऐसा चैनल है जहां हर दौर के गाने और हर तरह के कार्यक्रम आप सुन सकते हैं। 3 अक्टूबर विविध भारती चैनल अपने 70 बरस पूरे कर रहा है। मैं फिल्मकार तिग्मांशु धूलिया अपनी फिल्मी यात्रा के साथ सजीव प्रसारण में आपसे मिलने आऊंगा।
0: कुछ दिलचस्प किस्से, कुछ खुशगवार बातें,
2: आंखें भी होती हैं दिल की सुबह।
0: तो आप सब जुड़िए और सुनिए दिन में 2:30 बजे से विविध भारती।
3: चित्रलोक कार्यक्रम में समय है एक अंतराल का।
4: घर का सपना हो, नई गाड़ी की ख्वाहिश या किसी जरूरत के लिए पैसे, SBI देता है बेहतरीन लोन ऑप्शंस आकर्षक ब्याज दरों के साथ। होम, ऑटो, पर्सनल, पेंशन और गोल्ड लोन के लिए संपर्क करें अपनी नजदीकी शाखा से। SBI, the banker to every Indian। नियम और शर्तें लागू।

विविध भारती से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम चित्रलोक। अंतराल के बाद आप सभी का स्वागत है। दोस्तों बता दें आज आपको कि अंतर्राष्ट्रीय अनुवाद दिवस भी है और ये हर वर्ष 30 सितंबर को मनाया जाता है। ये दिन भाषाओं और संस्कृतियों के बीच संवाद को बढ़ावा देने के लिए समर्पित है। अनुवाद के माध्यम से एक भाषा का ज्ञान दूसरी भाषा के लोगों तक पहुंचता है। ये साहित्य, शिक्षा, विज्ञान और कला को दुनिया भर में जोड़ने का काम करता है। अनुवादक अलग अलग भाषाओं और संस्कृतियों के बीच एक पुल की तरह होते हैं। ये दिवस उनकी मेहनत और महत्वपूर्ण भूमिका को सम्मान देने का एक अवसर है। आइए सुनते हैं कार्यक्रम का अगला गाना।

0: अभी आपने सुना फिल्म बागी 3 का गाना, जिसे गाया रोचक और शान ने, गीतकार गुरप्रीत सैनी और गौतम जी शर्मा, संगीत रोचक कोहली का।
1: एक विलक्षण कथाकार जिनकी लेखनी में गहरी संवेदना है, विचार है, जीवन के अनुभव हैं, वो हैं जाने माने कहानीकार, उपन्यासकार और अनुवादक मनोज रूपड़ा।
2: मैंने एक लंबा लेख लिखा इन सब चीजों को, उसका पहल में वो लेख छपा था, कहानी की काया और फिल्म की छाया। उसमें मैंने एशियन फिल्मों पर लिखा और उसमें किस तरह से कहानियों को फिर से वापस स्थापित किया गया, इस बात को रेखांकित किया।
1: आज के मेहमान 30 सितंबर शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
3: 3 अक्टूबर विविध भारती की सालगिरह का जश्न, विविध भारती के लाइव

0: आ रहे हैं जाने माने संगीतकार अन्नू मलिक।
1: किसका है ये तुमको इंतजार, मैं हूं ना।
0: दिन में 12 बजे से 2 बजे के बीच
2: अगर तुम मिल जाओ।
0: अन्नू मलिक की बातें, गाने और कुछ दिलचस्प कहानियां। 3 अक्टूबर विविध भारती की सालगिरह का जश्न।
3: बंदा ये बिंदास है, बंदा ये बिंदास है।
4: हम मनाएंगे जश्न 3 अक्टूबर विविध भारती की सालगिरह पर। जाने माने फिल्म निर्देशक तिग्मांशु धूलिया आएंगे विविध भारती के सजीव प्रसारण स्टूडियो में।
5: विविध भारती एक ऐसा चैनल है जहां हर दौर के गाने और हर तरह के कार्यक्रम आप सुन सकते हैं। 3 अक्टूबर विविध भारती चैनल अपने 70 बरस पूरे कर रहा है। मैं फिल्मकार तिग्मांशु धूलिया अपनी फिल्मी यात्रा के साथ सजीव प्रसारण में आपसे मिलने आऊंगा।
4: कुछ दिलचस्प किस्से, कुछ खुशगवार बातें,
1: आंखें भी होती हैं दिल की जुबान।
4: तो आप सब जुड़िए और सुनिए दिन में 2:30 बजे से विविध भारती।
6: विविध भारती से कार्यक्रम चल रहा है चित्रलोक। आइए सुनिए फिल्म सिंग इज ब्लिंग का गाना। आवाज दी है मंज मुशिक और साशा ने, गीतकार मनोज मुशिक और रफ्तार और बिग ढिल्लन, संगीत मंज मुशिक का।

0: एक विलक्षण गायक।
1: अरे ओरे हे।
0: संगीत के साधक।
1: ओरे पथिकवा मत जइयो तू वृंदावन।
0: उनके सुरों में भक्ति की निर्मलता है, संगीत की गहराई है, भावों में

0: हैं संगीतकार, गायक और अभिनेता शेखर सेन।
1: बहुत कम लोग ये जानते हैं कि जो मीरा के भजन इस समय हम लोग सुनते हैं, अभी मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों ना कोई, ये जो भाषा है ये सधुखड़ी भाषा है। मीराबाई ने जो भी लिखा वो सारे भजन जो थे वो मेवाड़ की भाषा में।
0: पहली अक्टूबर से हम शुरू कर रहे हैं नई श्रृंखला शताब्दी की भक्ति रचनाएं। सुनिए संगीत सरिता सुबह और शाम 6:45 सिर्फ

0: वो बताएंगे फिल्म की शूटिंग की कहानियाँ, सृजन की बातें, साझा करेंगे सिनेमा की बातें, अपने जीवन के कुछ दिलचस्प किस्से।
1: कि वो इवेंट जो मेरे साथ में हुआ कि मेरी कार वहाँ पे अचानक से रुक जाती है और मुझे पता भी नहीं होता कि वो जगह कौन सी है, दरवाजा खोलता हूँ तो कैंची धाम के गेट के नीचे खुलता है, वो एक इवेंट मेरे दिमाग में रह जाता है।
0: वो है हनुमान अंश के निर्देशक विशाल चतुर्वेदी।
1: और वो इवेंट आज मुझे 20 साल के बाद में, एग्जैक्टली आफ्टर 20 इयर्स आई एम मेकिंग द फिल्म, एंड द सक्सेस ऑफ द फिल्म इज प्रॉब्ली आई थिंक वाज डेस्टिन्ड और डिसाइडेड बाय हिम, तो इसको लीला बोलते हैं।
0: आज के मेहमान 7 अक्टूबर शाम 4 बजे विविध भारती पर।
2: ओ मैंने तेरे ही भरोसे हनुमान सागर में नैया डारे दई।
3: विविध भारती से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम चितलोक। समय हो गया है एक अंतराल का।
4: मैं ता टीका ला लिया, हुण तू भी ला ले।
5: नहीं यार, मैं नहीं लाना।
4: ए ता फिर यार मार वाली गल होगी।
5: नशा करन ले मजबूर करन वाले दोस्त दोस्त नहीं दुश्मन हुंदे आ, नाले ए तेरी सुइयां सांझी करन नाल तेनू एचआईवी दा भी खतरा हो सकदा है।
6: अज ही सरकार दी युद्ध नशा विरुद्ध मुहिम दा हिस्सा बनो ते दोस्तां दा भी नशा छुड़वाओ। बाकी जेकर एचआईवी होण दा शक है ते सरकारी हॉस्पिटल विच एचआईवी दा टेस्ट मुफ्त करवाओ। वधेरे जानकारी लई डायल करो टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर 1097। पंजाब स्टेट एड्स कंट्रोल सोसाइटी वल्लों जनहित विच जारी।

विविध भारती से कार्यक्रम सुन रहे हैं आप चितलोक, और आइए सुनते हैं अगला गाना। फिल्म जेवरिया जोड़ी का आवाज यासिर देसाई और अल्तमश फरीदी के, गीतकार रश्मि विराग, संगीत तनिष बागजी का।

0: 3 अक्टूबर विविध भारती की सालगिरह का जश्न। विविध भारती के लाइव ट्रांसमिशन में आ रहे हैं जाने माने संगीतकार अन्नू मलिक।
1: किसका है ये तुमको इंतजार, मैं हूं ना।
0: दिन में 12 बजे से 2 बजे के बीच
2: अगर तुम मिल जाओ।
0: अन्नू मलिक की बातें, गाने और कुछ दिलचस्प कहानियां। 3 अक्टूबर विविध भारती की सालगिरह का जश्न।
3: बंदा ये बिंदास है, बंदा ये बिंदास है।
4: हम मनाएंगे जश्न 3 अक्टूबर विविध भारती की सालगिरह पर। जाने माने फिल्म निर्देशक तिग्मांशु धूलिया आएंगे विविध भारती के सजीव प्रसारण स्टूडियो में।
5: विविध भारती एक ऐसा चैनल है जहां हर दौर के गाने और हर तरह के कार्यक्रम आप सुन सकते हैं। 3 अक्टूबर विविध भारती चैनल अपने 70 बरस पूरे कर रहा है। मैं फिल्मकार तिग्मांशु धूलिया अपनी फिल्मी यात्रा के साथ सजीव प्रसारण में आपसे मिलने आऊंगा।
4: कुछ दिलचस्प किस्से, कुछ खुशगवार बातें,
1: आंखें भी होती हैं दिल की सुबह।
4: तो आप सब जुड़िए और सुनिए दिन में 2:30 बजे से विविध भारती।
6: विविध भारती से सुन रहे हैं आप कार्यक्रम चित्तलोक। आइए सुनिए अगला गाना।

0: अभी आपने सुना फिल्म दिल तो बच्चा है जी का गाना, आवाज मोहित चौहान की, गीतकार नीलेश मिश्रा और संगीतकार प्रीतम का।
1: 3 अक्टूबर विविध भारती की सालगिरह का जश्न, विविध भारती के लाइव ट्रांसमिशन में आ रहे हैं जाने माने संगीतकार अन्नू मलिक।
2: किसका है ये तुमको इंतजार, मैं हूं ना।
1: दिन में 12 बजे से 2 बजे के बीच
3: अगर तुम मिल जाओ।
1: अन्नू मलिक की बातें, गाने और कुछ दिलचस्प कहानियां। 3 अक्टूबर विविध भारती की सालगिरह का जश्न।
4: बंदा ये बिंदास है, बंदा ये बिंदास है।
5: हम मनाएंगे जश्न 3 अक्टूबर विविध भारती की सालगिरह पर। जाने माने फिल्म निर्देशक तिग्मांशु धूलिया आएंगे विविध भारती के

0: प्रसारण स्टूडियो में।
1: विविध भारती एक ऐसा चैनल है जहां हर दौर के गाने और हर तरह के कार्यक्रम आप सुन सकते हैं। 3 अक्टूबर विविध भारती चैनल अपने 70 बरस पूरे कर रहा है। मैं फिल्मकार दिव्यांशु धूलिया अपनी फिल्मी यात्रा के साथ सजीव प्रसारण में आपसे मिलने आऊंगा।
0: कुछ दिलचस्प किस्से, कुछ खुशगवार बातें,
2: आंखें भी होती हैं दिल की सुबह।
0: तो आप सब जुड़िए और सुनिए दिन में 2:30 बजे से विविध भारती।
3: इसी के साथ आज का चित्रलोक कार्यक्रम यहीं पर संपन्न होता है। सभी का दिन शुभ मंगल हो। आप सभी को मंजरी वर्मा का नमस्कार।
4: विविध भारती मुंबई से अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम चित्रलोक। हम आकाशवाणी के चंडीगढ़ केंद्र से बोल रहे हैं FM 107.2 MHz पर।
5: कुछ कहानियाँ किताबों में नहीं मिलती, वो मिलती हैं हमारे शहरों की गलियों में, गांव की मिट्टी में,
6: लोक परंपराओं में और उन लोगों में जो अपनी विरासत को आज भी संजोए हुए हैं।
5: इन्हीं अनमोल कहानियों को देश और दुनिया तक पहुंचाने का डिजिटल क्रिएटर्स के लिए अनोखा अवसर है
6: सूचना और प्रसारण मंत्रालय भारत सरकार का जेम्स ऑफ इंडिया चैलेंज।
5: अपने शहर की खास जगह, परंपरा, प्रतिभा या फिर कहानी पर 1 से 3 मिनट तक का वीडियो बनाएं। माई वेव्स OTT प्लेटफॉर्म पर अपने मोबाइल नंबर से लॉगिन करें,
6: मोबाइल पर आए OTP को दर्ज करें और फिर जेम्स ऑफ इंडिया चैलेंज चुनकर अपनी 1 से 3 मिनट की वीडियो अपलोड कर सबमिट करें।
5: अपनी 1 से 3 मिनट की वीडियो अब आप माई वेव्स OTT प्लेटफॉर्म पर 30 सितंबर तक अपलोड कर सकते हैं। तो कहिए अपने शहर, अपने गांव की कहानी अपनी जुबानी। जेम्स ऑफ इंडिया चैलेंज।
4: अब प्रस्तुत है मनोरंजन और जानकारियों से संपन्न कार्यक्रम आज का अखबार।
5: आज का अखबार कार्यक्रम के प्रायोजक हैं ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स।
7: हाँ, ये हेलमेट अच्छा है, सेफ है क्या?
8: चिंता मत कीजिए, इस हेलमेट पर ISI मार्क है।
7: और मुझे कैसे पता चलेगा कि ये असली है?
8: BIS केयर ऐप से, जहाँ आपको ये इम्पोर्टेंट डिटेल एक ही क्लिक में मिल जाएगी।
9: बनिए जागरूक ग्राहक और कोई भी प्रोडक्ट खरीदने से पहले उसकी प्रामाणिकता चेक करने के लिए आज ही डाउनलोड करें BIS केयर ऐप।
5: आज का अखबार।
4: नमस्कार दोस्तों, आज का अखबार कार्यक्रम में आज मैं रहूंगी आपके संग, आपकी रेडियो संगिनी बबिता कपूर। तो दोस्तों, हाउ आर यू ऑल, आपनी कैमोन अच्छे, तमे केम छो, आप कैसे हैं? तो दोस्तों, आप सोच रहे होंगे कि भाई इतनी अलग अलग भाषाओं में हम क्यों पूछ रहे हैं आपका हाल। हो इसलिए कि आज है अंतर्राष्ट्रीय अनुवाद दिवस, इंटरनेशनल ट्रांसलेशन डे। हमने अंग्रेजी, बांग्ला, गुजराती और हिंदी में पूछा आपका हाल। भाषाओं की मिठास, भाषाओं का अपनत्व, हम वंचित रह जाते इन सभी से यदि अनुवाद न होता। कितनी बातें अनकही, अनसुनी रह जाती अगर अनुवाद न होता। ये दिन मनाया जाता है बाइबल के अनुवादक सेंट जिरोम की स्मृति में और 1953 से मनाया जा रहा है ये दिन। दुनिया की संस्कृति को आपस में जोड़ने में अनुवाद की अहम भूमिका है। विश्व साहित्य का, संगीत का, प्राचीन लेखों का आनंद हम अनुवाद के जरिए ही तो ले सकते हैं। और यही नहीं, करियर बनाने में भी अनुवाद मददगार है। युवाओं, विद्यार्थियों के लिए 2 से अधिक भाषाओं की जानकारी अगर उन्हें हो तो उन्हें डबिंग, न्यूज रीडर, राइटिंग और टूरिज्म में करियर बनाने में मददगार साबित होती हैं ये भाषाएं। हम सभी भाषाएं तो नहीं सीख सकते दोस्तों, लेकिन अनुवाद के जरिए उस भाषा की मिठास को महसूस कर सकते हैं। जैसे कि शरबत में शक्कर घुलती है, वैसे ही अनुवाद से घुलती मिलती हैं कितनी ही भाषाएं। तो आइए ऐसी ही मिठास को महसूस करते हैं इस गीत के जरिए।

0: का सबसे बड़ा सैन्य विस्तार। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल अमेरिका में G20 व्यापार मंत्रियों की बैठक में आज लेंगे भाग। एक अक्टूबर से व्हाट्सएप बिजनेस प्लेटफॉर्म पर कंपनियों के ग्राहक सेवा संदेशों के लिए मेटा लगाने जा रहा शुल्क। हर बिजनेस नंबर को महीने में पहले 1000 सेवा संदेश ही मिलेंगे मुफ्त। भारत का एसआर ग्रुप अमेरिका में लगाने जा रहा सबसे बड़ा स्टील प्लांट। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने व्हाइट हाउस में किया ऐलान। CISF जवान ने साथियों पर चलाई गोलियां। असिस्टेंट कमांडेंट समेत 4 की मौत। आरोपी हेड कांस्टेबल गिरफ्तार। भारत म्यांमार बॉर्डर पर सेना के जवानों पर उग्रवादी हमला। एक शहीद 4 घायल। जवान सीमा पर कर रहे थे पेट्रोलिंग। दिल्ली एयरपोर्ट पर 10 चीनी ड्रोन जब्त। हांगकांग से वियतनाम के रास्ते से लाए गए थे ड्रोन। NCERT ने सामाजिक विज्ञान की किताब में सिंगोल को दी शासन और सुशासन के सांस्कृतिक प्रतीक के रूप में जगह। खेल समाचारों में एशियाई खेलों में भारतीय महिला कंपाउंड तीरंदाजी टीम ने जीता स्वर्ण पदक। भारत अब 7 स्वर्ण, 21 रजत और 25 कांस्य पदकों सहित कुल 53 पदकों के साथ 9वें स्थान पर। भारत वेस्ट इंडीज के बीच दूसरा टेस्ट मैच आज गुवाहाटी में। तो श्रोताओं, ये तो थे कुछ राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय और खेल समाचार। यहाँ लेंगे अंतराल और उसके बाद आपके मनोरंजन के लिए होगा एक गीत।
1: आज फिर लेट हो गए।
2: अरे यार, वो रवि मिल गया था, फिर बाहर ही बैठ गए थे।
1: क्यों बैठे थे बाहर?
2: क्यों ना बैठूं? बस इसीलिए क्योंकि उसे एड्स है। एड्स गले मिलने, साथ बैठने से और एक साथ खाना खाने से नहीं फैलता।
1: मुझे पता है, HIV एड्स असुरक्षित संबंध, संक्रमित सुई या संक्रमित महिला से उसके बच्चे को होता है। इसीलिए तो कह रही हूँ, बाहर क्यों बैठे थे? रवि भैया को घर ही ले आते।
2: एड्स से पीड़ित व्यक्ति को दूर नहीं, हमारे साथ ही जरूरत है। इसलिए ध्यान रखें और याद रखें कि एड्स छूने से, बात करने से, एक साथ खाना खाने से बिल्कुल नहीं फैलता। एड्स से जुड़ी अधिक जानकारी के लिए 1097 पर कॉल करें। हरियाणा स्टेट एड्स कंट्रोल सोसाइटी द्वारा जनहित में जारी।
3: घर का सपना हो, नई गाड़ी की ख्वाहिश या किसी जरूरत के लिए पैसे, SBI देता है बेहतरीन लोन ऑप्शंस आकर्षक ब्याज दरों के साथ। होम, ऑटो, पर्सनल, पेंशन और गोल्ड लोन के लिए संपर्क करें अपनी नजदीकी शाखा से। SBI, the banker to every Indian। नियम और शर्तें लागू।

इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम आज का अखबार विविध भारती के चंडीगढ़ केंद्र से एफएम 107.2 मेगाहर्ट्ज पर। कार्यक्रम में अब समय है राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय मुख्य समाचारों के साथ कुछ खेल समाचारों का। सुप्रीम कोर्ट ने कैंसर की दवाओं पर अत्यधिक मुनाफे को बताया अन्याय, सभी दवाओं पर एक समान 16% मार्जिन लागू करने की वकालत। गृह मंत्री अमित शाह आज जालंधर में नशा मुक्त पंजाब यात्राओं को दिखाएंगे हरी झंडी। यात्राओं का उद्देश्य पंजाब में मादक पदार्थों के खिलाफ लड़ाई को जन आंदोलन में बदलना। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने वर्ष 2026 को बताया भारतीय नौसेना के लिए ऐतिहासिक वर्ष। नौसेना अपने बेड़े में करेगी रिकॉर्ड 18 युद्धपोत शामिल, इतिहास में एक वर्ष

0: हाँ ये रिंग अच्छी है, बीवी को पसंद भी आ जाएगी।
1: अरे यस सर, आपकी चॉइस बहुत अच्छी है और ये डिजाइन भी नया है।
0: डिजाइन नया है वो तो ठीक है, लेकिन सोने की प्योरिटी का प्रूफ कहाँ मिलेगा?
2: बनिए एक जागरूक ग्राहक, आज ही डाउनलोड कीजिए BIS केयर ऐप। सोना खरीदने से पहले BIS केयर ऐप पर HUID कोड अवश्य वेरीफाई करें।
3: मैं तो टीका ला लिया, हुण तू भी ला ले।
4: नहीं यार, मैं नहीं लाना।
3: ए तो फिर यार मार वाली गल होगी।
4: नशा करने लई मजबूर करन वाले दोस्त दोस्त नहीं दुश्मन हुंदे आ। नाले ए तेरी सुइयां सांझी करन नाल तेनू HIV दा भी खतरा हो सकदा है।
5: अज ही सरकार दी युद्ध नशा विरुद्ध मुहिम दा हिस्सा बनो ते दोस्तां दा भी नशा छुड़वाओ। बाकी जेकर HIV होण दा शक है ते सरकारी हॉस्पिटल विच HIV दा टेस्ट मुफ्त करवाओ। वधेरे जानकारी लई डायल करो टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर 1097। पंजाब स्टेट एड्स कंट्रोल सोसाइटी वल्लों जनहित विच जारी।
6: श्रोताओं, कार्यक्रम आज का अखबार में अब समय है क्षेत्रीय मुख्य समाचारों का, कुछ रीजनल हेडलाइंस। रडार पर मौसम खतरे से पहले मिलेगा अलर्ट, चंडीगढ़ पंजाब हरियाणा में बढ़ेगा मौसम निगरानी नेटवर्क। पंजाब के सभी सरकारी सहायता प्राप्त और निजी स्कूलों के समय में होने जा रहा है 1 अक्टूबर से बदलाव, मौसम बदला, सुबह 8:30 बजे खुलेंगे स्कूल। पठानकोट में संदिग्ध ड्रोन की गतिविधि, लोगों ने बनाया वीडियो, एजेंसियां अलर्ट, जांच जारी। LPU में आगजनी, तोड़फोड़ के पीछे राजनीतिक साजिश का आरोप, हिंसा पर हाईकोर्ट में याचिका, CBI जांच की मांग, 95% हॉस्टल खाली। पंजाब में घुलाल टोल प्लाजा के पास पुलिस की रेड, अवैध नशा मुक्ति केंद्र में छिपे थे 14-15 भगौड़े, कुल 132 लोग भर्ती मिले जिनमें से 40 लोग विभिन्न मामलों में नामजद। किसी छात्र के पास यदि है प्रदेश की किसी समस्या के समाधान का आइडिया तो हरियाणा सरकार करेगी शुरुआती आर्थिक मदद, नए प्रयोगों की DPR के लिए 1,00,000 रुपए तक की मदद का प्रावधान। हरियाणा की बेटियों नीरू ढांडार किरण ने एशियन गेम्स में जीता स्वर्ण पदक, आशिमा अहलावत ने जीता रजत पदक और फतेहाबाद की बेटी एथलीट पूजा ने जीता कांस्य।

Западак. हिमाचल की ऊंची पहाड़ियों पर मौसम ने ली करवट। बर्फबारी से प्रदेश में शुरुआती सर्दी का हुआ एहसास। सर्द हवाओं ने बढ़ाई ठंडक। तो ये तो थी कुछ रीजनल हेडलाइंस।

0: आकाशवाणी चंडीगढ़ से इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम आज का अखबार। और अब हम आपको जानकारी दे दें जेम्स ऑफ इंडिया, अपने जिले की कहानी अपनी जुबानी के बारे में। तो दोस्तों, आज है जेम्स ऑफ इंडिया में रजिस्टर करने का आखिरी दिन। आप माई वेव्स पर जाकर अपने मोबाइल नंबर से रजिस्टर या लॉगिन करें। मोबाइल नंबर पर आए ओटीपी को दर्ज करें, फिर जेम्स ऑफ इंडिया चैलेंज चुनकर अपनी 1 से 3 मिनट की वीडियो अपलोड करें और सबमिट कर दें। अपने शहर, गांव या जिले की किसी खास जगह, परंपरा, प्रतिभा या कहानी को कैमरे में कीजिए कैद और बनिए जेम्स ऑफ इंडिया चैलेंज का हिस्सा। तो ये तो थी जानकारी जेम्स ऑफ इंडिया के बारे में।
1: घर का सपना हो, नई गाड़ी की ख्वाहिश या किसी जरूरत के लिए पैसे, SBI देता है बेहतरीन लोन ऑप्शंस आकर्षक ब्याज दरों के साथ। होम, ऑटो, पर्सनल, पेंशन और गोल्ड लोन के लिए संपर्क करें अपनी नजदीकी शाखा से। SBI, द बैंकर टू एवरी इंडियन। नियम और शर्तें लागू।
0: कार्यक्रम आज का अखबार में अब समय है लोकल हेडलाइंस का। ट्राई सिटी समाचार। पंजाब के राज्यपाल और केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ के प्रशासक गुलाब चंद कटारिया ने की राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति

0: और केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात, नशे के शिकार लोगों के पुनर्वास रोजगार मुहैया कराने में मांगी मदद। हरियाणा सरकार चंडीगढ़ नगर निगम और अन्य सरकारी खातों से जुड़े करीब 645 करोड़ रुपए के कथित गबन और मनी लॉन्ड्रिंग मामले की जांच पहुंची ट्राइसिटी के ज्वेलर्स तक, 14 ठिकानों पर एक साथ ईडी के छापे। चंडीगढ़ पुलिस की साइबर क्राइम यूनिट ने देश में रचा नया कीर्तिमान, I4C की रैंकिंग जारी, साइबर फ्रॉड मनी रिस्टोरेशन में चंडीगढ़ पुलिस देश में नंबर 1 और ग्रीवेंस रिड्रेसल में 5वां स्थान हासिल। शहर को अपराध मुक्त बनाने और वारदातों के होने से पहले उन्हें डिटेक्ट कर रोकने में चंडीगढ़ पुलिस ले रही AI का सहारा, शहर में किस सीजन में कहां कैसा हो रहा है क्राइम। चंडीगढ़ अब बना देश के लिए स्वच्छता का मॉडल, डड्डू माजरा का कचरा खत्म करने का हुआ असर, डोर टू डोर गार्बेज कलेक्शन, बाकी शहरों के मुकाबले घरों से सूखा गीला कचरा मिल रहा अलग अलग। चंडीगढ़ अब हर महीने किया जाएगा चंडीगढ़ में अब हर महीने किया जाएगा परिंदों का सेंसस। एक्सपर्ट्स लोगों के साथ वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट शुरू करेगा ये अभियान और शामिल होने वाले सभी लोगों को दी जाएगी विशेष ट्रेनिंग। दोस्तों, बारिश की ठंडक के बाद अब फिर बढ़ेगा शहर का पारा, अगले 5 दिन मौसम रहेगा सूखा। और अब एक जानकारी पानी से रिलेटेड है कि शहर में आज और कल शाम को लो प्रेशर से आएगा पानी, तो अपने जो बर्तन है वो पानी से भर कर रखिए। और ये तो थी लोकल हेडलाइंस, अब समय हो चला है अंतराल का और उसके बाद एक गीत।
1: मैदा टीका ला लिया, और तू भी ला ले।
2: नहीं यार, मैं नहीं लाना।
1: ए तो फिर यार मार वाली गल होगी।
2: नशा करन ले मजबूर करन वाले दोस्त दोस्त नहीं दुश्मन हुंदे आ, नाले ए तेरी सुइयां सांझी करन नाल तेनू HIV दा भी खतरा हो सकदा है।
3: अज ही सरकार दी युद्ध नशा विरुद्ध मुहिम दा हिस्सा बनो ते दोस्तां दा भी नशा छुड़वाओ। बाकी जेकर HIV होण दा शक है ता सरकारी हॉस्पिटल विच HIV दा टेस्ट मुफ्त करवाओ। वधेरे जानकारी लई डायल करो टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर 1097। पंजाब स्टेट एड्स कंट्रोल सोसाइटी वल्लों जनहित विच जारी।

0: तो दोस्तों ये तो था कार्यक्रम आज का अखबार। आज सुबह 10:05 पर हाजिर होंगे लेकर लाइव फोन इन प्रोग्राम हेलो चंडीगढ़, और विषय रहेगा ना करें जाया अन्न का एक भी दाना, जितना हो खाना उतना ही पकाना। तो अब कार्यक्रम में इजाजत दीजिए अपनी रेडियो संगिनी बबिता कपूर को, नमस्कार।
1: आज का अखबार कार्यक्रम के प्रायोजक थे ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स।
2: बेटी के लिए गहने बनवाए एकदम खरे हॉलमार्क के, और तो और दुकानदार ने खुद 15 मिनट में हॉलमार्क के निशान लगाकर भी दिए।
3: अरे बुद्धू, हॉलमार्क गहने तो सिर्फ BIS लाइसेंस होल्डर ज्वेलर ही बेचते हैं, और BIS हॉलमार्क करने के लिए 4 से 5 घंटे का वक्त लगता है।
4: अगर आप भी किसी ऐसे धोखे का शिकार हुए हैं तो BIS की वेबसाइट BIS.org.in पर शिकायत करें। जागो ग्राहक जागो।
1: आज का अखबार।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम आज का अखबार। इस समय आप हैं आकाशवाणी चंडीगढ़ के संग एफएम 107.2 मेगाहर्ट्ज पर। कुछ ही पलों में सुबह के 10 बजने वाले हैं और आप सुनेंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से हिंदी समाचार। बस कीजिए थोड़ा सा इंतजार।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जया भारती। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने मौजूदा वर्ष को भारतीय नौसेना के लिए एक ऐतिहासिक वर्ष बताया है। इस वर्ष 18 युद्धपोतों को नौसेना में शामिल करने की योजना है। नई दिल्ली में कल भारतीय नौसेना के द्विवार्षिक कमांडर सम्मेलन 2026 के दूसरे संस्करण में श्री सिंह ने कहा कि ये घटनाक्रम भारत के नौसेना के घरेलू जहाज निर्माण तंत्र की बढ़ती परिपक्वता को दर्शाते हैं। उन्होंने कहा कि हाल ही में कमीशन किए गए युद्धपोतों में 75% से अधिक स्वदेशी सामग्री है। रक्षा मंत्री ने मौजूदा प्रणालियों के महत्व को पहचानते हुए भारत की समुद्री निगरानी प्रणाली के महत्वपूर्ण उन्नयन का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि समुद्री यातायात की बढ़ती मात्रा और जटिलता के लिए उन्नत विश्लेषणात्मक क्षमताओं की आवश्यकता है। रक्षा उद्योग और लॉजिस्टिक्स सहयोग पर भारत कोरिया गणराज्य की 10वीं संयुक्त समिति GCM की बैठक कल नई दिल्ली में आयोजित की गई। रक्षा मंत्रालय ने बताया कि दोनों देशों ने रक्षा उद्योग और लॉजिस्टिक्स के क्षेत्र में जारी द्विपक्षीय सहयोग की समीक्षा की। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल आज अमेरिका में G20 देशों के मंत्रियों के साथ बैठक में शामिल होंगे। ये बैठक अमेरिका के व्यापार प्रतिनिधि जैमिसन ग्रीर के निमंत्रण पर आयोजित की जा रही है। अमेरिका की यात्रा के दौरान श्री गोयल अपने अमेरिका के समकक्ष के साथ भारत अमेरिका द्विपक्षीय व्यापार समझौते पर बातचीत को आगे बढ़ाने के लिए भी चर्चा करेंगे। श्री गोयल 29 सितंबर से 5 अक्टूबर तक अमेरिका की यात्रा पर हैं, जहां वे G20 बैठक में भारत विश्व व्यापार संगठन को केंद्र में रखते हुए नियम आधारित खुले, समावेशी और पारदर्शी बहुपक्षीय व्यापार व्यवस्था को मजबूत करने के मुद्दे पर चर्चा करेंगे। भारत ने परमाणु हथियारों से मुक्त और सार्वभौमिक, गैर भेदभावपूर्ण और सत्यापन योग्य निरस्त्रीकरण के माध्यम से परमाणु हथियारों के पूर्ण उन्मूलन के प्रति अपनी प्रतिबद्धता की पुष्टि की। विदेश मंत्रालय में पश्चिम क्षेत्रों के सचिव सीबी जॉर्ज ने कल न्यूयॉर्क में परमाणु हथियारों के पूर्ण उन्मूलन के अंतर्राष्ट्रीय दिवस के उपलक्ष्य में आयोजित संयुक्त राष्ट्र की उच्च स्तरीय बैठक में भारत का यह बयान दिया। विदेश मंत्रालय ने कहा कि श्री जॉर्ज ने संयुक्त राष्ट्र महासभा में डर्बन घोषणा और कार्य योजना की 25वीं वर्षगांठ के अवसर पर आयोजित एक बैठक में नस्लीय भेदभाव, विदेशियों के प्रति नफरत और संबंधित असहिष्णुता से लड़ने के प्रति भारत की अटूट प्रतिबद्धता की भी पुष्टि की। जम्मू कश्मीर के बड़गाम जिले के पहाड़ी इलाके में कल देर शाम सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में लश्करे तैयबा का एक शीर्ष आतंकवादी मारा गया। भारतीय सेना की कश्मीर स्थित चिनार कोर ने मारे गए आतंकवादी की पहचान उजागर नहीं की, लेकिन अधिकारियों ने उसकी पहचान सुलेमान शाह उर्फ मूसा के रूप में की। मूसा

0: पाकिस्तान स्थित लश्कर ए तैयबा का मोस्ट वांटेड आतंकवादी था। एशियाई खेलों में साहिल जाधव और चिकिता तिनिपार्थी की भारतीय मिश्रित कंपाउंड तीरंदाजी टीम ने एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक जीता है। भारतीय महिला स्क्वॉश टीम ने भी आज सिंगापुर को 2-0 से हराकर सेमीफाइनल में जगह बना ली है। इसके साथ ही भारत का एक और पदक पक्का हो गया। पहले मुकाबले में तन्वी खन्ना ने ओ योंग वाई लेन को हराया। इसके बाद अनाहत सिंह ने ओ एयोंग वोइन हान को शिकस्त दी। भारत का सेमीफाइनल मुकाबला कल नागोया किंजो फुटो एरेना में होगा। भारत ने चीन, जापान और ईरान को हराकर पूल सी में शीर्ष स्थान हासिल किया है। कुश्ती में पुरुषों के ग्रीको रोमन 87 किलोग्राम भार वर्ग में सुनील कुमार ने सेमीफाइनल में प्रवेश कर लिया। उन्होंने आज ताजिकिस्तान के मोहम्मद सुल्तान जोदा को पहले ही राउंड में 9-0 से तकनीकी श्रेष्ठता के आधार पर हराया। वहीं भारतीय महिला कंपाउंड तीरंदाजी टीम ने फाइनल में चीन को 238 के मुकाबले 234 अंक से हराकर स्वर्ण पदक जीता। भारत अब 7 स्वर्ण, 21 रजत और 25 कांस्य पदक सहित कुल 53 पदकों के साथ 9वें स्थान पर है। मौसम विभाग ने आज आंतरिक कर्नाटक, केरला, माहे, तमिलनाडु और पूर्वोत्तर राज्यों के कुछ हिस्सों में मूसलाधार वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। आज तटीय आंध्र प्रदेश, पुदुचेरी, ओडिशा, मध्य प्रदेश, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में बिजली कड़कने और तेज हवाओं के साथ आंधी तूफान की भी संभावना है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: FM 107.2 MHz पर ये आकाशवाणी है और आप सुन रहे हैं विविध भारती का चंडीगढ़ केंद्र। आकाशवाणी चंडीगढ़ से अब प्रस्तुत करने जा रहे हैं लाइव फोन इन प्रोग्राम हेलो चंडीगढ़।
2: हेलो चंडीगढ़ कार्यक्रम के इस भाग के प्रायोजक हैं वर्सटाइल मशीन बद्दी।
3: आपके सपनों का घर हो, फैक्ट्री हो या हो ग्राहकों से भरा शोरूम, हर मंजिल तक आसान और सुरक्षित पहुंच, वर्सटाइल लिफ्ट बद्दी के साथ।
4: आपकी जरूरत के अनुसार हर तरह के लिफ्ट बनाएं, प्रोफेशनल इंस्टॉलेशन और भरोसेमंद सर्विस प्रोवाइड कराएं।
3: वर्सटाइल लिफ्ट बद्दी,
4: अपनी जरूरत के लिफ्ट बनवाने के लिए आज ही संपर्क करें 9736183070।
2: वर्सटाइल लिफ्ट बद्दी, भरोसा सुरक्षा का।
5: हेलो
6: हेलो,
5: कुछ आपकी कुछ हमारी बातें प्यारी प्यारी। हेलो चंडीगढ़,
6: हेलो चंडीगढ़।

0: नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं आपका मनपसंद लाइव फोन इन प्रोग्राम हेलो चंडीगढ़, और आज मैं हूं आपके साथ आपकी रेडियो संगिनी बबिता कपूर। और आज के हेलो चंडीगढ़ कार्यक्रम में चर्चा का विषय है बहुत ही संवेदनशील, और संवेदनशील होने के साथ साथ हमारे रोजमर्रा के जीवन से भी जुड़ा हुआ। श्रोताओं, कल ही पूरी दुनिया ने अंतर्राष्ट्रीय खाद्य हानि और अपशिष्ट जागरूकता दिवस मनाया। इसी कड़ी में आज हम और आप करेंगे बात कि हम अपने घरों, शादियों और त्योहारों में भोजन की बर्बादी को कैसे रोक सकते हैं। जैसा कि हमारी आज की टैगलाइन भी कहती है कि ना करे जाया अन्न का एक भी दाना, जितना हो खाना उतना ही पकाना। हमारी फोन लाइंस खुल चुकी हैं, हमारे फोन नंबर्स हैं 2660615, 2660617 और 2660619। चंडीगढ़ का एसटीडी कोड है 0172। तो चलिए करते हैं बात अपने सबसे पहले कॉलर के साथ। हेलो चंडीगढ़।
1: नमस्कार जी।
0: नमस्कार जी, अपना नाम बताइए।
1: मैडम, मैं सुशील शर्मा हिमाचल से हो रहा था
0: जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। आज के विषय के बारे में जानकारी रखते हैं ना आप?
1: जी जी जी जी जी बिल्कुल
0: जी। तो कहिए, क्या कहना चाहेंगे?
1: हाँ, मेरा तो यही कहना मैडम कि अन्न की कीमत तो जो है, किसान जो है, किसान अन्नदाता जो है, उससे पूछिए कि कितनी मेहनत करनी पड़ती है अन्न उगाने में ना।
0: जी बिल्कुल।

0: गर्मी सर्दी बरसात जो है प्राकृतिक आपदाएं इतनी जो है मुश्किलों के बावजूद किसान अन्न उगाता है, अपनी मतलब दिन रात एक कर देता है, अपनी नींद त्याग देता है, अपना सब कुछ त्याग देता है और उस अन्न को जो है अगर हम बर्बाद करते हैं तो ये तो एक बहुत बड़ी बेवकूफ़ी है और बहुत बड़ा एक विडम्बना है।
1: जी बिल्कुल,
0: क्योंकि है देश का अन्नदाता आज भी जो है दो वक्त की रोटी के लिए खुद तरस रहा है। बहुत चुनौतियां हैं कृषि और बागवानी में, बहुत चुनौतियां हैं।
1: जी बिल्कुल,
0: इतना आसान नहीं रहा।
1: जी बिल्कुल, आपने जैसा बताया कि जो हमारे किसान भाई हैं वो किसी भी मौसम की परवाह किए बगैर वो हर मौसम में मेहनत करते हैं ताकि देश का पेट भर सके। तो देश के पेट को भरने वाले किन चुनौतियों का सामना करते हैं, उन चुनौतियों को ध्यान में रखते हुए हमें ये बात हमेशा ध्यान में रखनी है कि हम उतना ही खाना पकाएं जितना कि हमारे परिवार के लिए ज़रूरी है ताकि अन्न बर्बाद ना हो सके।
0: बिल्कुल बिल्कुल, बर्बाद तो करना ही नहीं चाहिए, उतना ही बनाए जितना, और अगर बच भी जाता तो उसको मतलब बांट दो, कहीं दे दो किसी को, पड़ोस में दे दो या कहीं भी जो है किसी को, या जानवर को ही दे दो, जानवर भी भूखे होते हैं। बर्बाद करने नीचे ऐसे गलियों में गिराएंगे तो उससे गंदगी फैलेगी।
1: जी बिल्कुल, ये आपने बिल्कुल सही बात कही कि इधर उधर गिराने से बेहतर है कि किसी भूखे के पेट में वो खाना चला जाए, चाहे वो किसी जानवर को आप खिला दें, चाहे आप किसी की मदद करें। आप जैसे कि मंदिरों के बाहर भी बैठे रहते हैं लोग, तो उनको भी जाकर आप बांट सकते हैं, या आपके आसपास अगर कोई इस तकबे का कोई रहता है इंसान जो कि नहीं पका सक पा रहा या जिसके पास इतनी सुविधाएं नहीं हैं, तो आप उनको भी जाकर अपना जो खाना है वो बांट सकते हैं।
0: और रोटी की कीमत मैडम उनको उनसे पूछो ना जिनको दो
1: नसीब
0: वक्त
1: नहीं
0: रोटी
1: होती।
0: नहीं मिल रही है।
1: जी बिल्कुल बिल्कुल,
0: अभी भारत में बहुत सारी जो है भुखमरी की जो है काफी है, यूपी बिहार इस तरह के जो है स्टेट में अभी बहुत जो है लोगों को दो वक्त की रोटी के लिए तरसना पड़ रहा है, अभी भी दाने दाने के लिए तरस रही है। और अगर हम ऐसे वक्त में भी अपने जो है अन्न को बर्बाद कर रहे हैं तो ये तो बहुत ही जो है विडम्बना है।
1: जी, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके और आपके विचारों को जानकर कि आप सतर्क हैं और ध्यान में रखते हैं कि अन्न जो है वो बर्बाद बिल्कुल नहीं करना चाहिए। तो
0: बिल्कुल बिल्कुल, हमें खुद से शुरुआत करनी होगी ना मैडम।
1: जी बिल्कुल, हमें अपने से ही शुरुआत करनी है, अपने घरों से ही शुरुआत करनी
0: है। भाषण देना है या इस तरह की बड़ी बड़ी बातें करना तो आसान है, या फोन पे ये वो करना, तो हमें खुद से घर से शुरुआत करनी होगी खुद ना।
1: जी बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद जी,
0: कभी कुछ होगा मैडम।
1: जी धन्यवाद।
2: घर का सपना हो, नई गाड़ी की ख्वाहिश या किसी जरूरत के लिए पैसे, SBI देता है बेहतरीन लोन ऑप्शंस आकर्षक ब्याज दरों के साथ। होम, ऑटो, पर्सनल, पेंशन और गोल्ड लोन के लिए संपर्क करें अपनी नजदीकी शाखा से। SBI, the banker to every Indian। नियम और शर्तें लागू।

0: कार्यक्रम हेलो चंडीगढ़ में अभी हम और आप करेंगे बहुत सारी ढेर सारी बातें आज के विषय पर, लेकिन उससे पहले सुन लेते हैं ये गीत।
1: समझो और समझाओ, होड़ी में मौज।

0: जी बिल्कुल, क्यों ना खा लें, बांट के आधा आधा। हमारे आज के हेलो चंडीगढ़ कार्यक्रम का विषय है कि ना करें जाया अन्न का एक भी दाना, जितना हो खाना उतना ही पकाना। तो ये है हमारे आज के कार्यक्रम का विषय। तो चलिए करते हैं बात अपने अगले कॉलर के साथ। हेलो चंडीगढ़।
1: हाँ हेलो दीदी, नमस्ते।
0: नमस्कार जी, अपना नाम बताइए।
1: हाँ शिवा शिवाजी, सेक्टर 9 पंचकूला होटल माँ हमहन, और गांव से आ गया हूँ 20 तारीख को दीदी, गांव में से पहले वहाँ से भी आपको मैं फोन से बात करते रहते थे।
0: जी जी, आज के विषय पर क्या कहना चाहेंगे आप?
1: आज के दीदी विषय तो बहुत अच्छा है, क्योंकि खाना जो तुम्हें आदमी बनाते हैं, देखो हमारे यहाँ घर पे भी तो बनता, तो ऐसा बनता कि खाना बचता ही नहीं है, क्योंकि खाना फेंकना अच्छा नहीं है। और ये जो अन्न देवता है, तो जो तो अन्न तुम्हें नहीं हो तो आदमी खाए कैसे, जिए कैसे? तो खाना लिमिट के ज्यादा कभी नहीं बनाना चाहिए, और जो खाना फेंका जाता है तो ये जो अन्न देवता तो शराब देते हैं कि तुम्हें हमको तुम तुम्हें कूड़ा में फेंकती हो। तो उनको सबको हर एक आदमी को खाना उतना ही बनाना चाहिए कि ज्यादा खाना वो कूड़ा दान में जाए नहीं। जी, सही बात है कि नहीं?
0: बिल्कुल सही बात है। तो क्या आप कोई योजना बनाकर खाना बनाते हैं? आप अपने घर में किस तरह से इसको फॉलो करते हैं, ये जो है विषय जो है, इसको किस तरीके से आप अपनाते हैं अपने जीवन में?
1: अच्छा नहीं तो ऐसे दीदी, जैसे आप हमारे घर में जो है 6 आदमी का जो परिवार है साथ, तो वो हमारे यहाँ हमारी वाइफ उसको ये जो कटोरी होता है, गिलास होता है, उसी के नाप से रखती कि उसमें खाना कभी कोई बचता नहीं है, क्योंकि जो थोड़ा भी जो ज्यादा हो गया जो तो वो जो बच जाता है। तो कोई भी चीज का हर एक किसी का नाप रखा है, चलो एक दिन ज्यादा हुआ तो तीसरे दिन से फिर ज्यादा तो नहीं होगा, तो आदमी को उसका खाना बनाने का हिसाब भी जो रखा है, नाप रखे कि हाँ हमको इतना आदमी को इतना खिलाना है, इतना लू, तो ये सब तो जो तो आदमी रखेगा तो खाना वो बचेगा नहीं किसी के।
0: जी बिल्कुल सही कहा आपने कि कोई कटोरी या किसी गिलास का आप माप रखें अपने परिवार के हिसाब से, ताकि आप उसी के मुताबिक रोज़ खाना बनाएं। और इससे आपको, जब आप रोज़ बनाएंगे उसी कटोरी से, तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा, अगर किसी दिन गलती से ज़्यादा बन जाता है तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि उस कटोरी से भी हम कम अगर बनाएंगे तो वो पूरा पर्याप्त है आपके परिवार के लिए।
1: क्योंकि दीदी एक उसका हो जाता है।

0: आज अजके आदमी को ऐसा कि अब मैं छह आदमी को इतना लिया तो चलो दो आदमी बच गए तो थोड़ा आधा कटोरी और डाल दू, तो ऐसा ऐसा करने से तब वो जो खाना नहीं बचता। अब ऐसे जब बच जाता आदमी का ज्यादा खाया तो वो फेंक देते हैं, फिर वो शाम को दूसरा बना लेते हैं, तो ये गलत बात है। खाना उतना बनाए चाहे दो बार बनावे सुबह शाम, लेकिन तो खाना दोपहर को खत्म हो जाए शाम को दूसरा बना लिए।
1: हाँ बिल्कुल, और अगर खाना बच भी जाता है, कई बार बच भी जाता है खाना, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि घर में अगर बच्चे हैं तो उनकी पसंद का नहीं बना तो बच्चे बचा देते हैं उस खाने को, तो उसे हमें अच्छे तरीके से स्टोर भी करके रखना है, उसकी स्टोरेज भी अच्छे तरीके से होनी चाहिए, क्योंकि गर्मियां अगर हैं तो आप फ्रिज में रखिए उस खाने को।
0: फ्रिज अब आजकल तो धीरे सकती है, फ्रिज है तो फ्रिज में रख दिया, नहीं है जिसके आज फ्रिज, तो चलो बच्चे हैं छोटे छोटे तो वो तो दिन में दो तीन बार खाते हैं चार बार,
1: बिल्कुल
0: बच्चों को जल्दी लगता है उनका खाना हो जाता है बनो, जो बच गया तो वो बच्चे खा लिया, लेकिन जिसके यहाँ बच्चे नहीं है तो वो तो तुम्हें फेंक ही देते हैं, तो वो उतना खाना ना बनावे, उतना ही बनावे नाप रखा है कोई भी चीज का कि हाँ इतना आदमी का इतना लगेगा, इतना आदमी दो चार और बच गए तो इतना लगेगा, तो वो खाना जो फालतू में वेस्ट में नहीं जाता है।
1: जी जी, जी बहुत बहुत शुक्रिया कार्यक्रम में आपका बात करने के लिए, और आपने एक अच्छी जानकारी भी दी कि माप रखें। तो सबसे बड़ी जो बात है समझने वाली वो यही है कि माप रखें, खाने को हमेशा माप से बनाएं ताकि खाना जो है वो वेस्ट ना जाए। तो बहुत अच्छा लगा जी आपसे बात करके।
2: घर का सपना हो, नई गाड़ी की ख्वाहिश, या किसी जरूरत के लिए पैसे, SBI देता है बेहतरीन लोन ऑप्शंस आकर्षक ब्याज दरों के साथ। होम, ऑटो, पर्सनल, पेंशन और गोल्ड लोन के लिए संपर्क करें अपनी नजदीकी शाखा से। SBI, the banker to every Indian। नियम और शर्तें लागू।

0: आकाशवाणी चंडीगढ़ से इस समय आप सुन रहे हैं लाइव फोन इन प्रोग्राम हेलो चंडीगढ़ और हमारा आज का विषय है ना करें जाया अन्न का एक भी दाना, जितना हो खाना उतना ही पकाना। तो चलिए बात करते हैं अपने अगले कॉलर के साथ। हेलो चंडीगढ़।
1: हाँ जी नमस्कार जी।
0: नमस्कार जी, अपना नाम बताइए आप।
1: मैं शरण भला बोल रहा जी, पटियाले चंडीगढ़ रणजीत नगर।

0: आकाशवाणी चंडीगढ़ से इस समय आप सुन रहे हैं लाइव फोन इन प्रोग्राम हेलो चंडीगढ़। न करें जाया अन्न का एक भी दाना, जितना हो खाना उतना ही पकाना, ये है हमारा आज का विषय। तो चलिए करते हैं बात अपने अगले कॉलर के साथ। हेलो चंडीगढ़।
1: नमस्कार। हेलो चंडीगढ़।
0: नमस्कार जी, अपना नाम बताइए।
1: मैं गुजरात से आपका नियमित श्रोता धीरज जबारी बात कर रहा हूँ।
0: बहुत बहुत स्वागत है धीरज जी कार्यक्रम में आपका। आज के विषय के बारे में क्या विचार रखेंगे आप?
1: जी, बढ़िया, यानी एक प्रेरणात्मक और संदेश देने वाला विषय है, जो अन्न का कई जगह पर हम यानी उसको जब बिगड़ता है, यानी कई जगह पर उसका दुरुपयोग होता है, तो हमारा दिल को बहुत यानी हृदय को बहुत आहत पहुंचती है। तो कई जगह पर ऐसे भी है जो बुफे सिस्टम किया गया। वैसे देखा जाए तो पहले जमाने में यानी पंगत में बैठते थे, लाइन से बैठते थे और खाना पी रहते थे, लेकिन इसमें क्या है कई बार बिगाड़ भी होता था। अभी क्या है जो बुफे सिस्टम होती है तो उसमें जिसको जितना खाना उतना लेता था, लेकिन कभी कभार हमारे जैसे कई भाई है बहन है ज्यादा ले लेते हैं और खा नहीं पाते, क्योंकि खाने की चीज में क्या कभी कभार ऐसा होता है कोई तीखा है कोई तेल वाला पदार्थ है तो नहीं खा सकते। लेकिन हो सके तो हम कहीं भी खाने जाए तो कम मात्रा में ले, अगर उसको हमको अच्छा लगे तो दोबारा ले सकते हैं, क्योंकि अन्न का बगाड़ हमारे देश के लिए अच्छी बात नहीं है, क्योंकि कई लोग आज भी कई जगह पर भूखे है। तो हो सके इतना अन्न का बचाव करना चाहिए और उसका बिगाड़ अटकाना चाहिए। दीदी
0: जी बहुत अच्छी बात कही धीरज जी आपने, और ये बात बिल्कुल सही है कि जब बुफे सिस्टम है या कहीं पर भी आप सामाजिक कार्यक्रमों में जाते हैं खाना खाने, तो वहाँ पर ज़रूरी नहीं है कि आपके स्वाद के मुताबिक ही खाना बना होगा, कहीं तीखा होगा, कहीं नमक ज़्यादा होगा, कहीं कम होगा। तो ये बिल्कुल सही बात कही आपने कि सबसे पहले थोड़ा सा लें, अपनी थाली में थोड़ा सा परोसें, उसे चखें, अगर वो आपके स्वाद के मुताबिक है, अगर वो आपको जचता है, आपके मन को जचता है, तो भी आप उसको

0: दोबारा लें, क्योंकि देखिए दोबारा लेने में कोई हर्ज नहीं है। एक साथ इकट्ठा डाल लेंगे और फिर खाएंगे नहीं, आपको अच्छा नहीं लगा, आप उसे व्यर्थ कर देंगे। इससे बेहतर है कि आप थोड़ा सा लें, थोड़ी मात्रा में लें, उसे चखें, अगर आपको अच्छा लगता है, आपके मन के मुताबिक है, तो आप दोबारा ले सकते हैं। तो बहुत अच्छी बात बताई आपने धीरज जी।
1: जी, एक सुझाव भी कहना चाहता हूं, अगर मंजूरी दे दें।
0: जी बिल्कुल बिल्कुल कहिए।
1: ये जो हमारे कार्यक्रम है बहुत रोचक है और हम इसमें हिस्सा भी लेते हैं और भारत के कई श्रोता हिस्सा लेते हैं। अगर 3 नंबर की बजाय अगर 2 नंबर करे, आपको सबको योग्य लगे श्रोताओं को, तो मेरा सुझाव अगर हो सके तो आगे यानी तक पहुंचाना दीदी।
0: जी जरूर, आपके कहने का मतलब है कि जो हमने 3 नंबर दिए हुए हैं उनकी बजाय 2 नंबर हैं, ये कहना चाहते हैं?
1: जी।
0: चलिए, आपका सुझाव हम आगे जरूर बताएंगे, तो अगर सही लगेगा तो हम आपके सुझाव को शामिल भी करेंगे। ठीक है, तो बहुत अच्छा लगा।
1: सभी को धन्यवाद।
0: जी धीरज जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।

0: ज़रूर बताएंगे, तो अगर सही लगेगा तो हम आपके सुझाव को शामिल भी करेंगे। ठीक है, तो बहुत अच्छा
1: धन्यवाद,
0: लगा।
1: सभी को धन्यवाद आपके
0: जी
1: समय।
0: जी धीरज जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।

0: हेलो चंडीगढ़ कार्यक्रम के इस भाग के प्रायोजक थे वर्सेटाइल मशीन बद्दी।
1: आपके सपनों का घर हो, फैक्ट्री हो या हो ग्राहकों से भरा शोरूम, हर मंजिल तक आसान और सुरक्षित पहुंच, वर्सेटाइल लिफ्ट बद्दी के साथ।
2: आपकी जरूरत के अनुसार हर तरह के लिफ्ट बनाएं, प्रोफेशनल इंस्टॉलेशन और भरोसेमंद सर्विस प्रोवाइड कराएं।
1: वर्सेटाइल लिफ्ट बद्दी,
2: अपनी जरूरत के लिफ्ट बनवाने के लिए आज ही संपर्क करें 9736183070।
0: वर्सेटाइल लिफ्ट बद्दी, भरोसा सुरक्षा का।
3: आकाशवाणी चंडीगढ़ से इस समय आप सुन रहे हैं लाइव फोन इन प्रोग्राम हेलो चंडीगढ़। न करें जाया अन्न का एक भी दाना, जितना हो खाना उतना ही पकाना। तो एक सवाल है हमारा गृहिणियों से जो इस समय हमारा कार्यक्रम सुन रही हैं, कि आप बचे हुए खाने को फेंकने से बचाने के लिए रसोई में क्या खास नुस्खे अपनाती हैं, तो हमें कॉल करके ज़रूर बताएं। तो फिलहाल बात कर रहे हैं अपने अगले कॉलर के साथ, क्या पता वो कोई गृहिणी ही हो। हेलो चंडीगढ़।

0: हेलो
1: जी, आपको भी प्यार भरी नमस्कार। आपकी आवाज़ जो है वो साफ सुनाई नहीं पड़ रही। आपकी तबीयत ठीक है जी? तो आज के विषय के बारे में क्या कहना चाहेंगे आप?
0: तो बहुत अच्छा है बहन,
1: जी
0: सच कह रहा हूँ, और मैं तो खुद अमल भी करता हूँ इस पे। जैसे
1: किस तरह से अमल करते हैं आप?
0: मेरी ना बेटी की शादी हुई है अभी,
1: जी, बहुत
0: तो
1: मुबारक हो
0: हमने
1: आपको।
0: होटल में शादी
1: जी
0: बुक कराई ना, जैसे तो
1: जी
0: वहाँ पे उनको खाने में, जैसे भाई बता रहे हैं कि 3 या 4 एडमिट लीजिए हैं, तो जितनी खा सको
1: तो उतना ही थाली में ले जितना आप खा सकें, यही कहना चाहते हैं आप?
0: थाली में, उतना थाली में मैंने ही खड़ा हो गया, तो
1: आपकी
0: मैंने कहा
1: जी, आपकी आवाज़ ना बहुत कट रही है। अब कारण तो हम नहीं जानते
0: भाई
1: कि
0: बहन भाई मेरी ठीक
1: जी क्या
0: है।
1: कह
0: हेलो,
1: जी, हमें सुनाई पड़ रहे हैं आप, लेकिन कट कट के आ रही है आपकी आवाज़। क्या कहना चाह रहे थे आप?
0: तो मैं तो ये कह रहा था कि जैसे ना लोग, जैसे हम कहते हैं कि खुद उतना खाओ, जैसे हम पैसा, जिसमें पैसा यूज करते हैं बैंक में,
1: जी,
0: उतना ही नहीं निकालते ना जितना जरूरत
1: जरूरी
0: होता है,
1: हो। जी
0: तो ऐसे ही खाना ही, जैसे जितना मैं शुरू शुरू से माँ मेरी रहती थी ना, तो
1: जी
0: खाना उतना पकाती थी जितना बनाते थे,
1: जी
0: और जितना बनता है, जितना बन जाता है फालतू बच्चा है, वो तो कीड़ी कूड़े को डाल देते हैं।
1: जी
0: लेकिन जब घर में मेंबर 3 है, तो 3 मेंबर, 4 बार 5 मेंबर थोड़ी बनता
1: जी बिल्कुल। और यहाँ पर सिर्फ बात अन्न की बर्बादी की इसलिए नहीं है कि ज़्यादा खाना बन जाता है। कई बार क्या होता है कि हम खरीदारी भी ज़्यादा कर लेते हैं। जैसे कई बार हम दालें बहुत अधिक मात्रा में खरीद लेते हैं,
0: है। जी,
1: या
0: बिल्कुल
1: जैसे आलू प्याज हैं या टमाटर हैं, कुछ ऐसी सब्जियां हैं जो जल्दी ख़राब हो जाती हैं, लेकिन उन्हें हम बहुत ज़्यादा मात्रा में खरीद कर रख लेते हैं तो वो भी ख़राब हो जाती हैं। तो वो भी एक तरह से अन्न की बर्बादी है। तो यहाँ पर सिर्फ बात इस वजह से नहीं हो रही कि हम खाना बना ज़्यादा रहे हैं और वेस्ट कर रहे हैं, उसको फेंक रहे हैं। बर्बादी अन्न की उस तरह से भी है, अगर हम कच्चा जो सामान है, चाहे वो दालें हैं चाहे वो सब्जियां हैं, उन्हें खरीद कर रख लेते हैं, लेकिन आप सोचते हैं मैं कल नहीं तो परसों बना लूँगी या उसके बाद बना लूँगी, और जब वो बारी आती है बनाने की, तब तक वो जो सब्जी है वो ख़राब हो चुकी होती है। तो आप उतना खरीदें भी उतना जितना ज़रूरी है। अगर आपको कल सब्जी बनानी है तो आज खरीद लें, अगर 2 दिन बाद बनानी है तब भी खरीद सकते हैं, लेकिन ये नहीं कि उसको आप बहुत लंबा प्लान करके रख लें और उतने में वो जो है सब्जी जो है वो ख़राब हो जाए। और जो दालें हैं, चावल हैं, उनकी स्टोरेज भी अच्छे तरीके से करनी ज़रूरी है ताकि उनमें कीड़ा ना लग जाए। धूप लगाइए या कम मात्रा में खरीदें। तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका कार्यक्रम में बात करने के लिए। जी बहुत बहुत शुक्रिया।
2: घर का सपना हो, नई गाड़ी की ख्वाहिश या किसी जरूरत के लिए पैसे, SBI देता है बेहतरीन लोन ऑप्शंस आकर्षक ब्याज दरों के साथ। होम, ऑटो, पर्सनल, पेंशन और गोल्ड लोन के लिए संपर्क करें अपनी नजदीकी शाखा से। SBI, the banker to every Indian। नियम और शर्तें लागू।

0: कुछ कहानियाँ किताबों में नहीं मिलती, वो मिलती हैं हमारे शहरों की गलियों में, गाँव की मिट्टी में,
1: लोक परंपराओं में और उन लोगों में जो अपनी विरासत को आज भी संजोए हुए हैं।
0: इन्हीं अनमोल कहानियों को देश और दुनिया तक पहुंचाने का डिजिटल क्रिएटर्स के लिए अनोखा अवसर है
1: सूचना और प्रसारण मंत्रालय भारत सरकार का जेम्स ऑफ इंडिया चैलेंज।
0: अपने शहर की खास जगह, परंपरा, प्रतिभा या फिर कहानी पर 1 से 3 मिनट तक का वीडियो बनाएं। माई वेव्स OTT प्लेटफॉर्म पर अपने मोबाइल नंबर से लॉग इन करें,
1: मोबाइल पर आए OTP को दर्ज करें और फिर जेम्स ऑफ इंडिया चैलेंज चुनकर अपनी 1 से 3 मिनट की वीडियो अपलोड कर सबमिट करें।
0: अपनी 1 से 3 मिनट की वीडियो अब आप माई वेव्स OTT प्लेटफॉर्म पर 30 सितंबर तक अपलोड कर सकते हैं। तो कहिए अपने शहर, अपने गांव की कहानी अपनी जुबानी।
2: जेम्स ऑफ इंडिया चैलेंज।
3: आकाशवाणी चंडीगढ़ से इस समय आप सुन रहे हैं लाइव फोन इन प्रोग्राम हेलो चंडीगढ़। हमारा आज का विषय है ना करें जाया अन्न का एक भी दाना, जितना हो खाना उतना ही पकाना। तो चलिए बात करते हैं अपने अगले कॉलर के साथ। हेलो चंडीगढ़। हेलो।
4: हेलो चंडीगढ़
3: जी, नमस्कार जी, अपना नाम बताइए।
4: नेत्र प्रकाश शर्मा, जीरकपुर से, पंजाब से बोल रहा हूँ, जीरकपुर
3: जी। बहुत बहुत स्वागत है आपका।
4: आपने आज का टॉपिक बहुत अच्छा चुना।
3: जी जी, शुक्रिया।
4: हर एक आदमी को जो है अनाज की अहमियत को जानना चाहिए।
3: जी बिल्कुल। तो क्या
4: मैं भी कहीं जाता हूँ, यहाँ मनसा देवी वगैरह उसके इतनी कई जगह भी जाता रहता हूँ मैं उतना ही लेता हूँ, मेरी थाली जो है सफा चट रहती है, मतलब बिल्कुल साफ ही नहीं।
3: बहुत अच्छी बात है अगर आप ऐसा करते हैं।
4: आवाज नहीं आ रही आपकी, पता नहीं। हेलो।
3: हेलो।
4: आवाज नहीं आ रही, पता नहीं क्या, ये सिग्नल मिलता नहीं हमारे।
3: नहीं, आपकी आवाज बिल्कुल साफ सुनाई पड़ रही है। आप कहना क्या चाहते हैं? और
4: आ रही है।
3: जी आपकी आवाज आ रही है।
4: आ नहीं रही मेरी।
3: जी आपकी आवाज आ रही है, आप बोलिए क्या।

0: रहे थे आप?
1: बहुत कम आवाज आ रही है आपकी, पता नहीं इधर को भी, हमारे यहाँ जीरकपुर से बोल रहा हूँ जी।
0: जी जी मुझे सुनाई पड़ रहा है जी, आप क्या कहना चाहते हैं वो बताइए।
1: बहुत अच्छा लगा आज का टॉपिक आपने बड़ा अच्छा चुना जी।
0: जी जी
1: हाँ जी
0: जी। तो कुछ और कहना चाहेंगे?
1: मेरा मोरल डाउन हो गया था, 2 महीने से फोन कर रहा हूँ जी।
0: चलिए आज आपका फोन लग गया और आपका विषय भी आपको पसंद आया हमारे आज के हेलो चंडीगढ़ कार्यक्रम
1: में। सर आपके प्रोग्राम है ना जो ये 59 से सुन रहा हूँ सर, 1959 से
0: जी। ये तो बहुत मतलब बड़ी बात कही आपने कि
1: और
0: आप हमारे इतने पुराने श्रोता हैं।
1: मोहम्मद रफी साहब का बड़ा फैन हूँ, बहुत बड़ा फैन हूँ मैं, सिंगिंग भी करता हूँ मैं
0: जी। लेकिन आज का जो विषय है उसके बारे में हम चाहते हैं कि आप कुछ जानकारी दें हमारे सुनने वालों
1: को। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, मैं यही कहना चाहता हूँ कि उतने ही लोग जितना खा सको, एकदम थैली भरवा लो, फिर वो अच्छा नहीं लगता, उसको वेस्टेज जाता है, दुनिया भर का वेस्टेज जाता है। हम देखते हैं डस्टबिन में फेंकते हैं लोग जो है, ये बड़ा गलत सिस्टम है वैसे। अनाज की अहमियत को समझना चाहिए आदमी को।
0: तो आप अपने घर में किस तरह से बचत करते हैं अन्न की?
1: हाँ जी हाँ जी
0: क्या तरीके अपनाते हैं आप अपने घर में?
1: हाँ जी हाँ जी
0: शायद उनको हमारी आवाज़ सुनाई नहीं
1: आवाज
0: दे
1: नहीं
0: रही
1: आ
0: है,
1: रही है।
0: लेकिन बहुत अच्छा लगा उनसे बात करके, और बहुत पुराने श्रोता हैं हमारे तो इस वजह से उनका आदर करना भी बनता है। तो चलिए अब रुक करते हैं एक गीत की ओर, और उसके बाद बात करेंगे अगले कॉलर के साथ।

0: दोस्तों, इस समय आप सुन रहे हैं लाइव फोन इन प्रोग्राम हेलो चंडीगढ़, आकाशवाणी के चंडीगढ़ केंद्र से FM 107.2 MHz पर। और हमारा आज का विषय है, ना करें जाया अन्न का एक भी दाना, जितना हो खाना उतना ही पकाना। बात कर रहे हैं अपने अगले कॉलर के साथ। हेलो चंडीगढ़।
1: नमस्कार मैडम।
0: नमस्कार जी, अपना नाम बताइए।
1: रविंदर कुमार बोल रहा हूँ मैडम, बुरायां डिस्ट्रिक्ट जालंधर से।
0: जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। क्या कहना चाहेंगे आप आज के विषय के बारे में?
1: देखो जी, खाने

0: पीने की कोई भी वस्तु है, चाहे चाहे अनाज है, चाहे कुछ भी है,
1: जी
0: उसकी जो कदर करनी है वो इंसान का फर्ज है, क्योंकि
1: जी बिल्कुल
0: क्योंकि अन्न को भगवान का दर्जा दिया हुआ है, तो हमको इसकी जरूर कदर करनी चाहिए। देखो, हम घरों में भी जो फालतू हमारे यहाँ कोई चीज होती है तो उसको आस पड़ोस में दे देना चाहिए जब ठीक हो तो,
1: बिल्कुल
0: मतलब ये ना हो को वेस्ट जाके बाद में खराब हो जाए। तो
1: जी
0: मतलब
1: बिल्कुल
0: जो भी है आपने जितना भी आपको जरूरत है उतना ही पकाए तो अच्छा है, तो बाकी ज्यादा ज्यादा जो है वो वेस्टेज ही होती है। आपके घर में आपको पता ही होता है कि कितनी चीज लगती है, तो उसके हिसाब से ही आपको बनाना चाहिए वो चीज।
1: जी। और
0: बाकी जब
1: एक
0: हम लंगर वगैरह या धार्मिक स्थानों पे हम जाते हैं खाना खाने के लिए, जब खाते हैं तो वहां हमारी श्रद्धा बहुत होती है। देखो, हम प्लेट को उंगलियों से भी चाट लेते हैं,
1: बिल्कुल
0: तो जो वही श्रद्धा है ना वो घर पर भी रखनी चाहिए।
1: घर पर भी
0: मतलब
1: रखनी
0: ये
1: चाहिए, और जो सामाजिक कार्यक्रम है जहां हम जाते हैं शादी ब्याह में, वहां पर भी वही श्रद्धा दिखानी चाहिए। क्योंकि अन्न अन्न, चाहे वो शादी का है, चाहे लंगर का है, चाहे घर का है, अन्न अन्न है और वो एक समान ही है।
0: वो किसी मतलब उसका हमारे मुंह तक पहुंचने के लिए हजारों लोगों की मेहनत लगती है। देखो,
1: बिल्कुल
0: किसान कितनी मेहनत से वो उसको उगाता है और फिर कहाँ कहाँ से होकर वो हमारे मुंह तक पहुंचता है, तो मतलब उसमें हजारों लोगों की मेहनत होती है, तो उनकी मेहनत की भी हमको कदर करनी चाहिए। तो मतलब जो भी है, कोई भी चीज है, चाहे उसको इस्तेमाल करने से पहले उसको तो वेस्टेज के बारे में सोचो कि वेस्टेज ना है। शादियों ब्याहों में भी जो ज्यादा बचता है ना सामान, तो उसको भी वो फेंक देते हैं, वो भी जानवरों को या किसी और जरूरतमंद जो आप है उसको दे देना चाहिए। तो
1: देखिए, अभी
0: मतलब उसको
1: तक
0: वेस्टेज नहीं करना
1: जी
0: चाहिए।
1: बिल्कुल, और अभी तक जितने भी श्रोता हमसे जुड़े हैं उन सभी ने इस मुद्दे पर बात उठाई है कि वो खाना व्यर्थ ना जाए। और एक बात और है कि स्मार्ट किचन मैनेजमेंट का भी, जो हमारी गृहिणियाँ हैं, कुशल गृहिणियाँ हैं, उनको इस्तेमाल करना चाहिए। क्योंकि जो रात की बची हुई रोटियाँ हैं, चाहे वो चावल हैं, चाहे वो दाल हैं, उन्हें फेंकने की बजाय उन्हें दोबारा से रीयूज़ किया जा सकता है। आप दाल को आटे में गूंथ सकती हैं, आप बचे हुए चावल को फ्राइड राइस के रूप में इस्तेमाल कर सकती हैं, आप कटलेट्स बना सकती हैं, परांठों में इस्तेमाल कर सकती हैं। तो खाने को किसी भी तरीके से वेस्ट नहीं जाने देना, ये है हमारा मकसद।
0: वेस्ट
1: हेलो
0: नहीं
1: चन
0: जाना चाहिए, मतलब
1: जी
0: खाएं जो मर्जी आप।
1: जी बिल्कुल
0: हाँ,
1: बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया जी कार्यक्रम में बात करने के लिए।
0: धन्यवाद।
2: अंडा अंडा अंडा अंडा, हम सबने देखा है, कई बार देखा है, पर क्या कभी सोचा है इस अंडे का क्या फंडा है? ये कितना गहरा है, इस टकले सर के अंदर एक ब्रेन सुनहरा है। ये कुछ समझाता है, ये कुछ सिखलाता है, जरा गौर से सुनिएगा, हम गा के सुनाता है।

0: दोस्तों जाते जाते बस इतना ही कहेंगे कि अन्न सिर्फ हमारी भूख नहीं मिटाता, ये किसी की हार्ड तोड़ मेहनत का परिणाम भी है। तो आज ये संकल्प लें कि थाली में छोड़ेंगे नहीं और किसी को भूखा नहीं सोने देंगे। सुनते रहिए आकाशवाणी चंडीगढ़ FM 107.2 MHz पर और अपनी रेडियो संगिनी बबिता कपूर को दीजिए कार्यक्रम से इजाजत। नमस्कार।
1: हेलो
2: हेलो,
1: कुछ आपकी कुछ हमारी बातें प्यारी प्यारी। हेलो चंडीगढ़।
2: हेलो चंडीगढ़।

0: अभी आप सुन रहे थे लाइव फोन इन प्रोग्राम हेलो चंडीगढ़। इस समय आप हैं विविध भारती चंडीगढ़ के संग एफएम 107.2 मेगाहर्ट्ज पर।
1: घर का सपना हो, नई गाड़ी की ख्वाहिश या किसी जरूरत के लिए पैसे, SBI देता है बेहतरीन लोन ऑप्शंस आकर्षक ब्याज दरों के साथ। होम, ऑटो, पर्सनल, पेंशन और गोल्ड लोन के लिए संपर्क करें अपनी नजदीकी शाखा से। SBI, the banker to every Indian। नियम और शर्तें लागू।
0: आइए अब सुनते हैं प्रायोजित कार्यक्रम हमारी बेड़ियां।
2: नमस्कार, मैं एना कर्मा आप सभी का स्वागत करती हूं कार्यक्रम हमारी बेड़ियां में।
3: प्रिय मित्रों, आज के इस वर्तमान युग में मनुष्य प्रतिदिन बहुत से कार्य को करता है और उसके जीवन में वो इतना व्यस्त होता है कि हर दिन उसके पास कोई ना कोई काम करने के लिए होता है। वो मेहनत करता है, प्रयास करता है और अपने जीवन में वो थक भी जाता है। हम सभी कभी ना कभी अपने जीवन में आलस्य का अनुभव करते हैं। कई बार हम जानते हैं कि कोई काम हमें करना चाहिए लेकिन फिर भी उसे हम टालते रहते हैं क्योंकि हम अपने जीवन में उस काम को नहीं करना चाहते हैं। आलस्य ऐसा ही होता है। न्यूटन का एक गति का नियम है और यह नियम इस बात को बताता है कि जो वस्तु रुकी हुई है वह रुकी रहना चाहती है और जो वस्तु चल रही है वह चलती रहना चाहती है जब तक कोई बाहरी शक्ति उसे बदलने के लिए मजबूर ना करे। कुछ ऐसा ही हमारे जीवन में भी होता है। कुछ लोग अपने काम को शुरू करने और पूरा करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं लेकिन कुछ लोग काम को शुरू करने में कठिनाई महसूस करते हैं और उन्हें आगे बढ़ने के लिए प्रेरणा और प्रोत्साहन की आवश्यकता होती है। आलस्य धीरे धीरे हमारी आदत और जीवन शैली बन सकता है, इसलिए हर एक व्यक्ति को आलस्य के इस प्रलोभन से सावधान रहना चाहिए और अपने समय, जिम्मेदारियों और जीवन के उद्देश्य के प्रति जागरूक होकर आगे बढ़ना चाहिए। आज के इस कार्यक्रम में हम आलस्य के बारे में बात करेंगे और कैसे हम आलस्य को अपने जीवन से दूर कर सकते हैं उसके विषय में भी आज के इस कार्यक्रम में हम बात करने वाले हैं।
2: जी हाँ श्रोताओं, आप सबसे पहले हमारा नंबर लिख लें। हमारा नंबर है
4: 8527449955। जी हाँ, 8527449955।
3: प्रिय श्रोताओं नमस्कार, मैं प्रमोद आप सभी का स्वागत करता हूँ। प्रिय मित्रों, लोगों के आलसी होने और हर काम को हमेशा कल पर टालने का सबसे बड़ा कारण ये है कि वे अपने जीवन में बहुत ही अधिक आरामदायक स्थिति में रहना पसंद करते हैं। वे नहीं चाहते हैं कि चीजें जिस तरह चल रही हैं उसमें कोई बदलाव हो। जी हाँ दोस्तों, ये होता है कम्फर्ट जोन। कम्फर्ट जोन यानी कि आरामदायक स्थिति। आरामदायक स्थिति एक खूबसूरत जगह है लेकिन वहाँ कभी कोई विकास नहीं हो सकता। जो काम आप हमेशा करते आए हैं वही करना आसान होता है लेकिन इससे आपको वह विकास नहीं मिल पाता जिसकी आप इच्छा रखते हैं। विकास के लिए आवश्यकता है कि आप अपने कम्फर्ट जोन से बाहर निकलें और कठिन कार्य को करने का प्रयास करें। आलस्य हमारे जीवन में बहुत सी कमियों को लेकर आती है। आलस्य हमारे शारीरिक जीवन पर प्रभाव डालती है। शारीरिक जीवन के साथ साथ ये हमारे आर्थिक जीवन पर भी

बहुत बड़ा प्रभाव डाल सकती है। जो लोग आलस से छोड़ देते हैं उन्हें अच्छी सेहत के साथ साथ आर्थिक लाभ भी मिलता है। यदि मनुष्य आलसी है तो उसे अपने जीवन में बहुत सा नुकसान उठाना पड़ता है। एक बार एक धनी व्यक्ति था और ये धनी व्यक्ति बहुत ही आलसी था। उसने हर काम करने के लिए नौकर रखे हुए थे। वह दिन भर पलंग पर पड़ा रहता था और आराम करता था, खाता पीता था और सोता था। शारीरिक मेहनत ना होने की वजह से धीरे धीरे उसका मोटापा बढ़ने लगा, लेकिन उसने ध्यान नहीं दिया। मोटापे के साथ उसे कई बीमारियां भी हो गई, सेहत खराब होने लगी। घर के नौकरों को भी मालूम था कि मालिक आलसी है, बिस्तर पर पड़ा रहता है और खाता है, पीता है, सोता है, तो उन्होंने भी बेईमानी करना शुरू कर दिया। अब उस धनी आदमी को स्वास्थ्य के साथ साथ आर्थिक नुकसान भी उठाना पड़ रहा था, क्योंकि ये धनी व्यक्ति अपने उन नौकरों पर ध्यान नहीं दे रहा था। एक दिन उसका दोस्त मिलने के लिए आया। घर आया दोस्त जानता था कि ये व्यक्ति बहुत आलसी है। उसने देखा कि धनी सेठ बीमार है और उस सेठ ने मित्र से इन परेशानियों को दूर होने का उपाय पूछा। मित्र बहुत समझदार था। उसने कहा कि उपाय तो है, लेकिन तुम वह कर पाओगे या नहीं? सेठ बोला कि मैं ठीक होने के लिए कुछ भी करूंगा, तुम बस मुझे उपाय बताओ। मित्र ने कहा कि रोज सुबह अपने गांव में एक सुनहरा पक्षी आता है, तुम्हें रोज सुबह उसके दर्शन करना है। उसके दर्शन करने से तुम्हारी समस्याएं खत्म होती चली जाएंगी। अगले दिन यह धनी व्यक्ति सुबह उठता है और उस पक्षी को देखने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन उस दिन उसे वह सुनहरा पक्षी नहीं दिखाई दिया। अगले दिन सुबह सेठ फिर उठा और उस पक्षी को देखने के लिए आगे बढ़ा और उस पक्षी को खोजने लगा। अब रोज सेठ सुबह सुबह जल्दी उठकर पक्षी को खोजने के लिए निकल पड़ता था। सुबह जल्दी उठने और बाहर जाने से उसकी शारीरिक मेहनत से उसकी सेहत सुधरने लगी। नौकर भी सेठ को देखकर ईमानदारी से काम करने लगे थे। इस तरह सेठ का स्वास्थ्य भी ठीक हो गया और उसकी आर्थिक स्थिति भी धीरे धीरे ठीक होती चली गई, क्योंकि अब उसके नौकर पूरी ईमानदारी के साथ अपने काम को कर रहे थे। एक दिन सेठ का मित्र वापस मिलने के लिए आया तो सेठ ने कहा कि मित्र, तुमने जो कहा था कि वह सुनहरा पक्षी रोज गांव में आता है, मैं कई दिनों से रोज उसको देखने के लिए जा रहा हूं, लेकिन वो मुझे आज तक नहीं दिखाई दिया। मित्र ने कहा कि जब से तुमने सुबह उठकर घूमना शुरू किया है तुम्हारी सेहत ठीक हो गई है और नौकर भी ईमानदारी से काम करने लगे हैं, तुम्हारी जीवन शैली सुधर गई है और तुम्हें आर्थिक नुकसान भी नहीं उठाना पड़ रहा, यानी कि अब तुम्हारी आर्थिक स्थिति भी अच्छी हो गई है। यही वह सुनहरा पक्षी है जिसने तुम्हारा जीवन बदल दिया है। प्रिय मित्रों, आपका आरामदायक क्षेत्र ही आपका सबसे बड़ा शत्रु है। किसी ने बहुत अच्छा कहा है, आरामदायक क्षेत्र एक सुंदर स्थान है, लेकिन वहां कभी कोई विकास नहीं होता। आरामदायक क्षेत्र आपको सुरक्षित तो महसूस करा सकता है, लेकिन वह आपकी प्रगति को रोक देता है। यदि आप जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं, नई ऊंचाइयां प्राप्त करना चाहते हैं और अपनी क्षमता को पहचानना चाहते हैं, तो आपको अपने आरामदायक क्षेत्र से बाहर निकलकर चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि वास्तविक विकास हमेशा सुविधा से नहीं बल्कि संघर्ष और साहस से जन्म लेता है। ये कंफर्ट जोन यानी कि आरामदायक स्थिति वह स्थिति है जहां व्यक्ति स्वयं को सुरक्षित, सहज और तनाव मुक्त महसूस करता है। यहां कोई बड़ा जोखिम नहीं होता और सब कुछ परिचित होता है, लेकिन यही सुविधा धीरे धीरे व्यक्ति की प्रगति को रोक देती है। यदि हम विद्यार्थियों की बात करें तो विद्यार्थी केवल उतना ही पढ़ना चाहते हैं जितना परीक्षा पास करने के लिए आवश्यक हो। एक कर्मचारी नए जिम्मेदारियों को लेने से डरता है। एक व्यापारी नए काम को शुरू करने से डरता है। इन सभी स्थितियों में व्यक्ति अपने कंफर्ट जोन में रह रहा होता है। लेकिन ये आरामदायक स्थिति हमारा शत्रु कैसे है? ये हमारी क्षमता को सीमित कर देती है। ईश्वर ने प्रत्येक व्यक्ति को विशेष प्रतिभाएं और योग्यताएं दी हैं। जब हम केवल आसान कार्य करते हैं तो हमारी वास्तविक क्षमता कभी सामने नहीं आती। यह हमें परिवर्तन से डरना सिखाती है। नई परिस्थितियां हमें असहज महसूस कराती है, इसलिए हम पुराने तरीकों को भी अपनाए रखते हैं, जबकि विकास के लिए परिवर्तन आवश्यक है। यह आलस्य और टालमटोल को बढ़ावा देता है। जब सब कुछ आरामदायक लगता है तो हम कठिन निर्णय लेने और मेहनत करने से बचने लगते हैं। धीरे धीरे यह आदत बन जाती है। यह सीखने की प्रक्रिया को रोक देता है। नई बातें सीखने के लिए गलतियां करनी पड़ती हैं।

लेकिन आरामदायक स्थिति हमें गलतियों से बचाता है, लेकिन उसी के साथ सीखने के अवसर भी छीन लेता है। लेकिन प्रश्न यह है कि विकास कहाँ होता है? वास्तविक विकास तब शुरू होता है जब हम अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलते हैं। नया कौशल सीखना, लोगों के सामने बोलना, कठिन परिस्थितियों में खड़े रहना, कठिन जिम्मेदारियों को स्वीकार करना, असफल होने के डर के बावजूद प्रयास करते रहना और ईश्वर पर विश्वास रखना। शुरुआत में ये सब कठिन लगते हैं, लेकिन यही अनुभव हमें मजबूत और परिपक्व बनाते हैं। किसी ने कहा है, आलसी हाथ निर्धनता लाते हैं, परंतु परिश्रमी हाथ समृद्धि लाते हैं। इसका अर्थ केवल आर्थिक गरीबी नहीं है, आलसी व्यक्ति अवसरों को खो देता है, अपने कार्य को टालता रहता है और अपनी जिम्मेदारियों को गंभीरता से नहीं निभाता, और इसका परिणाम यही होता है कि वह आर्थिक, मानसिक, आत्मिक और सामाजिक रूप से भी पीछे रह सकता है। परंतु परिश्रमी हाथ समृद्धि लाते हैं। परिश्रमी व्यक्ति अपने काम को ईमानदारी, लगन और समय पर पूरा कर लेता है। ऐसा व्यक्ति धीरे धीरे उन्नति करता है, लोगों का विश्वास जीतता है और ईश्वर की दी हुई योग्यताओं का सही उपयोग करता है। यहाँ समृद्धि का अर्थ केवल धन नहीं, बल्कि सम्मान, सफलता, स्थिरता और ईश्वर के द्वारा मिलने वाली वो आशीषें हैं जो ईश्वर ने मनुष्य के लिए रखी हैं। इस पूरे अंश में हम इस बात को देखते हैं कि आलसी व्यक्ति के स्वभाव का बहुत ही प्रभावशाली और कभी कभी हास्यपूर्ण चित्र प्रस्तुत किया गया है। एक और कहावत है और उसमें कहा गया है, आलसी कहता है मार्ग में सिंह है। वास्तव में वो एक बहाना बना रहा है। हो सकता है कि मार्ग में कोई सिंह ना हो, लेकिन आलसी व्यक्ति काम पर जाने या अपनी जिम्मेदारियों से बचने के लिए काल्पनिक खतरों का बहाना बनाने लगता है। आज के समय में ऐसे बहाने हो सकते हैं, जैसे कि अभी सही समय नहीं है, मेरे पास पर्याप्त साधन नहीं है, लोग मेरा साथ नहीं देते, अगर मैं असफल हो गया तो कल से शुरू करूंगा। प्रिय श्रोताओं, आलस से अक्सर डर या बहानों के पीछे छिपा होता है। लेकिन आलस्य से बचने के लिए हम अपने जीवन में क्या करें? सबसे पहली चीज, बहाने बनाने की बजाय हम पहला कदम उठाएं। छोटे छोटे कार्यों को भी समय पर पूरा करने की आदत डालें। कठिनाइयों को अवसर समझिए, रुकावट नहीं। ईश्वर से प्रार्थना कीजिए कि वह आपको अनुशासन, परिश्रम और विश्वास योग्यता का जीवन जीने की सामर्थ्य दे। प्रतिदिन ऐसा कार्य करें जो आपको थोड़ा चुनौतीपूर्ण लगे। असफलता से डरने की बजाय उससे सीखें। नए अवसरों के लिए हाँ कहना सीखें। याद रखिए, असुविधा अक्सर विकास की शुरुआत होती है। जहाँ सुविधा प्राप्त होती है, वहीं से विकास आरंभ होता है। विश्वास आपको वहां ले जाता है जहाँ आराम कभी नहीं ले जा सकता। जब हम अपने जीवन में उस आरामदायक स्थिति से बाहर निकलते हैं, तभी हमारा चरित्र, विश्वास और क्षमता विकसित होती है। प्रिय श्रोताओं, आलस्य को दूर करने का तरीका तभी समझ आ सकता है जब पहले हम इस बात को समझ लेंगे कि हम आलसी क्यों हो रहे हैं, तो किस प्रकार से हम उन आदतों को बदल सकते हैं और आलस्य को अपने जीवन से दूर कर सकते हैं। पहली चीज, ऐसे लक्ष्य बनाएं जिन्हें आप पूरा कर सकते हैं। लक्ष्य हमेशा यह समझने में मदद करते हैं कि हमें क्या हासिल करना है और किस दिशा में हमें आगे बढ़ना है। इसलिए शुरुआत में एक या दो छोटे और स्पष्ट लक्ष्य बनाइए। उसी प्रकार से धैर्य और दृढ़ता विकसित करें। जीवन में सफल लोग हमेशा प्रेरित महसूस नहीं करते हैं। कई बार उनका भी मन काम करने का नहीं होता है, लेकिन वे कठिन परिस्थितियों में भी अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहते हैं। इसे दृढ़ता कहा जा सकता है, अर्थात किसी महत्वपूर्ण लक्ष्य के लिए कठिनाइयों के बावजूद लगातार प्रयास करते रहें। इसे विकसित करने के लिए अपने काम में रुचि खोजिए, नियमित अभ्यास कीजिए और छोटी छोटी आदतों को लगातार दोहराएं। जब हम किसी अच्छे काम को नियमित रूप से करते हैं, तो धीरे धीरे वह हमारी आदत बन जाता है। और अंतिम चीज, अपने समय और ऊर्जा में संतुलन बनाए रखें। हमारे पास समय तो सीमित है, लेकिन हमारी ऊर्जा भी सीमित है। जब हम बहुत ज्यादा काम करते हैं और आराम, नींद, व्यायाम और सही भोजन को नजरअंदाज करते हैं, तो धीरे धीरे थकान और तनाव बढ़ने लगता है। इसलिए प्रोडक्टिव यानी अच्छा और प्रभावी जीवन जीने के लिए केवल समय का प्रबंध करना पर्याप्त नहीं होता है, अपनी ऊर्जा का भी ध्यान रखना जरूरी है। तो प्रिय श्रोताओं, इस तरीके से हम अपने जीवन में
आलस्य को दूर कर

0: सकते हैं और एक अलग ही एनर्जी अपने जीवन में लेकर आ सकते हैं। तो दोस्तों, हम आशा करते हैं कि आपको हमारा ये कार्यक्रम पसंद आया होगा। आप भी अपने विचार, परामर्श, सुझाव या आपके सवाल हमें लिख सकते हैं।
1: अब हमें जरूर बताएं कि आपको हमारा कार्यक्रम कैसा लगा। अगर आप हमें कुछ सुझाव देना चाहते हैं या फिर आप अपने अनुभवों को हमसे बांटना चाहते हैं तो हमें जरूर लिखें। हमारा पता है,
2: कार्यक्रम हमारी बेड़ियां, पोस्ट बॉक्स नंबर 6, नई दिल्ली 110001। और हमारा फोन नंबर है
3: 8527449955। जी हाँ, 8527449955।
1: तो अब मुझे दीजिए अनुमति, अगले सप्ताह फिर होगी मुलाकात। तब तक खुश रहें, स्वस्थ रहें। नमस्कार।

अभी आपने स्पॉन्सर प्रोग्राम सुना हमारी बेड़ियाँ। आप सुन रहे हैं विविध भारती का चंडीगढ़ केंद्र FM 107.2 MHz पर। 11:15 हुए हैं। अगला कार्यक्रम है सुरबहार, कुछ गैर फिल्मी रचनाओं और गीतों का ये कार्यक्रम कुछ ही पलों में।

0: राणा पाइल्स हॉस्पिटल, कॉल करें 9814128667 पर और पाइल्स से मुक्ति पाएं।
1: सुरबहार प्रोग्राम में हम आपका स्वागत करते हैं, और जैसा कि हमने बताया कि इस प्रोग्राम में कुछ गैर फिल्मी नॉन फिल्मी रचनाएं और गीत हम शामिल करते हैं। सबसे पहले ये कलाकार हैं आदित्य रेखड़ी।

0: आदित्य रिखाड़ी की आवाज में अभी आपने ये नॉन फिल्मी गीत सुना और सुरबहार प्रोग्राम में कुछ गैर फिल्मी गीत हम आपके लिए पेश कर रहे हैं। अभी मिलते हैं छोटे से अंतराल के बाद।
1: घर का सपना हो, नई गाड़ी की ख्वाहिश या किसी जरूरत के लिए पैसे, SBI देता है बेहतरीन लोन ऑप्शंस आकर्षक ब्याज दरों के साथ। होम, ऑटो, पर्सनल, पेंशन और गोल्ड लोन के लिए संपर्क करें अपनी नजदीकी शाखा से। SBI, द बैंकर टू एवरी इंडियन। नियम और शर्तें लागू।
0: अब प्रोग्राम में एक बार फिर से आपका स्वागत करते हैं। अब बारी है एक गजल की और फनकार हैं भूपेंद्र सिंह, मिताली सिंह।

0: अभी आपने कतील शिफाई का ये कलाम सुना भूपेंद्र सिंह और मिताली सिंह की आवाज़ों में। इसी के साथ ही आवाज़ का सुरबहार कार्यक्रम समाप्त हुआ। हम अपने श्रोताओं को याद दिला दें कि आज 30 सितंबर आखिरी तारीख है जेम्स ऑफ इंडिया चैलेंज में भाग लेने के लिए। इसमें अपने आप को रजिस्टर करने के लिए 1 से 3 मिनट का वीडियो अपलोड करें, माई वेब्स पर जाकर रजिस्टर करें, लॉगिन करें और OTP को दर्ज करें, फिर जेम्स ऑफ इंडिया चैलेंज चुनकर अपनी 1 से 3 मिनट की वीडियो अपलोड करें। तो आज है आखिरी तारीख। आप सुन रहे हैं विविध भारती का चंडीगढ़ केंद्र FM 107.2 MHz पर। अगला प्रोग्राम है हमारा संजीवनी। आज इस प्रोग्राम में हम आपको त्रिदोष, जो शरीर के हैं, उनके बारे में जानकारी देंगे। इस प्रोग्राम में अब से कुछ ही देर में।
1: घर का सपना हो, नई गाड़ी की ख्वाहिश या किसी जरूरत के लिए पैसे, SBI देता है बेहतरीन लोन ऑप्शंस, आकर्षक ब्याज दरों के साथ। होम, ऑटो, पर्सनल, पेंशन और गोल्ड लोन के लिए संपर्क करें अपनी नजदीकी शाखा से। SBI, the banker to every Indian। नियम और शर्तें लागू।

0: संजीवनी कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं आपके साथ हूं आपका साथी अनिल पुंज। इस प्रोग्राम में आज हमारे साथ हैं डॉक्टर श्री देव फोंदनी। तो आज डॉक्टर फोंदनी हमें जिस विषय पर जानकारी देंगे वो है त्रिदोष, हमारे शरीर के जो दोष हैं उनके बारे में जानकारी देंगे कि वो क्या हैं, उनका बैलेंसिंग होना क्यों जरूरी है, उनसे शरीर पर क्या प्रभाव पड़ता है। इन तमाम बातों के बारे में विस्तार से डॉक्टर फोंदनी हमें जानकारी देंगे। सबसे पहले डॉक्टर श्रीदेव फोंदनी, प्रोग्राम संजीवनी में हम आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं।
1: धन्यवाद सर
0: जी। आज जैसा कि मैंने कहा कि हमारा सब्जेक्ट है त्रिदोष, तो त्रिदोष ये क्या होते हैं?
1: त्रिदोष जैसा कि नाम ही सजेस्ट कर रहा है कि तीन दोष, तो हमारे शरीर में तीन दोष है। अब इन्हें दोष क्यों कहा है, ये तीन दोष कौन से हैं?
0: ये सवाल भी जहन में आता है कि इन्हें दोष क्यों कहते हैं।
1: जी, तो मैं पहले तो बता देता हूँ कि तीन दोष यानी वात पित्त कफ। और भारत में आयुर्वेद हमारे समाज का एक अभिन्न अंग है, तो आम लोगों को ये तो पता है कि तीन दोष वात पित्त और कफ होते हैं, लेकिन वो दोष क्यों हैं और वो क्या हमारे शरीर में करते हैं, समहाउ पिछले कुछ सालों में ये अंडरस्टैंडिंग थोड़ी सी कमजोर हुई है। इसका कारण हमारा लाइफस्टाइल। अदरवाइज अगर आप हमारे पूर्वजों को देखें, हमारे माता पिता को देखें, उनको आयुर्वेद की एक ग्रॉस अंडरस्टैंडिंग है। तीन दोष हैं वात पित्त और कफ, ये शरीर के वो पिलर्स हैं जो शरीर को धारण करते हैं। अब इन्हें दोष क्यों कहा गया, मैं आपको ये कहूंगा कि जैसे आपके तीन मुख्य स्तंभ हैं, तीन ऐसे दोस्त हैं जिन पे आपका पूरा जीवन या आपका पूरा व्यवसाय टिका हुआ है, और वो तीन दोस्त अगर आपके सही तरीके से रहते हैं तो वह आपके बिजनेस को, आपके व्यवसाय को और आपके जीवन को एक पॉजिटिव डायरेक्शन में ले जाएंगे, और अगर कहीं वो बिगड़ गए तो वो आपके पूरे जीवन और व्यवसाय को नष्ट कर देंगे।
0: आपका कहने का मतलब है कि तीनों को अगर संभाल के नहीं रखा
1: जी,
0: तो फिर वो तीनों भी आपके लिए दोष का काम कर सकते।
1: बिल्कुल, तो इसलिए कहा जाता है कि दोषियंति इति दोषाः, मतलब ये इतने शक्तिशाली हैं कि ये शरीर को धारण तो करते ही हैं, शरीर के भीतर जो एक सामान्य हमारी फिजियोलॉजी है, फंक्शंस हैं, उनको मेंटेन करना इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, लेकिन अगर एक बार अगर बिगड़ गए तो ये इतने शक्तिशाली हैं कि दूसरे सभी धातुओं को, मलों को,

0: सभी स्रोतों को भी दुष्ट कर सकते हैं, तो क्योंकि इनकी क्षमता, इनकी एफिशिएंसी इतनी ज्यादा है, इसलिए उनको दोष कहा गया है। दोष इसलिए नहीं है कि इनमें कोई दोष है, इसलिए क्योंकि ये शरीर में दुष्टता उत्पन्न करने की क्षमता रखते हैं।
1: ये शक्ति है इनमें
0: जी।
1: अगर इनकी तरफ ध्यान ना दिया गया और बैलेंसिंग नहीं की गई तो ये फिर दोष पैदा कर सकते हैं।
0: बिल्कुल,
1: यही शक्ति है और यही दोष पैदा कर सकते हैं।
0: बिल्कुल, और यही है कि हमें भी अच्छे से ये बात पता है कि जो चीजें हमारे लिए सबसे अधिक महत्वपूर्ण होती हैं, वही चीजें हमारा सर्वाधिक नुकसान भी कर सकती हैं। तो शरीर में दोषों की स्थिति भी यही है। वात, पित्त और कफ को अगर मैं जन सामान्य के लिए, लेमैन के लिए अगर मैं समझाने की कोशिश करूं आम भाषा में, तो वात आपके शरीर में सभी तरह की जो न्यूरोनल एक्टिविटीज है, जो सभी तरह की बॉडी में एक्टिविटीज हो रही है, मूवमेंट्स रही है, माइक्रोस्कोपिक लेवल पे या मैक्रोस्कोपिक लेवल पे, ये वात का अधिकार है, ये वात के कारण हो रहा है,
1: ये वात का क्षेत्र है
0: जी, ये वात का क्षेत्र है। दूसरा, पित्त जो है, शरीर में जितने भी ट्रांसफॉर्मेशंस हो रहे हैं, जितने भी ट्रांजिशंस हो रहे हैं, कन्वर्जन्स हो रहे हैं, एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्जन्स, एंजाइमेटिक एक्टिविटीज, हार्मोनल एक्टिविटीज, ये सभी पित्त के अधिकार क्षेत्र में है।
1: अपना अपना अधिकार क्षेत्र है इनका
0: जी।
1: वाह,
0: अपना अपने अधिकार क्षेत्र है। और कफ जो है शरीर को घनता प्रदान करता है, स्ट्रक्चर प्रदान करता है, अवलंबन प्रदान करता है, क्लेदन प्रदान करता है, जो शरीर में हमारे डिफरेंट जॉइंट्स हैं, आर्टिकुलेटिंग जॉइंट्स हैं, उनमें जो फ्लूइड होता है ताकि आर्टिकुलेशंस प्रॉपरली रहे, वह कफ का कार्य है। तो शरीर को आकार प्रदान करना, वह कफ का कार्य है।
1: यानी तीनों की अपनी अपनी मात्रा अगर सही है तो ये सही रूप से काम करते हैं, गुण के रूप में काम करते हैं।
0: बिल्कुल।
1: और अगर वो सीमित मात्रा कहीं ज्यादा कहीं कम हो जाए,
0: बिल्कुल,
1: तो ये दोष का काम करते हैं,
0: तो ये दोष का काम करेंगे।
1: तो ये दोष कर क्या सकते हैं,
0: ये दोष क्या कर सकते हैं, मैं आपको एक बात बताता हूँ। लेकिन इन तीनों दोषों में जो सबसे ज्यादा

0: घनता प्रदान करता है, स्ट्रक्चर प्रदान करता है, अवलंबन प्रदान करता है, क्लेदन प्रदान करता है, जो शरीर में हमारे डिफरेंट जॉइंट्स हैं, आर्टिकुलेटिंग जॉइंट्स हैं, उनमें जो फ्लूइड होता है ताकि आर्टिकुलेशंस प्रॉपरली रहे, वह कफ का कार्य है। तो शरीर को आकार प्रदान करना वह कफ का कार्य है।
1: यानी तीनों की अपनी अपनी मात्रा अगर सही है तो ये सही रूप से काम करते हैं, गुण के रूप में काम करते हैं।
0: बिल्कुल।
1: और अगर वो सीमित मात्रा कहीं ज्यादा कहीं कम हो जाए,
0: बिल्कुल,
1: तो ये दोष का काम करते हैं,
0: तो ये दोष का काम करेंगे।
1: तो ये दोष कर क्या सकते हैं,
0: ये दोष क्या कर सकते हैं, मैं आपको एक बात बताता हूँ। लेकिन इन तीनों दोषों में जो सबसे ज्यादा शरारती दोष है वो है वात।
1: अच्छा।
0: हाँ, वो सबसे शरारती दोष है।
1: हाँ, आमतौर से लोगों को सुना हुआ है।
0: हाँ,
1: ये कहते हो कि मेरे गैस हो गई है, मेरे वात हो गई है।
0: जी जी, आम भाषा में लोग बोलते हैं ना, बायोगोला हो गया है, गैस बन गई है। तो उनकी एक सामान्य सी समझ होती है, जैसे पेट में गैस बन जाना, बेलोटमेंट होना, एब्डोमिनल डिस्टेंशन होना, या कई बार वो जिन लोगों को बहुत क्रॉनिक एसिडिटी का इशू रहता है, वो हेडेक के साथ चलते हैं, तो कहीं ना कहीं वात से रिलेट तो वो होते हैं, लेकिन वात का एग्जैक्टली क्या काम है। वात शरीर की सभी प्रकार की चेष्टाएं, सभी प्रकार के मूवमेंट्स कर रहा है। वात के अगर गुण कहें तो रूक्ष है, लघु है, शीत है, पित्त है, उष्ण है, तनु है, द्रव है। जो कफ का गुण है वो शीत गुण है। अब शीत गुण में वो वात जैसा ही है, लेकिन वात जो है लघु है, लाइट, अगर आम भाषा में कहें।
1: जी, जी, जी।
0: और कफ क्या है, गुरु,
1: गुरु
0: हैवी है। तो कुछ हमारी डाइट में ऐसी चीजें होती हैं जो वात कर होंगी लेकिन कफ को घटाएंगी, और कुछ ऐसी होंगी जो कफ को बढ़ाएंगी और वात को घटाएंगी। तो हमारे जो आयुर्वेद में जब आपको आहार और विहार के बारे में बताया गया है, आप आज से 20-25 साल के पुराने मिडिल क्लास को ऑब्जर्व कीजिए। 20-25 साल पहले जो मिडिल क्लास का आहार और विहार होता था ना, डाइट पैटर्न होता था, वो एग्जैक्टली वैसा ही था,
1: बैलेंस होता था,
0: बहुत बैलेंस था। वो हमेशा जानता था कि मैंने सीजन में क्या खाना है,
1: मौसम के मुताबिक।
0: जी,
1: जी, जी।
0: मतलब उन्हें ऋतुचर्या और दिनचर्या, ये जो आयुर्वेद के दो कॉन्सेप्ट है, जो मुझे ऐसा लगता है कि मानव जाति को आयुर्वेद का सबसे बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन है।
1: और यही बात कफ और पित्त बैलेंसिंग के लिए
0: जी
1: आधार है।
0: बिल्कुल। हम दिनचर्या, हमें कब उठना है, उठने के उपरांत क्या करना है, कैसा आहार का सेवन करना है, किस ऋतु में हमें कैसा रहना है। तो अब हमें अपना आहार विहार कैसे करना है, लघु आहार करना है, और ऐसा आहार करना है जो दीपन और पाचन, जो आसानी से पच जाए।
1: लघु आहार कैसा होना चाहिए, थोड़ा सा कुछ उदाहरण के रूप में समझाइए। सुबह की बात करें, दोपहर की बात करें, और रात के खाने की बात करें, तो लघु आहार
0: जी
1: कैसा होना चाहिए।
0: मैं डाइटिशियंस की तरह बहुत कॉम्प्लिकेट नहीं करूंगा,
1: क्योंकि बिल्कुल सामान्य तरीके से
0: सामान्य लोगों के लिए अगर मैं लघु आहार की बात करें, तो आप जो सीजन के फ्रूट्स और वेजिटेबल्स हैं उनको आपने अपनी डाइट का हिस्सा बनाना है। सबसे पहले इस समय हम देख रहे हैं कि कौन कौन से फ्रूट्स का सीजन है। अब वैसे तो एक चीज है कि सभी तरह के फ्रूट सभी समय पे मिलने लगे हैं, इसलिए जो सीजन के फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स अब साल भर जो अवेलेबल होने लगी हैं चीजें, वो एक अलग विषय हो गया है।
1: लेकिन हाँ, उन पे हम बात नहीं करेंगे,
0: उस पे हम बात नहीं करेंगे,
1: ऋतु के मुताबिक।
0: लेकिन जो ऋतु के अनुसार हमें फल और सब्जियां
1: को देखते हुए
0: मिलती हैं वो खानी है। पुराना मिडिल क्लास पे चलते हैं सीधा, हम सुबह क्या खाते थे, सब्जी। इस सीजन में क्योंकि वात के प्रकोप का काल है, इसलिए स्नेह आवश्यक है, घृत आपकी डाइट में स्नेह घी होना चाहिए, लेकिन डीप फ्राइड नहीं। मैं कह रहा हूँ कि आप उसमें तले हुए पराठे खा रहे हैं, आप रोटियां बनाएं उसमें घी लगाइए, सब्जी के ऊपर घी डाल दीजिए, वो आवश्यक है स्नेहन के लिए, क्योंकि वात का प्रकोप है जो
1: वो आपकी वात को शांत रखेगा,
0: वात को शांत रखेगा और अग्नि का दीपन करता है, है ना। हम हवन में भी जब घी का ही उपयोग करते हैं अग्नि दीपन के लिए, तो अग्नि का दीपन भी करेगा। तो लघु भोजन से मेरा तात्पर्य है, आप रोटी सब्जी लीजिए, सब्जी वही जो सीजन में इस समय वही सब्जी आपने लेनी है। अगर मूंग की दाल बहुत अच्छी श्रेष्ठ कही गई है, लघु है, उसका आप सेवन कर सकते हैं। चावल अगर जीर्णशाली के लिए कहा गया है, जीर्णशाली मतलब साल भर पुराना चावल, तुरंत जो उगाया हुआ धान है उसका सेवन नहीं करना चाहिए, वो दोषों का
1: पुराना चावल
0: है। पुराना चावल उसका सेवन आपने करना है। दही के बारे में भी ये है कि हालांकि पित्त प्रकोप का काल आने वाला है, जो अगली शरद ऋतु है, वो पित्त प्रकोप की काल है।
1: दही के बारे में पूछना चाहता था कि दही का सेवन तो हर मौसम में होने लगा है,
0: और अगर करना भी है तो सुबह या दोपहर के समय में ही करना, शाम के उपरांत तो नहीं करना है। हालांकि उष्ण वीर्य है, उसका वीर्य उष्ण है, हालांकि शीत दिखता है, शीत उसका स्पर्श है, परंतु वीर्य उसका उष्ण है, तो इसलिए वो कई बार वात के विरुद्ध भी कार्य करता है, वात शीतल है। तो अल्प मात्रा में ले सकते हैं, अति मात्रा में नहीं। लेकिन जो अब अगली ऋतु आ रही है शरद ऋतु, वो पित्त के प्रकोप की ऋतु है, उस समय आपने दही का निषेध करना है, नहीं लेना है।
1: अच्छा, ये बताइए डॉक्टर फोंदनी, जो घी है वो हर ऋतु में खाया जाता है, देसी घी की बात कर रहा हूँ।
0: जी जी बिल्कुल, देसी घी की बात करें, और मैं अगर इसको और प्रिसाइज करूँ तो गाय के घी की बात कर लेते हैं।
1: जी, शुद्ध भारतीय नस्ल की गाय।
0: हाँ, जो थोड़ी सी हाइट में छोटी होती हैं,
1: जी जी,
0: है ना, और वो उतनी अधिक मात्रा में भी दूध नहीं देती हैं, सीमित मात्रा में होता है। उनके दूध का बना हुआ घी हर ऋतु में सात्म्य है,
1: गुणकारी है,
0: गुणकारी है, और उसे तो पंचामृत

0: एक अमृत वह भी है।
1: तो दिन में कितना घी हमें खाना चाहिए?
0: जैसे कि मैंने शायद पिछली बार भी जब हमारा एक इस विषय में
1: कार्यक्रम
0: बात हुई
1: हुआ
0: थी,
1: था,
0: कार्यक्रम हुआ था, तो मैंने तब ये कहा था कि इसका निर्धारण, क्योंकि अग्नि सभी की अलग अलग है, सभी की पाचन की प्रक्रिया अलग अलग है, अग्नि शक्ति अलग है,
1: पाचन क्रिया अलग
0: पाचन
1: है,
0: क्रिया अलग है, सबके कार्य एक्शंस भी अलग अलग है, वर्क लोड भी सबके अलग अलग है।
1: फिजिकल एक्सर्शन जो
0: जी
1: है,
0: जी
1: जी
0: तो एक व्यक्ति जो फिजिकली एक्सर्ट हो रहा है, फिजिकली वर्क कर रहा है, तो उसके लिए घी की मात्रा वो नहीं होगी जो हम जैसे लोगों के लिए, जो जनरली उतने
1: तो मैं
0: फिजिकली।
1: एक सामान्य व्यक्ति के लिए पूछ रहा हूं आपसे।
0: हाँ, लेकिन 2 से 3 चम्मच अगर आप लेते हैं पर्याप्त है।
1: जी, देखिए आयुर्वेद इतना विशाल क्षेत्र है कि हम कहां से निकलते हुए कहां पहुंचे हैं
0: जी
1: लेकिन हम इस प्रोग्राम में वहां पहुंच गए हैं जहां हम एक छोटा सा म्यूजिकल ब्रेक लेंगे, आपकी पसंद का एक गाना शामिल करेंगे, फिर जो त्रिदोष के बारे में आपने बताया, वात कफ और पित्त के बारे में,
0: जी
1: उसी बातचीत को अब आगे बढ़ाएंगे क्योंकि हमारा आज का विषय इसी से जुड़ा हुआ है।
0: जी जी
1: तो अपनी पसंद का गाना बता दीजिए।
0: मेरी पसंद का गीत है, रफी साहब का गाया हुआ एक गीत है, मैं निगाहें तेरे चेहरे से हटाऊं कैसे,
1: आहा,
0: लुट गए होश तो होश में आऊं
1: आऊं
0: कैसे,
1: कैसे,
0: वन ऑफ माई फेवरेट
1: इतना
0: सॉन्ग।
1: प्यारा गाना है कि
0: जी
1: जिसे सुनकर आदमी मदमस्त हो जाता है।
0: जी जी
1: और
0: म्यूजिकल थेरेपी है सर
1: जी जी
0: दिस
1: म्यूजिकल
0: सॉन्ग।
1: थेरेपी, आपकी परछाइयां फिल्म से ये गाना है। तो आपके लिए प्ले करते हैं, मोहम्मद रफी की आवाज में है, उसके बाद आपसे मिलते हैं।
2: मैं

0: संजीवनी प्रोग्राम में एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करते हैं। आज का हमारा विषय है त्रिदोष, वात, कफ और पित्त। जानकारी दे रहे हैं डॉक्टर श्रीदेव फोंदनी। डॉक्टर साहब, प्रोग्राम में एक बार फिर से हम आपका स्वागत करते हैं।
1: धन्यवाद।
0: तो वात, कफ और पित्त के बारे में बात हो रही थी, आपने बताया है कि तीनों का अगर शरीर में बैलेंस खराब हो गया है तो शरीर में दोष बढ़ जाते हैं। दोष बढ़ने का मतलब है कि बीमारियां बढ़ जाती हैं।

0: मैं आपको इस तरह से समझाता हूँ, वात पित्त कफ जो है ये हमारे शरीर के फिजियोलॉजिकल जो फंक्शंस होते हैं हमारे शरीर के, उनको करने की जिम्मेदारी इन तीनों के ऊपर है। वात पित्त और कफ जब अपने नॉर्मल और ऑप्टिमम फेज में रहते हैं तो शरीर के भीतर जितनी भी क्रियाएं हैं
1: वो सुचारू ढंग से होती
0: सुचारू
1: हैं।
0: रूप से चलती
1: जी जी
0: हैं, लेकिन जैसे ही हमारा लाइफस्टाइल थोड़ा सा डिस्टर्ब हो जाता है, फॉर एग्जाम्पल मैं बहुत देर तक एक एक दो दो तीन तीन घंटे तक लगातार बैठा हुआ हूँ, अब मेरे लगातार बैठने से क्या हो रहा है, मेरा जो वर्टिब्रल कॉलम है, जो पोस्चर है, उस पर लगातार जोर पड़ रहा है, उसको एक पर्टिकुलर पोस्चर में पूरे शरीर को होल्ड करना पड़ रहा है, तो लगातार एक ही स्थान पर बैठे रहने से वात का प्रकोप हो रहा है। तो हम क्या देख रहे हैं, उसके कारण लोअर बैक के केसेस बढ़ रहे हैं, सर्वाइकल के केसेस बढ़ रहे हैं,
1: लगातार एक ही पोज में बैठे रहना।
0: एक ही पोजीशन में लगातार बैठे रहना, क्योंकि ये ठीक नहीं है, हमारे शरीर के लिए भी ठीक नहीं है। इसलिए मैं अक्सर अपने पेशेंट्स को या जो भी मेरे जानकार हैं उनको मैं ये कहता हूँ कि आपने आधे घंटे से ज़्यादा नहीं बैठना है, अगर आप आधे घंटे बैठते हैं
1: उठें
0: तो
1: टहले। हाँ
0: उसके बाद थोड़ा सा टहलें, और इफ़ एट ऑल अगर आपकी मजबूरी है कि आपको बैठना ही पड़ रहा है तो एटलीस्ट मूव योर लेग्स, अपने पैरों को हिलाते रहिए। तो हमारे पैर जब हिलते रहते हैं, कई लोग आपने देखा होगा कि
1: तो
0: बैठे
1: शरीर
0: बैठे
1: की
0: पैर
1: मूवमेंट
0: हिल,
1: रहती है।
0: हाँ, तो उससे आपका जो काफ मसल है, जिसको कि हम सेकेंड हार्ट भी कहते हैं क्योंकि इट इज़ हैविंग अ बल्क,
1: वो एक्टिव रहता है।
0: यस, तो वो एक्टिव रहता है लगातार और वो जो है ब्लड को पुश करता है, तो एटलीस्ट आप अपने पैरों को मूव करते रहिए।
1: मतलब अगर आप बहुत देर तक बैठे हैं और बस में सफर कर रहे हैं 3-4 घंटे का,
0: जी,
1: तो उन घंटों में भी आप अपने आप को हिलाते रहिए, कुछ ना कुछ छोटी मोटी
0: मतलब
1: एक्सरसाइज जो
0: अपने
1: है,
0: पैरों को थोड़ा मूव कर
1: जिस
0: दिया,
1: पोजीशन में आप बैठे उस पोजीशन से थोड़ा हिले, हाँ,
0: एग्जैक्टली
1: अपने
0: एग्जैक्टली,
1: पैरों की उंगलियों को थोड़ा हिलाएं, अपने
0: जी
1: हाथों की
0: जी
1: उंगलियों को हिलाएं।
0: बिल्कुल, जैसे हाथों को थोड़ा सा ऊपर कंधे के नीचे पीछे ले गए इस तरह से,
1: जी
0: है
1: जी
0: ना, इट हेल्प्स इन जो
1: रिलैक्सिंग पोजीशन हो
0: रिलैक्सिंग भी होती
1: जाएगी।
0: है और आपके जो हार्ट में एक वेन फ्लो बैक प्रेशर जो होता है उसमें भी ये हेल्प करता है। और वात पित्त और कफ का क्या है, हम कोई भी काम ऐसा करेंगे उससे या तो वो प्रकोपित होंगे, और जब वो प्रकोपित होंगे अगर उसको हमने इनिशियल फेज में ही नहीं समझा, अब लोग हमारे पास पंचकर्मा में आते हैं या फिजियोथेरेपी में जाते हैं कि सर्वाइकल का सीवियर प्रॉब्लम हो रहा है, लोअर बैक का सीवियर प्रॉब्लम है, तो ये प्रॉब्लम कहाँ से शुरू हुई, प्रॉब्लम वहाँ से शुरू हुई जब उन्होंने वो जो शुरुआत में उनको दिक्कत आ रही थी उसको इग्नोर किया,
1: जी
0: एंड
1: वो
0: दे
1: लक्षण देखे नहीं।
0: जी उन्होंने
1: हाँ
0: लक्षण को इग्नोर कर दिया, या फिर उन्होंने कुछ जो पेन किलर्स आते हैं उन पर अपने डिपेंडेंसी,
1: कि अगर हम अर्ली स्टेज पर इन चीजों को पकड़ लें, अपने ध्यान में ले आए,
0: जी
1: तो वात कफ और पित्त जो हैं वो दोष रहित रहते हैं।
0: बिल्कुल सर, अगर वात पित्त और कफ को हमने प्रारंभिक स्टेज में, मेरा तो यहाँ तक मानना है, मैं इसको अतिशयोक्ति तो नहीं कहूँगा, लेकिन आज हमारे सामने बहुत सारी चुनौतियाँ हैं, बहुत तरह की ऐसी बीमारियाँ हैं, जब उनका हमें पता लगता है तो तब तक देर हो चुकी होती है ना। तो मेरा ऐसा मानना है कि अगर हम थोड़ा सा अपने शरीर को ऑब्जर्व करें और देखें कि हमारे शरीर में अगर आपको लगता है कि हाँ कहीं पे स्टिफनेस हो रही है, पेन हो रहा है, नमनेस डेवलप हो रही है, टिंगलिंग सेंसेशंस हो रही हैं, जैसे चींटियाँ सी दौड़ रही हैं, कई बार पैरों में दौड़ने लग जाती हैं, हाथों में दौड़ने लग जाती हैं, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं हम कुछ ऐसा कर रहे हैं जिसके कारण वात डिस्टर्ब हो रहा है। वात को मैंने कहा कि ग्रॉसली हम इसको न्यूरोनल एक्टिविटीज़ के साथ कंपेयर कर सकते हैं।
1: आमतौर से शरीर का वात ही ज्यादा प्रभावित होता है।
0: वात के बारे में जैसे मैंने आपको कहा कि वात सबसे शरारती है इन तीनों दोषों में, और
1: इसको
0: इसके
1: मौका चाहिए, ये शरारत कर देता है।
0: इसके साथ प्रॉब्लम क्या है कि जैसे घर का बच्चा होता है ना जी, तो घर का पूरा माहौल घर के बच्चे के हिसाब से ढला होता है, वो सो रखा है तो सब शांत रहते हैं,
1: हाँ, सब अपना अपना काम
0: हाँ, तो
1: करते
0: कहीं वो डिस्टर्ब ना हो जाए,
1: हैं।
0: तो वो वात शक्तिशाली, वो कहते हैं ना कि पित्ता पंगु कफ पंगु पंख वो मल धातवा वायुना
1: वाह,
0: यत्र नियंते गच्छन्ति तत्र
1: क्या
0: मेघवत्,
1: बात है।
0: कि पित्त हो गया कफ हो गया सभी धातु मलमूत्र जो है सभी पंगु हैं, वायुना यत्र नियंते यानी वायु की जहां इच्छा हो गई गच्छन्ति तत्र मेघवत, मेघ वहीं जाएंगे,
1: हाँ
0: तो शरीर में वात की भी वही एक पोजीशन है कि अगर
1: जी
0: वात
1: जी जी
0: दुष्ट हो गया तो वो दूसरों को भी अपने नॉर्मल पोजीशन में रहने नहीं देगा, क्योंकि वो गति करता है, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाता है, इसलिए वो दूसरों को भी डिस्टर्ब करता है।
1: तो
0: तो
1: डॉक्टर साहब, आपने ये हमें बताया कि वात आमतौर से शरारती होता है,
0: जी
1: और इसकी शरारत को अगर काबू नहीं किया गया तो शरीर के किसी हिस्से में पहुंचकर
0: जी
1: वहां आपके लिए समस्या पैदा कर सकता है,
0: बिल्कुल,
1: और जो बाकी दोष हैं उन्हें भी डिस्टर्ब कर देता है।
0: उनको भी डिस्टर्ब कर देता है, उनके साथ मिलके उनके स्थान प्रदेश में जहां उनके अधिष्ठान है वहां भी डिस्टरबेंस कर सकता है। तो इसलिए वात पित्त और कफ के बारे में मैं ये कहूंगा कि जब आपके शरीर में नमनेस पेन इस तरह के सिम्टम्स आने शुरू हो जाएं, टिंगलिंग सेंसेशन, तो आप समझ लिए आपका तो शरीर का वात दुष्ट हो रहा है, बेलोटमेंट एब्डोमिनल डिस्टेंशन गैसियस बर्ब्स ये ज्यादा हो रहे हैं, यानी
1: तो उस दौरान किसी अच्छे आयुर्वेदाचार्य को दिखाकर,
0: आयुर्वेदाचार्य के पास जाइए और आयुर्वेदाचार्य जी से रिक्वेस्ट कीजिए कि सर अगर संभव है, अगर बीमारी अभी व्याधि अवस्था में नहीं पहुंची है, अभी ये मेरी जो बीमारी है

0: अभी दोषिक, इसीलिए आचार्य सुश्रुत ने षटक्रिय काल में संचय प्रकोप प्रसार ये तीन स्टेज को कहा है कि ये दोष प्रत्यनिक है, यहाँ सिर्फ दोष तक है। फिर उसके बाद उन्होंने आगे की स्टेज बताई, व्यक्ति भेद जो उन्होंने आगे की स्टेज बताई है, है ना, स्थान संचय व्यक्ति और भेद जो बीमारी की अवस्था है। अगर ये शुरुआती अवस्था है, प्रॉब्लम हो रही है, तो आप कहिए सर मुझे लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन बता दीजिए और डाइट का बता दीजिए, क्योंकि ये एक सबसे बड़ा ट्रीटमेंट है।
1: लाइफस्टाइल से डॉक्टर साहब मुझे याद आया, आजकल बहुत सारे लाइफस्टाइल ट्रेंड्स चल रहे हैं
0: जी,
1: जैसे जिम जाना, सैलून में मेकअप के लिए जाना, बहुत सारा डांस करना लगातार, अलग अलग तरह के डांसेस करने
0: जी,
1: और बहुत सारा पसीना बहाना। और पीछे कुछ केसेस ऐसे आए जहां पर बहुत सारी फिजिकल एग्जर्शन की वजह से छोटी उम्र में ही किसी ने प्राण त्याग दिए। तो ये बहुत सारी चीजें आई, वहां से बहुत चीजें निकल कर आई कि टू मच ऑफ एवरीथिंग इज बैड। तो मुझे ये बताइए कि लाइफस्टाइल के जो ट्रेंड्स आज के दौर में बने हैं, जैसे गेहूं नहीं खाना, जैसे केवल जूस पीना, जैसे चीनी नहीं खानी, नमक नहीं खाना, इस तरह की बहुत सारी बातें, मुझे ये बताइए जो लाइफस्टाइल ये ट्रेंड्स बने हैं, क्या इनका असर हमारे इन दोषों पर पड़ता है, और जब पड़ता है तो क्या होता है?
0: बहुत ही आपने गूढ़ प्रश्न पूछा है, ऐसा प्रश्न पूछा है जो लोगों को एक पैनिक में जाने से बचा सकता है। दोष हमारे शरीर को धारण करते हैं और हमारे द्वारा की हुई कोई भी गतिविधि उनको अफेक्ट करेगी। फॉर एग्जाम्पल, आजकल दो तीन ट्रेंड्स बड़े चल रहे हैं, जिम कल्चर, डांसिंग कल्चर। जिम कल्चर और डांसिंग कल्चर, मेरी दृष्टि में, मैं किसी को हर्ट नहीं करना चाहता, बट ये किसी भी दृष्टि से स्वास्थ्य के लिए हितकर नहीं है। आयुर्वेद के अनुसार अर्धशक्ति ही व्यायाम कहा गया है, यानी आप तब तक व्यायाम कर रहे हैं जब आपको पसीना आना लग जाए और जब आपके सांस फूलने शुरू हो तब आपको रुक जाना चाहिए,
1: जितना आपका शरीर झेल सकता है
0: जी, क्योंकि स्वस्थ शरीर के लिए और दोषों की साम्य अवस्था बनाए रखने के लिए इतना व्यायाम आपके लिए सफिशियंट है। लेकिन जिम में जिस तरह से लोग एक पर्टिकुलर शेप को पाने के लिए और जिस तरह से ये
1: जुनून सवार होता है,
0: बिल्कुल डांस क्लासेस में जा रहे हैं,
1: सिक्स पैक
0: का वो हो गया, तो आप देखिए ना सप्त धातु वाला ट्रेंड है, तो सप्त धातु में उत्तरोत्तर धातु का निर्माण हो रहा है, रस से रक्त, रक्त से मांस, मांस से मेद, मेद से अस्थि, मज्जा, शुक्र, इस तरह से हो रहा है। अभी क्या हो रहा है, आप प्रोटीन इंटेक ज्यादा कीजिए, सॉल्ट रेस्ट्रिक्ट कीजिए, शुगर रेस्ट्रिक्ट कीजिए, आपने षड्रसात्मक आहार का कॉन्सेप्ट ही चेंज कर दिया, तो उसका जो धातु निर्माण हो रहा है वो भी दुष्ट धातु निर्माण हो रहा है, और आपने सारा फोकस रख दिया मांस पे, मेद से आपने एक तरह की दुश्मनी मोल ले ली है। तो जब हमारे नए बच्चे आ रहे हैं, इनमें स्ट्रेंथ है, स्टेमिना है, लेकिन इम्यूनिटी नहीं है, That is why they are collapsing.
1: और इम्यूनिटी का ही चक्कर है सारे।
0: और हमें पता है कि कोविड के दौरान वही लोग सर्वाइव कर पाए जिनकी इम्यूनिटी अच्छी थी,
1: प्रतिरोधक क्षमता जो है।
0: तो स्ट्रेंथ और स्टेमिना भी ठीक है, आपने कौन सा जाके युद्ध लड़ना है, कहीं आपने स्वस्थ शरीर के साथ रहना है ताकि आप लॉन्गेविटी को एंजॉय कर सकें। अपने रूटीन स्पोर्ट्स एक्टिविटीज कीजिए, बैडमिंटन खेलिए, फुटबॉल खेलिए।
1: एक सामान्य व्यक्ति के लिए हर रोज एक्सरसाइज, जिसमें सब जो वो करता है
0: जी,
1: किसी पर्टिकुलर एरिया के लिए नहीं कह रहा हूँ, एक सामान्य व्यक्ति के लिए कितनी एक्सरसाइज काफी सफिशिएंट है, अगर वो खिलाड़ी नहीं है?
0: अगर वो खिलाड़ी नहीं है, आर्मी मैन नहीं है, डिफेंस फोर्सेस में नहीं है, तो उसको उतना ही व्यायाम करना चाहिए जितने में उसको पसीना आ जाए। जब पसीना आ जाए उसको रुक जाना चाहिए,
1: या थोड़ा सा थक जाए,
0: या जब थोड़ा उसको थकान या सांस फूलने लगे उसको वहीं पर रुक जाना चाहिए, उसके शरीर की उतना बहुत है, इसी से उसका अग्निदीपन रहेगा और दोष साम्यवस्था में रहेंगे, इससे अधिक
1: दोष बैलेंस में रहेंगे,
0: जो करेगा उससे वात का प्रकोप होगा,
1: और बल्कि जो वो ऐसा करेगा तो उसका फायदा होगा, उसको
0: निसंदेह उसका फायदा होगा, उसकी अग्नि अच्छी होगी, उसके धातुओं का निर्माण अच्छा होगा, वो स्वस्थ शरीर। देखो श्रृंगार तो हमारी माताओं बहनों का उनका अधिकार है और प्रत्येक व्यक्ति चाहता है कि वो अच्छा दिखे, परंतु सैलून की आड़ में जो केमिकल्स लगातार चल रहे हैं या
1: धड़ल्ले से इस्तेमाल
0: थर्मल थेरेपी हो रही है, तो बेसिकली उन सभी का उपयोग हमारी स्किन के ऊपर ही हो रहा है, और स्किन पे भी हमारे दोषों का निवास है, रस धातु का स्थान ही आपका स्किन कहा गया है, तो इसके कारण हम देख रहे हैं कि कितने तरह की एक्नी जैसी प्रॉब्लम, स्किन डिसऑर्डर्स प्रॉब्लम हो रही है, स्किन कैंसर जो है इज इंक्रीजिंग। अभी एक स्टडी आई है,
1: लगातार इस्तेमाल होता
0: है, एक्सेस यूज ऑफ सनस्क्रीन ने भी जो है स्किन कैंसर्स के केसेस को बढ़ाया है। तो आप लगातार केमिकल्स को अपने ऊपर मत यूज होने दीजिए, वंस अ व्हाइल एक्सेप्शनली कभी अगर आपको करना पड़ता तो ठीक है, बट
1: किसी खास मौके के लिए
0: डेली का सैलून, जिम और डांस का ये जो कल्चर है जिसमें डांस के नाम पर वो काइंड ऑफ उछलना कूदना ही है, कोई डांस भरतनाट्यम और कथक जैसा क्लासिक साइंटिफिक डांस तो नहीं है
1: जो हमारी परंपराओं से जुड़ा,
0: हाँ जो परंपराओं से जुड़ा हुआ है, तो बेसिक ये दोषों का ही तो प्रकोप कर रहा है। अगर आप सैलून जा रहे हैं तो केमिकल्स भी आपके त्वचा के माध्यम से दोषों को दुष्ट कर रहे हैं।
1: अच्छा, गेहूं के बारे में भी आजकल एक ट्रेंड चल पड़ा है कि गेहूं नहीं खानी है।
0: गेहूं के बारे में मैं देखता हूं कि ये इसकी शुरुआत हुई व्हीट एलर्जी से, तो व्हीट एलर्जी से होते होते वो आ गया कि गेहूं जो है बाहर से आया हुआ है और इसलिए इसका सेवन कम से कम किया जाए। ऐसा नहीं है, गेहूं का जिक्र चरक संहिता में किया गया है और गेहूं अच्छा कहा गया है, वृष्य है, बल्य है, शरीर

0: को बल प्रदान करता है, तो गेहूं एक अच्छा अन्न है,
1: तो
0: उसका
1: दिन में
0: सेवन
1: इसकी
0: करें,
1: कितनी रोटी काफी है?
0: ये फिर वही है,
1: अच्छा, ये आपने कहा
0: अग्नि
1: है,
0: अग्नि
1: हाँ,
0: पर निर्भर करता है
1: अग्नि
0: कि
1: पर
0: कौन कितना उसका
1: पाचन
0: सेवन
1: क्रिया
0: करे,
1: कैसी
0: लेकिन
1: है?
0: गेहूं एक अच्छा आहार है। जैसे कुछ दो तीन ट्रेंड में आपको और बताता हूँ, जैसे अभी सरकार ने एक ट्रेंड चलाया है मिलेट्स के विषय में, मिलेट्स जो है लघु होते हैं गुण में, इसलिए आप मिलेट्स का सेवन कर सकते हैं, उनको दोनों तरीके से, ये कमर्शियली भी हमारे लिए यूजफुल होते हैं और दूसरा ये है कि इनको उगाना भी सरल है, तो इस वजह से फ्यूचरिस्टिक मुझे लगता है ये आइडिया है कि आने वाले समय में मिलेट्स को, क्योंकि उगाना आसान है इसलिए उसकी अवेलेबिलिटी भी इजिली रहेगी, आने वाले समय में मिलेट्स आसानी से मिलेंगे और मिलेट्स खाने चाहिए लेकिन सीमित मात्रा में। और जैसे हमारे कुछ जगह पे मक्के की रोटी सरसों का साग एक बड़ा अच्छा ट्रेंड है,
1: जी, तो पंजाब
0: और
1: की खास डिश है।
0: जी, लेकिन मेरा बस वही एक निवेदन है कि हर बार जो ट्रेंड बने आवश्यक नहीं कि वो देशकाल परिस्थिति के अनुसार यूजफुल हो, इम्प्लीमेंटेबल हो। जब ये आया होगा ट्रेंड तब का मुझे नहीं ज्ञान है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि सरसों जो है पित्तवर्धक है, पित्त का प्रकोप करता है, इसलिए अति मात्रा में सेवन ना करें, और जब भी आप खाएं तो उसमें घृत की मात्रा अवश्य लें।
1: तो एक कटोरी में कितना घी होना चाहिए एक सरसों
0: एक
1: के
0: से
1: साग में?
0: हाँ एक कटोरी एक तो एक से दो चम्मच उसमें घी अवश्य लें। उसको घी इसलिए लेना क्योंकि वो पित्त प्रकोप करेगा और घी पित्त का शमन करता है, परंतु फिर मैं कहूंगा कि सरसों का साग अत्यधिक मात्रा में ना लें। दूसरा, कुछ राज्यों में तीखा खाने की एक परंपरा है, ट्रेंड है, तो वहां पे लाल मिर्ची का उपयोग बहुत ज्यादा होता है,
1: राजस्थान में भी मिर्ची का उपयोग होता है, बिहार में
0: राजस्थान
1: भी होता
0: बिहार
1: है,
0: में महाराष्ट्र में मैंने
1: झारखंड
0: कुछ
1: में।
0: ऐसी जगह देखा है,
1: जी
0: तो
1: जी
0: लाल मिर्ची का अत्यधिक उपयोग आपके जीआई के लिए अच्छा नहीं है, स्टमक के लिए अच्छा नहीं है,
1: मतलब सेवन करें लेकिन एक सीमित मात्रा में।
0: सीमित मात्रा में, क्योंकि षड्रसात्मक कहा है उन्होंने कि आपका भोजन षड्रसात्मक, मधुर अम्ल कटु तिक्त लवण कषाय, सभी रस उसमें इंक्लूड होने चाहिए, लेकिन अति मात्रा में कोई भी रस नहीं होना चाहिए, नहीं तो फिर वो दोषों को प्रकोपित करता है।
1: डॉक्टर श्रीदेव, आपने आज हमें त्रिदोषों के बारे में बताया, वात कफ और पित्त के बारे में, कि इनका बैलेंस होना शरीर के लिए कितना आवश्यक है। अगर ये बिगड़ जाते हैं तो ये हमारे लिए स्वास्थ्य पर गलत प्रभाव डाल सकते हैं, और इन्हें बैलेंस करने के लिए हमें किन किन बातों का ख्याल रखना है ये सब आपने बताया, और हमारी दिनचर्या कैसी होनी चाहिए उसके बारे में आपने बताया, जिससे अगर हम अपनी दिनचर्या ठीक कर लें तो ये दोष जो हैं वो सामान्य रूप से शरीर में काम करते रहते हैं। अब प्रोग्राम का समय लगभग समाप्ति की ओर है, जाने से पहले कोई संदेश देना चाहें?
0: मेरा बस यही संदेश है सभी से कि आप जो भी करें अपने स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए करें जो स्वास्थ्य के लिए हितकर है, और अगर इसमें किसी प्रकार का कोई कन्फ्यूज़न आपको हो तो आपके जो नियर बाय वैद्य हैं उनसे इस बारे में एक डिटेल अंडरस्टैंडिंग डेवलप करें कि आपकी दिनचर्या और ऋतुचर्या कैसी होनी चाहिए, और मेरी यही कोशिश है कि आपको दवाइयाँ खाने की ज़रूरत ना पड़े, सिर्फ लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन से ही आप स्वस्थ रहें और खुश रहें हमेशा।
1: डॉक्टर श्रीदेव फोंदनी, आप हमारे प्रोग्राम संजीवनी में आए, आपने बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी दी, त्रिदोषों के बारे में आपने बताया। इस प्रोग्राम में पधारने के लिए हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं।
0: मुझे बुलाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका।
1: इस प्रोग्राम की प्रस्तुतकर्ता मीनाक्षी कालिया, अब आपका साथी अनिल पुंज आपसे अनुमति चाहता है इन दुआओं के साथ कि स्वस्थ रहें, खुश रहें, आबाद रहें, मुस्कुराते रहें। नमस्कार।

गया है विविध भारती का चंडीगढ़ केंद्र एफएम 107.2 मेगाहर्ट्ज पर। दोपहर के 12 बजने को ही कुछ ही पलों में हम आपको लिए चलेंगे अपने दिल्ली केंद्र हिंदी में समाचारों के लिए। बस थोड़ा सा इंतजार कीजिए।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं फरहत नाज। जापान एशियाई खेलों में भारत ने आज तीरंदाजी में 2 और निशानेबाजी में 1 स्वर्ण सहित कुल 3 स्वर्ण पदक जीत लिए हैं। निशानेबाजी में नीरू ढांडा और काइनन चेनाई की भारतीय जोड़ी ने ट्रैप मिक्स टीम स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतकर इतिहास रच दिया है। तीरंदाजी में साहिल जाधव और चिकिता तनिपार्थी की मिक्सड कंपाउंड टीम ने फाइनल में शूट ऑफ में कोरिया को हराकर स्वर्ण पदक अपने नाम किया। इस जीत के साथ भारत ने 2028 ओलंपिक के लिए कोटा भी हासिल कर लिया है। उधर ज्योति सुरेखा वेन्नम, चिकिता तनिपार्थी और प्रतिका प्रदीप की महिला कंपाउंड टीम ने भी आज स्वर्ण पदक हासिल किया। टीम ने फाइनल में चीन को हराया। भारत ने 2023 हांगचांग एशियाई खेलों में भी महिला मुक्केबाजी के 60 किलोग्राम भार वर्ग में प्रिया घंगास ने आज कांस्य पदक जीता। पदक तालिका में भारत 9 स्वर्ण, 21 रजत और 27 कांस्य सहित कुल 57 पदकों के साथ 8वें स्थान पर पहुंच गया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, गृहमंत्री अमित शाह और खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने स्वर्ण पदक जीतने पर खिलाड़ियों को बधाई दी है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत और अमरीका के आर्थिक संबंध लगातार मजबूत हो रहे हैं। अमरीका में एक गोलमेज बैठक में श्री गोयल ने भारत के बढ़ते औद्योगिक आधार और कुशल कार्यबल का उल्लेख किया। उन्होंने अमेरिका की कंपनियों से भारत में निवेश बढ़ाने, छोटे और मध्यम उद्योगों के साथ साझेदारी करने और आधुनिक विनिर्माण में मिलकर निवेश करने का आग्रह किया। श्री गोयल ने कहा कि दोनों देशों के बीच सहयोग से मजबूत आपूर्ति श्रृंखला विकसित होगी और आर्थिक विकास के नए अवसर पैदा होंगे। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल आज अमरीका में G20 देशों के मंत्रियों के साथ बैठक में शामिल होंगे। ये बैठक अमरीका के व्यापार प्रतिनिधि जेमिसन ग्रीव के निमंत्रण पर हो रही है। यात्रा के दौरान श्री गोयल अपने समकक्ष के साथ भारत अमेरिका द्विपक्षीय व्यापार समझौते पर बातचीत को आगे बढ़ाएंगे। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कतर के व्यापारिक संघ से भारत में व्यापार और निवेश में साझेदारी की संभावनाओं को सक्रिय रूप से तलाशने की अपील की। उन्होंने द्विपक्षीय आर्थिक संबंधों को और मजबूत करने का भी आह्वान किया। बातचीत के दौरान वित्त मंत्री ने दोनों देशों में उभरते आर्थिक अवसरों पर चर्चा की। दोहा में कतर व्यापारिक संघ की बिजनेस राउंड टेबल बैठक में उन्होंने भारत की मजबूत आर्थिक वृद्धि, बढ़ते निवेश और वित्त वर्ष 2025-26 में 94 अरब 50 करोड़ डॉलर से अधिक के रिकॉर्ड सकल प्रत्यक्ष विदेशी निवेश का उल्लेख किया। सरकार ने यात्री वाहनों के लिए नया कॉरपोरेट एवरेज फ्यूल इकोनॉमी नियम अधिसूचित किया है। ये किसी वाहन कंपनी द्वारा बनाए गए सभी यात्री वाहनों की औसत ईंधन खपत और दक्षता से जुड़ा मानक है। ये नए नियम मौजूदा कॉरपोरेट एवरेज फ्यूल इकोनॉमी का स्थान लेंगे। नए नियम अगले वर्ष 1 अप्रैल से लागू होंगे और 31 मार्च 2032 तक प्रभावी रहेंगे। ये भारत में बिक्री के लिए बनाए या आयात किए जाने वाले नए यात्री वाहनों पर लागू होंगे। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि सही और अद्यतन मतदाता सूची लोकतंत्र की आत्मा है। आज नई दिल्ली में संवाददाताओं से बातचीत में श्री चौहान ने मतदाता सूची में अनियमितताओं को लेकर विपक्ष के आरोपों पर सवाल उठाया।
1: और वोटर लिस्ट में गलत नाम जुड़े तो लोकतंत्र ही मर जाएगा। आपको क्या आपत्ति अगर कोई इस दुनिया में है ही नहीं उसका नाम वोटर लिस्ट से काट दिया जाए? कहीं डुप्लीकेशन है गांव में भी नाम, शहर में भी नाम, अगर नाम एक जगह कट जाए तो आपको दिक्कत क्या है? कोई देश का नागरिक ही नहीं है तो उसका नाम वोटर लिस्ट में क्यों जोड़ना चाहिए? पवित्र लोकतंत्र के लिए वोटर लिस्ट शुद्ध होना ही चाहिए।
0: जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों ने बडगाम जिले में एक आतंकवादी को मार गिराया है। सेना, जम्मू कश्मीर पुलिस और सीआरपीएफ ने संयुक्त रूप से यह अभियान चलाया। आतंकवादी की पहचान पाकिस्तान स्थित लश्करे तैयबा के आतंकी मोहम्मद आसिफ उर्फ हाशिम मूसा के रूप में हुई है। श्रीनगर में सेना के एक प्रवक्ता ने बताया कि इलाके में आतंकवादियों की मौजूदगी की सूचना मिलने पर रात में अभियान शुरू किया गया था। पंजाब पुलिस ने अमृतसर जिले में 2 अभियानों में 8 लोगों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने इनके पास से AK-47 और AK-56 राइफलें, 13 पिस्तौल, कारतूस और 13 किलोग्राम से अधिक हेरोइन बरामद की है। गृहमंत्री अमित शाह आज जालंधर से नशा मुक्त पंजाब यात्राओं को रवाना करेंगे।

0: करेंगे। इन यात्राओं का उद्देश्य पंजाब में मादक पदार्थों के खिलाफ अभियान को जन आंदोलन में बदलना है। घरेलू शेयर बाजार के संविधि सूचकांक में आज मिला जुला रुख दर्ज किया गया। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 212 अंक बढ़कर 72,741 जबकि निफ्टी 8 अंक की गिरावट के साथ 22,708 पर था। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: अपने रेडियो सेट पर आपने ट्यून किया है विविध भारती का चंडीगढ़ केंद्र एफएम 107.2 मेगाहर्ट्ज पर। 12:05 हुए हैं। अगला प्रोग्राम है यादों की महफिल, सजाएंगे कुछ ही पलों में।
2: ये यादों की महफिल कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है, आप सभी को हमारा नमस्कार। साथियों, आज यादों की ये महफिल सजी है मशहूर पार्श्व गायक शांतनु मुखर्जी यानी के शान के शानदार गीतों से। आज उनका जन्मदिन है। विविध भारती परिवार और आप सभी की तरफ से हम उन्हें देते हैं जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आइए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं इस गीत के साथ। गीतकार हैं समीर अंजान, संगीत है मोंटी शर्मा का और फिल्म का नाम है सांवरिया।

0: तीन अक्टूबर विविध भारती की सालगिरह का जश्न। विविध भारती के लाइव ट्रांसमिशन में आ रहे हैं जाने माने संगीतकार अन्नू मलिक।
1: किसका है ये तुमको इंतजार, मैं हूं ना।
0: दिन में 12 बजे से 2 बजे के बीच
2: अगर तुम मिल जाओ।
0: अन्नू मलिक की बातें, गाने और कुछ दिलचस्प कहानियां। 3 अक्टूबर विविध भारती की सालगिरह का जश्न।
3: बंदा ये बिंदास है, बंदा ये बिंदास है।
4: आइए सुनिए अगला गीत शान और कैलाश खेर की आवाजों में। गीतकार हैं प्रसून जोशी, संगीतकार हैं जतिन ललित और फिल्म का नाम है फना।

गायक शांतनु मुखर्जी, 30 सितंबर 1972 को खंडवा एमपी में उनका जन्म हुआ था। उनके दादाजी एक जाने माने गीतकार थे और पिता मानस मुखर्जी एक मशहूर संगीत निर्देशक थे और उनकी बहन सागरिका भी एक बेहतरीन गायिका हैं। साथियों, संगीत के माहौल में पले बड़े शान ने मात्र 4 साल की उम्र से विज्ञापन गीत यानी जिंगल्स गाना शुरू कर दिया था और उनके एल्बम तन्हा दिल और भूल जा बहुत हिट हुए थे। हिंदी के अलावा शान ने मराठी, बंगाली, उर्दू, तेलुगु और कन्नड़ भाषा में भी गीत गाए हैं। उन्होंने कई सिंगिंग रियलिटी शोज को भी होस्ट किया है। आइए सुनते हैं उन्हीं की आवाज़ में अगला गीत। साथ में है सुनिधि चौहान भी, नगमा निगार है जावेद अख्तर, धुन है विशाल शेखर की, फिल्म का नाम है तारा रंपम।

0: हम मनाएंगे जश्न 3 अक्टूबर विविध भारती की सालगिरह पर। जाने माने फिल्म निर्देशक तिग्मांशु धूलिया आएंगे विविध भारती के सजीव प्रसारण स्टूडियो में।
1: विविध भारती एक ऐसा चैनल है जहां हर दौर के गाने और हर तरह के कार्यक्रम आप सुन सकते हैं। 3 अक्टूबर विविध भारती चैनल अपने 70 बरस पूरे कर रहा है। मैं फिल्मकार तिग्मांशु धूलिया अपनी फिल्मी यात्रा के साथ सजीव प्रसारण में आपसे मिलने आऊंगा।
0: कुछ दिलचस्प किस्से, कुछ खुशगवार बातें,
2: आंखें भी होती हैं दिल की सुबह।
0: तो आप सब जुड़िए और सुनिए दिन में 2:30 बजे से विविध भारती।
3: साथियों, गायक शान को अपने शानदार गायन के लिए 2 बार फिल्म फेयर अवार्ड, 3 बार अंतर्राष्ट्रीय भारतीय फिल्म एकेडमी पुरस्कार और कई अन्य सम्मान मिल चुके हैं। यादों की महफिल कार्यक्रम का अगला गीत सुनिए शान और अलका याग्निक की आवाज़ों में। गीत को लिखा है जावेद अख्तर ने, संगीत है निखिल विनय का और फिल्म का नाम है कल हो ना हो।

0: वो बताएंगे फिल्म की शूटिंग की कहानियाँ, सृजन की बातें, साझा करेंगे सिनेमा की बातें, अपने जीवन के कुछ दिलचस्प किस्से।
1: वो इवेंट जो मेरे साथ में हुआ कि मेरी कार वहाँ पे अचानक से रुक जाती है और मुझे पता भी नहीं होता कि वो जगह कौन सी है, दरवाजा खोलता हूँ तो खेची धाम के गेट के नीचे खुलता है, वो एक इवेंट मेरे दिमाग में रह जाता है।
0: वो है हनुमान अंश के निर्देशक विशाल चतुर्वेदी।
1: और वो इवेंट आज मुझे 20 साल के बाद में, एग्जैक्टली आफ्टर 20 इयर्स आई एम मेकिंग द फिल्म एंड द

0: success of the film is probably, I think, was destined or decided by him. तो इसको लीला बोलते हैं।
1: आज के मेहमान 7 अक्टूबर शाम 4 बजे विविध भारती पर।

0: जाने माने संगीतकार अनु मलिक।
1: किसका है ये तुमको इंतजार, मैं हूं ना।
0: दिन में 12 बजे से 2 बजे के बीच
2: अगर तुम मिल जाओ।
0: अनु मलिक की बातें, गाने और कुछ दिलचस्प कहानियां। 3 अक्टूबर विविध भारती की सालगिरह का जश्न।
3: बंदा ये बिंदास है, बंदा ये बिंदास है।
4: अगला गीत सुनिए शान और श्रिया घोषाल की आवाजों में। इस गीत के बोल लिखे हैं समीर ने, तर्ज है नदीम श्रावण की, फिल्म का नाम है तुम सा नहीं देखा।

0: एक विलक्षण गायक।
1: अरे ओरे हे।
0: संगीत के साधक।
1: ओरे पथिकवा मत जइयो तू वृंदावन की।
0: उनके सुरों में भक्ति की निर्मलता है, संगीत की गहराई है, भावों में मिठास है।
1: राम नाम घन श्याम नाम शिव नाम सुमिर दिन रात।
0: वो हैं संगीतकार, गायक और अभिनेता शेखर सेन।
2: बहुत कम लोग ये जानते हैं कि जो मीरा के भजन इस समय हम लोग सुनते हैं, अभी मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों ना कोई, ये जो भाषा है ये सधुखड़ी भाषा है। मीराबाई ने जो भी लिखा वो सारे भजन जो थे वो मेवाड़ की भाषा में।
0: पहली अक्टूबर से हम शुरू कर रहे हैं नई श्रृंखला शताब्दी की भक्ति रचनाएं। सुनिए संगीत सरिता सुबह और शाम 6:45 सिर्फ विविध भारती पर।
3: साथियों, अगला गीत है शान और श्वेता पंडित की आवाजों में। गीतकार हैं समीर, संगीतकार हैं शंकर एहसान लोए और फिल्म का नाम है नई पड़ोसन।

0: तीन अक्टूबर विविध भारती की सालगिरह का जश्न। विविध भारती के लाइव ट्रांसमिशन में आ रहे हैं जाने माने संगीतकार अन्नू मलिक।
1: किसका है ये तुमको इंतजार, मैं हूं ना।
0: दिन में 12 बजे से 2 बजे के बीच
2: अगर तुम मिल जाओ।
0: अन्नू मलिक की बातें, गाने और कुछ दिलचस्प कहानियां। 3 अक्टूबर विविध भारती की सालगिरह का जश्न।
3: बंदा ये बिंदास है, बंदा ये बिंदास है।
4: एक विलक्षण कथाकार जिनकी लेखनी में गहरी संवेदना है, विचार है, जीवन के अनुभव हैं। वो हैं जाने माने कहानीकार, उपन्यासकार और अनुवादक मनोज रूपड़ा।
5: मैंने एक लंबा लेख लिखा इन सब चीजों को, उसका पहल में वो लेख छपा था, कहानी की काया और फिल्म की छाया। उसमें मैंने एशियन फिल्मों पर लिखा और उसमें किस तरह से कहानियों को फिर से वापस स्थापित किया गया, इस बात को रेखांकित किया।
4: आज के मेहमान 30 सितंबर शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
6: कार्यक्रम का अगला शानदार गीत है शान और श्रेया घोषाल की मिली जुली आवाजों में। गीत रचना स्वानंद किरकिरे की, संगीत है शांतनु मोइत्रा का और फिल्म का नाम है पीके।

0: हम मनाएंगे जश्न 3 अक्टूबर विविध भारती की सालगिरह पर। जाने माने फिल्म निर्देशक तिग्मांशु धूलिया आएंगे विविध भारती के सजीव प्रसारण स्टूडियो में।
1: विविध भारती एक ऐसा चैनल है जहां हर दौर के गाने और हर तरह के कार्यक्रम आप सुन सकते हैं। 3 अक्टूबर विविध भारती चैनल अपने 70 बरस पूरे कर रहा है। मैं फिल्मकार तिग्मांशु धूलिया अपनी फिल्मी यात्रा के साथ सजीव प्रसारण में आपसे मिलने आऊंगा।
0: कुछ दिलचस्प किस्से, कुछ खुशगवार बातें,
2: आंखें भी होती हैं दिल की सुबह।
0: तो आप सब जुड़िए और सुनिए दिन में 2:30 बजे से विविध भारती।
3: अगला गीत सुनिए शान की आवाज में। गीतकार है विशाल ददलानी, संगीत है विशाल शेखर का, फिल्म का नाम है झनकार बीट्स।

कार्यक्रम की अगली और अंतिम पेशकश सुनिए श्रेया घोषाल और शान की आवाजों में। गीतकार हैं अरुण भैरव, संगीत है साजिद वाजिद का, फिल्म का नाम है वांटेड।

0: तीन अक्टूबर विविध भारती की सालगिरह का जश्न। विविध भारती के लाइव ट्रांसमिशन में आ रहे हैं जाने माने संगीतकार अन्नू मलिक।
1: किसका है ये तुमको इंतजार में हूं ना।
0: दिन में 12 बजे से 2 बजे के बीच
2: अगर तुम मिल जाओ।
0: अन्नू मलिक की बातें, गाने और कुछ दिलचस्प कहानियां। 3 अक्टूबर विविध भारती की सालगिरह का जश्न।
3: बंदा ये बिंदास है, बंदा ये बिंदास है।
4: साथियों, आज यादों की महफिल सजी थी मशहूर गायक शान के शानदार गीतों से। अभी आप सुन रहे थे विविध भारती से कार्यक्रम यादों की महफिल।
5: हम सबका यही सपना स्वच्छ भारत हो अपना। स्वच्छता ही सेवा है।

आइए अब आपको जानकारी दे दें हमारे बाकी के कार्यक्रमों की। प्रादेशिक समाचार आप सुनेंगे अब से कुछ ही देर में 1:05 पर पहले हिंदी में, उसके बाद 1:10 पर पंजाबी में। पंजाबी में प्रादेशिक समाचार हम रिले करेंगे अपने जालंधर केंद्र से। यही क्रम रहता है 6:10 पर पहले हिंदी में, उसके बाद 6:20 पर पंजाबी में। अपने दिल्ली केंद्र से हम समाचार रिले करते हैं 2:15 पर, 5:00, 6:00, 8:45 पर समाचार संध्या और 11:00। स्पॉन्सर प्रोग्राम लम्हे 5:20 पर और 5:30 स्पॉन्सर प्रोग्राम उमंग। 6:30 पर सुनिए पंजाबी गीतों का कार्यक्रम। 7:45 पर मुख्य प्रादेशिक समाचार होते हैं और इनके बाद कुछ पंजाबी गाने आप सुनते हैं। 10:30 पर मुख्य प्रादेशिक समाचारों के बाद सुरसांझ कार्यक्रम में आपके लिए पंजाबी गीत पेश किए जाएंगे।

विविध भारती मुंबई से जो प्रोग्राम हम रिले करेंगे, उन प्रोग्रामों में दोपहर 1:30 पर सुरीला सफर, 2 प्रोग्राम त्रिवेणी, 2:30 सदाबहार नगमे, 3 प्रोग्राम सखी सहेली,

टॉक शो पिटारा में शाम 4 बजे आज के मेहमान प्रोग्राम में हम आपकी मुलाकात करवा रहे हैं लेखक मनोज रुपड़ा से। शाम 7 बजे फौजी भाइयों के लिए जयमाला कार्यक्रम में फिल्मी गाने, रात 8 बजे प्रोग्राम हवा महल में एक प्रहसन आप सुनेंगे, महीने की आखिरी तारीख। फिल्मकार ऋषिकेश मुखर्जी पर केंद्रित है आज के फनकार प्रोग्राम। रात 9:30 बजे 10 बजे सुनिए प्रोग्राम छाया गीत। 8:15 पर प्रोग्राम चित्रलोक। 9 बजे आपके लिए। इन कार्यक्रमों के साथ साथ फिल्म संगीत आपके लिए पेश करेंगे दोपहर 1:15 पर, शाम 5:05 पर।

0: आप सुन रहे हैं विविध भारती का चंडीगढ़ केंद्र FM 107.2 MHz पर। 1:05 होने को हैं। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार, पहले हिंदी में हमारे केंद्र से, उसके बाद हम आपको लिए चलेंगे अपने जालंधर केंद्र 1:10 पर पंजाबी में प्रादेशिक समाचारों के लिए। तो पहले हिंदी में प्रादेशिक समाचार।
1: नमस्कार, ये आकाशवाणी चंडीगढ़ है। अब आप वैशाली चौधरी से प्रादेशिक समाचार सुनिए।

0: भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि सही और अद्यतन मतदाता सूची लोकतंत्र की आत्मा है। आज नई दिल्ली में संवाददाताओं से बातचीत में श्री चौहान ने कहा कि अगर मतदाता सूची में गलत या अपात्र नाम शामिल किए जाते हैं तो इससे चुनावी प्रक्रिया की सत्यनिष्ठा पर असर पड़ सकता है। उन्होंने मतदाता सूची में अनियमितताओं को लेकर विपक्ष के आरोपों पर सवाल उठाया। श्री चौहान ने कहा कि जिन लोगों का निधन हो गया है उनके नाम मतदाता सूची से हटाने में कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए।
1: शुद्ध वोटर लिस्ट लोकतंत्र की आत्मा है, और वोटर लिस्ट में गलत नाम जुड़े तो लोकतंत्र ही मर जाएगा। आपको क्या आपत्ति अगर कोई इस दुनिया में है ही नहीं उसका नाम वोटर लिस्ट से काट दिया जाए? कहीं डुप्लीकेशन है गांव में भी नाम, शहर में भी नाम, अगर नाम एक जगह कट जाए तो आपको दिक्कत क्या है? कोई देश का नागरिक ही नहीं है तो उसका नाम वोटर लिस्ट में क्यों जोड़ना चाहिए? पवित्र लोकतंत्र के लिए वोटर लिस्ट शुद्ध होना ही चाहिए।
0: मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने आज चंडीगढ़ में हरियाणा के अपने कर राजस्व को सुदृढ़ करना विषय पर आयोजित राष्ट्रीय सम्मेलन में शिरकत की। सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य विकसित हरियाणा 2047 के दृष्टिकोण के तहत राज्य के राजस्व ढांचे में सुधार करना और डेटा के माध्यम से कर प्रशासन को और अधिक कुशल बनाना है। सम्मेलन को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि मजबूत राजस्व व्यवस्था का अंतिम उद्देश्य जनता के जीवन स्तर को बेहतर बनाना और नागरिक केंद्रित सुविधाएं प्रदान करना है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार का लक्ष्य नागरिकों पर अतिरिक्त कर का बोझ डाले बिना हरियाणा के वित्तीय क्षमता को बढ़ाना है। उन्होंने बताया कि वित्त वर्ष 2026-27 के शुरुआती 5 महीनों में प्रदेश का राज्य वस्तु एवं सेवा कर संग्रह 29% बढ़कर 24,662 करोड़ रुपए पहुंच गया है, जो देश भर में सर्वाधिक वृद्धि है और राष्ट्रीय औसत से लगभग दोगुनी है। श्री नायब सिंह सैनी ने कर प्रशासन को पारदर्शी और आधुनिक बनाने के प्रयासों का उल्लेख करते हुए कहा कि पुराने कर विवादों के निपटारे के लिए हरियाणा एक बारगी व्यवस्थापन योजना 2026 लाई गई है, जिसका लाभ अब तक 1,15,000 से अधिक व्यापारी उठा चुके हैं। सरकार का लक्ष्य वर्ष 2030 तक कर राजस्व वृद्धि को 10% और 2047 तक 15% तक पहुँचाना है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कल पंचकुला से राज्य के सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स और कंटेंट क्रिएटर्स के दल को उत्तराखंड के लिए झंडे दिखाकर रवाना किया, साथ ही उत्तराखंड से आए दल का स्वागत भी किया। ये पहल सेवा संकल्प अभियान के तहत इन्फ्लुएंसर एक्सचेंज प्रोग्राम के रूप में आयोजित की गई है। इसके माध्यम से दोनों राज्यों के डिजिटल क्रिएटर्स पिछले 12 वर्षों में हुए विकास कार्यों और प्रमुख परियोजनाओं का अध्ययन कर उन्हें जनता तक पहुंचाएंगे। कल पंचकुला में भाजपा प्रदेश कार्यालय में ऋचा पाहवा ने भाजपा महिला मोर्चा के प्रदेशाध्यक्ष का पदभार ग्रहण किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि मातृशक्ति समाज की सबसे बड़ी ताकत है और ऋचा पाहवा के संगठनात्मक अनुभव से संगठन और मजबूत होगा। ऋचा पाहवा ने शीर्ष नेतृत्व का आभार व्यक्त करते हुए जिम्मेदारी को पूरी निष्ठा और समर्पण के साथ निभाने की बात कही। जींद में अतिरिक्त उपायुक्त एवं न्याय निर्णायक अधिकारी प्रदीप कुमार की अदालत ने खाद्य पदार्थों में मिलावट रोकने और शुद्ध सामग्री की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए सख्त रुख अपनाते हुए 33 खाद्य व्यवसायियों पर कुल 5,00,000 रुपए का जुर्माना लगाया है। उन्होंने बताया कि खाद्य नमूनों की जांच रिपोर्ट में खामियां पाई गई थीं। उन्होंने कहा कि आगामी त्योहारों दशहरा और दिवाली को देखते हुए जिले भर के दुकानों, होटलों, ढाबों और गोदामों में रोजाना औचक निरीक्षण अभियान चलाया जाएगा। साथ ही सभी कारोबारियों को बिना वैध लाइसेंस या पंजीकरण के व्यापार न करने तथा भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण के स्वच्छता व गुणवत्ता मानकों का कड़ाई से पालन करने के निर्देश जारी किए गए हैं। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार समाप्त होते हैं।

पर आपने ट्यून किया है विविध भारती का चंडीगढ़ केंद्र FM 107.2 MHz पर। अपने रेडियो सेट के साथ साथ इस समय आप हमें हमारी ऐप न्यूज़ ऑन AIR और प्रसार भारती की लाइव स्ट्रीमिंग पर भी सुन रहे हैं, और रेडियो पर हमारे कार्यक्रम आप हमारे कसौली ट्रांसमीटर से सुन रहे हैं। तो आइए, अब दोपहर के 1:15:45 हो चुके हैं। फिल्म संगीत आपके लिए पेश करते हैं, मिलकर आनंद लिया जाए कुछ फिल्मी गानों का। और ये पहला गाना है खुद गर्ज फिल्म से, मोहम्मद अजीज और साधना सरगम की आवाजों में ये गाना है, राजेश रोशन के संगीत में।

0: राणा पाइल्स हॉस्पिटल। कॉल करें 9814128667 पर और पाइल्स से मुक्ति पाएं।
1: फिल्म संगीत आप सुन रहे हैं विविध भारती चंडीगढ़ से अपने रेडियो सेट के साथ साथ। इस समय आप हमें हमारी ऐप न्यूज ऑन AIR और प्रसार भारती की लाइव स्ट्रीमिंग पर भी सुन रहे हैं। रेडियो पर आप हमारे कार्यक्रम हमारे कसौली ट्रांसमीटर से सुन रहे हैं। और फिल्म संगीत में अब अगले गाने की बारी है। सोनू निगम की आवाज़ में ये गाना है, ये फिल्म है और प्यार हो गया।

0: चंडीगढ़ केंद्र एफएम 107.2 मेगाहर्ट्ज़ पर।
1: घर का सपना हो, नई गाड़ी की ख्वाहिश या किसी जरूरत के लिए पैसे, SBI देता है बेहतरीन लोन ऑप्शंस, आकर्षक ब्याज दरों के साथ। होम, ऑटो, पर्सनल, पेंशन और गोल्ड लोन के लिए संपर्क करें अपनी नजदीकी शाखा से। SBI, द बैंकर टू एवरी इंडियन। नियम और शर्तें लागू। घर का सपना हो, नई गाड़ी की ख्वाहिश या किसी जरूरत के लिए पैसे, SBI देता है बेहतरीन लोन ऑप्शंस, आकर्षक ब्याज दरों के साथ। होम, ऑटो, पर्सनल, पेंशन और गोल्ड लोन के लिए संपर्क करें अपनी नजदीकी शाखा से। SBI, द बैंकर टू एवरी इंडियन। नियम और शर्तें लागू।
0: और आइए अब आपको लिए चलते हैं विविध भारती मुंबई अगले प्रोग्राम के लिए, जिसका नाम है सुरीला सफर।
2: हमारे एक साथी ने लिखा है कि ऋषिकेश मुखर्जी का सिनेमा इस बात का पुख्ता प्रमाण है कि मनोरंजन करने के लिए फूहड़ता का सहारा लेना जरूरी नहीं है। उनकी फिल्में शुद्ध, सात्विक और पूरे परिवार के साथ बैठकर देखने योग्य होती हैं। आज के युग में ऋषिदा की फिल्में एक ताज़ी हवा के झोंके की तरह है। और एक साथी ने लिखा है कि आज के गीत ऋषिकेश मुखर्जी की खूबसूरत फिल्मों से होंगे। इन गीतों में जिंदगी की सच्चाई, हंसी, खुशी, रिश्तों की मिठास, दोस्ती, आँखों को नम कर देने वाला एहसास होगा। ऋषिदा को हम नमन करते हैं। और एक साथी ने लिखा है कि प्रेम भी कितना अनोखा एहसास है, दो दिलों के बीच चाहे कितनी ही दीवारें हों, उसकी पुकार फिर भी सुनाई दे जाती है। चाहत का असर ऐसा होता है कि इंसान जमीन पर चलते हुए भी खुद को तारों के बीच महसूस करने लगता है, और तब दिल बार बार यही पूछता है, आखिर प्यार का ये राज है क्या। अच्छा जी, आज ऋषिकेश मुखर्जी की को याद करेंगे उनके फिल्मों के गानों से। उन्होंने कई पारिवारिक और सामाजिक फिल्मों को बनाया जो हमें सोचने पर मजबूर करती हैं। उन्होंने कॉमेडी फिल्में भी बनाई जिसे देखकर हंसते हुए हम लोटपोट हो गए। उनकी फिल्में परिवार में सब लोग साथ बैठकर देख सकते हैं।
1: घर का सपना हो, नई गाड़ी की ख्वाहिश या किसी जरूरत के लिए पैसे, SBI देता है बेहतरीन लोन ऑप्शंस, आकर्षक ब्याज दरों के साथ। होम, ऑटो, पर्सनल, पेंशन और गोल्ड लोन के लिए संपर्क करें अपनी नजदीकी शाखा से। SBI, द बैंकर टू एवरी इंडियन। नियम और शर्तें लागू।
2: आज भी उनकी बनाई फिल्में जब टीवी पर आती हैं तो हम उन्हें देखने का मोह छोड़ नहीं पाते। वे फिल्में कल भी कालजयी थी और आज के दौर के लिए भी बहुत अहम हैं। दोस्तों, आपको ऋषिकेश मुखर्जी की और कौन सी फिल्में याद हैं, कौन से गीत आपको पसंद है, वो हमें लिखकर भेजते जाइए। उनकी फिल्मों से जुड़ी कोई याद हो तो वो भी हमें बताएं। और अब हम बात करेंगे चुपके चुपके, एक बेहद मशहूर क्लासिक कॉमेडी फिल्म जिसकी कहानी हास्य और मज़ेदार उलझनों पर आधारित है। आपने ये फिल्म तो ज़रूर देखी होगी, तो बताएं कि प्यारे मोहन परिमल त्रिपाठी किस विषय के प्रोफेसर थे और उनके दोस्त प्रोफेसर सुकुमार सिन्हा किस विषय के प्रोफेसर थे। और इस फिल्म के सभी कलाकारों के नाम लिखकर हमें भेज दें। आइए सुनते हैं ये गीत। वैसे तो सावन लगभग गुजर चुका है। आवाज़ है इस गीत में लता मंगेशकर की, गीतकार हैं आनंद बख्शी, संगीतकार हैं सचिन देव बर्मन। फिल्म का नाम है चुपके चुपके।

अभी आपने सोनू निगम को सुना, ये फिल्म थी और प्यार हो गया। गीत को लिखा जावेद अख्तर ने। यही था अब तक का फिल्म संगीत। आप सुन रहे हैं विविध भारती का

हमारे साथियों ने संदेश भेज दिए हैं, जवाब हमें मिल गए हैं। धर्मेंद्र यानी प्यारे मोहन परिमल त्रिपाठी बॉटनी साइंस के प्रोफेसर के रोल में नजर आए थे और सुकुमार सिन्हा बने अमिताभ बच्चन ने किरदार निभाया था अंग्रेजी के प्रोफेसर का। और साथी कलाकार थे शर्मिला टैगोर, जया बच्चन, ओम प्रकाश, असरानी, उषा किरण, केष्टु मुखर्जी और ललिता चक्रवर्ती। हमारे एक साथी ने लिखा है कि ऋषिकेश मुखर्जी की फिल्मों में कलाकारों ने स्टार बनकर नहीं बल्कि किरदार बनकर काम किया। अमिताभ बच्चन, धर्मेंद्र, राजेश खन्ना और अमोल पालेकर जैसे बड़े अभिनेताओं से उन्होंने बेहद सादगी भरे रोल करवाए। उनकी फिल्मों की अभिनेत्रियां जैसे कि जया बच्चन, शर्मिला टैगोर, दीप्ति नवल कोई ग्लैमर डॉल नहीं बल्कि घरेलू पढ़ी लिखी और मजबूत विचारों वाली महिलाएँ होती थी। हमारे एक साथी ने लिखा है कि ऋषि दास सिर्फ हंसाना ही नहीं जानते थे बल्कि आंसुओं के जरिए ज़िंदगी का सबसे बड़ा फलसफा समझाना भी उनकी कला थी। आनंद बाबू मोशाय, ज़िंदगी बड़ी होनी चाहिए लंबी नहीं, इस संवाद के जरिए कैंसर से जूझ रहे एक इंसान की जिंदा दिली को जिस तरह उन्होंने पर्दे पर उतारा वो मील का पत्थर है। अभिमान, पति पत्नी के बीच अहंकार, ईर्ष्या और संगीत के प्रति प्रेम।

के टकराव को बेहद संजीदगी और बिना किसी मेलोड्रामा के दिखाया गया है। एक साथी ने लिखा है कि रिशिदा ने अपने 4 दशकों के करियर में 42 फिल्में डायरेक्ट की और उन्हें भारत के मिडिल सिनेमा का पायनियर माना जाता है। उनकी फिल्में मिडिल क्लास के माहौल को दिखाती थीं। एक मैसेज है कि रिशिदा एक ऐसे फिल्मकार थे जिन्होंने हिंदी फिल्मों को एक नई राह दिखाई। उनकी फिल्में ना तो तड़क भड़क भरी होती थी, ना बहुत ज़्यादा संजीदा होती थी, बल्कि उनमें सादगी और संजीदगी का एक बेहतरीन मिश्रण हुआ करता था। उनकी फिल्मों में आम इंसान की रोज़मर्रा ज़िंदगी, उसकी खुशी, उसके गम और उसके मसाइल को बड़ी खूबसूरती के साथ पेश किया जाता था। रिशिदा की फिल्में ज़मीनी जनजीवन की जीवंत जगाती तस्वीर होती थी। दर्शक उनकी फिल्मों में खुद को महसूस करता था और बावर्ची फिल्म मुझे सबसे ज़्यादा पसंद है। एक साथी ने लिखा है कि ये कैसा संयोग है कि इस वक्त टीवी पर फिल्म अनुपमा दिखाई जा रही है और गाना धीरे धीरे मचल ए दिले बेकरार चल रहा है और इधर रेडियो पर भी यही गाना चल रहा है। एक साथी ने लिखा है कि ऋषिकेश मुखर्जी को फिल्म अनुराधा के लिए राष्ट्रपति का स्वर्ण पदक मिला था। साथियों, 1979 में आई कल्ट क्लासिक कॉमेडी फिल्म गोलमाल की कहानी एक युवा राम प्रसाद और सख्त मिजाज बॉस भवानी शंकर के इर्द गिर्द घूमती है और अंत में कई मज़ेदार मोड़ के बाद सच सबके सामने आ जाता है और फिल्म का सुखद अंत होता है। तो साथियों, इस मज़ेदार फिल्म की कौन सी बातें आपको याद हैं, हमें लिखकर कमेंट कर दें और साथ ही ये भी बता दें कि इस फिल्म के मुख्य कलाकार कौन कौन थे। तब तक सुना जाए ये गीत किशोर कुमार की आवाज़ में। गीतकार हैं गुलजार, संगीतकार हैं राहुल देव बर्मन, फिल्म का नाम है गोलमाल।

पहले हर किरदार की जगह खुद को रखकर देखना चाहिए, तो लगेगा कि हम ही हैं वहाँ पर। हर किरदार अपना सा लगता है। मैं ये फिल्म जब भी देखता हूँ तो अपने आप को वहाँ पर खड़ा पाता हूँ। एक साथी ने लिखा है कि फिल्म अभिमान में अनुराधा पौडवाल जी की आवाज़ में एक श्लोक संगीतकार सचिन देव बर्मन के संगीत में रिकॉर्ड हुआ था और यहीं से अनुराधा पौडवाल के गीतों के करियर की शुरुआत हुई थी। साथियों, 1980 में बनी फिल्म खूबसूरत एक ऐसे परिवार की कहानी जिसकी सख्त मिजाज मुखिया घर के सभी नियम कड़ाई से लागू करती हैं, जिसकी वजह से पूरा परिवार तनावपूर्ण माहौल में रहता है। कहानी में बदलाव तब आता है जब मंजू नाम की लड़की कुछ दिनों के लिए उस घर में आती है और अपने चुलबुले नटखट और जिंदा दिल अंदाज से घर के नियमों को चुनौती देती है। तो बताएं कि घर के मुखिया के किरदार में कौन सी अभिनेत्री थी। साथ ही कलाकारों के नाम भी बता दें। और खूबसूरत इस नाम से इस फिल्म का एक मॉडर्न रीमेक भी तो बना था, तो उस रीमेक फिल्म की अभिनेत्री का नाम भी हमें बता दें। तब तक हम आपको सुनवा रहे हैं ये एवरग्रीन सुपरहिट गाना आशा भोसले की आवाज़ में। इस गुलजार गीत को लिखा है गुलजार ने और संगीतकार हैं राहुल देव बर्मन। फिल्म का नाम है खूबसूरत।

लिख दिए हैं। घर की मुखिया के किरदार में नजर आई थी अभिनेत्री दीना पाठक। मुख्य साथी कलाकार थे अशोक कुमार, रेखा, राकेश रोशन, ओम शिवपुरी, शशिकला रूपिनी और इस फिल्म के रीमेक में नजर आई थी अभिनेत्री सोनम कपूर। एक मशहूर हिंदी कॉमेडी फिल्म बुड्ढा मिल गया। फिल्म की कहानी दो गरीब और बेरोजगार दोस्तों के इर्द गिर्द घूमती है। अचानक उन्हें एक अमीर और लापता करोड़पति मिल जाता है और उन दोनों को लगता है कि इस बूढ़े अमीर आदमी को उसके घर पहुंचाकर वो भारी इनाम पालेंगे। उसके बाद फिल्म में कई रोमांचक मोड़ आते हैं। तो हमें बताएं कि वो करोड़पति अमीर आदमी कौन था और साथ ही कलाकारों के नाम भी लिख दें और साथ में ये भी बताएं कि इस फिल्म के हीरो की पहली हिंदी फिल्म कौन सी थी। तब तक सुनिए ये गीत किशोर कुमार की आवाज में। नगमा निगार है मजरू सुल्तानपुरी, संगीतकार है राहुल देव बर्मन। फिल्म का नाम है बुढ़ा मिल गया।

ये जवाब हमें मिल गए हैं। अमीर लापता करोड़पति की भूमिका निभाने वाले कलाकार थे ओम प्रकाश। मुख्य कलाकार थे नवीन निश्चल, देवन वर्मा, अर्चना और अरुणा ईरानी। और इस फिल्म के नायक नवीन निश्चल की पहली हिंदी फिल्म थी सावन भादो, जो कि अभिनेत्री रेखा की भी पहली हिंदी फिल्म थी।

साथियों, सुरीला सफ़र के हम सफ़र बनकर आज आप हमारे साथ चले और अपने विचार, बातें, संदेश आपने हमारे साथ साझा किए, आप सभी को हम देते हैं धन्यवाद। आज की तरह कल भी तय कीजिए संगीत का ये सुरीला सफ़र, देश की सुरीली

0: आज की त्रिवेणी में बात करेंगे शहर की। साथियों, शहर सिर्फ इमारतों, सड़कों और भीड़ का नाम नहीं, बल्कि अपने आप में एक पूरी दुनिया है। हर शहर का अपना मिजाज होता है, अपनी रफ्तार होती है और अपनी एक अलग पहचान। कहीं सुबह की शुरुआत चाय की प्याली और अखबार से होती है, तो कहीं रात तक जगमगाती सड़कों पर जिंदगी दौड़ती रहती है। किसी शहर में सुकून मिलता है तो कोई शहर अपनी चहल पहल से दिल जीत लेता है, और कुछ शहर ऐसे होते हैं जिनसे पहली मुलाकात में ही अपनापन महसूस होने लगता है। शायद इसी खूबसूरत, रंगीन और थोड़े शरारती अंदाज के लिए कहा गया होगा, ये शहर बड़ा अलबेला। तो चलिए शहर के इसी दिलकश अंदाज को महसूस करते हैं फिल्म सिंगापुर के इस गीत के साथ।
1: ये शहर बड़ा अलबेला, हर तरफ हसीनों का मेला। ये शहर बड़ा अलबेला।

शहर की एक खासियत ये भी है कि ये अपने भीतर न जाने कितने सपने समेटे रहता है। छोटे शहरों से बड़े शहरों की ओर आते लोग अपने साथ उम्मीदें लेकर आते हैं, कुछ नया करने की, अपनी पहचान बनाने की और शायद किसी अपने के साथ एक छोटी सी दुनिया बसाने की। शहर की भीड़ में जब दो लोग एक दूसरे का हाथ थाम लेते हैं तो वही अनजान शहर उन्हें अपना लगने लगता है। फिर ऊंची इमारतों और व्यस्त सड़कों के बीच भी एक घर।

0: शहर की एक खासियत ये भी है कि यह अपने भीतर न जाने कितने सपने समेटे रहता है। छोटे शहरों से बड़े शहरों की ओर आते लोग अपने साथ उम्मीदें लेकर आते हैं, कुछ नया करने की, अपनी पहचान बनाने की और शायद किसी अपने के साथ एक छोटी सी दुनिया बसाने की। शहर की भीड़ में जब दो लोग एक दूसरे का हाथ थाम लेते हैं तो वही अनजान शहर उन्हें अपना लगने लगता है। फिर ऊंची इमारतों और व्यस्त सड़कों के बीच भी एक घर, एक साथी और एक सपना काफी होता है। कुछ ऐसा ही एहसास है अगले गीत में, जहां शहर सिर्फ जगह नहीं बल्कि दो दिलों के सपनों का पता बन जाता है। सुनते हैं घरौंदा फिल्म का ये खूबसूरत गीत।
1: दो दीवाने शहर में

हर शहर की अपनी एक रौनक होती है और उस रौनक में वहाँ के लोग सबसे खास रंग भरते हैं। बाजारों की चहल पहल, सड़कों की रफ्तार, कॉलेज जाते युवा, दोस्तों की महफिलें और शाम ढलते ही रोशन होती गलियां। शहर की जिंदगी कई रंगों से मिलकर बनती है। खासकर बड़े शहरों में फैशन, स्टाइल और आत्मविश्वास का अपना ही अंदाज देखने को मिलता है। यही वजह है कि फिल्मों में भी शहर को अक्सर युवा ऊर्जा और आकर्षण के प्रतीक के रूप में पेश किया गया है। अब हमारे इस शहर सफर का आखिरी पड़ाव भी कुछ ऐसा ही चुलबुला और मस्ती भरा सा है। तो तैयार हो जाइए शहर की रौनक और युवा अंदाज से रूबरू होने के लिए फिल्म रक्षक के इस गीत के साथ।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं फरहत नास। सरकार ने यात्री वाहनों के लिए नए कॉरपोरेट औसत ईंधन दक्षता नियम अधिसूचित किए। इनका लक्ष्य 5 वर्षों में ईंधन दक्षता में 16% से अधिक सुधार करना। भारत और कतर ने भारत में $10 अरब की निवेश प्रतिबद्धता की प्रगति की समीक्षा की। मुक्त व्यापार समझौते की वार्ता को गति देने पर भी चर्चा। नेपाल में लगातार बारिश के कारण उत्तरी बिहार में बाढ़ की स्थिति गंभीर, 200 से अधिक गांव प्रभावित। जापान एशियाई खेलों में भारत ने आज कंपाउंड तीरंदाजी में 3 स्वर्ण और ट्रैप मिक्स टीम स्पर्धा में 1 स्वर्ण पदक जीता। 10 स्वर्ण सहित पदकों की संख्या 59 हुई। और गुवाहाटी में भारत ने वेस्टइंडीज के साथ दूसरे एक दिवसीय क्रिकेट मैच में टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला किया। अब समाचार विस्तार से। सरकार ने यात्री वाहनों के लिए नए कॉरपोरेट औसत ईंधन दक्षता नियम अधिसूचित कर दिए हैं। ये किसी वाहन कंपनी द्वारा बनाए गए सभी यात्री वाहनों की औसत ईंधन खपत और दक्षता से जुड़ा मानक है। ये नए नियम मौजूदा कॉरपोरेट औसत ईंधन दक्षता का स्थान लेंगे। नए नियम अगले वर्ष 1 अप्रैल से लागू होंगे और 31 मार्च 2032 तक प्रभावी रहेंगे। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: ऊर्जा मंत्रालय के अनुसार CAFE मानकों के तहत हर वर्ष ईंधन दक्षता के लक्ष्य को और कड़ा किया जाएगा। ईंधन खपत का मानक 2027-28 में 3.9 लीटर प्रति 100 किलोमीटर से घटाकर 2031-32 में 3.32 लीटर प्रति 100 किलोमीटर किया जाएगा। यानी इस अवधि में ईंधन दक्षता में लगभग 16% से अधिक सुधार होगा। ये नियम भारत में बिक्री के लिए बनाए या आयात किए जाने वाले नए यात्री वाहनों पर लागू होंगे। ये ऑटोमोबाइल उद्योग के लिए अधिक विनियामक, स्पष्टता और स्थिर नीतिगत ढांचा प्रदान करेंगे। इससे तकनीकी नवाचार को बढ़ावा मिलेगा। अक्षित वैद्यान, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: भारतीय नौसेना कमांडर्स सम्मेलन आज दूसरे दिन नई दिल्ली में जारी है। इसमें नौसेना के वरिष्ठ नेतृत्व के साथ साथ थल सेना प्रमुख और प्रमुख रक्षा अध्यक्ष भी मौजूद हैं। नौसेना प्रमुख एडमिरल कृष्ण स्वामीनाथन ने समुद्री सुरक्षा वातावरण और भारतीय नौसेना की परिचालन स्थिति की समीक्षा की। उन्होंने तेजी से बदलती परिस्थितियों के अनुरूप कार्रवाई और त्वरित प्रतिक्रिया क्षमता बनाए रखने पर जोर दिया। प्रमुख रक्षा अध्यक्ष जनरल NS राजा सुब्रमणी ने नौसेना को देश के सामरिक क्षमता को बढ़ाने वाली महत्वपूर्ण शक्ति बताया। उन्होंने भविष्य की चुनौतियों से निपटने के लिए तीनों सेनाओं के बीच बेहतर संयुक्तता और एकीकरण पर जोर दिया। वहीं सेना प्रमुख जनरल धीरज सेठ ने मौजूदा सुरक्षा वातावरण और उभरती सुरक्षा चुनौतियों पर विचार साझा किए। तीनों सेनाओं के बीच बेहतर तालमेल, एक दूसरे के साथ मिलकर कार्रवाई करने की क्षमता और एकीकृत प्रतिक्रिया को मजबूत करने पर

0: जोर रहा। गृह मंत्री अमित शाह आज पंजाब के जालंधर में हैं। वे अब से कुछ देर बाद मादक पदार्थ रोधी रैली को संबोधित करेंगे। जालंधर पहुंचने के बाद श्री शाह ने श्री देवी तालाब मंदिर परिसर में स्थित करीब 200 वर्ष पुराने त्रिपुर मालिनी मंदिर में पूजा अर्चना की। गृह मंत्री नशा मुक्त पंजाब यात्राओं के समापन कार्यक्रम में शामिल होने के लिए जालंधर में है। इन यात्राओं ने 13 दिन में 4 चरणों में पंजाब के सभी 117 विधानसभा क्षेत्रों में 4000 किलोमीटर की दूरी तय की। भाजपा अध्यक्ष नवीन ने 18 सितंबर को पठानकोट से इन यात्राओं की शुरुआत की थी। इनका उद्देश्य पंजाब में नशे के खिलाफ लड़ाई को जन आंदोलन में बदलना है। पश्चिम बंगाल सरकार ने कोलकाता में सत्यजीत रे फिल्म और टेलीविजन संस्थान में 27 सितंबर को हुई घटना की जांच के लिए 5 सदस्यीय विशेष जांच दल एसआईटी गठित किया है। कोलकाता पुलिस अपर आयुक्त कृणाल अग्रवाल की अध्यक्षता में ये दल घटना से संबंधित पंचसार थाने में दर्ज 3 प्राथमिकियों की जांच करेगा। एसआईटी से 1 अक्टूबर तक प्रथम जांच रिपोर्ट सौंपने को कहा गया है। 27 सितंबर को सत्यजीत रे फिल्म और टेलीविजन संस्थान के परिसर में एक उपभोक्ता समूह अखिल भारतीय ग्राहक पंचायत और संस्थान के विद्यार्थियों के साथ झड़प के बाद हिंसा हो गई थी। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
1: खबरों और अपडेट्स के लिए कभी भी कहीं भी expert@AIRNewsHindi और फेसबुक पर ऑल इंडिया रेडियो न्यूज को फॉलो करें।
0: दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। भारत और कतर ने भारत में 10 अरब डॉलर की निवेश प्रतिबद्धता लागू करने, भारत में कतर निवेश प्राधिकरण का कार्यालय स्थापित करने और द्विपक्षीय निवेश संधि तथा मुक्त व्यापार समझौते पर वार्ता में तेजी लाने पर चर्चा की। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कतर के व्यापारिक संघ से भारत में व्यापार और निवेश में साझेदारी की संभावनाओं को सक्रिय रूप से तलाशने और द्विपक्षीय आर्थिक संबंधों को और मजबूत करने की अपील की। बातचीत के दौरान वित्त मंत्री ने दोनों देशों में उभरते आर्थिक अवसरों पर चर्चा की। एक रिपोर्ट।
2: दोहा में कतर व्यापारिक संघ की बिजनेस गोलमेज बैठक को संबोधित करते हुए उन्होंने भारत की मजबूत आर्थिक वृद्धि, बढ़ते निवेश और वित्त वर्ष 2025-26 में 94 अरब 50 करोड़ डॉलर से अधिक के रिकॉर्ड सकल प्रत्यक्ष विदेशी निवेश का उल्लेख किया। उन्होंने जापान क्रेडिट रेटिंग द्वारा हाल ही में भारत की दीर्घकालिक रेटिंग बढ़ाए जाने का भी उल्लेख किया। इससे पहले वित्त मंत्री ने कतर के विदेश व्यापार राज्य मंत्री डॉ अहमद बिन मोहम्मद अल सईद से मुलाकात की। श्रीमती सीतारामन ने कहा कि भारत कतर के साथ व्यापार और निवेश बढ़ाने को बहुत महत्व देता है। वित्त मंत्री ने भारत और कतर तथा अन्य खाड़ी देशों के बीच सामान्य व्यापार को फिर से शुरू करने के महत्व पर जोर दिया, जिसमें होर्मुज जल डमरू मध्य से बिना किसी रुकावट के समुद्री आवाजाही और व्यापार शामिल हैं। समाचार कक्ष से जागृति शर्मा।
0: वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत और अमेरिका के आर्थिक संबंध लगातार मजबूत हो रहे हैं। अमेरिका में गोलमेज बैठक में श्री गोयल ने भारत के बढ़ते औद्योगिक आधार और कुशल कार्यबल का उल्लेख किया। उन्होंने अमेरिका की कंपनियों से भारत में निवेश बढ़ाने, छोटे और मध्यम उद्योगों के साथ साझेदारी करने और आधुनिक विनिर्माण में मिलकर निवेश करने का आग्रह किया। श्री गोयल ने कहा कि दोनों देशों के बीच सहयोग से मजबूत आपूर्ति श्रृंखला विकसित होगी और आर्थिक विकास के नए अवसर पैदा होंगे। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल आज अमेरिका में G20 देशों के मंत्रियों के साथ बैठक में शामिल होंगे। ये बैठक अमेरिका के व्यापार प्रतिनिधि जेमिसन ग्रीर के निमंत्रण पर हो रही है। यात्रा के दौरान श्री गोयल अपने समकक्ष के साथ भारत अमेरिका द्विपक्षीय व्यापार समझौते पर बातचीत को आगे बढ़ाएंगे। संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा है कि पर्यटन क्षेत्र अब केवल यात्रा, मनोरंजन और घूमने फिरने तक सीमित नहीं है, बल्कि ये अर्थव्यवस्था का एक प्रमुख आधार और रोजगार का महत्वपूर्ण स्रोत बन गया है। नई दिल्ली में एसोचैम द्वारा आयोजित राष्ट्रीय पर्यटन सम्मेलन में श्री शेखावत ने कहा कि वैश्विक और भू राजनीतिक अनिश्चितताओं के बावजूद पर्यटन क्षेत्र लगातार बढ़ रहा है।
3: आज जिस तरह से परिवर्तन पर्यटन के क्षेत्र में हो रहा है, पर्यटन क्षेत्र में प्रायोरिटीज जिस तरह से बदल रही है, दुनिया की तमाम चुनौतियों, तमाम दबावों के बावजूद भी पर्यटन निरंतर बढ़ने वाला क्षेत्र है। जहां आकलन किया जा रहा था कि जिस तरह की कठिनाइयों की परिस्थितियों से विश्व गुजर रहा है, लेकिन फिर भी पर्यटन के क्षेत्र ने पिछले एक वर्ष यदि मैं आंकड़ों को उठाकर देखूं तो ग्लोबल GDP की ग्रोथ रेट से लगभग दुगने से ज्यादा प्रगति की।
0: भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह

0: पासवान ने कहा है कि सही और अद्यतन मतदाता सूची लोकतंत्र की आत्मा है। आज नई दिल्ली में संवाददाताओं से बातचीत में श्री चौहान ने मतदाता सूची में अनियमितताओं को लेकर विपक्ष के आरोपों पर सवाल उठाया।
1: अगर वोटर लिस्ट में गलत नाम जुड़े तो लोकतंत्र ही मर जाएगा। आपको क्या आपत्ति अगर कोई इस दुनिया में है ही नहीं उसका नाम वोटर लिस्ट से काट दिया जाए? कहीं डुप्लीकेशन है गांव में भी नाम शहर में भी नाम, अगर नाम एक जगह कट जाए तो आपको दिक्कत क्या है? कोई देश का नागरिक ही नहीं है तो उसका नाम वोटर लिस्ट में क्यों जोड़ना चाहिए? पवित्र लोकतंत्र के लिए वोटर लिस्ट शुद्ध होना ही चाहिए।
0: इंडिया गठबंधन ने मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण SIR कार्यक्रम और निर्वाचन आयोग से जुड़े मुद्दों पर रणनीति बनाने के लिए आज नई दिल्ली में बैठक की। ये बैठक नई दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में हुई। बैठक में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, पार्टी नेता सोनिया गांधी, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी, जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला, समाजवादी पार्टी के नेता हरिंद्र मलिक, राष्ट्रीय जनता दल के नेता तेजस्वी यादव, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के जॉन ब्रिटास, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के शरद कुमार गुट की नेता सुप्रिया सुले और अन्य नेता मौजूद थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सार्वजनिक जीवन के 25 वर्ष पूरे हो रहे हैं। जनसेवा से देश सेवा के संकल्प के साथ उनकी यात्रा लगातार जारी है। सेवा और सुशासन किसी सोच के साथ सरकार 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य की दिशा में काम कर रही है। समावेशी विकास और सामाजिक सशक्तिकरण के जरिए लोगों के जीवन में बदलाव लाने के प्रयास किए जा रहे हैं। इसी विशेष श्रृंखला में आज हम मुंबई के अटल बिहारी वाजपेयी सेवरी नहवा सेवा अटल सेतु की जानकारी दे रहे हैं।
2: अटल बिहारी वाजपेयी शिवडी नवा सेवा अटल सेतु भारत का सबसे लंबा समुद्री पुल है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जनवरी 2024 में इस पुल का उद्घाटन किया था। उन्होंने दिसंबर 2016 में इसकी आधारशिला भी रखी थी। 17,840 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से निर्मित अटल सेतु की लंबाई लगभग 21.8 किलोमीटर है और इसमें 6 लेन है। पुल का लगभग 16.5 किलोमीटर का हिस्सा समुद्र पर और करीब 5.5 किलोमीटर का हिस्सा जमीन पर है। निर्माण क्षेत्र के विशेष पांडुरंग दंदावते के अनुसार अटल सेतु अपनी अनूठी विशेषताओं और निर्माण के दौरान पर्यावरण संबंधी पहलुओं को ध्यान में रखे जाने के कारण इंजीनियरिंग का उत्कृष्ट उदाहरण है।
3: इसकी तीन चीजें हैं जो इसको अनोखा बनाती है। पहली चीज है इसकी लंबाई, विश्व के जितने ही सीलिंग्स है गेस्ट ये सबसे लंबी है। दूसरा, डीप सी में इतना बड़ा कंस्ट्रक्शन फर्स्ट टाइम इंडिया में हुआ है, बहुत सारी चीजें बाहर से लानी पड़ी। तीसरा, एक बहुत बड़ा चैलेंज इसमें आया था वो एनवायरमेंटल और सेफ्टी इश्यूज का, जो पर्यावरण और सुरक्षा के हेतु ये ब्रिज काफी अच्छा डिजाइन किया है।
2: अटल सेतु के बनने के बाद मुंबई और नवी मुंबई के बीच यात्रा का समय लगभग 2 घंटे से घटकर करीब 50 मिनट रह गया है। दैनिक यात्री अनुपानंद कहते हैं कि इस पुल से मुंबई और नवी मुंबई के बीच रोजाना यात्रा पहले की तुलना में तेज, सुगम और सुविधाजनक हो गई है।
4: मुंबई और नवी मुंबई के बीच सफर करने में काफी ज्यादा समय लगता था, खासकर पीक आवर में। अटल सेतु शुरू होने के बाद सफर काफी बेहतर हो गया है। अब मेरे जैसे रोज ट्रैवल करने वाले लोगों का समय काफी बचता है और मुंबई से नवी मुंबई आना जाना अब पहले के मुकाबले काफी सुविधाजनक हो गया है।
2: अटल सेतु से नवी मुंबई अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे की कनेक्टिविटी भी बेहतर हुई है। इससे मुंबई से पुणे, गोवा और दक्षिण भारत के कुछ हिस्सों तक आवागमन भी कम समय में किया जा सकता है। इस पुल से मुंबई बंदरगाह और जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह के बीच संपर्क भी और मजबूत हुआ है। प्रार्थना, आकाशवाणी समाचार, मुंबई।
0: नेपाल में लगातार बारिश के कारण उत्तरी बिहार में बाढ़ की स्थिति गंभीर बनी हुई है। 200 से ज्यादा गांव प्रभावित हैं। हमारी संवाददाता ने बताया है कि मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने आज पश्चिमी चंपारण का हवाई सर्वेक्षण किया। उन्होंने प्रशासन को सतर्क रहने और बाढ़ प्रभावित इलाकों में राहत और बचाव कार्यों के लिए सभी आवश्यक प्रबंध सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। भारत ने आज जापान एशियाई खेलों में शानदार प्रदर्शन करते हुए 4 स्वर्ण पदक जीते हैं। इन खेलों की अन्य ताजा अपडेट के साथ हैं प्रियंका अरोड़ा।
5: जापान एशियाई खेलों में भारत ने आज जहां तीरंदाजी की कंपाउंड स्पर्धाओं में स्वर्णिम हैट्रिक लगाई, वहीं निशानेबाजी में भी स्वर्णिम लक्ष्य पर सटीक निशाना साधा। भारतीय तीरंदाजों ने दबाव में शानदार संयम दिखाते हुए पुरुष, महिला और मिक्स टीम स्पर्धाओं में अपने अपने खिताब बरकरार रखते हुए स्वर्ण पदक जीते। पुरुष कंपाउंड टीम में साहिल जाधव, कुशल दलार और गणेश मणिरत्नम ने फाइनल में चीन को हराया। उधर ज्योति सुरेखा वेन्नम, चिकिता तनिपार्थी और प्रतिका प्रदीप की महिला कंपाउंड टीम ने भी फाइनल में चीन को पराजित किया। साहिल जाधव और चिकिता तनिपार्थी की मिक्स कंपाउंड टीम ने फाइनल में शूट ऑफ में कोरिया को हराकर स्वर्ण पदक हासिल किया। इस जीत के साथ भारत ने स्पर्धा में 2028 ओलंपिक के लिए कोटा भी हासिल कर लिया है। निशानेबाजी की बात करें

0: तो नीरू ढांडा और कायनन चेन्नई की भारतीय जोड़ी ने ट्रैप मिक्स टीम स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतकर इतिहास रचा। मुक्केबाजी के रिंग में उतरे तो महिलाओं के 60 किलोग्राम भार वर्ग में प्रिया घांगस और कपिल पोखरिया ने पुरुषों के 90 किलोग्राम भार वर्ग में आज कांस्य पदक जीते। पदक तालिका में भारत अब 10 स्वर्ण 21 रजत और 28 कांस्य सहित कुल 59 पदकों के साथ सातवें स्थान पर पहुँच गया है।
1: क्रिकेट में भारत के साथ दूसरे एक दिवसीय मैच में वेस्ट इंडीज ने 5 ओवर में 1 विकेट पर 37 रन बना लिए हैं। गुवाहाटी में आज भारत ने टॉस जीतकर गेंदबाजी का निर्णय लिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस महीने मन की बात कार्यक्रम में पश्चिम बंगाल के सुंदरबन की महिलाओं के सराहनीय कार्यों का उल्लेख किया था। हमारे संवाददाता ने बताया है कि सुंदरबन दुनिया का सबसे बड़ा मैंग्रोव वन और यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल है। घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक के आज दोपहर के कारोबार में वृद्धि दर्ज की गई। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 343 अंक बढ़कर 72,872 जबकि निफ्टी 37 अंक की वृद्धि के साथ 22,753 पर था। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। सरकार ने यात्री वाहनों के लिए नए कॉरपोरेट औसत ईंधन दक्षता नियम अधिसूचित किए। इनका लक्ष्य 5 वर्षों में ईंधन दक्षता में 16% से अधिक सुधार करना। भारत और कतर ने भारत में $10 अरब की निवेश प्रतिबद्धता की प्रगति की समीक्षा की। मुक्त व्यापार समझौते की वार्ता को गति देने पर भी चर्चा। नेपाल में लगातार बारिश के कारण उत्तरी बिहार में बाढ़ की स्थिति गंभीर, 200 से अधिक गांव प्रभावित। जापान एशियाई खेलों में भारत ने आज कंपाउंड तीरंदाजी में 3 स्वर्ण और ट्रैप मिक्स टीम स्पर्धा में 1 स्वर्ण पदक जीता। 10 स्वर्ण सहित पदकों की संख्या 59 हुई। और गुवाहाटी में भारत ने वेस्टइंडीज के साथ दूसरे एक दिवसीय क्रिकेट मैच में टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला किया। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

ये विविध भारती है देश की सुरीली धड़कन, प्रस्तुत है कार्यक्रम सदाबहार नगमे। कार्यक्रम सुनने वाले सभी साथियों को हमारा नमस्कार। कार्यक्रम का पहला गीत है लता मंगेशकर और मुकेश की आवाजों में, गीतकार हैं शैलेंद्र, संगीतकार हैं शंकर जयकिशन और फिल्म का नाम है अनाड़ी।

0: 3 अक्टूबर विविध भारती की सालगिरह का जश्न। विविध भारती के लाइव ट्रांसमिशन में आ रहे हैं जाने माने संगीतकार अन्नू मलिक।
1: किसका है ये तुमको इंतजार, मैं हूं ना।
0: दिन में 12 बजे से 2 बजे के बीच
2: अगर तुम मिल जाओ।
0: अन्नू मलिक की बातें, गाने और कुछ दिलचस्प कहानियां। 3 अक्टूबर विविध भारती की सालगिरह का जश्न।
3: बंदा ये बिंदास है, बंदा ये बिंदास है।
4: सदाबहार नखमे कार्यक्रम का अगला गीत है लता मंगेशकर की आवाज में। इस गीत को लिखा है शैलेंद्र ने, संगीत है शंकर जयकिशन का और फिल्म का नाम है असली नकली।

0: हम मनाएंगे जश्न 3 अक्टूबर विविध भारती की सालगिरह पर। जाने माने फिल्म निर्देशक तिग्मांशु धूलिया आएंगे विविध भारती के सजीव प्रसारण स्टूडियो में।
1: विविध भारती एक ऐसा चैनल है जहां हर दौर के गाने और हर तरह के कार्यक्रम आप सुन सकते हैं। 3 अक्टूबर विविध भारती चैनल अपने 70 बरस पूरे कर रहा है। मैं फिल्मकार तिग्मांशु धूलिया अपनी फिल्मी यात्रा के साथ सजीव प्रसारण में आपसे मिलने आऊंगा।
0: कुछ दिलचस्प किस्से, कुछ खुशगवार बातें,
2: आंखें भी होती हैं दिल की सुबह।
0: तो आप सब जुड़िए और सुनिए दिन में 2:30 बजे से विविध भारती।
3: साथियों, कार्यक्रम का अगला गीत है मोहम्मद रफी और आशा भोसले की आवाजों में। नख्मा निगार हैं हसरत जयपुरी, तर्ज है शंकर जयकिशन की। फिल्म का नाम है सांझ और सवेरा।

0: वो बताएंगे फिल्म की शूटिंग की कहानियाँ, सृजन की बातें, साझा करेंगे सिनेमा की बातें, अपने जीवन के कुछ दिलचस्प किस्से।
1: वो इवेंट जो मेरे साथ में हुआ कि मेरी कार वहाँ पे अचानक से रुक जाती है और मुझे पता भी नहीं होता कि वो जगह कौन सी है, दरवाजा खोलता हूँ तो वो कैंची धाम के गेट के नीचे खुलता है, वो एक इवेंट मेरे दिमाग में रह जाता है।
0: वो है हनुमान अंश के निर्देशक विशाल चतुर्वेदी।
1: और वो इवेंट आज मुझे 20 साल के बाद में, एग्जैक्टली आफ्टर 20 इयर्स आई एम मेकिंग द फिल्म, एंड द सक्सेस ऑफ द फिल्म इज प्रोबब्ली आई थिंक वाज डेस्टिन्ड और डिसाइडेड बाय हिम, तो इसको लीला बोलते हैं।
0: आज के मेहमान 7 अक्टूबर शाम 4 बजे विविध भारती पर।
2: ओ मैंने तेरे ही भरोसे हनुमान सागर में नैया डारे दई।
3: अगला गीत सुनिए लता मंगेशकर और तलत महमूद की आवाजों में। इस गीत को लिखा है राजेंद्र कृष्ण ने, संगीत है सलील चौधरी का और फिल्म का नाम है छाया।

0: एक विलक्षण गायक।
1: अरे ओरे हे।
0: संगीत के साधक।
1: ओरे पथिकवा मत जइयो तू वृंदावन की।
0: उनके सुरों में भक्ति की निर्मलता है, संगीत की गहराई है, भावों में मिठास है।
1: राम नाम घन श्याम नाम शिव नाम सुमिर दिन रात।
0: वो हैं संगीतकार, गायक और अभिनेता शेखर सेन।
2: बहुत कम लोग ये जानते हैं कि जो मीरा के भजन इस समय हम लोग सुनते हैं, अभी मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों ना कोई, ये जो भाषा है ये सधुखड़ी भाषा है। मीराबाई ने जो भी लिखा वो सारे भजन जो थे वो मेवाड़ की भाषा में।
0: पहली अक्टूबर से हम शुरू कर रहे हैं नई श्रृंखला शताब्दी की भक्ति रचनाएं। सुनिए संगीत सरिता सुबह और शाम 6:45 सिर्फ विविध भारती पर। एक विलक्षण कथाकार जिनकी लेखनी में गहरी संवेदना है, विचार है, जीवन के अनुभव हैं। वो हैं जाने माने कहानीकार, उपन्यासकार और अनुवादक मनोज रूपड़ा।
3: मैंने एक लंबा लेख लिखा इन सब चीजों को, उसका पहल में वो लेख छपा था, कहानी की काया और फिल्म की छाया। उसमें मैंने एशियन फिल्मों पर लिखा और उसमें किस तरह से कहानियों को फिर से वापस स्थापित किया गया, इस बात को रेखांकित किया।
0: आज के मेहमान 30 सितंबर शाम 4 सिर्फ विविध भारती पर।
4: साथियों, अगला गीत हम आपको सुनवा रहे हैं किशोर कुमार की आवाज में। गीतकार हैं आनंद बख्शी, संगीतकार हैं राहुल देवबर्मन और फिल्म का नाम है नमक हलाल।

साथियों, कार्यक्रम का अगला गीत आप सुनेंगे लता मंगेशकर और मुकेश की आवाजों में। इस गीत को लिखा है आनंद बख्शी ने, संगीत है सचिन देव बर्मन का, फिल्म का नाम है चुपके चुपके।

0: हम मनाएंगे जश्न 3 अक्टूबर विविध भारती की सालगिरह पर। जाने माने फिल्म निर्देशक तिग्मांशु धूलिया आएंगे विविध भारती के सजीव प्रसारण स्टूडियो में।
1: विविध भारती एक ऐसा चैनल है जहां हर दौर के गाने और हर तरह के कार्यक्रम आप सुन सकते हैं। 3 अक्टूबर विविध भारती चैनल अपने 70 बरस पूरे कर रहा है। मैं फिल्मकार तिग्मांशु धूलिया अपनी फिल्मी यात्रा के साथ सजीव प्रसारण में आपसे मिलने आऊंगा।
0: कुछ दिलचस्प किस्से, कुछ खुशगवार बातें,
2: आंखें भी होती हैं दिल की जुबान।
0: तो आप सब जुड़िए और सुनिए दिन में 2:30 बजे से विविध भारती।
3: सदाबहार नगमे कार्यक्रम अब समाप्त होता है।

0: सखी सहेली
1: सभी सखियों सहेलियों और सखाओं को रेडियो सखी ममता सिंह का नमस्कार। मंदाकिनी जी आपको भी हमारा नमस्कार।
2: सभी सुनने वालों को मेरा भी नमस्कार और ममता सिंह जी यानी रेडियो सखी ममता जी को भी बहुत बहुत नमस्कार। कैसी हैं आप?
1: बिल्कुल
2: अच्छी है। तो आज मेरा मन कर रहा है ममता जी, बहुत दिनों बाद हम सखी सहेली के इस मंच पर एकत्रित हुए हैं, इकट्ठा हुए हैं, तो आज मैं आपकी प्रशंसा करूं।
1: अरे पूछने की क्या जरूरत है, करनी है करिए ना, पूछ कर प्रशंसा क्या करना, अरे कीजिए, खूब जम के कीजिए। प्रशंसा भले किसे नहीं अच्छी लगती है।
2: बिल्कुल सही कहा आपने, लेकिन क्या है कि
1: किसी की तारीफ करने के लिए बहुत बड़े शब्दों की जरूरत नहीं होती मंदाकिनी जी, ना ही पूछने की जरूरत होती है, बस धीरे से प्रशंसा करती जाती है, कभी एक छोटी सी प्रशंसा भी दिल को छू जाती है।
2: बिल्कुल सही कहा आपने, प्रशंसा केवल तारीफ नहीं, रिश्तों के बीच की दूरी कम करने वाली एक भाषा है।
1: बिल्कुल, और भाषा जो है पुल का काम करती है। जरा सोचिए मंदाकिनी जी, अगर दो पीढ़ियों के बीच संवाद में शिकायतों की जगह थोड़ी सी प्रशंसा आ जाए तो शायद ये जनरेशन गैप भी कुछ कम हो जाए।
2: बिल्कुल सही कहा आपने, और अगर साड़ियों का संसार भी कुछ ऐसा ही है, कोई आपकी साड़ी देखकर बस इतना कह दे अरे वाह ममता जी आज तो बहुत सुंदर साड़ी पहनी है आपने, और आप पर बात फब भी रही है, तो मन में एक छोटी सी खुशी उतर आती है।
1: बिल्कुल, अगर माँ अपनी बेटी से कह दे कि आज बहुत अच्छी लग रही है, बेटी अपनी माँ से कह दे कि बहुत अच्छी लग रही है, और माँ तारीफ कर दे शाबाश बहुत बढ़िया काम किया, तो ये कैसा संवाद है कि लोगों को जोड़ता है। आज जब हम अंतर्राष्ट्रीय अनुवाद दिवस मना रहे हैं तो उन अनुवादकों को थोड़ी सी उन अनुवादकों की थोड़ी सी प्रशंसा हम कर देते हैं जो एक भाषा के भाव को दूसरी भाषा तक बड़े ही सुंदरता से पहुंचा देते हैं।
2: बिल्कुल, तो आइए सखी सहेली में बात करते हैं प्रशंसा की, जो हमारे श्रोता अपनी टिप्पणी के जरिए लिखेंगे। और हाँ, बातों ही बातों में ममता जी हमने समझा दिया है आज के विषय क्या है।
1: बिल्कुल, तो चलिए एक बार दोहरा भी देते हैं अपने श्रोताओं के लिए कि जो हम जिन मुद्दों पर बात करने वाले हैं वो है पीढ़ियों में अंतर, और जो शब्द देते हैं हम श्रोताओं को वो आज प्रशंसा, अब तो स्पष्ट हो ही गया होगा, और साड़ियों का संसार है जिसमें हम भूमकाई साड़ी की बारे की चर्चा करेंगे, और भाषाओं के बीच एक पुल जो आज अनुवाद दिवस के मौके पर। तो हमारे श्रोता बताएं कि वो जब किसी रचना को अनुदित रचना जब पढ़ते हैं तो उन्हें कैसा लगता है, खासतौर से कि कोई मूल रचना पढ़ी है, मान लीजिए बंगला साहित्य का साहित्य बड़ा समृद्ध है, और वहां से जब हिंदी में अनुदित कहानी या उपन्यास पढ़ते हैं तो उन्हें कैसा फील होता है, कैसा महसूस होता है।
2: और इसके अलावा ममता जी वो ये भी बता सकते हैं कि अगर आप भी साहित्यकार हैं तो क्या अनुवाद किया आपने कभी। कई बार हमारे श्रोता जो हैं बहुत अच्छा लिखते हैं, हो सकता है कि वो भी कोई अनुवादक के रूप में काम कर रहे हो, तो उसका जिक्र भी कर सकते हैं
1: जी, और कौन सी किताब अनुवाद की है, और साथ में ये भी कि कई भाषाओं में अंग्रेजी से हिंदी, और यही बात फिल्मों में भी तो लागू होती है। जब हम कोई फिल्म देख रहे होते हैं तो जब वो अनुदित फिल्म होती है हिंदी में डब की हुई तो थोड़ा सा अलग लगता है, क्योंकि वो लिप सिंक होता है, वो तो एक अलग ही विषय। तो अनुवाद के बारे में चर्चा होगी, हमारे श्रोता भी इसमें शामिल हो, और फिलहाल क्या करें,
2: फिलहाल ये भी बता दें कि सूजी के व्यंजन भी हम बनाने वाले हैं।
1: आप बनाएंगे ना?
2: मैं बनाऊंगी और आप खाएंगी।
1: सारे श्रोता मिलके खाएंगे। चलिए फिलहाल गाने का स्वाद लेते हैं।
3: मिला।

0: भाई प्यार के बहुत सारे बहाने होते हैं. प्यार तो आपने बोला कि प्रशंसा कर दूं तो मोहब्बत बढ़ जाती है. हाँ, कोई छोटा सा तोहफा दे देता है तो मोहब्बत बढ़ जाती है. और किन बातों से मोहब्बत बढ़ती है बताइए ना.
1: अरे आप तो मेरी परीक्षा ले रही है, इसका मतलब है ना जिसने मोहब्बत की है वो ज्यादा अच्छा बता सकता है कि मोहब्बत किन किन कारणों से हो पाती है.
0: मोहब्बत किसके दिल में नहीं है भला बताइए. यहाँ इंसान नहीं बल्कि पशु पक्षी भी मोहब्बत से भरे पड़े होते, वो भी आपस में प्रेम करने का

0: तरीका होता है
1: हाँ?
0: तो हम ये बात कर रहे थे कि अगर कोई छोटा सा तोहफा दे दे तो प्यार बढ़ जाता है।
1: बिल्कुल, जैसे कि आप मुझे साड़ी देंगी हाँ? तो आपके प्रति मेरा प्यार बढ़ जाएगा।
0: ओ, आपने तो पूरे देश को बता दिया
1: आप मुझे बोंकाई साड़ी देने वाली है ना।
0: बिल्कुल बिल्कुल।
1: तो जैसे ही वो साड़ी मुझे मिलेगी मेरे अंदर एक मोहब्बत का जो अंकुर है वो फूटने लगेगा।
0: अच्छा,
1: आपकी प्रति।
0: मतलब इसके पहले आप मुझसे मोहब्बत नहीं करती हैं?
1: थोड़ी सी कम
0: मतलब साड़ी खरीदनी पड़ेगी मुझे
1: हाँ, और उसके बाद मेरी प्रशंसा भी करनी पड़ेगी।
0: ओहो हाँ, जब पहन के आएंगे तब तो ठीक है, प्रशंसा हम अभी से किए दे रहे हैं। मंदाकिनी जी आप बहुत अच्छी लग रही हैं, बहुत खूबसूरत लग रही हैं लेकिन ये प्रशंसा झूठी हो जाती है ना।
1: बिल्कुल, जब मैं पहन के आऊंगी साड़ी और आप मेरी प्रशंसा करेंगी उस वक्त जो होगा वो अच्छा लगेगा। फिलहाल हमारे जो श्रोता है खास तौर से हमारी बहनें जानना चाहती हैं कि कौन सी है ये बुमकाई साड़ी, कैसी होती है, तो बताइए उन्हें।
0: देखिए, उड़ीसा की समृद्ध हथकरघा परंपरा की एक बेहद खूबसूरत पहचान है बुमकाई साड़ी। बुमकाई साड़ी का नाम उड़ीसा के गंजाम जिले के बुमकाई गांव से जुड़ा हुआ माना जाता है। बाद में ये बुनाई परंपरा उड़ीसा के अन्य क्षेत्रों में भी लोकप्रिय हो गई और आज बुमकाई साड़ी उड़ीसा की पहचान बन गई है और प्रमुख हथकरघा साड़ियों में गिनी जाती है।
1: बिल्कुल सही कहा आपने, और इसकी बुनाई में इकत और अतिरिक्त धागे से बनी सजावटी बुनावट का प्रभाव भी हमें दिखाई देता है। बॉर्डर और पल्लू में महीन ज्यामितीय और पारंपरिक आकृतियां साड़ी को एक अलग स्थान बना देती है। साथ ही बोमकई साड़ियों में प्रकृति और लोक जीवन से प्रेरित बहुत सारी आकृतियां हमें देखने को मिलती है ममता जी, जैसे मछली और कोई पक्षी है ना, इस तरह से फूल हैं, पत्तियां हैं, शंख हैं, कमल है, मंदिर है, और धार्मिक प्रतीकों से जो प्रेरित आकृतियां होती हैं वो इस साड़ी में हमें दिखाई देती हैं।
0: जो और ज्यामितीय डिजाइन भी बनती है और बोमकई साड़ियों में अक्सर गहरे और चटक रंगों का प्रयोग किया जाता है। लाल, काला, पीला, हरा, नीला, नारंगी और मरून जैसे रंगों का संयोजन बहुत आकर्षक लगता है। वैसे आपको गाढ़े रंग तो बहुत पसंद है।
1: मुझे गाढ़े रंग बहुत पसंद है, इसलिए मैं आपसे कह रही हूँ कि आप मुझे मैरून और लाल,
0: मतलब दो साड़ी चाहिए आपको?
1: नहीं नहीं, लाल और मैरून, हाँ एक ही कलर हो गया ना, काला और मैरून।
0: अच्छा,
1: या तो, नीला और मैरून,
0: तो मतलब ये
1: इस अलग अलग कॉम्बिनेशन वाली।
0: अच्छा, कॉम्बिनेशन, हम तो डरे कि दो अलग अलग साड़ियां आपको देनी होंगी वैसे कई साड़ियों में मंदाकिनी जी गहरे रंग की मुख्य पृष्ठभूमि के साथ चमकीला बॉर्डर भी होता है और उसका पल्लू भी बनाया जाता है चमकीला। यही विरोधाभासी रंग संयोजन बोमकई को दूर से ही पहचानने योग्य बना देता है।
1: हाँ, और बोमकई साड़ी का जो पल्लू है वो इसकी सबसे खास विशेषताओं में से एक होता है। पल्लू में छोटे छोटे पारंपरिक डिजाइन के बेहद बारीकी से उन्हें बुना भी जाता है। और बोमकई जो साड़ी है मुख्यतः कॉटन है, सिल्क है, दोनों प्रकार से तैयार की जाती है। मैं आपसे सिल्क वाली साड़ी लेना पसंद करूंगी।
0: ओ, तो बड़ी महंगी होती है।
1: कोई बात नहीं
0: कॉटन बोमकई हल्की, आरामदायक और दैनिक पहनावे के लिए बड़ी उपयुक्त होती है, जबकि सिल्क बोमकई ज्यादा भव्य दिखाई देती है और त्योहारों, पारिवारिक समारोहों और विशेष अवसरों पर ये पहनी जाती है। और बोमकई साड़ी की सबसे बड़ी विशेषता ये भी है कि इसमें केवल सौंदर्य नहीं बल्कि उड़ीसा की सांस्कृतिक स्मृतियां भी बुनी हुई हैं।
1: हाँ बिल्कुल, और इसके डिजाइन स्थानीय प्रकृति, लोक जीवन, धार्मिक परंपराओं और आसपास के वातावरण से प्रेरणा लेते हैं, इसीलिए एक बोमकई साड़ी को केवल कपड़ा नहीं बल्कि बुनकर की कल्पना और संस्कृति का दस्तावेज भी कहा जा सकता है।
0: बिल्कुल सही जानकारी आपने दी है। और एक सुंदर बोमकई साड़ी के पीछे बुनकर की लंबी मेहनत होती है, धागे का चयन होता है, रंगों की योजना, बॉर्डर और पल्लू का पैटर्न और करघे पर इसकी बुनाई की जाती है।
1: बिल्कुल, और हर चरण में जो चरण होते हैं अलग अलग, उसमें बहुत ही धैर्य से ये साड़ी बनाते हैं, बहुत ही कौशलता के साथ साड़ी बनाई जाती है और हथकरघे पर तैयार होने के कारण हर साड़ी में बुनकर के हाथों की एक अलग पहचान भी दिखाई देती है ममता जी।
0: और आज बोमकई साड़ी ने पारंपरिक रूप के साथ साथ आधुनिक फैशन में भी अपनी जगह बना ली है। डिजाइनरों ने इसके पारंपरिक डिजाइन और रंगों को आधुनिक परिधानों में भी इस्तेमाल किया है।
1: हाँ, और तो और आप अगर साड़ी नहीं लेना भी चाहते तो उसके दुपट्टे भी ले सकते हैं। बोमकई के दुपट्टे मिल रहे हैं, स्टॉल मिल रहे हैं, कुर्ते मिल रहे हैं और अन्य वस्त्र भी बनाए जाते हैं, और इस तरह पारंपरिक बुनाई नई पीढ़ी तक भी आज पहुंच रही है।
0: बिल्कुल, और इस साड़ी में धागे केवल कपड़ा नहीं बुनते, वे उड़ीसा की संस्कृति, प्रकृति और लोक जीवन को भी उकेर देते हैं इसमें। और इसके अलावा उड़ीसा की धरती की सादगी, लोक जीवन के रंग और बुनकरों की कल्पनाशीलता जब करघे पर एक साथ उतरती है तब जन्म लेती है बोमकई, और इसके हरे धागे में परंपरा की जो परंपराएं होती है
1: वो देखने लायक होती है। बहुत ही सुंदर होती है बोमकई साड़ी। और अगर हम

0: हमारी बहनों में किसी के पास है जो सखियां सुन रही हैं तो उसका जिक्र करें कि उनके पास क्या बोमकाई साड़ी है, अगर है तो किस रंग की है, उन्होंने इसे कब कब पहना,
1: और दुपट्टा या स्तोल भी है तो उसका भी जिक्र करें, तो और इस गाने में भी कोई दुपट्टा ढूंढ सकते हैं।

0: विविध भारती की सालगिरह पर 3 अक्टूबर को होगा एक खास जश्न। राजस्थान की लोक माटी की खुशबू लिए एक आवाज और एक अंदाज जिसकी अपनी ही एक रंगत है, और इस बार ये आवाज सिर्फ गीतों में नहीं बल्कि लाइव ब्रॉडकास्ट में होगी हमारे साथ। जानी मानी गायिका, अभिनेत्री, लेखिका और रंग कर्म की बहुमुखी कलाकार इला आर्य। तो सुनिए उनकी बातें, जानिए उनकी कहानियाँ और मनाइए विविध भारती की सालगिरह का ये खास जश्न हमारे साथ। तारीख याद रखिएगा, 3 अक्टूबर दिन में 11 बजे से 12 बजे तक विविध भारती की सालगिरह पर इला अरुण होंगी लाइव हमारे साथ।
1: तो मंदाकिनी जी, आप लगता है कुछ अनुवाद करने लगे अंग्रेजी से हिंदी, हिंदी से अंग्रेजी, क्योंकि वैसे एक बात कहें, अनुवाद करने की जरूरत नहीं है। आजकल सब कुछ अगर डिजिटल हम ढूंढते हैं तो सब कुछ हिंदी में उपलब्ध है,
2: मिल जाता है।
1: लेकिन फिर भी ये कहते हैं ना कि अनुवाद दो भाषाओं के बीच, बल्कि दो भाषाओं के बीच ही नहीं बल्कि संस्कृतियों, दो संवेदनाओं और दो संसारों के बीच पुल का काम करता है, और एक भाषा में कही गई बात को दूसरी भाषा के पाठक तक उसी भाव और अर्थ के साथ पहुंचाने का काम भी करता है। इसीलिए अनुवादक की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण होती है।
2: बिल्कुल सही कहा। जैसे कि आप साहित्यकार हैं, आपको पता है कि जब आप अपनी किताब लिखती हैं और उसके बाद कोई और साहित्यकार या आलोचक या अनुवादक आपसे आपकी किताब मांगता है

0: आपकी किताब को अन्य भाषा में जब अनुदित करता है तो कितनी खुशी होती है, क्योंकि हर भाषा अपने भीतर एक संस्कृति, एक इतिहास और भावनाओं की पूरी दुनिया समेटे होती है, लेकिन अलग अलग भाषाओं के बीच संवाद संभव बनाता है ये अनुवाद। और इसीलिए आज का ये खास दिन अंतर्राष्ट्रीय अनुवाद दिवस के रूप में हम मनाते हैं।
1: तभी तो कहा जाता है ना कि अनुवाद भाषाओं के बीच बना वो पुल है जिस पर शब्द एक किनारे से दूसरे किनारे तक पहुंचते हैं और अपने साथ भाव, विचार और संस्कृति को भी लिए चलते हैं। और आपको बताऊं मंदाकिनी जी कि जाने माने गीतकार गुलजार साहब अक्सर कहते हैं कि जब कोई किसी किताब का अनुवाद किया जाता है तो जैसे इत्र की शीशी को इत्र की शीशी से इत्र दूसरी शीशी में जब डालते हैं पलटते हैं तो थोड़ा ना थोड़ा इत्र उस शीशी में रह जाता है। तो जो अनुवाद किया जाता है तो जो भाषा की अहमियत है, वो जो संवेदनाएं हैं, थोड़ी ना थोड़ी उसमें छूट जाती है। लेकिन फिर भी जब हम अनुवाद करते हैं तो ना पढ़ने से अच्छा होता है कि अनुवादित चीजों को, अनुदित चीजों को पढ़ा जाए और हम उसमें मीन मेक निकालते रहे कि अरे इसमें तो वैसा लिखा है और यहाँ पर अनुवाद उसने ऐसा किया है।
0: हम क्या करते हैं, भावों को अनुवाद के बाद भी हम आलोचना करते हैं, लेकिन कहते हैं कि अच्छा अनुवाद वो है जिसमें भाषा बदल जाती है लेकिन भाव नहीं बदलता। तो कविताएं हो, कहानियां हो, उपन्यास हो, वैज्ञानिक ज्ञान विचार हो, जब अनुवाद के माध्यम से सीमाएं पार करते हैं तो दुनिया थोड़ी सी करीब आ जाती है। और साथ ही भारत जो हमारा देश है, यहाँ पर अनुवाद की भूमिका और भी महत्वपूर्ण हो जाती है। ममता जी, हिंदी की बात करें, तमिल है, बंगाली है, मराठी है, गुजराती है, असमिया है, उर्दू है, कन्नड़ है, मलयालम है और अनेक भारतीय भाषाओं का साहित्य अनुवाद के माध्यम से एक दूसरे के करीब आता है और एक भाषा का साहित्य दूसरी भाषा के साथ पाठकों तक पहुंचता है और हमारी विविधता के बीच एक साझा सांस्कृतिक जो रिश्ता हमारा बनता भी है।
1: बिल्कुल, हमारे एक श्रोता ने लिखा है कि अनुवाद किसी भी नई भाषा को पूर्ण रूप से समझने के लिए बहुत जरूरी होता है। सभी लोग अपनी मातृभाषा में संवाद करना ज्यादा पसंद करते हैं। अनुवाद हमें उस नई भाषा को अच्छे से समझने में मदद करता है। अनुवाद न केवल भाषा की समझ को बढ़ाता है बल्कि हमें आपस में जोड़कर एक दूसरे की संस्कृति को समझने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अब अनुवाद के बारे में ये गाना क्या कहता है जरा सुनते हैं।

0: हम मनाएंगे जश्न 3 अक्टूबर विविध भारती की सालगिरह पर। जाने माने फिल्म निर्देशक तिग्मांशु धूलिया आएंगे विविध भारती के सजीव प्रसारण स्टूडियो में।
1: विविध भारती एक ऐसा चैनल है जहां हर दौर के गाने और हर तरह के कार्यक्रम आप सुन सकते हैं। 3 अक्टूबर विविध भारती चैनल अपने 70 बरस पूरे कर रहा है। मैं फिल्मकार तिग्मांशु धूलिया अपनी फिल्मी यात्रा के साथ सजीव प्रसारण में आपसे मिलने आऊंगा।
0: कुछ दिलचस्प किस्से, कुछ खुशगवार बातें,
2: आंखें भी होती हैं दिल की सुबह।
0: तो आप सब जुड़िए और सुनिए दिन में 2:30 बजे से विविध भारती। तो भाई 3 अक्टूबर जश्न का दिन होगा और हमारे श्रोता भी तैयार रहे, हम सब तैयार हैं। फिलहाल यहाँ पर एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं।

0: विविध भारती से ये है कार्यक्रम सखी सहेली।
1: 3 अक्टूबर विविध भारती की सालगिरह का जश्न, विविध भारती के लाइव

0: विविध भारती की सालगिरह का जश्न। बंदा ये बिंदास है, बंदा
1: ये बिंदास है। तो भाई 3 अक्टूबर को सब तैयार रहे, हमें भी इंतजार है, हमारे श्रोताओं को भी इंतजार है, और हमें इंतजार है कि आप मोबाइल में जो देख रही हैं
2: क्या पढ़ने वाली हूँ। लेकिन हाँ, मैं इससे पहले 3 अक्टूबर की बात भी कहना चाहूंगी ममता जी, कि हमारे श्रोता तैयार रहे दिन में 11 बजे से लेकर दोपहर बाद 4 बजे तक लगातार वो कार्यक्रम जो लगातार लाइव ब्रॉडकास्ट होगा उसे सुनना नहीं भूलें और अपने विचार लिखना नहीं भूलें।
1: मतलब सारे काम मुलतवी करके 11 बजे से लेकर 4 बजे तक विविध भारती के रेडियो सेट के पास बैठ जाए और विविध भारती सुनते रहे।
2: सुनना और लाइव ब्रॉडकास्ट देखना है भाई,
1: बिल्कुल
2: हम लाइव होंगे ना
1: जी, फेसबुक लाइव करेंगे।
2: बिल्कुल।
1: तो अभी आप जो पढ़ने वाली थी,
2: वो ये पढ़ना चाह रही थी कि अनुवाद पर जब हम बात कर रहे थे, हमारे श्रोता कहते हैं कि अनुवाद करना उन्होंने भी सीखा था परंतु उसका ज्यादा उपयोग नहीं कर पाए। पर हम उन लोगों को, उन अनुवादकों को बहुत बहुत सम्मान करते हैं जिन्होंने अलग अलग भाषाओं के ग्रंथों को, कहानियों को, उपन्यासों को दूसरी भाषा में अनुवाद करके हम लोगों तक पहुंचाया है। अनुवाद करने से हर भाषा का ज्ञान हर अलग अलग भाषा भाषियों को हो जाता है, ये बहुत ही अच्छी सराहनीय बात है।
1: मंदाकिनी जी, आजकल एक श्रोता और लिख रहे हैं कि आजकल फिल्मों में सब टाइटल स्क्रीन पर चलते हैं जिससे समझने में बड़ी आसानी होती है। मैं अलग अलग राज्यों की स्थानीय भाषाओं में बनी फिल्मों को, खासकर साउथ की फिल्मों, हॉलीवुड की फिल्मों और कोरियन टीवी सीरियल्स को सब टाइटल्स के साथ देखता हूँ।
2: ये होता है, बहुत अच्छा भी लगता है जब हम उन अनुदित फिल्मों को देखते हैं तो मजा भी आता है। एक श्रोता ने लिखा है कि अनुवाद किसी भी नई भाषा को पूर्ण रूप से समझने के लिए बहुत जरूरी होता है और सभी लोग अपनी मातृभाषा में संवाद करना पसंद करते हैं और अनुवाद हमें उस नई भाषा को अच्छे से समझने में मदद करता है। अनुवाद न केवल भाषा की समझ को बढ़ाता है बल्कि हमें आपस में जोड़कर एक दूसरे की संस्कृति को समझने में महत्वपूर्ण भूमिका भी निभाता है।
1: और एक बात और है, एक भाषा का साहित्य दूसरी भारतीय भाषा में पहुंचने से पढ़ने वालों का संसार भी व्यापक होता है। अब मिसाल के तौर पर मान लीजिए किसी एक का साहित्य हिंदी पाठकों तक, हिंदी का साहित्य अन्य पाठकों तक अनुवाद के माध्यम से पहुंच सकता है तो कितनी अच्छी बात है। आज जहाँ पर मशीनों के द्वारा, मतलब टेक्नोलॉजी के जरिए ट्रांसलेशंस किए जा रहे हैं, एआई के जरिए और डिजिटल अनुवाद उपकरणों ने अनुवाद को काफ़ी समृद्ध बना दिया है और तेज़ी भी आ गई है। साहित्यिक, कानूनी, सांस्कृतिक और संवेदनशील सामग्री में जो मानव अनुवादक की भूमिका अभी भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि कई बार एआई के माध्यम से जब आप ट्रांसलेशन करते हैं तो कुछ गलतियां भी होती
2: हो जाती हैं, वो जो फीलिंग्स हैं वो खत्म हो जाती है, अनुवाद हो जाता है।
1: कई बार उपयुक्त शब्द की बजाय कुछ और शब्दों का इस्तेमाल हो जाता है और आप वहाँ पर चूक जाते हैं।
2: बिल्कुल। और अब हम चूक रहे, गाना नहीं सुनवा रहे।
1: बिल्कुल नहीं, ये रहा गाना, सुनते हैं।

सागर नया सागर तो ही ले ले मेरे खुदा दिल से कोई किसी के ना खेले।

0: मंदाकिनी जी, जब आपसे छोटे, मतलब आपसे आगे की पीढ़ी की कोई नौजवान, कोई लड़की या कोई लड़का आपसे कुछ पूछता है, अरे आंटी आपको इतनी समझ नहीं है, अब जमाना बदल गया है, तो आपको कैसा लगता है?
1: सच बताऊं तो मुझे हंसी आती है उनकी मासूमियत पर, उनके भोलेपन पर. और होता है घर में जो हमारे बच्चे हैं या हमारे रिश्तेदारों के बच्चे हैं, वो अक्सर कहते हैं अरे आपको इतना भी नहीं पता, अरे ऐसा नहीं होता है, अब कितना कुछ बदल गया है, आप नहीं जानते ऐसा होता है.
0: आप ओल्ड जनरेशन हो, जबकि बहुत बड़ा फासला नहीं है दो पीढ़ियों के बीच, लेकिन फिर भी बच्चे ऐसे ही बोलते हैं. तो दरअसल जो जनरेशन गैप है, ये पीढ़ियों के बीच बढ़ती सोच की दूरी भी है.
1: बिल्कुल सही कहा. और हर पीढ़ी क्या है ममता जी, अपने साथ एक नया समय लेकर आती है और उनके सोचने का ढंग बिल्कुल अलग होता है, पसंद नापसंद, उनकी दुनिया को देखने का नजरिया अलग होता है. और यही अंतर जब समझ की कमी और संवाद की दूरी में बदल जाता है तो हम पीढ़ी अंतराल पर आ जाते हैं, यानी जनरेशन गैप की बात हम करते हैं.
0: बिल्कुल. और एक ही परिवार में रहने वाले माता पिता बच्चे कई बार एक दूसरे से तो प्रेम बहुत करते हैं, फिर भी उनकी सोच में इतना फासला होता है कि छोटी सी बात पर बहस छिड़ जाती है और वो समझ नहीं पाते कि ये बहस कहां से कहां चली जाएगी. समय के साथ जब समाज तेजी से बदल रहा है, आज की पीढ़ी इंटरनेट, स्मार्टफोन, सोशल मीडिया और आधुनिक शिक्षा के वातावरण में बड़ी हो रही है, तो ऐसे में जानकारी पाने के साधन पहले की तुलना में बहुत ज्यादा है. दूसरी तरफ पिछली पीढ़ियों ने सीमित साधनों और ज्यादा पारंपरिक वातावरण में जीवन बिताया है, तो ये स्वाभाविक है दो पीढ़ियों के बीच का
1: अंतराल होगा. लेकिन माता पिता को लगता है ममता जी कि आज के बच्चे बहुत जल्दी बदल रहे हैं, जबकि नई पीढ़ी की अगर हम बात करें तो उन्हें लगता है कि उनकी बड़े लोग जो है उनकी बात को समझना ही नहीं चाहते हैं. शायद दोनों ही अपनी अपनी जगह सही होते हैं, फर्क केवल समय का है. और जिन परिस्थितियों में एक पीढ़ी बड़ी हुई, दूसरी पीढ़ी उन्हीं परिस्थितियों में बड़ी नहीं हुई. जैसा कि अभी आपने कहा कि बहुत पुरानी पीढ़ी जो है बहुत ही पारंपरिक तरीके से बड़ी हुई, लेकिन जो नई पीढ़ी है, युवा पीढ़ी है, वो बहुत ही कहते हैं ना मॉडर्न तरीके से आगे बढ़ रही है. तो आज की जो युवा पीढ़ी है वो तकनीक और तेज बदलावों के बीच बड़ी हो रही है, और इसके लिए मोबाइल की बात करें, इंटरनेट है, सोशल मीडिया है, ये उनके जीवन का एक आम हिस्सा हो गई है. और वहीं पिछली पीढ़ी जो हमारी पीढ़ी है, वहां पर रिश्तों को चिट्ठियों से, मुलाकातों से और आमने सामने की बातचीत के जरिए सींचा जाता है. तो दोनों अनुभव अलग है, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि एक सही है या दूसरा गलत है, पर हमारे सोचने का ढंग ऐसा हो जाता है कि हमारे बच्चे गलत हैं.
0: बिल्कुल सही बात है. दरअसल दोनों पीढ़ियों के अनुभव अलग अलग हैं. बुजुर्गों के लिए जो बात अनुशासन और संस्कार की होती है, वहीं युवा पीढ़ी के लिए वो रोक टोक वाली होती है. उन्हें लगता है कि अरे नाहक रोक टोक कर रही हैं आप, हर चीज पे आप रोक लगाती हैं, मुझे तो ऐसा करना चाहिए, थोड़ी आजादी चाहिए, थोड़ा स्पेस चाहिए, ये होता है. और पहले के जीवन में जो स्थिरता थी, सुरक्षा को लेकर ज्यादा महत्व दिया जाता था, अच्छी पढ़ाई हो, स्थायी नौकरी मिले और विवाह में स्थायित्व हो, मतलब लंबे समय तक जीवन टिके एक दूसरे का, और परिवार को जीवन की महत्वपूर्ण उपलब्धियां माना जाता था. लेकिन अब लोगों की सोच, लोगों की विचारधारा बदल गई है कि हमें खुद क्या करना है वो हम तय करेंगे. पहले माता पिता बड़े बुजुर्ग तय करते थे.
1: बिल्कुल, बिल्कुल.
0: अब देखा जाए तो उनकी सोच भी गलत नहीं है. युवा पीढ़ी को हम ब्लेम नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उन्हें एक समय था कि बड़े तय कर देते थे कि आपको क्या पढ़ना है, क्या लिखना है, कहाँ जाना है, नौकरी करनी है कि नहीं, शादी कब करनी है,
1: ये और वही विवाह तय कर लेते थे माता पिता. और लड़की हो या लड़का, बहुत ही सहज

0: स्वीकार भी कर लेते थे उस रिश्ते को। अब क्या हो गया है ममता जी, कई जो बुजुर्ग है वो महसूस करते हैं कि आज के बच्चे पहले की तरह परिवार के साथ समय नहीं बिताते, उनकी बातें नहीं सुनते और जल्दी अपनी बात मनवाना चाहते हैं। तो इसके पीछे क्या है कि बदलती हुई जीवन शैली भी जिम्मेदार है, क्योंकि पढ़ाई है, नौकरी है, प्रतिस्पर्धा, गला काट प्रतियोगिता फैली हुई है और डिजिटल दुनिया ने युवाओं की जो दिनचर्या है, हमारे जो बच्चे हैं, आने वाली पीढ़ी है, उसकी दिनचर्या को बिल्कुल बदल दिया है। इसलिए हर बदलाव को संस्कारों की कमी मानना ये उचित नहीं है कि नई पीढ़ी में संस्कार नहीं है, हम तो बहुत संस्कारित थे। इस तरह की बात जो हम करते हैं ना, वो पीढ़ी अंतराल को बढ़ाती है।
1: समय भी प्रतिस्पर्धा का हो गया है। पहले समय आसान था, जिंदगी आसान थी, अब उतनी आसानी नहीं रही। आज के युवा अपने करियर में नए नए विकल्प तलाशना चाहते हैं। वे नौकरी के साथ साथ स्टार्टअप, फ्रीलांसिंग, कला, खेल, डिजिटल मीडिया और दूसरे नए क्षेत्रों में भी करियर अपना आजमाना चाहते हैं। यहीं से कई बार मतभेद शुरू हो जाते हैं और माता पिता और दादी दादा, खासतौर से नानी नाना में लंबा गैप होता है। तो उनका ये कहना होता है, अरे भाई यहीं पर हमारे घर, हमारे नजरों के सामने रहो तो ठीक रहेगा, लेकिन बच्चों की सोच है कि हमें अच्छा करना
0: चाहिए। वो बाहर जाएं, देश में जाएं, विदेश में जाएं। हमारे समय में क्या होता था कि पढ़ लिया, आपने एमए कर लिया, बीएड कर लो, टीचर बन जाओ या एलडीसी का एग्जाम देकर क्लर्क बन जाओ और लेकिन रहो इसी शहर में आसपास, तो हम मान लेते थे उस बात को। लेकिन आज के बच्चों के सामने बहुत बड़ा संसार है, वो उसमें जीना चाहते हैं और हमें उन्हें जीने देना चाहिए।
1: बातें कितनी भी कर लीजिए, रहिए इर्द गिर्द गीत के साथ, सुनते हैं ये गाना।

0: बिल्कुल सही कहा, एक तेरा साथ हमको दो जहां से प्यारा है, और आपका साथ मुझे बहुत ही प्यारा लग रहा है ममता जी।
1: मुझे भी आपका साथ बहुत प्यारा लग रहा है, ये तो प्रशंसा की बात हो गई, लेकिन हम इस पर अभी थोड़ी देर बाद आते हैं। पहले एक जरूरी बात अपने सखियों से खास तौर से साझा कर ले, सखाओं से भी।
0: बिल्कुल,
1: दरअसल रफ्तार जब हौसलों से मिलती है तो इतिहास रच उठता है, और कल एशियन गेम्स के ट्रैक पर

0: भारत की चार बेटियों ने यही इतिहास रचा। किरण पाहल, एम आर पूवम्मा, प्राची चौधरी और विद्या रामराज, इन चारों ने ऐसी दौड़ लगाई कि 400 मीटर रिले में ऐसी दौड़ लगाई कि तिरंगा सबसे ऊपर लहराया अपना तिरंगा और भारत की झोली में आया स्वर्ण पदक। ये सिर्फ 400 मीटर की चार दौड़ नहीं थी बल्कि ये मेहनत, उम्मीद और हौसले की दौड़ थी। किरण ने शुरुआत की, पूवम्मा ने बढ़त बनाई और प्राची ने उसे संभाला और आखिरी चरण में विद्या रामराज ने अपनी रफ्तार से भारत का स्वर्ण पक्का कर दिया। तो सलाम करते हैं इन चारों लड़कियों को जो गोल्डन गर्ल्स कहलाएं और जिन्होंने साबित कर दिया कि जब कदमों में जुनून हो तो मंजिल दूर नहीं
1: होती। बिल्कुल सही कहा आपने। और देखिए कि लड़कियां कहां से कहां पहुंच गई। तो हमें अभी जब हम पीढ़ी अंतराल की बात कर रहे थे, वही बात होती कि लड़कियां हैं, तुम घर का काम करो, तुम्हें तो आखिर पढ़ लिख कर करना क्या है, घर का काम ही तो करना है। ये जो मानसिकता है अब लड़कियों ने बिल्कुल दूर कर दी है। घर का काम अपनी जगह है लेकिन बाहर की दुनिया में अपना परचम फहराना ये लड़कियों ने सीख लिया है और वो कर भी रही है।
0: ये जो प्रशंसा वाली बात है ना, तो उन लड़कियों की भी प्रशंसा की जानी चाहिए, इन चारों लड़कियों की और देश की उन तमाम लड़कियों की जो अपने जुझारूपन से बहुत कुछ कर रही हैं,
1: बिल्कुल
0: लीक से हट कर कर रही हैं, जहां पर उन्हें सही वातावरण नहीं मिल रहा है, उचित माहौल नहीं मिल रहा है पढ़ाई के लिए, आगे बढ़ने के लिए, फिर भी अपना परचम लहरा रही हैं। अब हमारी एक सखी है जो कह रही है कि प्रशंसा के कुछ शब्दों में वो ताकत है जो किसी भी दुनिया, किसी की भी दुनिया बदल सकती है। अगर हम प्रशंसा का अर्थ समझें तो हर दिन हर पल की प्रशंसा करनी चाहिए जो हमें जीने का अवसर देती है। प्रशंसा के कुछ बोल निराशा में बड़ी आशा का काम करते हैं, मगर एक सच और है, अक्सर हम दूसरे की प्रशंसा नहीं कर पाते क्योंकि हम मन ही मन उसकी तुलना स्वयं से करने लगते हैं। मगर जब मन को कुछ अच्छा लगे तो उसे जाहिर कर देना चाहिए। कोई चीज दिल को छू जाए तो उसकी प्रशंसा जरूर करें।
1: बिल्कुल सही कहा। एक सखी ने लिखा है कि अगर प्रशंसा की बात करें तो किसे अच्छी नहीं लगती। रेडियो सखी ममता जी और मंदाकिनी जी द्वारा हर प्रोग्राम की प्रस्तुति प्रशंसा करने लायक होती है। फिर वो सुरीला सफर हो, सखी सहेली हो या छाया गीत, हम उनके प्रति माया हो ही जाती है। तारीफ करूं क्या उसकी जिसने विविध भारती चैनल बनाया। अगली 3 अक्टूबर के दिन विविध भारती का जन्मदिन जो आ रहा है, हम सभी अग्रिम बधाइयां दे रहे हैं।
0: क्या बात है, शुक्रिया। और एक सखी ने लिखा, एक श्रोता ने लिखा है, तारीफ वही अच्छी लगती है जिसमें दिखावा नहीं बल्कि दिल से निकली सच्चाई हो और सच्ची तारीफ से अपनापन बढ़ जाता है।
1: बिल्कुल। वही एक श्रोता लिखते हैं कि किसी भी कार्य में प्रशंसा प्राणवायु का काम करती है। किसी के अच्छे काम या गुणों की सच्ची पहचान यानी प्रशंसा बहुत अच्छी बात है। खूबी, सुंदरता, महिमा कह देना, स्तुति कर देना, गुणों का बार बार बयान करना यानी गुणगान करना। इसके अलावा बधाई या अभिनंदन में भी स्तुति की छटा दिखाई देती है। आत्मविश्वास, मनोबल और सकारात्मक व्यवहार को अच्छी प्रेरणा मिलती है प्रशंसा से और आपसी संबंध बेहतर बन जाते हैं।
0: और एक श्रोता ने लिखा है कि शब्द हमारे हैं लेकिन जब आपके विचारों से जुड़ते हैं तो उनकी खूबसूरती और बढ़ जाती है। आपकी प्रशंसा हमारे लिए हौसला है और प्यार से मिले शब्द हमेशा दिल में रह जाते हैं।
1: एक श्रोता ने लिखा है कि प्रशंसा जहां जरूरत होती है वहां जरूर करनी चाहिए। प्रशंसा के लायक कोई भी व्यक्ति कोई कार्य करता है तो उसकी प्रशंसा होनी चाहिए। गुण, कार्य, व्यवहार देखकर प्रशंसा की जाती है। हमारे घर में कोई भी सदस्य अगर इसका पात्र होता है तो हम उसकी प्रशंसा करते हैं और मैं तो करता हूं जरूर प्रशंसा।
0: अब कुछ श्रोताओं ने ये भी लिखा है कि प्रशंसा सच्ची होनी चाहिए। कई बार जब प्रशंसा चापलूसी का रूप ले ले तो प्रशंसा नहीं होती है बल्कि वो चापलूसी कहलाती है।
1: बिल्कुल सही कहा। और अब हम सुन लेते हैं एक गीत ममता जी।

0: गाने की प्रशंसा करने वाली है क्या?
1: बहुत
0: ये वो गाने हैं जो आपके दिल में निवास करते हैं,
1: बिल्कुल,
0: और किसी की प्रशंसा भी हमारे दिल में बैठ जाती है। हमारे एक श्रोता ने लिखा है, प्रशंसा बड़ा नवीन और रोचक मुद्दा है। तो ये भी तो प्रशंसा हुई हमारे लिए। प्रशंसा के लिए किसी के कहने की जरूरत नहीं होती, कोई शो लगा दीजिए तो अपने आप प्रसन्न हो गया मन और हम एक दूसरे की प्रशंसा करते हैं कि अरे तुमने हमारे लिए लगा दिया। हमारी नानी दीदी को, नानी दादी को मारवाड़ी सास बहू का शो देखकर मजा आता था। हमें तो और भी कुछ शोज के नाम लिखे जो टेलीविजन पर इन्होंने देखे कि वो हमें बड़ा अच्छा लगता था और जब कोई लगा देता था तो हम उसकी प्रशंसा करते थे।
1: हाँ, बिल्कुल सही बात।

0: और प्रशंसा तब भी की जाती है ममता जी जब हम कोई अच्छा व्यंजन बनाते हैं, जैसे कि मैं सूजी के व्यंजन बनाऊंगी आप खाएंगी तो निश्चित रूप से मेरी प्रशंसा करेंगी।
1: तो पहले तारीफ कर दे, बहुत अच्छा सूजी का व्यंजन आपने बनाया, सूजी का हलवा बनाने वाली है या उपमा या फिर कुछ डोसा।
0: बहुत सारी चीजें हमारे जो सखियों ने भेजी है हम उनको देखते हैं क्या क्या बनवाती है वो हमसे। देखिए एक लिखते हैं कि सूजी का बहुत ही आसान व्यंजन है लौकी के चिल्ले, जिसे बनाना बेहद आसान है और ये बहुत सॉफ्ट होते हैं। इसके लिए आपको हरी मिर्च, लौकी, पानी आवश्यकता अनुसार लेना होता है और सूजी को बहुत कम पानी में 15 मिनट के लिए भिगो दें, थक कर फिर उसको रख दें। तब तक लौकी को कद्दूकस कर लें और अच्छे से धो के उसका पानी बिल्कुल अलग करके सूजी में मिला दें और हरी मिर्च भी डाल दें, साथ ही मसाले, नमक, अजवाइन, ऑर्गिनो जो भी उपलब्ध हो सबको मिक्स करके लोहे के तवे पर फैलाकर बहुत हल्के घी में चिल्ले को सेक लें। सेकते समय चिल्ले को उतारने से पहले उसको थोड़ा सा पलटें, दबा दें जिससे वो सॉफ्ट बन जाते हैं। इसमें बहुत कम घी और समय भी बहुत कम लगता है।
1: और अब घड़ी की ओर देखिए कि बिल्कुल भी समय नहीं है कि हम और कुछ कोई रेसिपी बताएं या कुछ बोले बतियाएं या गाना सुनवाएं। तो लेते हैं सखियों और सखाओं से इजाजत। आप सभी को ममता सिंह
0: और मंदाकिनी जोशी का नमस्कार।
1: सखी सहेली कार्यक्रम की प्रोड्यूसर अनुश्री पाठक।
2: सखी सहेली।

0: ही सहेली।
1: एक विलक्षण गायक।
2: अरे ओरे हे।
1: संगीत के साधक।
2: ओरे पथिकवा मत जइयो तू वृंदावन की।
1: उनके सुरों में भक्ति की निर्मलता है, संगीत की गहराई है, भावों में मिठास है।
2: राम नाम घन श्याम नाम शिव नाम सुमिर दिन राम।
1: वो हैं संगीतकार, गायक और अभिनेता शेखर सेन।
3: बहुत कम लोग ये जानते हैं कि जो मीरा के भजन इस समय हम लोग सुनते हैं, अभी मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों ना कोई, ये जो भाषा है ये सधुक खड़ी भाषा है। मीराबाई ने जो भी लिखा वो सारे भजन जो थे वो मेवाड़ की भाषा में।
1: पहली अक्टूबर से हम शुरू कर रहे हैं नई श्रृंखला शताब्दी की भक्ति रचनाएं। सुनिए संगीत सरिता सुबह और शाम 6:45 सिर्फ

दोस्तों नमस्कार, आज के मेहमान कार्यक्रम में आज आपको सुनवा रहे हैं कहानीकार, उपन्यासकार और अनुवादक मनोज रूपड़ा से रेडियो सखी ममता सिंह की बातचीत। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आपकी रेडियो सखी ममता सिंह और आज हमारे बीच हिंदी साहित्य के ऐसे रचनाकार उपस्थित हैं जिनकी रचनाओं में कहानी सिर्फ कही नहीं जाती बल्कि दृश्य की तरह हमारे सामने घटित होती है। मनोज रूपड़ा समकालीन हिंदी साहित्य के चर्चित कहानीकार और उपन्यासकार हैं। उनकी रचनाओं में भाषा की सादगी है और साथ साथ गहरी संवेदना, सामाजिक

0: यथार्थ और दृश्यात्मकता विशेष रूप से दिखाई देती है। आखिरी सीन जैसी कहानी और प्रतिसंसार जैसे उपन्यास में उनका सिनेमाई लेखन पाठक को शब्दों के माध्यम से दृश्य देखने का अनुभव कराता है। उनकी रचनात्मक दुनिया में इंसान, समाज और उसके भीतर चलने वाले द्वंद बहुत सहज लेकिन प्रभावशाली ढंग से सामने आते हैं। आज हमें उनसे उनके लेखन, उनकी रचनात्मक दृष्टि और साहित्य में उनके प्रयोगों पर बातचीत करने का अवसर मिला है। मनोज जी, विविध भारती के स्टूडियो में आपका हम बहुत बहुत स्वागत कर रहे हैं। नमस्कार।
1: धन्यवाद। नमस्कार। और विविध भारती के सभी श्रोताओं को भी मेरा नमस्कार।
0: आपकी कहानियों में कहीं रेडियो आता है, बड़े वॉल वाला रेडियो
1: जी, जी।
0: और कहीं पर संगीत आता है, तो संगीत की बातें तो हम करेंगे बाद में, लेकिन हम रेडियो की बात जानना चाहते हैं कि रेडियो से कैसा लगाव है। और एक जो आपकी कहानी है टावर ऑफ साइलेंस, इसमें कहीं रेडियो भी है और साथ में मुंबई भी है, और मुंबई में है आप और रेडियो स्टेशन पर बैठे हैं, तो ये अपने एहसास साझा कीजिए
1: जी। मुझे याद आ रहा है एक इलाका है मुंबई का जहाँ पुराने रेडियो के अब भी, मतलब अब तो शायद ना हो, उसको सुधारने वाले उसके मैकेनिक होते थे। तो उस दुकान में मैं पहुंच गया, वहाँ बहुत बड़े बड़े रेडियो थे वॉल वाले और इतने खूबसूरत उसके कैबिनेट, तो देखकर मेरी इच्छा हो गई कि मैं उसमें से एक दो रेडियो खरीद लूँ।
0: क्या बात है।
1: लेकिन उसने कहा कि आप लाख रुपया देंगे तो भी ये रेडियो आपको नहीं मिलेगा।
0: अरे
1: जबकि वो सब बंद पड़े हुए रेडियो थे
0: जी, जी।
1: लेकिन उन रेडियो के जो मालिक थे
0: जी,
1: वो इतने बड़े रेडियो प्रेमी थे कि वो चाहते थे कि किसी भी तरह से फिर से ये रेडियो में आवाज आनी शुरू हो जाए।
0: अच्छा।
1: वो क्योंकि वो वॉल वाले रेडियो थे और वो बढ़ने बंद हो चुके थे, तो उनकी ये कोशिश थी कि कहीं से भी वॉल लेकर आओ, तब तक ये रेडियो तुम्हारे यहाँ पड़े रहेगा। तो इतने पुराने मतलब प्रेमी थे रेडियो के लोग, और मैं तो बहुत पुराना प्रेमी हूँ रेडियो का, विविध भारती वर्षों से सुनता आ रहा हूँ, बीबीसी लंदन सुनता था, और सिर्फ गीत संगीत ही नहीं सुनता था, दूसरे जो कार्यक्रम आते थे महत्वपूर्ण रेडियो के, रेडियो नाटक का बहुत शौकीन रहा हूँ मैं, इसलिए मैं आपकी जो एक धारावाहिक चल रही है
0: गीतों
1: भरी कहानी उसको बहुत ध्यान से सुनता हूँ, क्योंकि मुझे रेडियो आर्टिस्ट की आवाज शुरू से बहुत पसंद रही।
0: क्या बात है
1: जी।
0: और आपकी प्रतिक्रिया भी मिलती रहती है कहानियों पर, खासतौर से गीतों भरी कहानी पर। तो रेडियो से आपका प्रेम पहले से ही आपने बताया है। हम लिखने के बारे में जानना चाहते हैं, ये लिखने का सफर आपका कैसे शुरू हुआ, कहाँ से आपने शुरुआत की?
1: शुरुआत इस तरह से हुई कि 17 साल की उम्र का जब मैं था
0: जी,
1: तो एक मैंने थिएटर वर्कशॉप ज्वाइन किया था, 7 दिन का वो वर्कशॉप था, और रायपुर आकाशवाणी के निदेशक उस समय थे मिर्जा मसूद
0: जी, जी।
1: वो उस ड्रामा प्रशिक्षण केंद्र जो था उसके वो प्रशिक्षक थे, तो मिर्जा मसूद से मैं पहले से प्रभावित था उनकी आवाज से, उनके और बहुत अच्छे प्रोड्यूसर भी थे वो
0: जी।
1: कई अच्छे कार्यक्रम उन्होंने किए थे, तो वो वर्कशॉप मैंने ज्वाइन किया। वहां कुछ लोग ऐसे मिले जो पढ़ने लिखने वाले थे, कला की दूसरी विधाओं से जुड़े हुए थे, उसमें एक और बहुत महत्वपूर्ण शख्स थे वहां जो उसके निर्देशक थे, क्षितिज रंग शिविर नाम था उस संस्था का, उसके जो निर्देशक थे वो राम हृदय तिवारी। उनको जब मालूम पड़ा कि मैंने बहुत पहले स्कूल छोड़ दी है और मेरी पढ़ाई लिखाई उस तरह से औपचारिक है नहीं, तो उन्होंने मुझे प्रेरित किया कि तुम ठीक है स्कूल छूट गई कोई बात नहीं
0: जी।
1: स्कूल से बाहर भी बहुत बड़ी दुनिया है, स्कूल का जो पाठ्यक्रम हो तो निर्धारित पाठ्यक्रम होता है
0: जी,
1: लेकिन स्कूल के बाहर ज्ञान की बहुत बड़ी दुनिया है।
0: क्या बात है।
1: तो उन्होंने मुझे लाइब्रेरी का सदस्य बनाया।
0: अच्छा।
1: और वो ये कहते थे कि तुम अखबार रोज पढ़ो और अखबार में संपादकी को विशेष रूप से पढ़ना चाहिए खबरों के अलावा।
0: जी, जी, जी।
1: फिर वो बहुत सारी पत्रिकाएं मुझे ला कर देते थे और उस तरह से पढ़ने में मेरी रुचि बढ़ी। फिर जब वो एक संपादक के नाम पत्र नाम का एक कॉलम आता था देशबंधु नाम के अखबार में, एक बार मैंने उसमें एक चिट्ठी लिखी, एक बिल्कुल सामान्य जो पाठक होता है अखबार का उसकी जो प्रतिक्रिया होती है, वो किसी मोहल्ले की किसी समस्या पर एक छोटी सी मेरी चिट्ठी थी और थोड़ी लंबी हो गई थी
0: जी, जी।
1: आप लोग सब जानते हैं मैं लंबी कहानी का लेखक हूँ, वो चिट्ठी भी लंबी हो गई थी। वो चिट्ठी तिवारी जी ने पढ़ी तो बोले यार जो तुमने जो लिखा है उसमें कहानी है, यानी वो सिर्फ एक खबर नहीं है, चिट्ठी नहीं है, तुम्हारा लिखने का जो ढंग है उससे ऐसा लगता है कि तुम कहानी लिख सकते हो।
0: अच्छा।
1: तो पहली बार ये कोई प्रेरित करने वाला आदमी मिला जिसने कहा कि तुम कहानी लिख सकते हो। फिर मैंने कोशिश की लिखने की कहानी, और पहले बहुत कहानियां पढ़ी, पढ़ने के बाद मैंने सोचा कि नहीं कुछ अलग हिट लिखना है, तो दफन कहानी जो लिखी मैंने वो 3 साल में लिखी।

0: साल में एक
1: तीन,
0: कहानी,
1: हाँ 3 साल में। और मैं ये
0: क्या
1: चाहता
0: बात
1: था
0: है,
1: कि पहली कहानी जो आए तो मैं पूरी तैयारी के साथ आए,
0: क्या बात है।
1: और उसमें बहुत मैंने मेहनत की। उसके बहुत सारे ऐसे पहलू थे जिसकी मुझे जानकारी नहीं थी, तो मैं जा जा करके लोगों से मिलता था। उसमें कब्रिस्तान का दृश्य है, तो कब्रिस्तान में क्या होता है, उसमें जनाजे की नमाज कैसे पढ़ी जाती है,
0: क्या बात है।
1: ये सब जानकारी मुझे नहीं थी। तो मैं कब्रिस्तान जाता था और वहाँ के जो नमाज पढ़ाते जो थे उनसे मिल करके फिर मैंने उनसे लिखित रूप में लिया, ये इस समय ऐसा पढ़ा जाता है, इस समय ये कलमा पढ़ा जाता है। उस तरह से वो कहानी बनी, शुरुआत इस तरह से हुई।
0: इतनी रिसर्च करनी चाहिए एक
1: मैं रिसर्च उस तरह से देखो मैं मतलब पढ़ करके, किताबें पढ़ करके या इंटरनेट से या इस तरह से चीजों से रिसर्च नहीं करता, लेकिन मैं मौके पर जाता हूँ और वहां भले मैं किसी रिपोर्टर की तरह नोट ना लूं, लेकिन उस माहौल में जाकर के गहरी सांस लेना भी काफी होता है।
0: बिल्कुल सही बात है,
1: उससे वो पूरा माहौल जो है ना आपके भीतर अपना एक रास्ता बनाता है।
0: और वो आपकी ये दृश्यात्मक बातें आपकी कहानी में नजर आती हैं, और ये प्रेरणा की बात है हम नए लेखकों के लिए जो नई पीढ़ी तैयार हो रही है, लेखन की दुनिया में आ रही है, तो उन्हें ये बात हमें लगता है नोट करने लायक है कि अगर आपको कहानी लिखनी है किसी मुद्दे पर किसी विषय पर तो उसमें डूबना चाहिए, उसके बारे में जानकारी हासिल करना चाहिए। मैं भी समृद्ध हुई इस बात से, तो अगली कहानी में मैं ये ध्यान रखूंगी। और ये बातें नजर आती हैं आपकी कहानियों में, टावर ऑफ साइलेंस एक ऐसी कहानी है आपकी जो बहुत चर्चित है और बहुत डीप में लिखी हुई, तो इसमें जो एक कैरेक्टर है टेम्पटन दस्तूर, ये कहाँ मिले आपको, कैसे ढूंढा आपने?
1: ये बंबई का ही है, और इसमें भी देखो हमारे धोबी तालाब मरीन लाइंस के बीच में हमारे मामा की दुकान है मिठाई की, श्याम जी नारायण जी के नाम से, अब तो बंद हो गई वो दुकान। उनकी दुकान के ठीक सामने ये सारे पारसी परिवार थे। रमन मिश्र जी जो हमारे बहुत अच्छे किताब, उनकी भी दुकान वही है बंबई में। अगर किसी को हिंदी साहित्य की कोई किताब खरीदनी तो उनकी दुकान पर जाना पड़ता था, तो मैं उनसे मिलने भी जाता था और अपने मामा से भी मिलने जाता था। तो ये जो परिवार जो था, जो मैंने जो करेक्टर जो लिए हैं उसमें, हक्कू भाई का जो करेक्टर लिया है, एक घर था उसमें दो बूढ़े लगभग 85 के आसपास की उम्र की और एक बूढ़ी महिला उसकी भी लगभग 90 के आसपास की उम्र, वो तीनों सगे भाई बहन थे, तीनों ने शादी नहीं की थी और एक ही घर में रहते थे तीनों। ये मुझे थोड़ा सा अलग तरह का वो लगा कि कैसे मतलब ये रहते होंगे भाई बहन एक साथ बिना विवाह किए इतने सालों से। तो मैं हर बार जाता था उस परिवार की कुछ ना कुछ जानकारी हासिल करता था। तो टेम्पटन दस्तूर जो था वो उसके भाई का बेटा था।
0: अच्छा।
1: और वो उस तरह से कहानी में तो चीजें बदलती भी है, फिर अब सिर्फ करेक्टर का सवाल नहीं होता, कहानी में लोकल का भी बहुत महत्व होता है।
0: बिल्कुल।
1: वो पूरा जो लोकल है जिसको हम बॉम्बे का जो लैंडस्केप बोलते हैं वो इलाका वही है, और वो पत्थर की इमारतों का जो पूरा इलाका है उसमें मुझे हर जगह एक कहानी छुपी हुई दिखती है, क्योंकि सब इमारतें 100-150 साल पुरानी हैं। तो कितनी पीढ़ियां उन इमारतों में से गुजरी होगी और कितनी कहानियां उसमें बनी होगी।
0: बिल्कुल।
1: तो ये एक लोकल था, और फिर मुंबई से मेरा नागपुर जाना हुआ तो नागपुर में इम्प्रेस मिल थी, उस इम्प्रेस मिल को मैंने अपने सामने डिमोलिश होते हुए देखा। तो 125 साल पुरानी जो चिमनी थी इम्प्रेस मिल की, कुछ लोग चाहते थे कि उसको हेरिटेज के रूप में रखा जाए, क्योंकि टाटा की ये मदर कंसर्न थी इम्प्रेस मिल, और उस इलाके की भी बल्कि पूरे हिंदुस्तान के आर्थिक रीढ़ की हड्डी थी। उस मिल के कारण बहुत बड़ा एक आर्थिक परिवर्तन हमारे देश में आया। तो लोग चाहते थे कि उस चिमनी को एक हेरिटेज के रूप में रखा है, लेकिन ये संभव नहीं होता। जब वो चिमनी गिराई गई तब पहला बीज मेरे कहानी में आया, तो मैंने मतलब फिर दोनों को रिलेट किया, लोकल को, एक यहाँ का इम्प्रेस मिल का लोकल था और एक बॉम्बे का ये वाला लोकल था, फिर उसके जो करेक्टर हैं, तो फिर चीजें मिलती गई और कहानी आगे बढ़ती गई उसी तरह से।
0: जी, तो वैसे भी आपकी कहानियों में शब्दों के साथ साथ हम आंखों से कहानी को देखते चलते हैं, ये आपकी खासियत है। और एक तो लंबी कहानी लिखने की, जो आपने खुद भी कहा कि लंबी कहानी लिखते हैं, तो क्या ये सायास लिखते हैं लंबी कहानी या अपने आप लिख जाती है?
1: कहानी लिखते समय कभी भी ना ये नहीं सोचता मैं कि इसका अंत कहाँ होगा, और बहुत कोई निर्धारित और निश्चित अंत मेरे दिमाग में नहीं होता।
0: बिल्कुल। टर्निंग पॉइंट के बारे में सोचते हैं, द्वंद के बारे में सोचते हैं, या वो भी लिखा
1: नहीं उस तरह से, मतलब किसी एक पहलू पर नहीं सोचता मैं। और मेरी ये कोशिश होती है हमेशा कि मेरे कहानी के जो किरदार है वो खुद अपनी बात कहे, मैं उन पर अपने विचार न ला दूं।
0: बिल्कुल।
1: या एक लेखक कहीं उसमें मालूम नहीं पड़ना चाहिए कि ये लेखक अपनी बात कह रहा है।
0: जी जी।
1: तो किरदारों को मैं अपनी तरह से खेलने का पूरा

0: मौका देता हूँ, और मेरी इस छूट के कारण वो कहानी लंबी हो जाती कई बार।
1: जी जी। और वो पात्र बोलते हैं, संवाद करते हैं पाठकों से, और पाठक के दिल में कहीं पैठ बना लेते हैं। अब हमें लगता है संगीत आपसे बहुत जुड़ा हुआ है, संगीत का दामन थाम लेते हैं जब बातचीत थोड़ी आगे बढ़ती है, तो यहाँ पर हम कौन सा गाना आपकी पसंद का सुनवाएं अपने श्रोताओं?
0: पहली मतलब जो मेरी पसंद है, एक गाना मुझे बहुत प्यारा लगता है क्योंकि उसमें सैक्सोफोन की आवाज है, उस गाने का नाम है जिंदगी कैसी है पहली
1: जी,
0: और उसमें आप ध्यान दीजिए कि सैक्सोफोन कितनी खूबसूरती से बजा है
1: जी। तो सुनते हैं ये गाना।

0: मनोज जी ने अपने श्रोताओं को बता दें कि मनोज जी वाद्यों के बहुत शौकीन है, संगीत के बहुत शौकीन है जहां तक हमें जानकारी है, और इस गाने में सैक्सोफोन का खूबसूरत प्रयोग हुआ है। आपकी संगीतिक कथा त्रयी है, तीन कहानियों का एक संग्रह है अनुभूति, जिसमें तीन कहानियां साज नासाज और आमाजगा और अनुभूति, तीनों कहानियां मैंने पढ़ी हैं।
1: अच्छा,
0: और तीनों में संगीत के सुर हमें दिखाई देते हैं और खास तौर से वाद्य। तो इन जो तीनों कहानियां हैं, तीनों कहानियों के बारे में आप बताइए कि पहले तो साज नासाज में शायद सैक्सोफोन है, तो ये सैक्सोफोन ने आपको यहाँ पर कहानी लिखने के लिए बुलाया या आपको बुलाया सैक्सोफोन ने, क्या थी?
1: दोनों मिली जुली चीजें हैं। मैं एक बार गोवा घूमने गया था अपने दोस्तों के साथ, वहाँ पणजी में एक बड़ा ड्रामा फेस्टिवल हो रहा था, उसमें हबी साहब का भी एक प्ले था, रमेश तलवार साहब का भी प्ले था, गिरीश कर्नाड साहब का भी एक प्ले था और रतन थियम का भी था। तो मैंने अपना घूमना कैंसिल कर दिया, दोस्तों को अपने रास्ते पर भेज दिया और मैं इस ड्रामा फेस्टिवल में नियमित रूप से नाटक देखता रहा। एक शाम जब शो खत्म हुआ तो मैं समुद्र किनारे गया, एक रॉक बीच था वो पथरीला, उस पर एक बैठा हुआ था बिटनिक कलाकार, लगभग 55 के आसपास की उम्र होगी, लंबे बाल, सफेद बाल, और वो सैक्सोफोन बजा रहा था डूबते हुए सूरज को देखते हुए। समुद्र का किनारा है, डूबता हुआ सूरज और सैक्सोफोन की आवाज, इतना प्रभाव उसका मुझ पर पड़ा। एक तो वो पूरी दृश्यात्मक था, यानी वो सिर्फ उसके बजाने का असर नहीं था, वो जिस तरह से समुद्र को या सूर्य को संबोधित होकर के बजा रहा था,
0: क्या बात है।
1: तो प्रकृति, संगीत और ये सब चीजों का जो मिला जुला प्रभाव था वो मेरे अंदर बहुत गहराई तक चला गया। सैक्सोफोन को लाइव पहली बार मैंने उस तरह से सुना, फिर कई सालों तक तो वो मेरे दिमाग में था कि ये सैक्सोफोन है, इसके ऊपर कुछ करूंगा। बंबई आना हुआ उसके बाद मेरा, लगभग 10 सालों के बाद
0: जी।
1: बंबई में घाटकोपर में मेरी नमकीन की फैक्ट्री थी, फैक्ट्री के

0: राजू में एक चाल थी, वहाँ कुछ इंस्ट्रूमेंटलिस्ट रहते थे साज बजाने वाले जो फिल्मों में बैकग्राउंड म्यूजिक देते थे, उनसे मेरी मुलाकात हुई। फिर एक विली भाई हमारे परिचित हमारे सेल्समैन थे परेल में, उनके बहुत सारे रिश्तेदार जो थे वो साज बजाने वाले इंस्ट्रूमेंटलिस्ट थे सब, और ये सब फिल्मों में बजाते थे। तो ये मालूम हुआ कि घाटकोपर के चाल में जो रहते थे वो सब उत्तर प्रदेश के थे, और ढोलक शहनाई तबला इस तरह के वादी बजाते थे, और बरेल में जितने रहते थे वो सारे गोवा से आए हुए थे
1: जी जी।
0: और ज्यादातर वेस्टर्न म्यूजिक इंस्ट्रूमेंटल जो बजाए फिल्मों में उसके बजाने वाले हैं वो लगभग गोवा से आए हुए सब। तो उनसे मिलने के बाद मुझे ये मालूम पड़ा कि सिंथेसाइजर आने के बाद और नई जो टेक्निक आई संगीत में, उसके कारण बहुत सारे इस तरह के साजिंदों के जीवन में बड़ा परिवर्तन आ गया कि अब उनको काम मिलना थोड़ा सा मुश्किल हो गया, आजीविका में बड़ा फर्क आ गया। तो उसमें फिर ये ख्याल आया कि एक कोई सैक्सोफोन बजाने वाला है और उसने कई माइलस्टोन पीसेस दिए हैं कई फिल्मी गानों में, लेकिन अब उसका कोई नाम नहीं है। हालांकि मैं वैसा कोई एतराज नहीं कर रहा हूँ, लेकिन इंस्ट्रूमेंटलिस्ट को किसी भी, हम संगीत निर्देशक को जानते हैं कि किस फिल्म में किसने संगीत दिया, लेकिन उसमें कोई खास धुन किस कलाकार ने बजाई
1: बिल्कुल नहीं बताया जाता,
0: ये हमको नहीं मालूम होता है हमेशा। तो एक तो उसको कभी भी उस तरह से मतलब सार्वजनिक कोई पहचान उसको नहीं मिली, और दूसरा उसका रोजगार भी चला गया। तो उस दर्द को मुझे लगता था कि केंद्र में लेना चाहिए कहानी में, तो वो एक सिलसिला बना फिर साज नसाज का।
1: और फिर उसके बाद सारंगी के मद्देनजर आपने आमाजगाह लिखी
0: जी,
1: जिसमें सारंगी का खूबसूरत प्रयोग है, तो कोई सारंगी वादक भी आपको मिला था ऐसे?
0: सारंगी वादक वैसे नहीं मिला, लेकिन सारंगी के बारे में एक बार मैं पढ़ रहा था
1: जी,
0: और मुझे बहुत आश्चर्य हुआ कि सारंगी और सैक्सोफोन ये दोनों बड़े बदनसीब साज थे
1: जी।
0: वो इस लिहाज से कि सैक्सोफोन को भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर का जो फिलहार्मोनिक ऑर्केस्ट्रा था उसमें बहुत सालों तक कोई जगह नहीं मिली। सैक्सोफोन जो नाइट क्लब होते थे वहां बजता था, बाद में धीरे धीरे और लोग भी बजाने लग गए, फिर बाद में वो ऑर्केस्ट्रा में भी आया। ठीक वैसे ही सारंगी भी
1: और दुख में,
0: और उसको भी शास्त्रीय संगीत के विधिवत मंच में आने में सारंगी को भी बहुत समय लगा। तो ये दोनों साज की भी अपनी एक मार्मिक कहानी है, उसके बजाने वाले की तो हो गई अलग कहानी, लेकिन ये दोनों जो इंस्ट्रूमेंट है उसकी भी अपनी एक बड़ी मार्मिक कहानी है।
1: बिल्कुल।
0: तो सारंगी का जब मैं ऐसा पढ़ रहा था कि इतना मतलब ये कहां से आया, अच्छा उसकी आवाज इतनी सुरीली है, वो इतनी खींचने वाली आवाज है, सैक्सोफोन की भी और सारंगी की भी, फिर ये ख्याल आया। और दूसरा जो उस कहानी का जो बीज जो पड़ा, कुमार गंधर्व
1: जी, पंडित कुमार गंधर्व,
0: हाँ, उनके जो पुत्र हैं मुकुल शिव पुत्र, तो जैसा मैंने लोगों से सुना जो उसके बारे में खबर आई, तो उनके उस पीरियड में उस फेज में वो किस तरह की परिस्थिति में थे उसको देख करके मुझे लगा कि मैं अपने कहानी का जो नायक है उसको उस तरह से ले सकता हूँ। बल्कि सिर्फ आवाजगाह का ही नहीं, इसका जो सितार वादक है अनुभूति का, वो भी लगभग एक तरह के मानसिक अवसाद की स्थिति में चले जाता है। तो एक कलाकार के जीवन में जब कहीं बड़ा अवसाद आता है, कहीं बड़ी जब उदासी आती है, और कई बार जब बहुत ज्यादा बड़े स्तर पर उसको घेर लेती है, तो उसका मानसिक संसार कैसा होता है, ये मेरे जहन में था, और इसी वजह से ये दोनों कहानी की रचना हुई
1: और बहुत चर्चित हुई। और ये अनुभूति कथा संग्रह में तीनों कहानियां शामिल हैं। हम जानना चाहते हैं मनोज जी कि इन तीनों कहानियों में वाद्य यंत्र और कथा के बीच आपने रिश्ता कैसे स्थापित किया, क्योंकि पात्रों के साथ कहानीकार का भी एक नाता जुड़ जाता है।
0: तो असल में देखो, जो वाद्य बजाने वाला कोई भी जो शख्स है उसका जो भी जीवन हो तो मानवीय जीवन है, और उसके भी अपने रिश्ते हैं, उसके जीवन में भी उतार चढ़ाव है, तो वो जीवन का उसका उतार चढ़ाव और उसके रिश्ते। अच्छा, दिक्कत एक ये आती है एक सामान्य आदमी में और एक कलाकार के जीवन में, खासतौर से इंस्ट्रूमेंटल जो प्लेयर होते हैं वो थोड़े ज्यादा सेंसिटिव होते हैं, मुझे तो लगता है कि वो राइटर से भी ज्यादा सेंसिटिव होते हैं।
1: बिल्कुल।
0: तो ये इनकी जो ओवर सेंसिटिविटी है वो कभी कभी उनके जीवन में कुछ ऐसे मोड़ ले आती है जो मेरे नजर में तो एक कहानी है
1: जी,
0: है ना, उनके जीवन के उस तरह के जो उतार चढ़ाव है और उसके जो मोड़ है वो कहानी वहीं से बनती है
1: जी।
0: तो मैं उनके संगीत और उनके जीवन दोनों को मिला करके कहानी बनाता हूँ
1: जी, और एक उम्दा कहानी बनती है। यहाँ हम आपसे जानना चाहते हैं कि एक लिटरेचर प्राइज की टीम ने एक फिल्म बनाई।

0: थी आपके उपन्यास पर, जिसे जैसी भी शॉर्ट में कहते हैं, वो काले
1: ओके
0: अध्याय पर, काले
1: हाँ
0: अध्याय का जब अनुवाद आया था,
1: जी जी
0: तो ये क्या कहानी है, कैसे
1: नहीं,
0: किसी
1: वो
0: के
1: कोई
0: मन में आई?
1: डॉक्यूमेंट्री फिल्म नहीं थी।
0: हाँ
1: असल में जो भी लेखक शॉर्ट लिस्ट होते हैं,
0: शॉर्ट फिल्म थी कोई?
1: शॉर्ट फिल्म थी उस लेखक
0: हाँ
1: के जीवन का परिचय,
0: जी,
1: तो वो हम पांचों लेखकों के ऊपर बनी थी।
0: हाँ
1: जो जो पांच लेखक उस अवार्ड के लिए शॉर्ट लिस्ट हुए थे,
0: जी
1: तो वो पहले से डॉक्यूमेंट्री बनाते हैं उसके, और जब किसी को अवार्ड मिलता है तो वो फंक्शन के दिन उसको दिखाया जाता है।
0: जी, तो वो फंक्शन के दिन दिखाने के लिए
1: नहीं,
0: बने।
1: मैं मुझे अवार्ड नहीं मिला था
0: हाँ पर आपकी
1: जिनका,
0: किताब शामिल थी उस
1: हाँ किताब
0: अवार्ड
1: शामिल थी मेरी
0: जी,
1: भी।
0: तो उस पर एक फिल्म बनाई गई थी और वो लोगों
1: हाँ
0: तक पहुंची, हमने भी देखी वो फिल्म,
1: हाँ,
0: बेहतरीन।
1: वो असल में जैसे भी एक विज्ञापन फिल्म थी। वो अपने चुने हुए लेखक का बहुत अच्छे से प्रचार करते हैं, उनकी एक टीम है, और अपने चुने हुए लेखक को, जो क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि विनर चाहे कोई भी हो, जो पांच लेखक शॉर्ट लिस्ट में आए उनके लिए वो सब समान है।
0: जी बिल्कुल सही बात है।
1: जी
0: बात फिल्मों की चली है तो यहाँ पर एक फिल्मी गाना होना चाहिए, बताइए कौन सा गाना सुनवाए आपकी पसंद का?
1: बहुत प्यारी वायलिन की धुन है उस गाने में, एक प्यार का नगमा है,
0: मौजों की रवानी है,
1: मौजों की रवानी है।
0: शोर फिल्म का गाना है,
1: जी
0: सुनते हैं यही गाना।
1: जी

0: अब बात फिल्मों की चली है और गाना ये सुनवाया शोर फिल्म का गाना। फिल्मों में आपकी बड़ी गहरी दिलचस्पी है, बातचीत में आप अक्सर फिल्मों का जिक्र करते हैं और कई बार तो ऐसी फिल्मों का नाम लेते हैं जो सुनी भी नहीं है और आपने देखी होती है, उसके बाकायदा किरदार का जिक्र करते हैं। हिंदी सिनेमा के साथ साथ विश्व सिनेमा का जिक्र करते हैं और ये कहा जाता है कि मनोज रूपड़ा बड़े विलक्षण कथाकार के साथ साथ फिल्मों के मर्मज्ञ हैं। तो बताइए इस शौक के बारे में।
1: मैं अपने आपको जो ना फिल्म का मर्मज्ञ या विशेषज्ञ नहीं मानता, मैं फिल्म का समीक्षक भी नहीं हूँ,
0: लोग मानते हैं।
1: मैं अपने आपको फिल्म का एक जागरूक दर्शक मानता हूँ
0: जी,
1: और मुझे ऐसा लगता है कि फिल्म देखना भी एक कला है।
0: सही बात है।
1: और ये मुझे कब लगा, इसकी भी एक छोटी सी कहानी है। दुर्ग में प्रगतिशील लेखक संघ के साथ जुड़ा था मैं, और एक बार मैंने कहा कि मेरी इच्छा से एक कार्यक्रम करवाया जाए, तो हमेशा साहित्यिक गोष्ठियां तो होती थी, मैंने फिल्म पर वो कार्यक्रम रखा और उसमें पूना से सतीश बहादुर साहब को बुलाया। तो सतीश बहादुर साहब बहुत सीनियर मतलब टीचर रहे हैं
0: जी।
1: बहुत सारे जो हमारे आज के दौर के जाने पहचाने जो निर्देशक हैं, प्रकाश झा हैं या और भी, उनके सबके वो शिक्षक रहे हैं। मैंने चिट्ठी लिखी उनको और उन्होंने जवाब दिया कि ये कोई ढंग है चिट्ठी लिखने का?
0: अरे
1: तो मुझे लगा कि कहीं से भी आपने कोई पेज फाड़ लिया और लिख दिया, पहले सिस्टमेटिक तरीके से चिट्ठी लिखना सीखो।
0: अच्छा।
1: तो मैंने जो चिट्ठी लिखी, क्या प्रभाव पड़ा होगा पता नहीं।
0: हाँ।
1: लेकिन मुझे ना वो जानते थे और ना एक छोटा सा शहर दुर्ग, कैसे वो आ जाते, लेकिन वो आए। उन्होंने दो दिन में अपने साथ वो बहुत सारे स्लाइड्स लेकर आए थे, बहुत सारी छोटी छोटी क्लिप्स फिल्मों की लेकर आए थे और स्क्रीन पर छोटी छोटी फिल्में दिखाकर उन्होंने समझाया कि फिल्म का ग्रामर क्या होता है, उसको कैसे देखा जा सकता है। और उसके बाद बहुत इच्छा मेरी बढ़ गई, मुझे मालूम पड़ा कि पूना में एक कोर्स होता है फिल्म एप्रिसिएशन का, वो एक महीने का कोर्स होता है और उसके लिए कोई बड़ी औपचारिक की जरूरत नहीं होती, कोई भी कर सकता। तो मैं बड़े उत्साह में चला गया वहाँ और वहाँ जाने के बाद मालूम पड़ा कि उसमें भी ग्रेजुएशन की डिग्री लगती है।
0: अच्छा।
1: तो वहाँ से फॉर्म भरने जब गया था तो उन्होंने मुझे लौटा दिया। फिर मैं फिर सतीश जी के कमरे में गया।
0: हाँ।
1: मैंने कहा मेरा तो नहीं हो पाएगा इसमें, क्यों? तो मैंने कहा इसमें तो ग्रेजुएशन की डिग्री है, तो क्या दिक्कत है? तुम मैं मैंने तो पढ़ा लिखा नहीं हूँ। तुम कहाँ तक पढ़े हो? तो मैंने कहा कि मैं छठवीं फेल हुआ, वो मेरा चेहरा देखते रह गए। तुम इतनी फिल्मों में इतनी रुचि रखते हो और तुम्हारी कुछ उस तरह की कोई फॉर्मूला एजुकेशन भी नहीं है। तो मैंने कहा लेकिन कुछ कोशिश कीजिए, मेरे लिए कुछ हो सकता है। तो देखो एक काम हो सकता है, पटना में प्रकाश झा 7 दिन का एक वर्कशॉप कर रहे हैं सिनेमा पर, तुम उसमें आ जाओ। तो मैं वहाँ गया, प्रकाश जी ने चिट्ठी लिखी थी मुझे बुला, उन्होंने कहा होगा, और 7 दिन उनके साथ रहा। उस कार्यक्रम में उन्होंने जिस तरह से सिनेमा को समझाया, उसके बाद मुझे समझ में आया कि शॉर्ट किस तरह से लिए जाते हैं, कोई अगर मीडियम शॉर्ट है तो उसका क्या अर्थ है, कोई एक्सट्रीम क्लोज है तो उसका क्या अर्थ है, कट आ रहा है तो क्या अर्थ है। तो ये शॉर्ट लेने के जो तरीके होते हैं उसमें कहानी होती है। और उसके बाद मेरी रुचि बढ़ती गई और फिर सिनेमा देखना मैंने अलग ढंग से सीखा। अगर मैंने वो क्लास नहीं की होती तो सचित रे की जो एक फिल्म है, बहुत खूबसूरत फिल्म है, चारुलता।
0: अच्छा।
1: चारुलता फिल्म के जो 7 मिनट है उसमें एक भी संवाद नहीं है, 7 मिनट तक फिल्म यूं ही चल रही है बिना संवाद के, और कैमरे का मूवमेंट जो है ना उसको देख करके आपको कहीं पर भी ये नहीं लगेगा कि पात्र जो कहना चाह रहा है वो आप समझ नहीं पा रहे हैं।
0: जी जी।
1: यानी इतना खूबसूरत एक एक शॉट है कि बिना संवाद के भी हर स्थिति आपको बताती कि वो क्या हो रहा है उसके साथ, बल्कि भीतरी जो मनस्थिति है चारुलता की वो भी बिना संवाद के मालूम पड़ जाता है। ये कितनी खूबसूरती है फिल्म की।
0: आपको फिर वहाँ एडमिशन मिला कि नहीं?
1: नहीं मिला।
0: नहीं मिला।
1: उसके बाद वही पटना जाना पड़ा, पटना में 7 दिन उनके साथ रहा।
0: यहाँ पर मेरे जहन में तो सवालों की आंधी चल रही है, तो मैं क्रम से आपसे पूछती जा रही हूँ कि आपने बताया कि आपने 6ठी क्लास के बाद पढ़ाई नहीं की, पर आपकी कहानियाँ और उपन्यास पढ़ते हुए तो लगता है कि एक बहुत ज़रूरत से ज़्यादा बौद्धिक इंसान, बहुत ज़रूरत से ज़्यादा पढ़ाई किया हुआ अध्ययनशील। तो ये क्या कहानी है कि आपने कैसे पढ़ाई कैसे छोड़ी और क्यों नहीं पढ़ी?
1: नहीं, पढ़ाई इसलिए छोड़ दी कि गणित में फेल हो गया था और मुझे लगा कि गणित में कभी
0: पास नहीं हो सकते,
1: पास नहीं हो पाऊंगा।

0: अच्छा,
1: ओके
0: दूसरे सारे जो सब्जेक्ट थे उसमें बहुत अच्छे नंबर थे,
1: जी
0: गणित में नंबर नहीं आते थे। और मैंने टीचर से कहा, एक साखर दांडे नाम की मैडम थी, तो मैंने कहा कि अब मैं छोड़ रहा हूँ स्कूल। नहीं नहीं ऐसा नहीं हो सकता, कैसे छोड़ दोगे तुम? तो बोले फिर गणित हटा दो। गणित अगर नहीं होगा तो मैं पढ़ सकता हूँ।
1: जी
0: तो घर में ऐसा मतलब कोई ऐसा माहौल नहीं था कि
1: प्रेशर नहीं डाला माता पिता ने?
0: हाँ हाँ हम लोग का परिवार जो है ना व्यावसायिक परिवार है, और अगर लड़के को मिठाई बनाना आता है
1: बस
0: तो बस बहुत हो गया।
1: हाँ।
0: उसको किसी तरह की अपने आजीविका के बारे में कुछ भी सोचने की जरूरत नहीं है।
1: अच्छा,
0: अच्छा मेरी जितनी दिलचस्पी कहानी लिखने में, लगभग उतनी दिलचस्पी मिठाइयाँ बनाने में भी। और बचपन में लगभग 12 साल की उम्र में मिठाई का अच्छा कारीगर बन चुका था।
1: अच्छा। तो फिर मिठाई बनाना तो खैर आपने सीख लिया, और जाहिर सी बात है कि मिठाई बनाते होंगे तो आपका परिवार खुश रहता होगा, खास तौर से आपकी पत्नी तो मिठाई खाकर तो बहुत खुश होती होंगी। तो जरा आप बात चलिए तो उनका भी जिक्र कीजिए।
0: नहीं वो भी उसी परिवार से है, मतलब उनका भी जो व्यवसाय था उनके पिताजी का भी, वो भी मिठाई का ही था। और उनके पिताजी ने भी यही देखा कि इसको कितने तरह की मिठाइयाँ बनाने, उसने पूछा ही नहीं। जबकि मेरी पत्नी अंग्रेजी में है और मैं छठवीं फेल हूँ, तो पूछा भी नहीं कि इसकी पढ़ाई कहाँ तक है।
1: अच्छा।
0: सिर्फ उन्होंने ये देखा कि इसको मिठाइयाँ कितनी बनानी आती है।
1: तो आप पास हो गए मिठाई बनाने में,
0: उसके मतलब कारण पास हो गया।
1: नीता जी जो आपकी पत्नी, उन्होंने
0: हाँ,
1: पास किया कि नहीं?
0: बिल्कुल पास किया होगा।
1: तो मतलब आप उनके लिए मिठाई बनाते हैं घर पर?
0: मैं हर राखी के दिनों में एक मिठाई बनाता हूँ, मोहन थाल, गुजरात की बहुत स्पेशल मिठाई है
1: जी।
0: वो मिठाई, मेरे हाथ की बनी हुई, सबको बहुत पसंद है
1: जी। क्या बात है।
0: हाँ सबको बहुत पसंद है। तो वो बहुत जिद करती है, नीता के 4-5 भाई हैं और मेरी भी 4-5 बहनें हैं, तो फिर वो इतनी बनती है कि सबको एक एक बॉक्स मिठाई हर के घर में पहुंच जाती है।
1: क्या बात है, ये बिल्कुल बड़ी दिलचस्प बातें चल रही हैं। और बात मिठाई की चली, मिठास तो संगीत भी घोलता है, तो यहाँ पर एक आपकी पसंद का गाना हो जाए, मीठा सा कोई गाना बताइए।
0: बहुत मीठा, बहुत प्यारा सा गाना है, और पियानो बहुत खूबसूरती से उसमें बजा है। मधुबन खुशबू देता है, सागर सावन देता है।
1: जी, साजन बिना सुहागन फिल्म का नाम
0: जी,
1: है, सुनते हैं यही
0: जी।
1: गाना।

0: थोड़ी देर पहले बात चल रही थी फिल्मों की, कि आपकी फिल्मों में कितनी गहरी दिलचस्पी है और गहरा दखल भी है. मतलब फिल्मों की इतनी सारी जानकारी आपके पास है. आपकी कहानी है आखिरी सीन
1: जी
0: और एक उपन्यास भी है प्रति संसार. तो ये क्या इस सिनेमाई भाषा का प्रयोग इसमें किया है, क्योंकि उसमें शाब्दिक दृश्य
1: हाँ
0: उपस्थित किए गए
1: जी
0: हैं,
1: जी जी
0: तो इसके बारे में बताइए हमारे श्रोताओं को.
1: एक

0: मतलब ये ख्याल आया एक बार कि कैमरा चल रहा है
1: जी
0: और जो दृश्य दिख रहे हैं और कैमरे की आंख से मैं अपनी कहानी लिखूं, तो पहले मैंने प्रति संसार लिखा था और उसमें शुरुआत ही कैमरे से है कि दृश्य के ऊपर केंद्रित है और जो घटित हो रहा है उसका मैं शाब्दिक वर्णन कर रहा हूँ। तो उस पूरी फिल्म में ज्यादातर विजुअल्स हैं, लेकिन विजुअल्स और शब्द दोनों एक चीज तो है नहीं। तो मैंने प्रयोग किया था कि मैं दृश्यों को शब्दों में किस तरह से दिखा सकता हूँ। अब वो प्रयोग बहुत सफल हुआ या नहीं मुझे नहीं मालूम। और ये जो कहानी है आखिरी सीन, इसका जो कथानक वो मेरे जहन में काफी सालों से था। मैं अक्सर ये सोचता था कि जहां कहीं कोई बड़ी लड़ाई होती है, खासतौर से सीमावर्ती इलाकों में, तो एक तरफ फौज होती है, दूसरी तरफ दुश्मन होते हैं,
1: जी जी
0: ठीक है, पर बीच में कुछ स्थानीय लोग भी होते हैं जिनका उस लड़ाई से कोई लेना देना नहीं होता,
1: जी
0: लेकिन बहुत बड़ा नुकसान उन्हीं का होता है। तो ये मेरे जहन में था कि जो स्थानीय लोग हैं वो किसी भी बॉर्डर के आसपास का, जितना मैंने बॉर्डर पर

0: पड़ती इलाकों में, तो एक तरफ फौज होती है, दूसरी तरफ दुश्मन होते हैं।
1: जी जी
0: ठीक है, पर बीच में कुछ स्थानीय लोग भी होते हैं जिनका उस लड़ाई से कोई लेना देना नहीं होता
1: जी,
0: लेकिन बहुत बड़ा नुकसान उन्हीं का होता है। तो ये मेरे जहन में था कि जो स्थानीय लोग हैं वो किसी भी बॉर्डर के आसपास का, जितना मैंने बॉर्डर पर एक दो और भी फिल्में देखी हैं, और बल्कि एक तो विशेषांक निकला था ज्ञानोदय का
1: जी,
0: उसमें सारी कहानियां ही वही थी जिसमें सीमावर्ती इलाके के आसपास का लोकेशन था। बॉर्डर जो है वो बॉर्डर में असल में एक बहुत अलग तरह का जीवन होता है। बॉर्डर में जीने वाले लोग कितने कस्में जीते हैं,
1: बिल्कुल।
0: तो उस पर कई कहानियां हैं, और उस पर एक लीलाधर मंडलोई साहब जब ज्ञानोदय में थे तो उन्होंने एक विशेषांक निकाला था, और मैंने एक लेख भी लिखा था उसमें। मैंने अलग अलग बॉर्डर के इलाकों के कौन कौन सी फिल्में बनी हैं, तो ये मेरे जहन में था, लेकिन वो कथानक उसको फॉर्म नहीं मिल रहा था। कभी कभी क्या होता है कि आप कहानी का आपका कंटेंट तो दिमाग में आ गया, लेकिन उसको किस रूप में प्रस्तुत किया जाए वो रूप कभी कभी नहीं मिलता, कंटेंट मिल जाता है। अब वो 2-3 साल तक लगातार चलती रही कसमकस का। मैं पहले एक बार ये प्रति संसार वाला काम कर चुका था, तो अपने फॉर्म को दोहराना नहीं चाहता था, लेकिन आखिरी सीन में फिर मुझे लगा कि उस फॉर्म के अलावा दूसरा कोई फॉर्म नहीं हो सकता, तो उस कहानी को भी मैंने सिनेमेटिक भाषा में लिखा है कि जो घटनाएं हो रही है उसमें मैंने फिर ये चरित्र जो रखा वो फिल्म निर्देशक का रखा, कि एक निर्देशक है वो एक फिल्म बनाना चाह रहा है
1: जी जी,
0: और उसका व्यक्तिगत जीवन में इतनी परेशानी आ गई कि अब उसका स्टूडियो भी खत्म हो गया, उसका परिवार भी छिन्न भिन्न हो गया, और वो फिल्म बना नहीं पा रहा है, तो वो एक मानसिक अवसाद की स्थिति में चला जाता है, और जो फिल्म इस कहानी में मैंने वर्णन किया उसको कल्पना में बनाता है। यानी वो उसके पास अब कैमरा भी नहीं है, उसके पास अब टीम भी नहीं है, वो पैरालिसिस हो चुका है, अब वो खोए रहता है ख्यालों में, और उस ख्याल में वो फिल्म बना रहा है। ये उस कहानी का मैंने फॉर्म तय किया था।
1: कितनी सूक्ष्म संवेदना है इसमें, इस कहानी में। तो क्या ये जो सिनेमाई लेखन जो शिल्प होता है, तो इस शिल्प के लिए क्या अलग से आपको कोशिश करनी पड़ी, या स्वतः लिखता चला गया एक नदी की धारा की तरह?
0: वो मुझे ऐसा लगता है कि कहानी की भी अपनी एक भीतरी मांग होती है
1: जी।
0: हर बार हम कहानी के दृश्य नहीं खड़े करते, कभी वही कहानी भी अपने रंग से अपने दृश्य खड़ी करते हैं। जैसे आपकी खुद की एक कहानी है, मराठी में शीर्षक है उसका,
1: तुझी में वाट पाते।
0: हाँ हाँ, अब उस कहानी में समुद्र किनारे के रेतीले दशाओं में एक कार फंस गई है
1: जी,
0: और वो कार जितना बाहर निकलने की कोशिश कर रही उतनी धसते जा रही है
1: जी,
0: और उस कार में जो युगल बैठा हुआ है उसको एक बूढ़ी महिला देख रही है जो उसका अतीत है
1: जी जी।
0: तो वो जो सीन है ना, वो आपने नहीं लिखा है,
1: उस किरदार ने लिखा है,
0: वो कहानी ने खुद क्रिएट किया है। जब कहानी खुद कोई सीन क्रिएट करती है तो लेखक का काम सिर्फ इतना होता है कि उसको बिगाड़े ना।
1: बिल्कुल,
0: कई बार लेखक बिगाड़ देता है दृश्यों को, जब सहज रूप से कोई चीज आती होती है उसको सहजता के साथ लिखने के बजाय अपनी बहुत ज्यादा जो दिमाग लगाने वाला लेखक होता है वो अच्छी कहानी नहीं लिख पाता।
1: बिल्कुल, जो बहुत ज्यादा भाषाई खेल करने लगते हैं शिल्प को खूबसूरती से सजाने की कोशिश में बिगड़ जाते हैं।
0: सहजता से कुछ चीजों को अपने भीतर आने देना चाहिए, जिसको हम मोटे शब्दों में कहे कि आत्मसात करना।
1: यहाँ पर आपका शुक्रिया भी हम अदा कर दें कि आपने इतने ध्यान से कहानी को पढ़ी और इसका जिक्र किया। यहाँ एक गाना सुनते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। बताइए कौन सा गाना सुनवाए?
0: एक बहारों मेरा जीवन भी सवारों, उसमें बांसुरी और सितार का काम बहुत खूबसूरत है।
1: सुनते हैं ये गाना
0: जी।

0: बात बांसुरी और सितार की आपने की, तो क्या इस पर, सितार पर तो एक कहानी है अनुभूति,
1: जी
0: बांसुरी पर भी कोई कहानी लिखने
1: अब
0: वाले
1: आ रही,
0: आ रही है?
1: अब वो कहानी नहीं है, वो अब उपन्यास है
0: हाँ
1: और लगभग आधा लिखा जा चुका है।
0: जी
1: और मेरी आदत है हमेशा कि मैं लिखने से पहले कई बार बताता हूँ लोगों से, यानी लिखा नहीं है, जैसे आमाजगा कहानी जो थी वो लिखने से पहले मैंने अपने एक दोस्त थे बसंत त्रिपाठी, दोस्तों के साथ बैठा था बसंत के साथ उन्होंने,
0: जी
1: और मैंने वो पूरी कहानी उसको सुनाई, जबकि उसका एक शब्द भी मैंने नहीं लिखा था। ये जो कहानी है बांसुरी की जो आप बात कर रहे हैं, उसमें मेरा अभी मतलब अभी लिखा नहीं है मैंने। एक बच्चा है जो माँ से बिछड़ गया है
0: जी
1: और वो लोकल मतलब किसी ट्रेन में बैठ के मुंबई पहुंच गया है,
0: ओहो
1: और वो मुंबई में लावारिस है और इधर उधर घूम रहा है, भटक रहा है। उसमें एक अपाहिज बांसुरी वाला जो बांसुरी बजा करके भीख मांगता है, उसके साथ उस बच्चे की थोड़ी अच्छी तालमेल हो जाती है, वो उसके साथ घूमता फिरता है, उसके साथ रहता है। मंदिर के सामने कभी बांसुरी बजाता था, कभी चौपाटी में जा करके बांसुरी बजाता था, तो उसके साथ रहते हुए ये भी बांसुरी बजाना सीख गया। और कुदरती उसके अंदर कोई गुण था बांसुरी बजाने का, वो जब
0: जी
1: भी बांसुरी बजाता था आसपास चलते हुए लोग ठिठक के रुक जाते थे।
0: जी
1: तो ये किरदार अभी मेरे जहन में है,
0: लिखना बाकी है।
1: लिखना बाकी है। जी
0: तो इस उपन्यास का हमें इंतजार रहेगा, क्योंकि जो आपने
1: जी
0: थोड़ा सा टीजर दिया है, तो हमें ही नहीं, हमारे सभी श्रोताओं को जो पाठक हैं, जो कहानी और साहित्य से प्यार करते हैं, तो शुभकामनाएं इसके लिए।
1: जी
0: मनोज जी, आपने फिल्मों का जो जिक्र किया, फिल्में इतनी सारी देखी हैं और आपके जहन में इतनी कचोट के साथ अंदर पैठ किए हुए हैं, और कुछ ये जो भाषा का प्रयोग भी किया आखिरी सीन में और प्रति संसार में, तो आपकी क्या तमन्ना है कि आगे चल के आप फिल्मी राइटर बन जाएंगे, फिल्मों में
1: नहीं,
0: लेखन करेंगे?
1: फिल्मों का फिल्मों पर मैंने लिखना इसलिए भी शुरू किया कि एक समय के बाद जब मैं विश्व की तमाम फिल्में जब देखता था, और उसके बरक्स जब मैं एशियन फिल्में देखता था, एशिया के देशों की फिल्में देखता था, एक समय मुझे ऐसा लगा कि पश्चिम जो है ना वही सारे पैरामीटर्स बनाता है कि फिल्म कैसी होनी चाहिए। कांस फेस्टिवल में लगभग उसी तरह की फिल्में आती हैं जिसका मानक पश्चिमी सिनेमा ने बनाया है, तो हर बार उनके चले हुए मानक, उन्हीं के पैरामीटर्स के कारण जो फिल्में बनती थी, और उनके ही सारे फेस्टिवल उस विश्व के जो बड़े जो फिल्म के फेस्टिवल होते हैं या जहाँ पे उनको बड़ी अवार्ड दिए जाते हैं, उनके मानक के आधार पर ही सारी चीज़ें होती हैं। एशियन फिल्में जो थी वो बहुत उसमें आती नहीं थी, और एक समय ऐसा आया जब उन पश्चिमी फिल्मकारों ने ये तय कर लिया,

0: मतलब ये घोषणा कर दी कि कहानी की जरूरत नहीं है सिनेमा को। बहुत सारे ऐसे प्रयोगवादी डायरेक्टर थे, उन्होंने कहा कि ये विजुअल माध्यम है और दृश्य में जो कुछ कहा गया है कैमरे के द्वारा वही फिल्म है, फिल्म को अलग से किसी कहानी की जरूरत नहीं है। तब मैंने सोचा कि बिना कहानी के कैसे फिल्म हो सकती है। उसके बाद मैंने पश्चिम की ऐसी फिल्में जिसमें सिर्फ एलिनेशन था, जिसमें सिर्फ सिनेमाटोग्राफी थी, उसके बरक्स मैंने एशियन फिल्मों पर लिखना शुरू किया। मैं कुछ फिल्मों का नाम लेता हूँ अभी।
1: जी बिल्कुल,
0: है ना। उसमें एक अफगानिस्तान की फिल्म है ओसामा
1: जी,
0: उसके बाद एक कुर्दिश फिल्म है ब्लैक बोर्ड्स। ये दोनों फिल्म तो सबको देखनी चाहिए।
1: जी जी जी,
0: शिक्षा और वो भी नारी शिक्षा, उसका कितना महत्व होता है ऐसे देशों में जहाँ बहुत ज्यादा पाबंदियां हैं स्त्री शिक्षा को लेकर के। ये फिल्म और इन फिल्मों की कहानी, फिर मजीदी की फिल्म चिल्ड्रन ऑफ हेवन, जफर पनाही की फिल्म है ऑफसाइड। ऑफसाइड का कथानक ऐसा है कि लड़कियां जो है वो फुटबॉल देखना चाहती, फुटबॉल का मैच, लेकिन ईरान में फुटबॉल मैच देखने की लड़कियों को पाबंदी है। तो ये लड़कियां सब पुरुष का वेश धारण करके, पुरुष जैसे कपड़े पहनकर, अपने बाल कटवा करके वो फुटबॉल का मैच देखने जाती हैं। इस तरह की बहुत दिलचस्प कहानियां।
1: तो ये सब अपनी हिंदुस्तानी सिनेमा में भी।
0: हाँ, और मैंने एक लंबा लेख लिखा इन सब चीजों को, उसका पहल में वो लेख छपा था, कहानी की काया और फिल्म की छाया
1: जी।
0: उसमें मैंने एशियन फिल्मों पर लिखा
1: जी,
0: और उसमें किस तरह से कहानियों को फिर से वापस स्थापित किया गया, इस बात को रेखांकित किया।
1: बिल्कुल मनोज जी, आपके लेखन में जीवन की जटिलताओं और मनुष्य के भीतर चलने वाले द्वंद्व, इसकी गहरी उपस्थिति संवेदनात्मक दृष्टि से आती है। तो एक लेखक के रूप में आपको सबसे ज्यादा विचलित और उद्वेलित क्या करता है?
0: दोनों चीजें एक सामने सामने होती है, एक सामाजिक यथार्थ है और दूसरा मनोवैज्ञानिक यथार्थ, मोटे मोटे शब्दों में
1: जी।
0: कि किसकी किसी तरह की, मतलब किसी भी घटना में कोई उसका पहलू जो होगा, जिसके कई लोगों से जुड़ना, उसके बाद उसके साथ जीवन में कोई परिवर्तन आना, और दूसरा खुद उसके भीतर किसी अनपेक्षित विचार का उठना, और खुद उसका भीतर का संसार कहीं दूसरी चीजों से प्रभावित होना। तो बाहर की दुनिया भीतर की दुनिया को कैसे प्रभावित करती है, उसके बाद भीतर की दुनिया बाहर की दुनिया को कैसे प्रभावित करती है।
1: जी जी,
0: तो इसको गौर से अगर देखें तो कहीं ना कहीं आपको पता चलता है कि व्यक्ति जो है वो बाहर का भी उतना ही है और भीतर का भी उतना ही है।
1: जी जी।
0: तो ये भीतर बाहर के जो कश्मकश है उसी में कहानियां हैं।
1: बिल्कुल। तो आपके लिखने का कोई खास तरीका होता है, कोई खास माहौल की जरूरत होती है कि समंदर के किनारे जाके बैठे, नदी के किनारे या घर के अंदर?
0: नहीं, मैं तो शुरू से मेरी लिखने का जो तरीका था वो यही था। मैं मिठाई की जब दुकान थी नागपुर दुर्ग में, तो जो तराजू होती है मिठाई तोलने की, उसके नीचे एक डेस्क थी, वही मेरे लिखने का टेबल था, और लिखता था कुछ और कोई ग्राहक आ गया तो उनको मिठाई दे दी, वो चले गया तो फिर लिखना शुरू कर दिया। तो मेरी शुरू से ये हैबिट रही है कि अगर कोई डिस्टरबेंस ना हो, कोई आसपास ना हो, कोई बोलने वाला ना हो, बार बार बीच में कोई हस्तक्षेप करने वाला ना हो, तो मैं कहानी नहीं लिख सकता।
1: जी जी, ये तो बात उल्टी हो गई। अमूमन लेखकों को
0: हाँ एकांत चाहिए,
1: एकांत चाहिए।
0: हाँ, मैं अभी अपने वर्कशॉप में बैठकर लिखता हूँ।
1: हाँ।
0: काम चलता है और सारे दिनचर्या अपने तरह से चलती रहती है और मेरा लिखना भी चलता है।
1: आपका जो लेखन है उसमें बड़ी वो शांति, हालांकि आप बड़े अशांत माहौल में लिख लेते हैं, लेकिन लेखन में शांति महसूस होती है पढ़ते हुए, और बहुत मंथर गति से पाठक पढ़ना चाहते हैं, आराम से, तसल्ली से, क्योंकि हड़बड़ी में नहीं पढ़ सकते हैं।
0: जी, जी।
1: लेखन भी है, मौन भी उतना ही है और संवाद भी उतने ही होते हैं, तो ये जो तादाद में है किस तरह से स्थापित करते हैं आप?
0: देखो, पाठक का तो ध्यान बहुत पहले रखना ही पड़ता है। लिखते समय मेरी सबसे बड़ी फिक्र ये होती है कि मैंने जो एक वाक्य लिखा है वो खुद मुझे पढ़ने में बहुत अच्छा लगना चाहिए।
1: बिल्कुल।
0: और मैं एक एक वाक्य को चार चार पांच पांच बार लिखता हूँ। कहानी के भले मैं ज्यादा ड्राफ्ट नहीं बनाता, लेकिन वाक्यों के ऊपर मेरी बहुत मेहनत होती है, और मेरी ये कोशिश होती है कि हर वाक्य में कोई एक शब्द चमकता हुआ हो, उससे पाठक, मतलब जो पूरे वाक्य में जो बात कही गई है, एक शब्द ऐसा होना चाहिए जिससे पाठक तुरंत मतलब आकर्षित हो।
1: जी जी बिल्कुल।
0: तो उसको पढ़ने में मजा आता है। तो पढ़ने का जो सुख होता है, अगर जैसे हम पढ़ते समय, मैं पाठक भी हूँ ना भाई, मैं लेखक तो हूँ, उसके अलावा दुनिया के बहुत सारे उपन्यास मैंने पढ़े हैं, दूसरी सब चीजें,

0: जिस उपन्यास में किसी लेखक की भाषा बहुत शानदार होती है, उसकी वाक्य रचना बहुत अच्छी होती है, उसको पढ़ने में इतना आनंद आता है, तो मेरी भी ये कोशिश होती है कि मैं जब लिखूं तो पढ़ने वालों को मजा आना चाहिए।
1: जी बिल्कुल जी। अपने श्रोताओं को बता दें कि मनोज जी एक उत्कृष्ट साहित्यकार के साथ साथ एक उत्कृष्ट चित्रकार भी हैं।
0: उत्कृष्ट तो, चित्रकार
1: ये आप कहते हैं तो नहीं, चित्रकारी नहीं। के शौक और चित्रकारी के बारे में बताएं।
0: नहीं, शौक तो है, शौक तो संगीत का भी है, लेकिन मैंने आज तक कोई इंस्ट्रूमेंट को हाथ नहीं लगाया। चित्रकारी का मैं हिम्मत कर ली थोड़ी, और इसके पीछे एक ऐसा किस्सा, एक उपन्यास मैंने पढ़ा था मून एंड सिक्स पेनी, हिंदी में उसका अनुवाद है चांद और छह आने। उसका जो किरदार है वो सामान्य जिंदगी जीने वाला, वो LIC का एजेंट है। उसकी जो पत्नी है वो बड़ी कला प्रेमी है, और वो अपने सब मेहमानों को जब बुलाती है, उसमें साहित्यकार हैं, कलाकार, ये सब आते थे, इससे वो मिलाती नहीं थी कभी। तो एक बार एक उपन्यास का जो लेखक है वो उसके घर गया मिलने, और उसने कहा कि भाई आपके पति कहाँ हैं उनसे मिलाओ हमको, बच्चे कहाँ हैं उनसे मिलाओ। बोले हमारे पति जो है ना कला में साहित्य में उनकी कोई रुचि नहीं है, नहीं अभी उनकी मतलब मिलने की इच्छा नहीं है। तो नहीं नहीं बोले आपके घर आया हूँ तो उनसे मिलकर जाऊँगा। तो मुलाकात हुई, उस पल दो पल की मुलाकात में एक दूसरे को दोनों ने क्या देखा क्या समझा पता नहीं, और ये दो चार दिन के बाद वो LIC का जो एजेंट था उसने घर छोड़ दिया, कहीं चला गया बिना बताए। बहुत खोजबीन हुई, बाद में मालूम पड़ा कि वो पेरिस चले गया है, और उससे पूछा गया भाई तुम क्यों साहब आ गए घर बार छोड़ के, तो बोले मुझे चित्रकार बनना है। तो भाई चित्रकार बनना है, लेकिन तुमने जीवन में कभी कोई चित्र बनाया? बोले नहीं बनाया, लेकिन मेरी इच्छा हो गई चित्रकार बनने की। ये उपन्यास मैंने पढ़ा, उसके बाद मैंने सोचा यार मैं भी एक बार कोशिश करके देखता हूँ। तो मैंने छोटा मोटा कोई स्केच में नहीं किया कागज, अच्छा। में बड़ा कैनवास, वो भी फ्रेम किया हुआ कैनवास नहीं, कैनवास का रोल पूरा।
1: जी जी।
0: मैंने कहा कि करना तो बड़ा करना है, भले वो किसी काम का ना हो, लेकिन हाँ। करना बड़े कैनवास
1: बड़े
0: में
1: फलक बढ़िया।
0: तो चार पांच चित्र मैंने बनाए, और उसके बाद वो मामला रुक गया। तो उस तरह से चित्रकार नहीं हूँ, एक क्षणिक दौरा पड़ा था
1: जी जी।
0: उस दौरे में दो चार हाथ मैंने चला लिए।
1: अपने श्रोताओं को बता दें कि आप निबंध लेखन भी करते हैं, अनुवाद भी किया है, कहानी उपन्यास तो है ही, और इस समय रिकॉर्डिंग के समय रिकॉर्डिंग में आपकी पत्नी नीता जी भी आई हैं स्टूडियो में, कांच के उस पार बैठी है। नीता जी का कितना योगदान है आपके लेखन में?
0: नीता जी का योगदान ऐसा है,
1: सहयोग
0: नहीं बड़ा योगदान है, इसलिए क्योंकि मैंने कहा ना कि मैं लिखने से पहले सुनाता हूँ, तो कोई और नहीं होता, जब मेरा कोई दोस्त नहीं होता तो ये अकेले मेरी श्रोता होती है। कई मैंने कहानियां, जैसे अभी अनुभूति कहानी जो है वो मैंने अपने ऑफिस से फोन करके नीता को सुनाई कि अभी ये ख्याल मेरे दिमाग में आया है। तो नीता मेरी पहली श्रोता होती है, और उसके एक्सप्रेशन मुझे समझ में आ जाता है कि कहानी ठीक बन रही है कि नहीं, इससे बड़ा योगदान क्या होगा।
1: जी जी, क्या बात है, बहुत बढ़िया।
0: उपन्यास जो है काले अध्याय,
1: हाँ हाँ।
0: वो पूरा उपन्यास मैंने अपनी बेटी को सुनाया लिखने से पहले, उसको सुनाता था रात, उसको बहुत जिद होती थी कहानी सुनने की, जब वो छोटी थी तब भी
1: जी।
0: रोज पापा कहानी सुनाओ कहानी सुनाओ, जब तक मैं उसको कोई कहानी और बना बना कर कोई भी कहानी सुनाता था जिसका कोई सिर पैर ना हो।
1: जी जी।
0: लेकिन जब तक नहीं सुनाओ तब तक उसको नींद नहीं आती थी, तो लोरी सुनने के बजाय वो कहानी सुनती थी।
1: क्या बात है।
0: तो ये मेरा मतलब तरीका रहा है कि मैं अपने आपको जो है ना कभी छुपा कर नहीं रखता कि मैं जो लिखने वाला हूँ उसको अगर बता दूंगा तो किसी की टोक लग जाएगी और मैं लिख नहीं पाऊंगा।
1: खुली किताब होना चाहिए एक लेखक को। मनोज जी, बड़ी दिलचस्प बातें और बड़ी जानकारी वाली बातें आपने कही हैं, हमारे श्रोताओं के साथ साझा की है, और हमें तो सचमुच बहुत आनंद आ रहा है आपसे बातचीत करते हुए। लेकिन घड़ी की ओर देख रहे हैं तो घड़ी की सुइयां अब विराम लगाने को कह रही है, फिर कभी एक भी बातचीत आपसे करना चाहेंगे। आज बस इतना ही। आप आए विविध भारती के स्टूडियो में और इतनी सारी बातें की, आपका बहुत बहुत शुक्रिया।
0: जी शुक्रिया शुक्रिया।
1: नमस्कार
0: नमस्कार।
1: आज के मेहमान इस कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे उपन्यासकार, कहानीकार और अनुवादक मनोज रूपड़ा से रेडियो सखी ममता सिंह की ये बातचीत। चलने से पहले आपको बता दें इस कार्यक्रम में हमारी रिकॉर्डिंग इंजीनियर समृद्धि नाइक, संपादन सहयोग रीमा जोशी, विविध भारती की ओर से इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता जुबैर खान।
2: आज के मेहमान।

0: तीन अक्टूबर विविध भारती की सालगिरह का जश्न। विविध भारती के लाइव ट्रांसमिशन में आ रहे हैं जाने माने संगीतकार अन्नू मलिक।
1: किसका है ये तुमको इंतजार, मैं हूं ना।
0: दिन में 12 बजे से 2 बजे के बीच
2: अगर तुम मिल जाओ।
0: अन्नू मलिक की बातें, गाने और कुछ दिलचस्प कहानियां। 3 अक्टूबर विविध भारती की सालगिरह का जश्न।
3: बंदा ये बिंदास है, बंदा ये बिंदास है।
4: हम मनाएंगे जश्न 3 अक्टूबर विविध भारती की सालगिरह पर। जाने माने फिल्म निर्देशक तिग्मांशु धूलिया आएंगे विविध भारती के सजीव प्रसारण स्टूडियो में।
5: विविध भारती एक ऐसा चैनल है जहां हर दौर के गाने और हर तरह के कार्यक्रम आप सुन सकते हैं। 3 अक्टूबर विविध भारती चैनल अपने 70 बरस पूरे कर रहा है। मैं फिल्मकार तिग्मांशु धूलिया अपनी फिल्मी यात्रा के साथ सजीव प्रसारण में आपसे मिलने आऊंगा।
4: कुछ दिलचस्प किस्से, कुछ खुशगवार बातें,
1: आंखें भी होती हैं दिल की जुबान।
4: तो आप सब जुड़िए और सुनिए दिन में 2:30 बजे से विविध भारती।
6: FM 107.2 MHz पर ये आकाशवाणी है और आप सुन रहे हैं विविध भारती का चंडीगढ़ केंद्र। शाम के 5 बजने को हैं। अब से कुछ ही पलों में हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से हिंदी में समाचार रिले करेंगे।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रशांत कुमार। मंत्रिमंडल की आर्थिक कार्य समिति ने आज विपणन सत्र 2027-28 के लिए सभी अनिवार्य रबी फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में वृद्धि को मंजूरी दे दी है। नई दिल्ली में आज मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि ये निर्णय किसानों की उपज का लाभकारी मूल्य सुनिश्चित करने के लिए लिया गया है।
1: सबसे पहला फैसला लिया गया रबी क्रॉप्स के लिए MSP तय करना। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने अपने कार्यकाल के आरंभ से ही MSP में 50% प्रॉफिट देना वो तय किया था, उस फैसले को इसमें लागू किया गया है। वीट, बार्ली, ग्राम, लेंटिल्स, रेपसीड, मसूर, मस्टर्ड और सेफ्लावर, इन सब के लिए जो प्रोडक्शन कॉस्ट है उससे कम से कम 50% ज्यादा रखी गई है MSP।
0: कुसुम के लिए सबसे अधिक 675 रुपये प्रति क्विंटल वृद्धि की गई है। सरसों और खसखस के लिए MSP 413 रुपये प्रति क्विंटल बढ़ाया गया है। श्री वैष्णव ने बताया कि मसूर के लिए MSP में 390 रुपये, जौ के लिए 136 रुपये, चने के लिए 83 रुपये और गेहूं में 25 रुपये प्रति क्विंटल की वृद्धि की गई है। श्री वैष्णव ने कहा कि मंत्रिमंडल ने दिल्ली पुलिस के 1,789 करोड़ रुपये से अधिक की अनुमानित लागत वाले इंटेलिजेंट ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम के कार्यान्वयन को भी मंजूरी दे दी है। श्री वैष्णव ने बताया कि मंत्रिमंडल ने PM धारा योजना को भी मंजूरी दी है। इससे अंतर्राज्यीय पारेषण प्रणाली मजबूत होगी और राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों में 135 गीगावाट तक नवीकरणीय ऊर्जा का पारेषण संभव हो सकेगा। भारत और कतर ने द्विपक्षीय निवेश संधि तथा मुक्त व्यापार समझौते पर वार्ता प्रक्रिया में तेजी लाने पर विचार विमर्श किया है। दोनों देशों ने भारत में $10 अरब का निवेश करने और भारत में कतर निवेश प्राधिकरण का कार्यालय स्थापित करने को लेकर हुई प्रगति की समीक्षा की। ऑल इंडिया कंज्यूमर प्रोडक्शन फेडरेशन और ऑल इंडिया मोबाइल रिटेलर्स एसोसिएशन ने शुक्रवार को नो UPI डे मनाने का फैसला वापस ले लिया है। ये फैसला नई दिल्ली में वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन और करीब

0: 20 वरिष्ठ व्यापारिक नेताओं के प्रतिनिधिमंडल के बीच हुई बैठक के बाद लिया गया। प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व भाजपा सांसद और कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स के महासचिव प्रवीण खंडेलवाल ने किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल नई दिल्ली के भारत मंडपम में संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी के शताब्दी समारोह में शामिल होंगे। प्रधानमंत्री इस अवसर पर लोगों को संबोधित भी करेंगे। श्री मोदी यूपीएससी के शताब्दी समारोह का स्मारक सिक्का, स्मारक डाक टिकट और 100 लैंडमार्क जजमेंट्स शेपिंग द पॉलिसीज ऑफ यूपीएससी एंड पब्लिक सर्विस कमीशन इन इंडिया नाम की एक पुस्तक भी जारी करेंगे। वरिष्ठ भाजपा नेता और गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि पंजाब को वर्ष 2029 के अंत तक नशा मुक्त बनाया जाएगा। आज जालंधर में नशा मुक्त पंजाब रैली में श्री शाह ने कहा कि आगामी विधानसभा चुनाव में भाजपा पंजाब को नशा मुक्त बनाने के मुद्दे पर चुनाव लड़ेगी। भारी उद्योग मंत्री एचडी कुमार स्वामी ने आज नई दिल्ली में भारी उद्योग मंत्रालय के इंडस्ट्री एक्सेलरेटर प्रोजेक्ट की प्रभाव रिपोर्ट जारी की और इसे डिजिटल माध्यम से लॉन्च किया। इस अवसर पर श्री कुमार स्वामी ने कहा कि आत्मनिर्भर भारत के लिए देश को केवल उन्नत तकनीकों के बड़े बाजार तक सीमित नहीं रहना चाहिए, बल्कि इन तकनीकों को देश में विकसित करने, बनाने और निर्यात करने की क्षमता बढ़ानी होगी। वस्त्र क्षेत्र में उभरती प्रौद्योगिकियों पर चर्चा के लिए कल नई दिल्ली में वस्त्र सम्मेलन आयोजित किया जाएगा। लघु उद्योग भारती के राष्ट्रीय महासचिव ओम प्रकाश गुप्ता ने आज संवाददाताओं को बताया कि सम्मेलन में देश भर के वस्त्र क्षेत्र से जुड़े करीब 400 सूक्ष्म और लघु उद्योग भाग लेंगे। जापान एशियाई खेलों में भारत ने आज तीरंदाजी में 3 और निशानेबाजी में 1 स्वर्ण सहित कुल 4 स्वर्ण पदक जीत लिए हैं। तीरंदाजी में पुरुष कंपाउंड टीम ने चीन को, मिक्स्ड कंपाउंड टीम ने कोरिया को और महिला कंपाउंड टीम ने चीन को हराकर स्वर्ण पदक जीता। उधर गुवाहाटी में दूसरे एक दिवसीय क्रिकेट मैच में वेस्टइंडीज ने भारत के साथ खेलते हुए ताजा समाचार मिलने तक 39वें ओवर में 2 विकेट पर 313 रन बना लिए हैं। 3 मैचों की श्रृंखला में भारत 1-0 से आगे है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: ये आकाशवाणी है और आप सुन रहे हैं विविध भारती का चंडीगढ़ केंद्र FM 107.2 MHz पर।

0: राणा पाइल्स हॉस्पिटल, कॉल करें 9814128667 पर और पाइल्स से मुक्ति पाएं।
1: श्रोताओं लीजिए पेश है फिल्म संगीत।

काला पत्थर फिल्म से डुएट गीत हम आपको सबसे पहले सुनवा रहे हैं। राजेश रोशन का संगीत है, साहिर लुधियानवी के बोल, आवाजें लता मंगेशकर मोहम्मद रफी की।

श्रोताओ, अब ये गीत हमने चुना है सुधा मल्होत्रा और अनवर ने इसे गाया है। संतोष आनंद की रचना को संगीत से सवारा लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने। फिल्म का नाम प्रेम रोग।

श्रोताओं, आकाशवाणी चंडीगढ़ से इस वक्त आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत। गुलजार का लिखा गीत लीजिए सुनिए लता मंगेशकर, शब्बीर अहमद की आवाजों में। गुलामी फिल्म के गीत में तर्ज है एक बार फिर लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की।

लता मंगेशकर और शब्बीर अहमद की आवाजें थी, फिल्म थी गुलामी। श्रोताओं, आप सुन रहे थे फिल्म संकेत। इस वक्त आप हैं आकाशवाणी चंडीगढ़ के साथ और अब प्रस्तुत है स्पॉन्सर प्रोग्राम लम्हे।

Hi dear friends, welcome to Lamhe program. This is your RJ Chetan. सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता। सफल होने के लिए दिन रात मेहनत करनी पड़ती है, तब हम जीवन में अपने सपनों को पूरा कर पाते हैं। इसीलिए हमेशा याद रखिए कि मेहनत का साथ कभी मत छोड़िए। जिस दिन आप मेहनत करने से पीछे नहीं हटेंगे, उस दिन आप जरूर सफल होने की तरफ पहला कदम बढ़ा देंगे। सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता। सक्सेस मंत्र और इस सार से जुड़ी ये एक प्रेरक कहानी हम आपको सुना रहे हैं। एक जंगल था जहां सुनहरे पंखों वाले बहुत सुंदर चिड़िया रहती थी। वह पेड़ के तनों में रहने वाले कीड़ों को खाती थी, यही उसका प्रिय भोजन था। एक दिन वो भोजन की तलाश कर रही थी, तब उस चिड़िया की नजर एक व्यक्ति पर पड़ी। उस व्यक्ति के हाथ में एक छोटा सा लकड़ी का बॉक्स था, जिसे लेकर वो जंगल से तेजी से गुजर रहा था। उसे इतनी जल्दबाजी में देख चिड़िया को हैरानी हुई। उस चिड़िया ने व्यक्ति से पूछा कि भाई, इतनी जल्दी में कहाँ जा रहे हो? किसी परेशानी में हो क्या? व्यक्ति ने कहा, नहीं तो, ऐसी कोई बात नहीं है। आज सुबह से ही मैं पेड़ के तनों में रहने वाले कीड़ों को इकट्ठा कर रहा था। इन्हें मैंने इस लकड़ी के बॉक्स में भरा हुआ है। इन्हें गांव के

बाजार में बेचने जा रहा हूँ, इसके बदले में मुझे एक सुनहरा पंख मिलेगा। जल्दी जा रहा हूँ ताकि बाजार बंद न हो जाए। ये सुनकर चिड़िया को ख्याल आया कि उस व्यक्ति को सुनहरे पंख चाहिए और उसे खाने के लिए तने के कीड़े। एक दूसरे की आवश्यकता को पूरे करने के लिए हम दोनों एक दूसरे की मदद कर सकते हैं। चिड़िया ने सोचा कि क्यों न वो इसे खुद का एक पंख देकर ये बॉक्स ले ले। ऐसे में उसे भोजन के लिए भटकना नहीं पड़ेगा। चिड़िया ने उस व्यक्ति से कहा कि ये बॉक्स वो उसे दे दे, इसके बदले में वो उसे एक सुनहरा पंख दे देगा। वह व्यक्ति भी इस बात पर तैयार हो गया क्योंकि उसे बाजार तक नहीं जाना पड़ा। चिड़िया ने उसे अपना एक पंख दिया और बॉक्स ले लिया। सिर्फ यही नहीं, उसने उस आदमी को रोज सुनहरा पंख देने का वादा किया और बदले में कीड़े लाने के लिए राजी कर लिया। इससे चिड़िया को बिना किसी मेहनत के रोजाना कीड़े मिलने लगे। वह रोज अपना एक पंख तोड़ती और कीड़े लेकर अपनी भूख मिटा लेती। लेकिन धीरे धीरे उसे उड़ने में परेशानी होने लगी क्योंकि उसके पंख खत्म होने लगे थे। फिर एक दिन ऐसा आया जब उसके सभी पंख खत्म हो गए। वे उड़ने में भी असमर्थ हो गई। पंख न मिलने पर उस आदमी ने उसके लिए कीड़े लाना बंद कर दिया। चिड़िया लाचार हो गई थी, वह खाना तलाशने में भी न जा सकती थी। कुछ ही दिनों में चिड़िया भूख प्यास से तड़प कर मर गई। तो दोस्तों, आपको ये मैसेज तो समझ में आया ही होगा। क्या सफलता का शॉर्टकट भी होता है? कैसे? होता तो है, लेकिन फिल्मों में। इसी कारण आज हर युवा बिना मेहनत करे रातों रात अमीर बनने के सपने देखता है, जिस कारण उसको सामान्य कार्य करने का कोई रुचि नहीं रहता। ज्यादा फिल्म देखने के बाद हम जिंदगी में कुछ इन चीजों की उम्मीद करते हैं। अमीर लड़की को हमेशा प्यार हो जाएगा, जो कि इकलौती होगी, पढ़ी लिखी होगी, परी की तरह सुंदर भी होगी, तो शादी के बाद में अरबपति बन जाऊंगा, कोई रियलिटी शो जीतकर रातों रात अमीर बन जाऊंगा। तो वीडियो सोशल मीडिया पे डालकर न केवल दोस्तों में पॉपुलर होने के सपने, बल्कि ये उम्मीद करते हैं कुछ हफ्तों में मिलियन व्यूज आ जाएंगे। 500 रुपए शेयर बाजार में निवेश करके ख्वाब देखते हैं। माय डियर फ्रेंड्स, मैं आपको एक अच्छा किस्सा सुनाऊंगा। किसी ने शेयर मार्केट के क्लासेस ज्वाइन कर ली थी। पता चला वो क्लासेस चलाने वाले सर खुद लॉस में हैं और वो अपना लॉस कवर करने के लिए क्लासेस चला रहे हैं। सोशल मीडिया पे काफी दिखावा चल रहा है। उनका लक्ष्य आपको आकर्षित करके कोर्स या कुछ प्रोडक्ट को बेचना है। ऐसे ही विचार आज के युवाओं को मानसिक तौर पे बर्बाद कर रहे हैं। आमतौर पर सफलता को पैसे से या भौतिक सुख सुविधाओं से जोड़कर देखा जाता है। अगर आपके पास पैसे है, आपका नाम है, तो आपको सफल व्यक्ति मान लिया जाता है। लेकिन यह सफलता की परिभाषा नहीं है, क्योंकि हर व्यक्ति के अनुसार सफलता के मायने बदलते हैं। एक सन्यासी की सफलता ईश्वर को पाने में है, एक विद्यार्थी की सफलता उसके पास होने में है, एक गरीब की सफलता खुद की भूख मिटाने में है, एक मरीज की सफलता उसके स्वस्थ होने में है। हम अपने आर्थिक, शारीरिक और मानसिक शक्ति के अनुसार ही हम अपना लक्ष्य बनाते हैं, और जब हम उसे प्राप्त कर लेते हैं तो हमें एक जीत का एहसास होता है जो हमें सच्चा सुख देता है। यही सफलता कहलाता है। एक बार एक लड़का गर्मी की छुट्टियां बिताने अपने दादी जी के पास गांव आया। एक दिन जब वह अपने दादी जी के साथ बिताता था, तो उसने अपने दादी जी से एक सवाल पूछा कि सफलता का राज, सीक्रेट टू सक्सेस क्या है। इस पर दादी जी ने उसे पास ही की एक नर्सरी में जाकर वहां से 2 पौधे खरीद लाने को कहा। उन्होंने 1 पौधा घर के अंदर और 1 पौधा घर के बाहर लगाने को कहा। उस लड़के ने ऐसा ही किया। बाद में दादी जी ने अपने पोते से पूछा, तुम्हें क्या लगता है इन पौधों में से सबसे अधिक सफल कौन होगा? लड़के ने जवाब दिया कि घर के अंदर जो पौधा लगाया है वो ज्यादा सफल होगा, क्योंकि वो प्राकृतिक खतरों से बचा रहेगा, जबकि बाहर जो पौधा लगाया गया है उसको काफी चीजों से खतरा है। दादी जी अपने पोतों की बात सुनकर मुस्कुरा दिया। कुछ दिनों बाद लड़का वापस शहर चला गया।
कुछ साल बाद जब वह लड़का वापस दादी जी से मिलने आया अपने गांव, तो उसने अपने दादी जी से पौधे के बारे में पूछा। दादी जी ने उसे घर के अंदर लगाया गया पौधा दिखाया। वो पौधा अब एक बहुत बड़ा पौधा बन चुका था। लड़के ने अपने दादी जी के ओर देखते हुए कहा, मैंने कहा था ना कि यही पौधा ज्यादा सफल होगा। वैसे बाहर वाले पौधे का क्या हुआ? दादी जी उसे बाहर लेकर आई तो लड़का हैरान हो गया। बाहर वाला पौधा अब एक विशाल पेड़ बन चुका था। उसने दादी जी से पूछा कि ये कैसे संभव है कि बाहर वाला पौधा एक बड़ा पेड़ बन गया और अंदर वाला पौधा उतना विकसित नहीं हो पाया, जबकि अंदर वाला पौधा प्राकृतिक खतरों से सुरक्षित था। दादी जी ने उसे बताया कि जीवन में खतरों से जूझकर ही सफलता हासिल होती है। सफलता का राज, सीक्रेट टू सक्सेस यही है। कहानी का तर्क यही है कि मुश्किलों का सामना करने वाले को ही सफलता मिलती है। इसीलिए कहा गया है, लहरों से डरकर नदियां पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। With this wonderful motivational story, this is Chetan signing off for today. I'll get back to you in our next program. Till then, have a great time. Bye. दोस्तों, आपके सुझाव, सलाह और फीडबैक के लिए आप हमें कॉल या मैसेज कर सकते हैं। हमारा नंबर है 09515227039. I repeat 09515227039. हमारा ईमेल आईडी है feedbackamc1@gmail.com. I repeat feedbackamc1@gmail.com. This program is produced and sponsored by Adventist Media Center.

अभी आप सुन रहे थे स्पॉन्सर प्रोग्राम लम्हे। ये आकाशवाणी है और आप सुन रहे हैं विविध भारती का चंडीगढ़ केंद्र FM 107.2 MHz पर। अब पेश है स्पॉन्सर प्रोग्राम उमंग।

0: उमंग सीआईईटी प्रस्तुत करता है
1: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: आप सभी श्रोताओं का हार्दिक स्वागत है आज के उमंग कार्यक्रम में। नमस्कार, मैं हूं विमलेश।
0: और मैं हूं अजीत। नमस्कार, आइए सुनते हैं आज का सुविचार जिसे हमें भेजा है आर्यनगर कोहका भिलाई छत्तीसगढ़ से उत्तम सिंह जंघेल, मोरस जंघेल, अनिल कुमार, अजीत कुमार, आयुष जंघेल और नंदिनी जंघेल जी ने।
2: समय कभी रुकता नहीं, जो बीत गया उससे सीखिए और आने वाले समय का स्वागत नई उम्मीद, नई ऊर्जा और नई शुरुआत के साथ कीजिए।
0: बहुत बहुत धन्यवाद इतने सुंदर विचार के लिए। और आइए अब सुनते हैं श्रोताओं के नाम और उनके संदेश। तो पहला संदेश हमें मिला है पोटिया कला दुर्ग छत्तीसगढ़ से संजय कुमार साहू और सुजाता साहू जी का।
2: इसके साथ साथ ही हमें संदेश प्राप्त हुआ है कबीर रेडियो श्रोता संघ डोंडी लोहारा बालोद छत्तीसगढ़ से देवशंकर तामुरिया, अजय देव तामुरिया, तुषार देव तामुरिया और पोता मास्टर अलकबीर। वो लिखते हैं,
0: आपने लिखा है सप्रेम नमस्कार विमलेश दीदी जी और अजीत सर जी। 31 अगस्त को जापान में मशीनों को रिटायर करने के बारे में जो आपने बताया वो हमें बहुत ही भावुक कर गया। सोचिए जो देश निर्जीव मशीनों के लिए इतना आदर रख सकता है तो उनमें मानव के लिए कितनी श्रद्धा होगी। हमें भी सबके लिए कृतज्ञता प्रकट करनी चाहिए।
2: चरखी दादरी हरियाणा से
0: आप लिखते हैं, श्रीमान आपसे निवेदन है कि इस कार्यक्रम में भाग लेने के लिए श्रोताओं के लिए मोबाइल नंबर देने का कष्ट करें, धन्यवाद।
2: जी, इस दिशा में हमारा प्रयास जारी है, नंबर प्राप्त होने पर आप सबको सूचना दे दी जाएगी।
0: अगला संदेश हमें मिला है गेंदा टोला बाजार चौक जिला राजनांदगांव छत्तीसगढ़ से वीरेंद्र कुमार गुप्ता, अंजलि गुप्ता, योगिता गुप्ता और गजेंद्र गुप्ता जी का।
2: छत्तीसगढ़ मदनपुर कवर्धा से श्रवण कुमार साहू, योगेश साहू, राहुल साहू और शिवम साहू।
0: और मोताला महाराष्ट्र से विजय सुरलकर और रतनमाला सुरलकर।
2: धन्यवाद आप सबको प्यारे प्यारे संदेशों के लिए।
0: एक बार फिर से सभी श्रोताओं का बहादुर बच्चों पर आधारित रेडियो श्रृंखला में बहुत बहुत स्वागत है।
2: साथियों, आज हम एक ऐसी बच्ची की कहानी सुनाने जा रहे हैं जिसकी उम्र तो बहुत छोटी थी लेकिन उसकी समझदारी ने उसे असाधारण बना दिया। आज पूरी दुनिया में उसे उदाहरण के रूप में याद किया जाता है।
0: बिल्कुल, और इस कहानी की सबसे खास बात यह है कि उस बच्ची ने

0: जो कुछ किया वह किसी महान नेत्री की तरह नहीं बल्कि ध्यान से सीखने और सही समय पर सही बात कहने के कारण किया।
1: श्रोताओ, उस बच्ची का नाम था टिली स्मिथ। बात तब की है जब वो वर्ष 2004 में अपने परिवार के साथ थाईलैंड के समुद्र तट पर छुट्टियां मना रही थी।
0: छुट्टियां यानी समुद्र, रेत, लहरें और उनके बीच में ढेर सारी मस्ती।
1: जी।
0: नए साल का अवसर था, इसलिए बहुत सारे पर्यटक भी समुद्र के तट पर छुट्टियां मना रहे थे।
1: सभी मगन थे, लेकिन तभी टिली स्मिथ ने गौर किया कि अचानक समुद्र का व्यवहार कुछ अजीब सा होने लगा। पानी में कुछ असामान्य परिवर्तन दिखाई देने लगे
0: और टिली ने देखा कि समुद्र का पानी पीछे हट रहा है।
1: जी।
0: समुद्र की सतह असामान्य लग रही है। लहरें कभी कभी बहुत तीव्र हो जाती तो कभी बहुत धीमी।
1: जी।
0: उसे लगा शायद ये वही संकेत हो सकता है जिसके बारे में उसने कक्षा में पढ़ा था। उसके मस्तिष्क में एक शब्द गूंज उठा,
1: सुनामी, यानी समुद्र में उठने वाली बहुत बड़ी और विनाशकारी लहरें।
0: बिल्कुल साथियों, उसने अपनी कक्षा में ये भी पढ़ा था कि सुनामी सामान्य समुद्री लहरों जैसी नहीं होती।
1: जी।
0: समुद्र के भीतर भूकंप या दूसरी बड़ी भूगर्भीय हलचल से बहुत बड़ी मात्रा में पानी विस्थापित हो सकता है।
1: जी।
0: इससे समुद्र की लहरें तट की ओर बहुत तेजी से और अत्यंत शक्तिशाली रूप में बढ़ सकती हैं।
1: फिर उसने अपने माता पिता को बताया कि कुछ गड़बड़ है और इसी समय तुरंत लोगों को समुद्र तट से दूर चले जाना चाहिए। फिर क्या था, उन्होंने चिल्ला चिल्ला कर लोगों को बताना शुरू किया।
0: तो विमलेश जी, जब उन्होंने लोगों को बताना शुरू किया तो क्या लोगों ने उनकी बात मान ली?
1: देखिए, शुरुआत में सबको विश्वास नहीं हुआ, लेकिन टिली लगातार सबको समझाती रही। उसने स्कूल में समुद्र के ऐसे व्यवहार के बारे में पढ़ा है और ये निश्चित रूप से सुनामी का संकेत हो सकता है।
0: यानी हम कह सकते हैं कि उसने अपनी पढ़ाई को सिर्फ परीक्षा के लिए ही याद नहीं किया
1: जी,
0: बल्कि वास्तविक जीवन में उसका इस्तेमाल किया।
1: जी।
0: तो विमलेश जी, फिर आगे क्या हुआ?
1: लोगों ने जब समुद्र के विचित्र व्यवहार को देखा तो वो भी समझ गए कि सामान्य संकेत नहीं है। फिर तुरंत वहाँ मौजूद लोगों को समुद्र तट से हटाया गया और सुरक्षित स्थान की ओर ले जाया गया।
0: और कुछ ही समय बाद सुनामी की भयंकर लहरें वहाँ आ पहुँची। सब कुछ बहुत डरावना और विनाशकारी था।
1: साथियों, वर्ष 2004 की हिंद महासागर की ये सुनामी एक बहुत बड़ी प्राकृतिक आपदा थी जिसने कई देशों को बुरी तरह से प्रभावित किया और बहुत बड़ी संख्या में जान माल का नुकसान हुआ।
0: लेकिन टिली की सतर्कता के कारण उस समुद्र तट पर मौजूद बहुत से लोगों को समय रहते सुरक्षित स्थान तक पहुँचने का मौका मिला।
1: जी हाँ साथियों, टिली की कहानी दुनिया भर में इसलिए प्रसिद्ध हुई क्योंकि उसने दिखाया अगर बच्चा ध्यान से पढ़ता है तो उसकी शिक्षा कभी भी काम आ सकती है।
0: बिल्कुल श्रोताओ, अक्सर हम बच्चों से कहते हैं पढ़ाई करो, परीक्षा में अच्छे अंक आएंगे, लेकिन पढ़ाई का उद्देश्य केवल अच्छे अंक पाना ही नहीं है, क्यों विमलेश जी?
1: बिल्कुल अजीत जी, सही कहा। सोच समझ कर की गई पढ़ाई हमें जीवन की परिस्थितियों को समझने और सही निर्णय लेने की क्षमता देती है।
0: और बालिका टिली इसका बहुत सुंदर उदाहरण है।
1: जी।
0: उसने जो पढ़ा था उसे याद रखा, परिस्थिति को ध्यान से देखा और डरने के बजाय लोगों को चेतावनी दी।
1: अजीत जी, मुझे लगता है इस कहानी में एक और महत्वपूर्ण बात है।
0: वो क्या?
1: वो ये है आवाज उठाने का साहस। कभी कभी हमें सही बात पता होती है लेकिन हम ये सोचकर चुप हो जाते हैं कि लोग मेरी बात क्यों मानेंगे, कहीं मेरा मजाक तो नहीं बन जाएगा।
0: लेकिन टिली ने ऐसा नहीं किया, उसने बलपूर्वक अपनी बात कही।
1: जी।
0: क्योंकि उसे लगा कि अगर वो चुप रही और खतरा सच निकला तो बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है।
1: यानी सही ज्ञान के साथ साहस भी जरूरी है।
0: बिल्कुल विमलेश जी, एक और बात, संकट के समय घबराने के बजाय संकेतों को समझना चाहिए।
1: मुझे लगता है अजीत जी कि सिर्फ आज के बच्चों के लिए ही नहीं बल्कि हम सब के लिए ये कहानी बहुत उपयोगी है। बहुत जरूरी है कि हम प्राकृतिक आपदाओं के बारे में पढ़ें, भूकंप, सुनामी, बाढ़, चक्रवात और आग जैसी परिस्थितियों में क्या करना चाहिए ये जरूर जानें।
0: जी हाँ श्रोताओ, टिली स्मिथ की कहानी हमें बहुत सुंदर संदेश देती है और वो ये कि
1: ध्यान से सीखा हुआ ज्ञान सही समय पर जीवन बचा सकता है।
0: और मैं इसमें एक बात और जोड़ना चाहूंगा कि कभी अपने ज्ञान को छोटा मत समझिए,
1: क्योंकि सही समय पर एक छोटी सी जानकारी भी बहुत बड़ा परिवर्तन ला सकती है।
0: तो उमंग कार्यक्रम के माध्यम से श्रोताओ, हम आप सबको यही कहना चाहते हैं कि पढ़िए, समझिए, सवाल पूछिए और जो सीखें उसे अपने जीवन में लागू भी करने की कोशिश कीजिए,
1: क्योंकि किताब का ज्ञान तभी सार्थक है जब वो हमें बेहतर और अधिक जागरूक इंसान बनाए।
0: श्रोताओ, अभी आपने सुनी बहादुर बालिका टिली स्मिथ की कहानी। अब सुनिए आज का प्रश्न आज की ही जानकारी से। हमारा आज का प्रश्न है, सुनामी आने के प्रमुख कारण क्या क्या हैं? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए।
1: सुनामी आने के प्रमुख कारण क्या क्या हैं? आप हमें अपना उत्तर हमारे IVRS नंबर 8800440559 पर और हमारे ईमेल यानी audio@cit

0: nic.in पर भेज सकते हैं। इंस्टा, फेसबुक, एक्स और लिंक्डइन पर भी ताज़ा जानकारी के लिए CIT NCERT को जरूर फॉलो कीजिए। और यदि आप NCERT की पाठ्य पुस्तकों को डाउनलोड करना चाहते हैं तो सर्च इंजन में जाइए और टाइप कीजिए NCERT बुक्स PDF। और यदि इन पाठ्य पुस्तकों को ध्वनि रूप में सुनना चाहते हैं या हमारे शैक्षिक कार्यक्रम सुनना चाहते हैं तो NCERT YouTube ऑफिशियल चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।
1: तो आइए अब सुनते हैं आज के शैक्षिक कार्यक्रम। हमारा पहला कार्यक्रम है बया हमारी चिड़िया रानी।
0: कक्षा 3 की हिंदी की पाठ्य पुस्तक की एक सुंदर कविता को इस कार्यक्रम में मधुर गीत संगीत

0: बच्चों, अभी आपने सुना ये कार्यक्रम। पता है, वैसे तो सभी पक्षियों के घोंसले सुंदर होते हैं, लेकिन सबसे सुंदर घोंसला बया पक्षी का ही माना जाता है। एक बात बहुत रोचक है, और वो ये कि बया रानी के घोंसले में उसके परिवार और बच्चों के आराम से रहने के लिए अलग अलग जगह भी होती है। ये तो बात हुई बया पक्षी के घोंसले की। अब आप बताइए कि आपने और किन किन पक्षियों के घोंसले देखे हैं। अपने शिक्षकों और बड़ों की सहायता से अलग अलग पक्षियों के घोंसले देखिए और उनके चित्र बनाइए। आपने गीत में सुना था कि बया रानी नदी से पानी लाती है, लेकिन जरा सोचिए और मालूम कीजिए कि यदि कहीं नदी या तालाब भी ना हो तो बया रानी या दूसरे पक्षियों को पानी कहाँ से मिलता होगा। अब आपके करने के लिए एक काम, जैसे हमें पानी चाहिए वैसे ही पक्षियों को भी तो पानी चाहिए, है ना? पक्षियों को पानी मिले इसके लिए आप अपने घर की मुंडेर पर या किसी खुली जगह पर एक बर्तन में उनके लिए पानी रख सकते हैं। तो करके देखिए ना, आप भी खुश होंगे और पक्षी भी बहुत खुश होंगे। अभी आप सुन रहे थे एक खूबसूरत कार्यक्रम बया हमारी चिड़िया रानी, और आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम फ्लाइंग ऑफिसर निर्मलजीत सिंह सेखों।
1: इस कार्यक्रम के द्वारा भारतीय वायुसेना के जांबाज सैनिक निर्मलजीत सिंह सेखों की वीरता के बारे में जानकारी दी गई है, जिसका प्रदर्शन उन्होंने भारत पाक युद्ध के दौरान किया था। वे भारतीय वायुसेना के एकमात्र योद्धा हैं जिन्हें मरणोपरांत परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया।

0: निर्मल जीत सिंह शेखों का जन्म 17 जुलाई 1945 को इसवाल गांव में हुआ था। पिता सरदार त्रिलोक सिंह शेखों और माता हरबंस कौर घर में इस बालक के आगमन से बेहद प्रसन्न थे। इसवाल गांव पंजाब के लुधियाना शहर के समीप हलवारा एयरफोर्स स्टेशन के पास था।
1: सीमावर्ती सैन्य हवाई अड्डा होने के कारण हलवारा एयरफोर्स स्टेशन पर युद्धक विमानों का आना जाना लगा रहता था। इसलिए कहना ना होगा कि बालक निर्मल ने पैदा होने के बाद माता पिता और परिजनों की स्नेह भरी पुचकार और पंजाबी लोक गीतों के अलावा युद्धक विमानों की गर्जना भी सुनी थी।
0: संभवतः इसीलिए बचपन से ही उनके मन में वायुयानों का आकर्षण कूट कूट कर भरा था। जब भी किसी विमान की आवाज आती वो झट से घर के बाहर निकलकर विमान को देखने की कोशिश करते।
2: माँ, मुझे हवाई जहाज देखना बहुत अच्छा लगता है।
3: अच्छा?
2: मैं तो जा रहा हूँ हवाई जहाज देखने।
3: अरे अरे पुत्र सुन तो, तू भी ना। अरे
2: मैं तो गया हवाई जहाज देखने।
3: अच्छा ठीक है, जल्दी आ जाना।
0: जैसे जैसे वो बड़े होते गए विमानों के प्रति उनका आकर्षण बढ़ता ही गया। जब वो चमचमाती हुई सैनिक वर्दी में वायु सैनिकों को देखते तो उनके मन में सेना में जाने की प्रबल इच्छा हिलोरे लेने लगती। जब निर्मल के गांव में जवान छुट्टियों में घर आते तो बालक निर्मल उन्हीं के साथ अपना ज्यादातर समय व्यतीत करता।
2: सत श्री अकाल चाचा।
4: सत श्री अकाल।
2: छुट्टी पर आए हो?
4: अरे निर्मल, तुम तो बहुत बड़े हो गए। हाँ, मैं कल ही आया हूँ। और कैसे हो पुत्र?
2: मैं ठीक हूँ चाचा, मुझे आप लोगों की वर्दी बहुत अच्छी लगती है।
4: हाँ पुत्र, हमारी वर्दी तो है ही शानदार। अरे भाई, देश की सेवा करने वालों की वर्दी तो शानदार ही होगी ना।
2: मैं भी सेना में जाऊंगा। चाचा बताइए ना, आप लोग सेना में क्या क्या करते हैं?
4: अरे पुत्र, हम कसरत करते हैं, परेड करते हैं, युद्ध का अभ्यास करते हैं और लोगों की सेवा भी करते हैं।
2: बंदूक भी चलाते हो?
4: हाँ भाई, सैनिक हैं तो बंदूक तो चलाएंगे ही ना।
2: और हवाई जहाज भी उड़ाते हो?
4: हाँ।
2: मैं भी सेना में जाकर हवाई जहाज उड़ाऊंगा।
4: जरूर पुत्र जरूर, लेकिन इसके लिए ना पहले अच्छी तरह से अपनी पढ़ाई पूरी करो।
2: जी चाचा।
1: निर्मल को हरी सिंह नलवा की कहानियाँ बहुत अच्छी लगती थी। हरी सिंह नलवा 19वीं शताब्दी के एक सुप्रसिद्ध योद्धा थे। उनके शौर्य की गाथाएं पंजाब के गांव-गांव में बताई और गाई जाती हैं।
0: निर्मल जीत अपनी प्रारंभिक पढ़ाई पूरी करने के बाद लुधियाना के समीप अजीतसर मोहे नामक कस्बे में स्थित खालसा हाई स्कूल से मैट्रिक की परीक्षा में प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण हुए। सन 1962 में उन्होंने दयालबाग इंजीनियरिंग कॉलेज आगरा में दाखिला लिया। यहां वो नेशनल कैडेट को यानी एनसीसी में शामिल हुए और एरो मॉडलिंग में अपनी विशेष रुचि दर्शाई।
1: इसी बीच भारत और पाकिस्तान के बीच 1965 का युद्ध छिड़ गया। भारतीय सेना की शानदार विजय हुई। सेना की बहादुरी के बहुत से किस्से जन जन में फैल गए।
0: भारतीय वायु सेना में शामिल होने के अपने चिर संचित स्वप्न को साकार करने के लिए उन्होंने बीच में ही इंजीनियरिंग की पढ़ाई छोड़ दी। उन्होंने भारतीय वायु सेना में आवेदन किया और आखिरकार 4 जून 1967 को उन्हें भारतीय वायु सेना में नियुक्ति मिल गई।
1: शीघ्र ही उनकी पदोन्नति हो गई और वो फ्लाइंग ऑफिसर के पद तक पहुंच गए और भारतीय वायु सेना की फ्लाइंग बुलेट्स कही जाने वाली 18वीं स्क्वाड्रन में शामिल हो गए। अपने विनम्र स्वभाव के कारण वो सबके चहेते बन गए। सभी उन्हें भाई कहकर बुलाते थे। अपने मातहतों के प्रति भी उनका रवैया अत्यंत मैत्रीपूर्ण था।

साथियों, भारत भूमि ने एक से बढ़कर एक वीरों को जन्म दिया है, जिन पर देश को नाज है। इन वीरों ने समरांगन में हमेशा देश का मस्तक ऊंचा किया और देश की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी। आइए आज याद करते हैं भारतीय वायुसेना के जांबाज योद्धा फ्लाइंग ऑफिसर निर्मलजीत सिंह सेखों को, जिन्हें उनके अतुल्य रणकौशल और अप्रतिम शौर्य के कारण देश के सर्वोच्च सैनिक सम्मान परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया।

0: फ्लाइंग ऑफिसर जैसे उच्च पद पर होते हुए भी वो हर काम के लिए तैयार रहते। उनके लिए कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं था। एक दिन की बात है, वो एयरफोर्स कमांड ऑफिस से लौटते हुए सैनिक हवाई अड्डे के हैंगर में पहुंच गए। हवाई अड्डे में हैंगर उस जगह को कहते हैं जहां विमानों को मरम्मत, तकनीकी देखभाल और सफाई के लिए रखा जाता है।
1: गुड मॉर्निंग मान सिंह, कैसे हो?
2: निर्मल सर, आप यहाँ?
1: हाँ, मैं यहाँ। एयरफोर्स कमांड ऑफिस गया था, लौटते हुए सोचा कि एयरक्राफ्ट हैंगर से होता हुआ चलूं।
3: अरे वाह, तुमने तो बहुत अच्छी तरह से इस एयरक्राफ्ट को साफ किया। देखो ना यार, कैसा चमक रहा है, बहुत खूब।
2: सर, ये तो हमारा काम है।
3: मानसिंह, मुझे लगता है कि इस विमान की टेल को कुछ और चमकाने की जरूरत है। जरा वो क्लीनिंग टूल तो देना मुझे।
2: सर, आप भला सफाई करेंगे? ये तो हमारा काम है सर।
3: नहीं मानसिंह, अगर हम जहाज उड़ा सकते हैं तो इसकी सफाई भला क्यों नहीं कर सकते? अरे दो ना मुझे, लाओ। एक मिनट, ये पॉलिश दे। हाँ, पॉलिश दे। अब देखो क्या चमक रहा है, चेहरा दिखाई दे रहा मेरा इसमें।
4: तो ऐसे थे फ्लाइंग ऑफिसर निर्मलजीत सिंह सेखों। उनके बारे में एक बात बड़ी दिलचस्प है। उन दिनों भारतीय वायुसेना के पास युद्धक विमानों में मुख्य रूप से छोटे आकार के नैट विमान हुआ करते थे। फ्लाइंग ऑफिसर निर्मलजीत सिंह सेखों का कद बहुत लंबा था, इसलिए छोटे लड़ाकू विमान नैट 657 में बैठ पाना उनके लिए बहुत असहज था।
3: एक मिनट मान सिंह, तो मैनु फिट होने दे यार। एक मिनट, मैं अपने ये घुटने जरा से मोड़ देता हूँ। हो गया फिट, स्मार्ट लग रहा हूँ ना?
0: फिर भी निरंतर अभ्यास के कारण वो इन छोटे विमानों को भी उड़ाने में सिद्धहस्त हो गए थे। वो कमाल के पायलट थे। जब वो अपना विमान उड़ाते तो उनकी कलाबाजियां देखते ही बनती। और फिर आया 1971 का साल। पाकिस्तान में भारत के उत्तर पश्चिमी भागों में हवाई हमलों के द्वारा युद्ध छेड़ दिया।
4: पाकिस्तानी हवाई हमले में भारत के कई सामरिक महत्व के क्षेत्र तबाह हो गए थे। 14 दिसंबर 1971 का दिन, समय प्रातःकाल, लगभग 10 बजे। अचानक श्रीनगर एयरबेस का सायरन बजने लगा। ये संकेत था पाकिस्तानी हवाई हमले का। श्रीनगर एयरफील्ड पर दुश्मन के F-86 श्रेणी के 6 सेबर जेट विमानों ने हमला कर दिया था। पाकिस्तानी विमानों ने एयरफील्ड में धुआंधार बम बरसाने शुरू कर दिए।
0: सामरिक समुदाय में ये माना जाता था कि युद्ध क्षमता की दृष्टि से पाकिस्तानी सेबर जेट विमान अपनी तकनीकी विशेषताओं के कारण भारत के नेट विमानों की अपेक्षा अधिक सक्षम है। श्रीनगर एयरफील्ड में नेट विमानों की एक टुकड़ी किसी भी परिस्थिति का मुकाबला करने के लिए बिल्कुल तैयार थी।
4: आदेश पाते ही फ्लाइंग ऑफिसर सेखों ने अपने नेट विमान से टेक ऑफ किया। सेखो हवा में पहुंचे ही थे कि उन्हें 6 पाकिस्तानी लड़ाकू सेबर जेट विमान घेर चुके थे, जो लगातार उन पर बम बरसा रहे थे।
0: और अब शुरू हुआ लड़ाकू विमानों के बीच आमने सामने का भीषण युद्ध। एक ओर 6 शक्तिशाली सेबर जेट विमान थे और दूसरी ओर फ्लाइंग ऑफिसर सेखों का इकलौता नेट विमान। फ्लाइंग ऑफिसर सेखों अपने अपूर्व रण कौशल से पाकिस्तानी विमानों से भिड़ गए। उनकी फुर्ती देखते ही बनती थी। उन्होंने ऐसी कुशलता से विमान उड़ाया कि उनकी चपलता और रफ्तार देखकर दुश्मन भी चकित रह गया।
4: इसी बीच उनका विमान शत्रु के निशाने पर आ गया। फ्लाइंग ऑफिसर सेखों के विमान को 6 पाकिस्तानी विमानों से घिरा हुआ देखकर भारतीय एयरफोर्स ट्रैफिक नियंत्रण कक्ष से उन्हें रेडियो संदेश भेजा गया।
2: फ्लाइंग ऑफिसर सेखो, आपके विमान को गोली लगी है, आप तुरंत रनवे पर वापस आएं।
1: सर, अभी तो दुश्मन के 2-2 जहाज मेरे सामने हैं, जब तक मारूंगा नहीं तब तक लौटूंगा नहीं। दुश्मन का ये वाला जहाज बिल्कुल सामने है, निशाना लगाता हूं। आप बिल्कुल निशाने पर आ गया, ये तो ऊपर से निकल गया। मैं इसके ऊपर जाता हूं, वहां से निशाना लगाना आसान होगा।
2: फ्लाइंग ऑफिसर सेखो, दुश्मन के 2 और विमान आपके पीछे हैं। अपने विमान को नीचे लाइए।
1: सर, अब दुश्मन का जहाज बिल्कुल मेरे निशाने पर है, उसे तो गिराकर ही दम लूंगा।

0: ऐसा कहकर फ्लाइंग ऑफिसर शेखों ने एक पाकिस्तानी विमान को निशाना बनाकर उड़ा दिया और एक बार फिर अपनी रफ्तार और कलाबाजियों से पाकिस्तानी विमानों को उलझा दिया। इसी बीच मौका देखकर उन्होंने एक और पाकिस्तानी विमान को निशाना बनाया और उसे मलबे में बदल दिया। आग की लपटों से घिरा वो विमान नीचे आ गिरा।
1: अब दुश्मन के चार विमान बचे थे। दो विमानों को गिराने के बाद फ्लाइंग ऑफिसर शेखों ने बचे हुए चार विमानों को खदेड़ना शुरू किया। घबराकर दुश्मन के जहाज वापस लौटने लगे।
2: ओए कायरो, और भागते कहाँ हो? तो सामने आओ, आओ मुकाबला करो।
0: इसी बीच उनका विमान एक बार फिर से दुश्मनों के निशाने पर आ गया और उसका एक इंजन खराब हो गया। दुश्मनों की गोलियों से उनका जहाज अब जर्जर हो चुका था और गिरने लगा था।
1: कुछ क्षणों बाद फ्लाइंग ऑफिसर शेखों का अंतिम रेडियो संदेश फिर सुनाई दिया।
2: कंट्रोल रूम, दिस इज शेखों 102। मेरा जेट भी अब दुश्मन के निशाने पर आ चुका है सर। अब आप लोग अगला मोर्चा संभालिए। अलविदा सर, शायद अब मुलाकात ना हो। जय हिंद।
0: और अपना आखिरी संदेश देने के बाद फ्लाइंग ऑफिसर शेखों देश के लिए शहीद हो गए।
1: उनकी इस असाधारण वीरता के लिए उन्हें मरणोपरांत सर्वोच्च सैनिक सम्मान परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया। उनके सम्मान में भारत सरकार द्वारा दिए गए प्रशस्ति पत्र के कुछ अंश इस प्रकार से हैं।
0: हालांकि ये बराबरी की टक्कर नहीं थी, लेकिन फ्लाइंग ऑफिसर शेखों ने अकेले ही दुश्मनों को पूरी टक्कर दी और वो वीर गति को प्राप्त हो गए।

0: फ्लाइंग ऑफिसर सेखों परमवीर चक्र का सम्मान पाने वाले भारतीय वायुसेना के एकमात्र सैनिक हैं। शहादत के समय उनकी आयु मात्र 26 वर्ष थी। भारत के पश्चिमी क्षेत्र में 1971 के युद्ध की धारा भारत के पक्ष में मोड़ देने वाले इस वीर सैनिक को कृतज्ञ राष्ट्र पूरी श्रद्धा से नमन करता है।
1: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम फ्लाइंग ऑफिसर निर्मल जीत सिंह सेखों। और अब इसी के साथ हमारा आज का उमंग कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। अब अपने मित्र अजीत को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम यानी कुसुमलता,
2: जगबंधु,
1: चेतना,
2: अर्शद,
1: सौम्या,
2: प्रसून
1: और हमारे आज के विशेषज्ञ प्रोफेसर सरयुग यादव के साथ
2: विमलेश को आज्ञा दीजिए।
1: नमस्कार। उमंग।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार। मंत्रिमंडल की आर्थिक कार्य समिति ने आज विपणन सत्र 2027-28 के लिए सभी अनिवार्य रबी फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में वृद्धि को मंजूरी दे दी है। नई दिल्ली में आज मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि निर्णय किसानों की उपज का लाभदायक मूल्य सुनिश्चित करने के लिए लिया गया है।
1: सबसे पहला फैसला लिया गया रबी क्रॉप्स के लिए MSP तय करना। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने अपने कार्यकाल के आरंभ से ही MSP में 50% प्रॉफिट देना वो तय किया था, उस फैसले को इसमें लागू किया गया है। वीट, बार्ली, ग्राम, लेंटिल्स, रेपसीड, मसूर, मस्टर्ड और सेफ्लावर, इन सब के लिए जो प्रोडक्शन कॉस्ट है उससे कम से कम 50% ज्यादा रखी गई है MSP।
0: कुसुम के लिए सबसे अधिक 675 रुपए प्रति क्विंटल की वृद्धि की गई है। सरसों और खसखस का मूल्य 413 रुपए प्रति क्विंटल बढ़ाया गया है। श्री वैष्णव ने बताया कि मसूर के लिए 390 रुपए, जौ के लिए 136 रुपए, चने के लिए 83 रुपए और गेहूं में 25 रुपए प्रति क्विंटल की वृद्धि की गई। श्री वैष्णव ने कहा कि मंत्रिमंडल ने दिल्ली पुलिस के 1,789 करोड़ रुपए से अधिक की अनुमानित लागत वाली अत्याधुनिक यातायात प्रबंधन प्रणाली के कार्यान्वयन को भी स्वीकृति दी। श्री वैष्णव ने बताया कि मंत्रिमंडल ने PM धारा योजना को भी मंजूरी दी। इससे अंतर्राज्यीय पारेषण प्रणाली मजबूत होगी और राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों में 135 GW तक नवीकरणीय ऊर्जा का पारेषण संभव हो सकेगा। भारत और कतर ने द्विपक्षीय निवेश संधि तथा मुक्त व्यापार समझौते पर वार्ता प्रक्रिया में तेजी लाने पर विचार विमर्श किया है। दोनों देशों ने भारत में $10 अरब का निवेश करने और भारत में कतर निवेश प्राधिकरण का कार्यालय स्थापित करने को लेकर हुई प्रगति की समीक्षा की। गृह मंत्रालय ने कहा है कि जम्मू कश्मीर के बडगाम में सुरक्षा बलों ने लश्कर ए तैयबा के कमांडर मूसा उर्फ आसिफ फौजी को मार गिराया है। ये कार्रवाई आतंकी नेटवर्क के लिए बहुत बड़ा झटका है। मंत्रालय ने कहा कि मूसा के मारे जाने के साथ ही 2022 से जम्मू कश्मीर में सक्रिय लश्कर ए तैयबा के सभी 4 कमांडरों को मार गिराया जा चुका है। आतंकी समूह के अन्य 3 सदस्यों जुनैद भट्ट को 2024 में, सुलेमान को 2025 में और यासिर को इस साल सितंबर में सुरक्षा बलों ने अलग अलग मुठभेड़ों में मार गिराया था। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि गुजरात आतंकरोधी दस्ते, भारतीय तटरक्षक बल और केंद्रीय खुफिया एजेंसियों के संयुक्त अभियान में एक ईरानी नौका से 5 पाकिस्तानी नागरिकों को गिरफ्तार किया गया है। अभियान के दौरान भारत के विशिष्ट आर्थिक क्षेत्र में मौजूद नौका से 526 किलोग्राम मादक पदार्थ जब्त किए गए। श्री शाह ने कहा कि मोदी सरकार युवाओं को नशे की लत से बचाने के लिए प्रतिबद्ध है। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और गृहमंत्री अमित शाह ने कहा कि पंजाब को वर्ष 2029 के अंत तक नशा मुक्त बनाने का अभियान चलाया जाएगा। जालंधर में नशा मुक्त पंजाब रैली में श्री शाह ने कहा कि आगामी विधानसभा चुनाव में भाजपा पंजाब को नशा मुक्त बनाने के

0: मुद्दे पर चुनाव लड़ेगी। श्री शाह ने कहा कि जम्मू कश्मीर में आतंकवाद और पूर्वोत्तर में उग्रवाद की समस्या से निपटने के बाद अब पंजाब को नशा मुक्त बनाने पर ध्यान दिया जाएगा। भारी उद्योग मंत्री एचडी कुमार स्वामी ने आज नई दिल्ली में भारी उद्योग मंत्रालय के इंडस्ट्री एक्सेलरेटर प्रोजेक्ट की प्रभाव रिपोर्ट जारी की। श्री कुमार स्वामी ने कहा कि आत्मनिर्भर भारत के लिए देश को केवल उन्नत तकनीकों के बड़े बाजार तक सीमित नहीं रहना है, बल्कि इन तकनीकों को देश में विकसित करने और निर्यात करने की क्षमता बढ़ानी होगी। वस्त्र क्षेत्र में उभरती प्रौद्योगिकियों पर चर्चा के लिए कल नई दिल्ली में वस्त्र सम्मेलन आयोजित किया जाएगा। लघु उद्योग भारती के राष्ट्रीय महासचिव ओम प्रकाश गुप्ता ने आज बताया कि सम्मेलन में देश भर के वस्त्र क्षेत्र से जुड़े करीब 400 सूक्ष्म और लघु उद्योग भाग लेंगे। गुवाहाटी में दूसरे एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच में वेस्टइंडीज ने भारत को 406 रन का लक्ष्य दिया है। वेस्टइंडीज के कप्तान साई होप ने 104 रन बनाए, वहीं कुलदीप यादव ने 2 विकेट लिए। 3 मैचों की श्रृंखला में भारत 1-0 से आगे है। जापान एशियाई खेलों में भारत ने आज तीरंदाजी में 3 और निशानेबाजी में 1 स्वर्ण सहित कुल 4 स्वर्ण पदक जीते। तीरंदाजी में पुरुष कंपाउंड टीम ने चीन को, मिक्स टीम कंपाउंड ने कोरिया को और महिला कंपाउंड टीम ने चीन को हराकर स्वर्ण पदक जीता। भारत पदक तालिका में 10 स्वर्ण, 21 रजत और 29 कांस्य सहित कुल 60 पदक के साथ 8वें स्थान पर है। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: ਇਹ ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ ਵਿਵਿਧ ਭਾਰਤੀ ਦਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਕੇਂਦਰ FM 107.2 MHz ਤੇ।

0: राणा पाइल्स हॉस्पिटल, कॉल करें 9814128667 पर और पाइल्स से मुक्ति पाएं।
1: जहां रहती है साफ सफाई, वहीं होती है अच्छे मन से पढ़ाई। गंदगी को दूर भगाओ, भारत को स्वच्छ बनाओ।
2: श्रोते हुने गैर फिल्मी गीत असी तुहानू सुनवा रहे हैं, उस्ताद सुल्तान खान ते चित्रा दी आवाज़ आंच।

0: ਇਹ ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ ਵਿਵਿਧ ਭਾਰਤੀ ਦਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਕੇਂਦਰ FM 107.2 MHz ਤੇ। ਹੁਣ ਤੋਂ ਕੁਝ ਹੀ ਪਲਾਂ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣੋਗੇ ਪ੍ਰਾਦੇਸ਼ਿਕ ਸਮਾਚਾਰ। ਪਹਿਲਾਂ 6:10 ਤੇ ਹਿੰਦੀ 'ਚ ਸਾਡੇ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ਾਮ 6:20 ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਦੇ ਜਲੰਧਰ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ।
1: नमस्कार, ये आकाशवाणी चंडीगढ़ है। अब आप वैशाली चौधरी से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। केंद्रीय मंत्रिमंडल की आर्थिक कार्य समिति ने खरीद सत्र 2027-28 के लिए रबी फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में वृद्धि को मंजूरी दी। जौ के MSP में 136 रुपये प्रति क्विंटल और गेहूं के MSP में 25 रुपये प्रति क्विंटल की वृद्धि की गई। हरियाणा सरकार ने निवेश, रोजगार और कृषि को बढ़ावा देने के लिए 3 नई औद्योगिक नीतियों को मंजूरी दी। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने हरियाणा के राजस्व व्यवस्था को मजबूत करने के लिए कर आधार के विस्तार, बेहतर अनुपालन और राजस्व हानि पर रोक लगाने पर बल दिया। केंद्रीय पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने पेट्रोलियम संशोधन विधेयक 2026 का मसौदा आम जनता और उद्योग जगत के सुझावों के लिए जारी किया। विधेयक में लाइसेंस की शर्तों के मामूली उल्लंघन को अपराध की श्रेणी से बाहर करने का प्रस्ताव। और कैबिनेट मंत्री अनिल विज ने अंबाला छावनी के अनाज मंडी में खरीद व्यवस्था का जायजा लिया। 17% से कम नमी वाली सारी जीरी खरीदी जाएगी। और अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय मंत्रिमंडल की आर्थिक कार्य समिति ने आज विपणन सत्र 2027-28 के लिए सभी अनिवार्य रबी फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में वृद्धि को मंजूरी दी। मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने नई दिल्ली में कहा कि बैठक में पहला निर्णय किसानों को उनकी उपज का लाभकारी मूल्य सुनिश्चित करने के लिए लिया गया।
2: सबसे पहला फैसला लिया गया रबी क्रॉप्स के लिए MSP तय करना। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने अपने कार्यकाल के आरंभ से ही MSP में 50% प्रॉफिट देना वो तय किया था, उस फैसले को इसमें लागू किया गया है। वीट, बार्ली, ग्राम, लेंटिल्स, रेपसीड, मसूर, मस्टर्ड और सेफ्लावर, इन सब के लिए जो प्रोडक्शन कॉस्ट है उससे कम 50% ज्यादा रखी गई है MSP।
1: उन्होंने बताया कि कुसुम के न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP में सबसे अधिक 675 रुपये प्रति क्विंटल वृद्धि की गई है। सरसों और खसखस का MSP 413 रुपये प्रति क्विंटल बढ़ाया गया है। श्री वैष्णव ने कहा कि इसी तरह मसूर के MSP में 390 रुपये प्रति क्विंटल, जौ के 136 रुपये प्रति क्विंटल, चने के 83 रुपये प्रति क्विंटल और गेहूं के 25 रुपये प्रति क्विंटल की वृद्धि दर्ज की गई है।
3: रबी सीजन की MSP बढ़ाने से टोटल 84,263 करोड़ रुपीस हमारे किसान भाइयों के मेहनत के इसमें जाएंगे। आप जानते हैं कि इसका एक प्रॉपर मैकेनिज्म है, CACP, कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइसेस। CACP की रिकमेंडेशन आई और जो रबी सीजन के 6 बड़े क्रॉप्स हैं, वीट, बार्ले, ग्राम, लेंटिल, रेपसीड, मस्टर्ड और सेफ्लावर, इनके जो कमिटमेंट है कॉस्ट से मिनिमम 50% अधिक होना, उस कमिटमेंट को ध्यान में रखते हुए ये नए MSP आज अप्रूव हुए हैं।
1: श्री वैष्णव ने कहा कि मंत्रिमंडल ने हरित ऊर्जा गलियारे के तीसरे चरण को भी मंजूरी दी है। इससे

0: अंतरराज्यीय पारेषण प्रणाली मजबूत होगी और राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों में 135 गीगावाट तक नवीकरणीय ऊर्जा का पारेषण संभव हो सकेगा। हरियाणा सरकार ने प्रदेश में निवेश, रोजगार और कृषि को बढ़ावा देने के लिए 3 नई औद्योगिक नीतियों को मंजूरी दी है। चंडीगढ़ में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में आयोजित स्थायी वित्त समिति की बैठक में इन नीतियों को मंजूरी दी गई। मुख्यमंत्री ने बताया कि मेक इन हरियाणा औद्योगिक नीति 2026 के तहत 5 लाख करोड़ रुपए से अधिक का निवेश लाया जाएगा, जिससे 10 लाख नए रोजगार सृजित होंगे। सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम नीति के जरिए 55,000 करोड़ रुपए के निवेश और 5 लाख नौकरियों का लक्ष्य रखा गया है। इसके अलावा कृषि, व्यापार एवं खाद्य प्रसंस्करण नीति के माध्यम से किसानों की उपज को सीधे उद्योगों से जोड़ा जाएगा, जिससे 30,000 युवाओं को रोजगार मिलेगा। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि हरियाणा की अपनी राजस्व व्यवस्था को मजबूत करने का लक्ष्य करों की दर बढ़ाकर नहीं, बल्कि कर आधार का विस्तार, बेहतर अनुपालन, राजस्व हानि पर रोक और आधुनिक तकनीक के प्रभावी उपयोग के माध्यम से हासिल किया जाएगा। मुख्यमंत्री आज चंडीगढ़ में विकसित हरियाणा 2047 के लिए हरियाणा की अपनी कर राजस्व व्यवस्था के विश्लेषण व मजबूती के लिए आयोजित राष्ट्रीय सम्मेलन के उद्घाटन सत्र को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि मजबूत राजस्व व्यवस्था का अंतिम उद्देश्य बेहतर सड़कें, स्कूल, अस्पताल और सार्वजनिक सेवाएं उपलब्ध करवाकर आम जन के जीवन में सुधार लाना है।
1: अच्छी सड़कें हों, बेहतर स्कूल हों, हमारे आधुनिक हॉस्पिटल्स हों, प्रभावी और सार्वजनिक सेवाएं हों, इन सब के लिए पर्याप्त वित्तीय प्रबंधन बहुत जरूरी होता है और इसलिए हम सब की जिम्मेवारी भी है कि हम हरियाणा की कर व्यवस्था को और मजबूत करें। लेकिन हमारा रास्ता स्पष्ट है, नागरिकों पर अतिरिक्त कर का बोझ डाले बिना हमें राज्य की वित्तीय क्षमता बढ़ानी चाहिए।
0: उन्होंने कहा कि करदाता को नियमों और प्रक्रियाओं की स्पष्ट जानकारी मिले तथा कर अनुपालन उसके लिए सरल और पारदर्शी हो, ये सरकार की प्राथमिकता है। मीडिया से बातचीत में मुख्यमंत्री ने कहा,
2: इस राष्ट्रीय सम्मेलन में सुबह हमारे भारत सरकार के मुख्य आर्थिक सलाहकार डॉक्टर वी अनंत नागेश्वरम वो भी वर्चुअल जुड़े थे, उन्होंने मार्गदर्शन किया है। हमारा लक्ष्य स्पष्ट है कि हरियाणा की आर्थिक ताकत बढ़े, हरियाणा की आर्थिक शक्ति बढ़े और विकास के लिए प्रदेश के संसाधन मजबूत हो।
0: मुख्यमंत्री ने कहा कि आज का सम्मेलन विकसित भारत, विकसित हरियाणा के लक्ष्य की ओर एक मजबूत कदम है।
2: हरियाणा विजन डॉक्यूमेंट 2047 देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो उन्होंने संकल्प लिया है, विकसित भारत 2047 के राष्ट्रीय संकल्प के साथ जुड़ा हुआ है। आज का यह सम्मेलन इस दिशा में एक मजबूत कदम है। हमने लक्ष्य रखा है कि हरियाणा का स्वयं का कर राजस्व 2030 तक राज्य के सकल घरेलू उत्पाद यानी GSDP के 10% और 2047 तक ये 15% तक पहुंच।
0: प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी चंडीगढ़ से प्रसारित किए जा रहे हैं। हमारे बुलेटिनों और ताजा समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। ये समाचार हमारे यूट्यूब चैनल और एक्स हैंडल आकाशवाणी न्यूज चंडीगढ़ पर भी उपलब्ध हैं। केंद्रीय पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने पेट्रोलियम संशोधन विधेयक 2026 का मसौदा जारी किया है। 1934 के पुराने अधिनियम में सुधार के उद्देश्य से लाए गए इस विधेयक में लाइसेंस की शर्तों के मामूली उल्लंघन को अपराध की श्रेणी से बाहर करने का बड़ा प्रस्ताव रखा गया है। अब ऐसे मामलों में जेल के बजाय जुर्माने का प्रावधान होगा, जिसके तहत पहली बार उल्लंघन पर 2.5 करोड़ रुपए और बार बार उल्लंघन करने पर 5 करोड़ रुपए तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। विधेयक में सुरक्षा से जुड़ी गंभीर लापरवाही और अवैध गतिविधियों पर कड़े दंड का प्रावधान बरकरार रखा गया है। बिना लाइसेंस पेट्रोलियम गतिविधि चलाने पर 3 साल तक की जेल या 25 करोड़ रुपए तक का जुर्माना हो सकता है। वहीं फर्जी जानकारी देकर लाइसेंस पाने पर 5 साल तक की सजा का प्रस्ताव है। पेट्रोलियम संपत्ति को नुकसान पहुंचाने या चोरी करने पर 7 साल तक की जेल और 25 करोड़ रुपए तक का जुर्माना लगाया जा सकेगा, जबकि महत्वपूर्ण पेट्रोलियम बुनियादी ढांचे को नुकसान पहुंचाने के मामले में 10 साल तक की जेल हो सकती है। सरकार ने इस मसौदे पर आम जनता और

0: उद्योग जगत से 30 दिनों के भीतर सुझाव और आपत्तियां मांगी हैं। हरियाणा के कैबिनेट मंत्री अनिल विज ने आज अंबाला छावनी के अनाज मंडी में खरीद व्यवस्था का जायजा लिया। कैबिनेट मंत्री अनिल विज ने कहा कि सरकार 17% से कम नमी वाली सारी जीरी खरीदेगी।
1: जो परचेज जीरी की है इस सीजन की, वो कल से शुरू हो चुकी है। लोग अपनी जीरी को सुखा रहे हैं और 17 से नीचे जिसका मॉइस्चर है वो सारी हम खरीद रहे हैं। अभी मैंने खुद दो डेहरियों में देखा है, पर नपवाया तो 17 से नीचे ही आया। जितना भी आएगा त्वरित तो हम कार्रवाई करेंगे ताकि जगह भी खाली होती रहे और नए जो किसान आएंगे उनको अपना अनाज डालने की जगह मिले।
0: कैबिनेट मंत्री ने कहा कि अनाज मंडी में सभी आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध हैं। किसानों और अधिकारियों के लिए आराम करने के कमरे, खाने पीने के कैंटीन और ठंडे पानी का पूरा इंतजाम किया गया है। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष शंकर लाल धूपड़ एवं सचिव दीपक बाबूलाल करवा ने भिवानी में बताया कि हरियाणा सरकार के निर्देशों एवं न्यायालय के निर्णय के अनुपालन में हरियाणा शिक्षक पात्रता परीक्षा HTET 2026 का आयोजन इसी वर्ष करवाया जाएगा। उन्होंने बताया कि परीक्षा के आयोजन हेतु आवश्यक तैयारियां एवं प्रक्रियाएं निर्धारित दिशा निर्देशों के अनुसार की जा रही हैं। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार समाप्त होते हैं।

0: क्या आप बेचना चाहते हैं अपना प्लॉट, मकान, पुरानी गाड़ी या घरेलू सामान?
1: क्या आप ढूंढ रहे हैं जीवन साथी, या फिर आप देना चाहते हैं जन्मदिन, मैरिज एनिवर्सरी, गृह प्रवेश या किसी विशेष अवसर की शुभकामनाएं?
0: अब आपकी हर छोटी बड़ी सूचना पहुंचेगी लाखों लोगों तक आकाशवाणी चंडीगढ़ के क्लासिफाइड विज्ञापनों से।
1: दुकान, बिजनेस, स्कूल या हॉस्पिटल के उद्घाटन की घोषणा हो, प्रवेश सूचना, टेंडर नोटिस, स्कूल एडमिशन्स या सांस्कृतिक, साहित्यिक और खेल आयोजनों की जानकारी, सब कुछ आकाशवाणी चंडीगढ़ से प्रसारित करवाएं आसान और किफायती दरों पर।
0: 15 शब्दों में दें अपना क्लासिफाइड विज्ञापन, अतिरिक्त शब्दों की भी सुविधा उपलब्ध।
1: अधिक जानकारी और बुकिंग के लिए संपर्क करें
0: आकाशवाणी चंडीगढ़ सेक्टर 34D या हमें फोन करें, हमारा टेलीफोन नंबर है 2601846।
1: कम खर्च, बड़ी पहुंच,
0: आकाशवाणी चंडीगढ़।
2: आकाशवाणी चंडीगढ़ तो इस वेले तुसी पंजाबी गीतां दा आनंद मान रहे हो FM 107.2 MHz ते। श्रोते हुण वारी आ मीका सिंह दी बोलियां दी, इन्हां नूं लिखिया है अजमेर सिंह चंदन ने।

0: ਰਣਜੀਤ ਬਾਵਾ ਦਾ ਗਾਇਆ ਗੀਤ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੰਜਾਬੀ ਗੀਤਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੁਣ ਸਮਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ ਵਿਵਿਧ ਭਾਰਤੀ ਦਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਕੇਂਦਰ FM 107.2।
1: बेटी के लिए गहने बनवाए एकदम खरे हॉलमार्क के, और तो और दुकानदार ने खुद 15 मिनट में हॉलमार्क के निशान लगाकर भी दिए।
2: अरे बुद्धू, हॉलमार्क गहने तो सिर्फ BIS लाइसेंस होल्डर ज्वेलर ही बेचते हैं, और BIS हॉलमार्क करने के लिए 4 से 5 घंटे का वक्त लगता है।
3: अगर आप भी किसी ऐसे धोखे का शिकार हुए हैं तो BIS की वेबसाइट BIS.org.in पर शिकायत करें। जागो ग्राहक जागो।
4: घर का सपना हो, नई गाड़ी की ख्वाहिश, या किसी जरूरत के लिए पैसे, SBI देता है बेहतरीन लोन ऑप्शंस आकर्षक ब्याज दरों के साथ। होम, ऑटो, पर्सनल, पेंशन और गोल्ड लोन के लिए संपर्क करें अपनी नजदीकी शाखा से। SBI, द बैंकर टू एवरी इंडियन। नियम और शर्तें लागू।
0: श्रोतियों, जयमाला प्रोग्राम लिए बस थोड़ा जहा इंतजार करो। ये प्रोग्राम असि विविध भारती मुंबई तो रिले करांगे।
5: इस कार्यक्रम के प्रायोजक है देव दर्शन धूप अगरबत्ती, धूप स्टिक्स, कोन्स और हवन सामग्री।

नमस्कार, जयमाला कार्यक्रम में आप सबका स्वागत है। कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं इस देशभक्ति के गीत के साथ, वीर जारा फिल्म से। लता मंगेशकर और उदित नारायण की आवाजों में जावेद अख्तर के बोल, मदन मोहन का संगीत।

0: विविध भारती की सालगिरह पर 3 अक्टूबर को होगा एक खास जश्न। राजस्थान की लोक माटी की खुशबू लिए एक आवाज और एक अंदाज जिसकी अपनी ही एक रंगत है, और इस बार ये आवाज सिर्फ गीतों में नहीं बल्कि लाइव ब्रॉडकास्ट में होगी हमारे साथ। जानी मानी गायिका, अभिनेत्री, लेखिका और रंगकर्म की बहुमुखी कलाकार इला आर्मी। तो सुनिए उनकी बातें, जानिए उनकी कहानियाँ और मनाइए विविध भारती की सालगिरह का ये खास जश्न हमारे साथ। तारीख याद रखिएगा, 3 अक्टूबर दिन में 11 बजे से 12 बजे तक विविध भारती की सालगिरह पर इला अरुण होंगी लाइव हमारे साथ। सुरमा लगा के अरे कब से खड़ी हूँ दरवाजे पे, ओ रे शंका।
1: जयमाला कार्यक्रम का अगला गाना पड़ोसन फिल्म से लता मंगेशकर की आवाज में राजेंद्र कृष्ण के बोल और राहुल देव बर्मन का संगीत।

भाई बदूर, भाई बदूर, अब जाएंगे कितनी दूर। भाई बदूर, भाई बदूर।

0: इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे देव दर्शन धूप अगरबत्ती धूप स्टिक्स कोन्स और हवन सामग्री।
1: सुबह जलाओ शाम जलाओ
2: देव दर्शन धूप।
1: सुबह जलाओ शाम जलाओ
2: देव दर्शन धूप।
3: वही मोनू तू आजकल सोशल मीडिया ते बहुत स्टोरियां स्टेटस ते ज्ञान वंडदा।
4: ओ मैं ता समझदारी बहुत आ बस कदे मान जा नहीं कीता।
3: अच्छा फिर एक गल दा जवाब दे HIV किवें फैलदा है।
4: HIV
3: नहीं पता ना समझदार वीरे ता सुन HIV किवें संक्रमित सुई सिरिंज सांझा करन नाल संक्रमित व्यक्ति दे नाल असुरक्षित यौन संबंध बनाउन नाल संक्रमित खून जा खून दे उत्पादां दी वरतों नाल संक्रमित गर्भवती मां तों उस दे होण वाले बच्चे नूं HIV दी बीमारी हो सकदी है।
5: वधेरे जानकारी लई टोल फ्री एड्स हेल्पलाइन नंबर 1097 ते कॉल करो। पंजाब स्टेट एड्स कंट्रोल सोसाइटी द्वारा जनहित विच जारी।

0: किशोर कुमार की आवाज में आप सुन रहे थे घर फिल्म से ये गाना, गुलजार के बोल राहुल देव बर्मन का संगीत।
1: सुषमा श्रेष्ठ से पूर्णिमा बनने तक का एक सफर। संगीत की दुनिया

0: जानी मानी गायिका पूर्णिमा से एक खास बातचीत में
1: उसका अंतरा हमेशा पंचमदा मेरे लिए पता नहीं क्यों गाते थे। कभी शोज के लिए गए, बस में साथ में बैठे तो मेरा हाथ पकड़ के, वो अंतरा था ना कि रखना भरोसा उस पे सदा।
0: बॉम्बे टॉकीज में 3 अक्टूबर शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

आप सुन रहे थे गोलमाल फिल्म से ये गाना। इस फिल्म के डायरेक्टर थे ऋषिकेश मुखर्जी। इन्होंने कई फिल्में जैसे आनंद, अभिमान, नमक हराम जैसी कई सुपरहिट फिल्में बनाई। आज विविध भारती याद कर रहा है उनकी याद के दिन पर। जानिए उनके बारे में कुछ और बातें, कुछ और किस्से आज के फनकार कार्यक्रम में 9:30 पर। आइए अब सुनते हैं आनंद फिल्म से ये गाना, मुकेश की आवाज में, योगेश के बोल और सलिल चौधरी का संगीत।

0: ਮੈਂ ਸੋ ਪੂਰੀਆਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਗੀਤ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਸੀ 94 ਪੰਜਾਬੀ ਗੀਤ।
1: जिंदगी के सफर में आपका सच्चा हम सफर FM 107.2 आकाशवाणी चंडीगढ़।
2: मैदानों से लेकर पहाड़ों की हरी भरी वादियों तक,
1: घर घर जन जन तक चंडीगढ़ के साथ साथ देश के 5 राज्यों तक पहुंचने वाला चंडीगढ़ का एकमात्र रेडियो चैनल,
2: आपका अपना FM 107.2 आकाशवाणी चंडीगढ़,
1: जो चंडीगढ़ के साथ साथ पंजाब, हरियाणा, हिमाचल, यूपी और उत्तराखंड में बनाए आपके प्रोडक्ट्स की खास पहचान।
2: मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और प्रसार भारती की लाइव स्ट्रीमिंग के जरिए आपके बिजनेस को दे ग्लोबल उड़ान।
3: ना वो अखियां रूहानी कहीं, ना वो चेहरा नूरानी कहीं,
1: आकाशवाणी चंडीगढ़ दुनिया के हर कोने में पहुंचाए आपका ब्रांड।
3: जग घूमे थारे जैसा ना कोई।
2: तो देर क्यों जनाब, अपने कारोबार की एडवर्टाइजमेंट बुक करवाएं।
1: चले आएं आकाशवाणी चंडीगढ़ सेक्टर 34D, या हमें फोन करें। हमारा टेलीफोन नंबर है 2601846, चंडीगढ़ का STD कोड है 0172,
2: और हमारा ईमेल आईडी है akashvanichandigarh@gmail.com।

0: ए जी उठो, अरे 9 बज रहे हैं।
1: बज नहीं रहे हैं बेगम, बज चुके हैं। मैं नींद में कब से घंटे गिन रहा हूँ।
0: घंटे ही सुनते रहोगे या घंटा घर तक जाओगे?
1: अम्मा बेगम आज तो छुट्टी है, आज तो घंटे का नाम न लो।
0: अजी सौदा सुलफ लाने का ख्वाब न देखो, घर में नहीं कौड़ी, मेला देखने दौड़ी। मैं तो कह रही थी कि जाओ कोई चीज गिरवी करा के आओ, तो आज चूल्हा जलेगा।
1: है? यानी चूल्हा नहीं जला आज, तो फिर आज हमारी चाय
0: चाय नहीं बनी।
1: क्यों, मैं तो सवेरे सवेरे चाय पीने का आदी हूँ।
0: तो मैं क्या करूँ, घर में कुछ हो तो बने। यहाँ तो शकर खत्म हो चुकी है, चाय का डिब्बा खाली पड़ा है।
1: चाय तैयार होगी और तुम मुझे सता रही हो। समझ में नहीं आता कि शकर और चाय इस कदर जल्द खत्म किस तरह हो गई। अभी परसों तो मंगवाई थी।
0: जी हाँ, आपका परसों भी चंदूलाल की कल से कम नहीं। मंगवाए हुए एक दिन कम एक महीना होता है।
1: तो भी कल्लू को कह के मंगवा लिया होता, सुबह सवेरे दुकान खुल गई होगी।
0: दुकान तो जरूर खुल गई होगी, मगर वहाँ अपना खाता बंद हो गया है। बनिया एक ढेले का उधार देने को तैयार नहीं।
1: तो फिर
0: मुंह हाथ धोइए, कपड़े पहनिए और पंसारी की दुकान पर जाकर अपनी रिस्ट वॉच गिरवी करा कर आइए।
1: बेगम तुम अपने सारे जेवर गिरवी करवा चुकी हैं, अब मर्द के जेवर पर हाथ डाल रही।
0: मर्द? हाय जवान मर्द हो तुम, जेवर की मर्दों को क्या जरूरत, जेवर तो औरतों के लिए
1: होता होगा, उन औरतों के लिए जिनके मर्द निखट्टू हो। हम खुद तुम्हारे जेवर हैं। अरे भाई रहने दो बेगम तुम्हारे ताने, अब हम अभी इंतजाम करते हैं। रेस्ट वॉच भी रह जाएगी और आज का दिन भी गुजर जाएगा। कहो कितना रुपया चाहिए?
0: कौन से बैंक से निकालोगे?
1: अच्छा ये बैंक का ताना न दिया करो मुझे, समझी? अब तक बैंक में कुछ न सही, मगर दिल तो बैंक से ज्यादा मालदार है बेगम। कहो कितने रुपए चाहिए?
0: तो कहीं अपने बहन भाइयों से मंगवाओगे?
1: ये दूसरा तीर। बेगम तुम चूकोगी नहीं, मेरे खानदान पर ताना मार दिया कसके। अरे मेरे बहन भाइयों के पास है ना तुम्हारे बहन भाइयों के पास।
0: मेरे मैके पर न जाओ, बल्कि सीधे सीधे बताओ कि आखिर लाओगे कहाँ से।
1: बस ये ना पूछो, 5-10 रुपए का इंतजाम कर देते हैं, रेस्ट वास से ज्यादा अजीज एक चीज भेज देंगे।
0: मैं भी तो जानू क्या चीज है वो।
1: बेगम इल्म फन ज्ञान का खजाना, एक ऐसी दौलत जिसका कोई बदल नहीं। बेगम जब वो चीज मुझे मिली थी तो सोचा था कि 7 आसमान अपनी जगह छोड़ दें, जमीन अपने महवर से इधर उधर होकर उलट पुलट हो जाए, सितारे आपस में टकराएं, मगर वो चीज नहीं बिकेगी, नहीं बिकेगी। मगर आज एक क्लर्क अपनी मुफलिसी के हाथों मजबूर होकर उस खजाने को कौड़ियों के मूल बेच देगा और उसके बदले में बाजार से चाय शकर नमक मिर्च और धनिया खरीद लाए।
0: वाह वाह वाह वाह वाह, क्या शानदार लेक्चर दिया है। अब जल्दी से स्टेज से उतरो और अपने खजाने को बेचकर जो भी मैं मंगवाऊं ले आओ।
1: सारी पंसारी की दुकान ले आऊंगा, बस पता चल गया कि घर में क्या क्या है और क्या क्या नहीं।
0: यूं समझ लो घर में एक तुम हो और एक हम है और बाकी खुदा का नाम।
1: अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। लो भाई चलते हैं, वो चीज निकालेंगे और बेचने ले जाएंगे। हमारी हिम्मत बंधाओ,
0: जा खुदा तुम्हारी मदद करे।
1: अरे क्या हो गया, समझ नहीं आता। यही तो थी बेगम।
0: क्या है?
1: अरे इधर आओ।
0: क्यों
1: भाई वो किताब क्या हुई?
0: किताब कौन सी?
1: वो जो हमें BA में इनाम में मिली थी।
0: अरे वो सुनहरी जिल्द वाली।
1: जी हाँ जिसका

0: जिक्र कॉलेज की तारीख में सुनहरे हरफों में है।
1: वो तो
0: क्या हुआ उसे, झिंगर खा गए?
1: नहीं, हमने खा लिया उसे।
0: क्या मतलब?
1: मैंने उसे परसों रद्दी में बेच दिया था।
0: बेगम, तुमने ये क्या किया? उसे बेच देती, जरूर बेच देती, मगर रद्दी में तो ना बेचती। आप फूट पड़ी गंगा जमुना की तरह। खैर जाने दो। ओहो, तुम अपनी आंखों का खजाना क्यों लुटा रही हो? मान भी जाओ, मान भी जाओ।
1: मैं जाहिल हूँ, मत छुओ मुझे।
0: नहीं नहीं नहीं,
1: शादी से पहले तो दुनिया जान की तारीफें करते थे मेरी। कभी कहते थे अफलातून का इल्म निसार तुम पर से, कभी कहते थे सारी दुनिया की शायरी तुम पर से कुर्बान।
0: वो तो अब भी निसार और कुर्बान ही तुम पर से। जरा जुबान स्लिप हो गई। अरे भाई, अब माफ कर दो, माफ कर दो, अपनी हसीन आंखों को तकलीफ न दो। ये रेशमी जुल्फें उड़ कर आंसू पोछ रही हैं तुम्हारे, लगता है जैसे बेत की झाड़ियां पहाड़ी चश्मे का मुंह चूम रही हैं।
1: चलो हटो, ये मक्कारी की बातें मुझे बिल्कुल पसंद नहीं।
0: ओहो, और शादी से पहले इन्हीं मक्कारी की बातों में तुम जो इस कदर महव रहा करती थी।
1: जी हाँ, मैं ही तो दौड़ दौड़ कर कॉलेज से भागाया करती थी, घंटों खाला जान कह के अम्मी के पाँव चाटा करती थी।
0: जी हम कहते थे,
1: और नहीं तो क्या मैं कहती थी।
0: अच्छा खैर जाने दो, मैं ही दौड़ा दौड़ा आया करता था। एक बात कहूँ बेगम, बुरा तो नहीं मानोगी?
1: कहिए ना, बुरा मानने की क्या बात है?
0: मैंने सोचा कि शायद तुम बुरा मान जाओ, तुम्हें गुस्सा बहुत जल्द आ जाता है और फिर तुम नहीं सोचती कि क्या कह रही।
1: जी हाँ, मैं वैसे ही पागल हूँ कि बात बात पर काट खाने को दौड़ती हूँ।
0: देखो आ गया ना गुस्सा, मैंने कहता था।
1: मगर आप बातें ही ऐसी करते हैं कि बस आग लग जाए।
0: अरे भाई, तो अब हमारी बातें आपको आग लग रही है? अफसोस बेगम, तुमसे ऐसी तवक्को नहीं थी। अब हमारी बातों की मिठास आटे दाल नमक मिर्च में खत्म हो गई।
1: देखिए आप फिजूल बातें ले बैठे, कहने वाले कुछ थे और कह रहे हैं कुछ।
0: आए लो, अब मैं वाही तवाही बकने लगा।
1: ओहो, मैंने तो ऐसा नहीं कहा, अब कुछ नहीं कहूंगी, बस आप जो चाहे कहते रहिए।
0: तो गोया मैं बाबले कुत्ते की तरह भौंकता रहूं?
1: अल्लाह, आप आखिर असल बात करेंगे भी या यूं ही?
0: खैर बेगम, ये तो तय रहा कि तुम बुरा ना मानो।
1: नहीं मानूंगी, नहीं मानूंगी, नहीं मानूंगी। कहो तो लिख कर दे दो।
0: अजीब बात है। तो बेगम, हमारे बचपन में कभी ऐसा नहीं होता था कि महीने के खत्म पर अम्मा जान शिकायत करती कि आटा खत्म हो गया, चावल खत्म, घी तेल खत्म, शकर और चाय का टोटा पड़ गया। समझ में नहीं आता कि अब ऐसा क्यों होता है। उस वक्त तो
1: जी हाँ, अब मैं ही तो सारी चीजें अकेले खा जाती हूँ।
0: देखो बेगम, देखो देखो, तुम फिर बीच में बोली, बुरा मान गई। देखो उस वक्त अक्सर मेहमान भी आ जाते थे, मगर कभी ऐसी हालत नहीं होती थी जो आजकल है। या तो उस जमाने में बरकत ही बरकत थी, या फिर उन लोगों का सलीका ही ऐसा था कि किसी को शिकायत नहीं होती।
1: जी हाँ, एक मैं ही बदसलीका हूँ, मैं कहाँ से उन लोगों की बराबरी कर सकती हूँ। आप ये तो नहीं देखते कि महंगाई किस कदर बढ़ गई है, चीजों के दाम रोज बरोज बढ़ते ही जा रहे हैं, और आप मुझ पर बदसलीकगी का इंतजाम लगाते हैं।
0: ओह बेगम, मैंने तुमको बदसलीके कब कहा?
1: मैं खूब समझती हूँ, आखिर मैं इस कदर बदसलीका, फूहड़ और फिजूल थी तो शादी करना ही क्या जरूरी था? क्यों, कहीं और माथा रगड़ते?
0: जी हाँ, शादी के लिए मैंने माथा रगड़ा था और तुमने कुछ नहीं किया।
1: मैंने क्या किया था? फिजूल मुझ पर इल्जाम मत लगाइए।
0: फिजूल इल्जाम? सब लोगों की नजरें बचाकर मैं ही तो घूरा करता था, मैं ही तो देर से आने पर शिकायत करता था। भाई बेगम, तुम भी एक ही चीज हो।
1: आपको अपनी हरकत तो याद नहीं, बस मेरी हरकत गिनवाए चले जाते हैं।
0: भाई हम तुमको तुम्हारी हरकत को, तुम्हारी एक एक अदा को याद न रखें तो और किसको याद रखेंगे? अगर तुम्हारी बातों को भूल जाएं तो फिर हमारी दुनिया में रखा ही क्या रह जाएगा।
1: कोई तुम मर्दों से मक्कारी और चापलूसी सी।
0: जी ये मक्कारी और चापलूसी है, और तुम इस मक्कार और चापलूस को पसंद जो करने लगी थी। याद है एक दिन तुमने क्या कहा था?
1: क्या कहा था
0: है? अब भूल भी गई? बताऊं तो शर्मा जाओगी। खैर याद दिला देता हूं, तुम भी क्या याद करोगी। कहने लगी,
2: रात मैंने ख्वाब देखा था आप आए और एक खूबसूरत गुलाब मेरे बालों में लगा दिया।
1: अल्लाह, बस भी कीजिए, आपकी जबान है ये कैंची चलती ही चली जाती।
0: अरे मुंह से हाथ तो हटाओ, और कुछ नहीं करूंगे। हाँ अब ठीक है। अच्छा एक बात बताओ।
1: नहीं कुछ नहीं बताऊंगी।
0: ओहो भाई, गुस्सा आ गया ना। देखो मैं गुदगुदियां करता हूँ। देखो देखो बेगम, जब तुम इस घर में नहीं थी तो इस घर का कारोबार नहीं चलता था क्या?
1: जी हाँ, तभी तो कोई चीज अपनी जगह पर नहीं, कपड़ों का एक जोड़ा भी सलामत नहीं, किसी के बटन गायब, किसी का गरेबान हंसता हुआ, बिस्तर की चादर महीनों नहीं बदली जाती।
0: अरे तो इससे फर्क क्या पड़ता है?

0: फिर घर क्या था, अच्छा खासा क्लब बना हुआ था।
1: देखो बेगम, देखो तुम मेरे दोस्तों को कुछ न कहो, वो बेचारे खुलूस से चले आते।
0: जी हाँ, बेचारे ही तो हैं। जब भी आते हैं, भाभी चाय पिलाओ, भाभी पान खिलाओ, भाभी ये करो, भाभी वो करो, भाभी कोई नौकरानी हो गई। ताज्जुब है अभी तक नाजिल नहीं।
2: अरे भाई अनवर साहब क्या सो रहे हो?
0: लो अभी शैतान को याद किया और आधम का। मैं तो साफ कह दूंगी भैया, कोई और घर देखो, अब तुम्हारे ये नाज नहीं उठाए जाते।
1: अरे भाई अभी आया। बेगम भाई खुदा के लिए कहीं कुछ कहना।
0: क्यों ना कहूं, मैं तो बराबर कहूंगी, क्या किसी से डरती हूँ?
1: भाई तुम कहाँ डरती हो, तुम तो शेरनी हो शेरनी, मगर इस गरीब शौहर का भी तो ख्याल रखो, ये तो सारी दुनिया से डरता है, लोग क्या कहेंगे। बेगम देखो मेरी कसम है, जो कुछ कहा सुना।
3: अरे यार ऐसी भी क्या जल्दी है, सब्र तो नाम कर दूं।
2: अरे भाई जल्दी है, 10 मिनट से तो दरवाजे पर खड़े हैं। और भाई ये दरवाजे पर ही खड़े रखोगे या अंदर भी चलो?
3: यार तुम्हारी भाभी की तबीयत बहुत खराब है, आगरा मामला कुछ।
2: और तुम मिजाज ही पूछ लो, मैं चलो।
3: नहीं नहीं मिजाज भूल किया समझो, बस तुम चलो, मैं उसे दबा पिला के आया।
2: नहीं यार भाभी भी क्या कहेंगी दिल में, जरा मिजाज पूछूं।
0: बड़े ठीक है,
3: ठीक हो जाए तो खाना खा लेने का भी रात का, अब तुम चलो।
2: ना ना भाई, हम तो भाभी से बगैर मिले। क्यों भाभी?
0: नहीं चलेंगे, चल तू जलाल तू।
3: अच्छा भाई चलो अंदर चलो, आओ।
4: अरे भाभी तो बहुत सख्त बीमार मालूम होती है। क्यों भाभी कैसी हैं आप?
0: मर रहे हैं, और क्या है भैया?
4: अरे मरे हैं आपके दुश्मन यार अनवर, आज तो भाई हम नहीं जाएंगे, भाभी की तीमारदारी यही करेंगे। और हाँ तुम क्या करोगे आज? हम देखो अपने हाथ से खाना बनाएंगे और भाभी को भी खिलाएंगे।
0: नहीं भैया रहने दो, डॉक्टर ने मना किया है खाने के लिए।
4: आपको मना किया होगा भाभी, हमको और अनवर को कहाँ मना किया है। देख तू यहाँ बैठ, मैं जरा किचन में जाऊँ।
3: अरे यार क्यों हाथ धो के पीछे पड़ा है, कह दिया ना कि ये भी नहीं खाएंगी, मैं भी नहीं खाऊंगा और तुम भी नहीं खाओ।
4: अरे भाई खाना ना सही, एक गर्मा गर्म काफी का कप तो पिला दूं ही
0: ना। ना भैया ना, काफी भी नहीं चलेगी।
4: मैं नहीं मानता, काफी से जरा आपको आराम आएगा।
3: यार तुम कहाँ जा रहे हो?
4: भाई किचन में जा रहा हूँ, कुछ जाने दो, मैं काफी बना के आता हूँ।
2: भाभी जरा लेटे लेटे बताना शक्कर किसमें है, और हाँ काफी कहाँ है?
0: अब तुम ही बताओ कि काफी कहाँ रखी है?
1: अरे अरे पलंग से ना उठो, क्या कर रही हो, तबीयत खराब है, लेटी रहो।
2: भाभी यहाँ तो कुछ भी नहीं।
4: वहाँ तो कुछ भी नहीं दिखाई देता।
0: हाँ भैया कुछ भी नहीं।
4: अरे तो आप?
0: हाँ भैया असली बीमारी तो तुम पर जाहिर ही हो गई, बीमार बनने का क्या बहाना करूं?
4: माफ करना भाभी, मैंने आप लोगों को तकलीफ दी है, मुझे ये ख्याल ही नहीं रहा कि अनवर भी एक क्लर्क है और आज महीने की आखिरी तारीख है। खुद मैं इसलिए आज घर से चला था कि खुद चलकर तुम्हारे यहाँ एक कप चाय पी लूंगा। खैर खुदा हाफिज़।

हवा महल में अभी आपने एस आई इशरत का लिखा प्रहसन सुना, महीने की आखिरी तारीख। निर्देशन मुख्तार अहमद ने किया।

0: क्या आप बेचना चाहते हैं अपना प्लॉट, मकान, पुरानी गाड़ी या घरेलू सामान?
1: क्या आप ढूंढ रहे हैं जीवन साथी, या फिर आप देना चाहते हैं जन्मदिन, मैरिज एनिवर्सरी, गृह प्रवेश या किसी विशेष अवसर की शुभकामनाएं?
0: अब आपकी हर छोटी बड़ी सूचना पहुंचेगी लाखों लोगों तक आकाशवाणी चंडीगढ़ के क्लासिफाइड विज्ञापनों से।
1: दुकान, बिजनेस, स्कूल या हॉस्पिटल के उद्घाटन की घोषणा हो, प्रवेश सूचना, टेंडर नोटिस, स्कूल एडमिशन्स या सांस्कृतिक, साहित्यिक और खेल आयोजनों की जानकारी, सब कुछ आकाशवाणी चंडीगढ़ से प्रसारित करवाएं आसान और किफायती दरों पर।
0: 15 शब्दों में दें अपना क्लासिफाइड विज्ञापन, अतिरिक्त शब्दों की भी सुविधा उपलब्ध।
1: अधिक जानकारी और बुकिंग के लिए संपर्क करें
0: आकाशवाणी चंडीगढ़ सेक्टर 34D या हमें फोन करें, हमारा टेलीफोन नंबर है 2601846।
1: कम खर्च, बड़ी पहुंच,
0: आकाशवाणी।

0: किसान वीरो आओ कुदरत नाल मिलके खेती करिए। कुदरती खेती अपना के मिट्टी दी सेहत संभालो, पानी दी बचत करो, अति टिकाऊ खेती वाल कदम बढ़ाओ। सिखलाई, तकनीकी मार्गदर्शन अति होर जानकारी ले अपने नेड़ले खेतीबाड़ी विभाग, कृषि विज्ञान केंद्र या खेतीबाड़ी अति किसान भलाई मंत्रालय दिया सेवावां नाल संपर्क करो। कुदरती खेती अपनाओ, सेहतमंद मिट्टी दे नाल खुशहाल किसान बनाओ। खेतीबाड़ी अति किसान भलाई मंत्रालय, भारत सरकार।
1: डॉक्टर सोनिका शर्मा जी, तुसी गल कीती सी एंटीऑक्सीडेंट

0: डॉक्टर सोनिका शर्मा जी, भारत दे विच असीं आम तौर ते ताज़ा भोजन खाने हाँ या मौसम बदलन दे अनुसार भी असीं अपना भोजन शैली जिहड़ी आ उसनूं बदलदे हाँ परंपरागत तौर दे उत्ते, तां इस विच ताजगी दे खास लाभ की हुंदे ने?
1: हाँ जी, जिहड़े भी ताज़े भोजन ने, सब तो पहले तां इन्हां विच जिहड़े पौष्टिक तत् ने ओ वधिया हुंदे ने ते ओ आपां संभाल के रख सकदे आ। जिवें आपां पहले भी पालक की गल कीती, चलो पालक की ही गल करदे आ। जिहड़ी तुसीं ताज़ी तोड़ी हुई पालक हैगी है, उस विच वाइटमिन सी की मात्रा बहुत ज्यादा हुंदी है, ते जे उही पालक आपां 24 घंटे या 48 घंटे रखिए तां जिहड़ी वाइटमिन सी की मात्रा है ओ 50% घट जांदी है। तां जरूरी है कि जिहड़ी तुसीं चीज़ खा रहे हो वो ताज़ी होनी चाहिए, तां जो उरी जिहड़ी पौष्टिकता है वह बरकरार रहे। इस तो बाद जिहड़े भी तुहाडे ताज़े भोजन ने उन्हां विच किसी भी तरह का कोई आर्टिफिशियल कलर नहीं है, कोई प्रिजर्वेटिव नहीं है, तां तुसीं अपने शरीर नूं इन्हां सारियां चीज़ां तों बचा रख सकते हो। एक जे आपां मौसम की भी गल करिए ना, तो मौसम देखो इन्ना वधिया हैगा है कि तुहाडे शरीरिक लोड़ के अनुसार तुहानूं वख-वख तरह दीआं सब्जियां या फलां नूं तुहानूं प्रदान करता है। जिवें आपां गल करिए गर्मियां दे विच,

0: जी ठीक है, तो बच्चे दे ओवरऑल ग्रोथ ली और ए ब्रेन डेवलपमेंट ली भोजन का ताजा ते जैविक होना बहुत ही जरूरी है।
1: जी
0: हुण आपां गलबात करांगे कि गर्भवती औरतां लई क्यों है जरूरी है, क्योंकि जिहड़ी कीटनाशक कोई भी हैगा उह प्लासेंटा दी रुकावट नूं पार करके भ्रूण दी डिवेलपमेंट ते भी असर पाउंदा हैगा,
1: जी
0: तां जरूरी है कि जिहड़ी भी गर्भवती औरत है उह जैविक भोजन दा ही सेवन करे, चाहे तुसीं बाजारों लैके आंदे हो जिवें आपां पहले गल कीती सी कि उहनूं चंगी तरह धो के पानी च रख के चंगी तरह धो लीए, या तुसीं घरे उगाओ जिहड़े भी

0: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं मुकेश कुमार। केंद्र ने वर्ष 2027-28 के दौरान सभी रबी फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में वृद्धि को स्वीकृति दी। उत्तर प्रदेश, कर्नाटक और तेलंगाना में वर्तमान खरीफ मौसम में दलहन और तिलहन की खरीद के लिए 5,548 करोड़ रुपए की मंजूरी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, सरकार किसानों के हितों की रक्षा के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। केंद्रीय मंत्रिमंडल की अंतरराज्यीय विद्युत पारेषण नेटवर्क मजबूत करने के लिए हरित ऊर्जा गलियारे के तीसरे चरण की स्वीकृति। दिल्ली के लिए अत्याधुनिक यातायात प्रबंध प्रणाली की भी मंजूरी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने टेलीफोन पर बातचीत में व्यापार, रक्षा, ऊर्जा और महत्वपूर्ण प्रौद्योगिकियों में आपसी सहयोग की समीक्षा की। गुजरात आतंकरोधी दस्ता, भारतीय तटरक्षक बल और केंद्रीय खुफिया एजेंसियों के संयुक्त अभियान में 5 पाकिस्तानी नागरिक गिरफ्तार। ईरानी नाव से 526 किलोग्राम मादक पदार्थ जब्त। और एशियाई खेलों में भारतीय तीरंदाजों और निशानेबाजों ने स्वर्ण पदक जीते। 10 स्वर्ण, 21 रजत और 29 कांस्य सहित भारत के 60 पदक। महिला हॉकी टीम फाइनल में पहुंची। केंद्रीय मंत्रिमंडल की आर्थिक कार्य समिति ने विपणन सत्र 2027-28 के लिए सभी अनिवार्य रबी फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में वृद्धि को मंजूरी दे दी है। नई दिल्ली में आज मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि ये निर्णय किसानों की उपज का लाभदायक मूल्य सुनिश्चित करने के लिए लिया गया है।
1: सबसे पहला फैसला लिया गया रबी क्रॉप्स के लिए MSP तय करना। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने अपने कार्यकाल के आरंभ से ही MSP में 50% प्रॉफिट देना वो तय किया था। उस फैसले को इसमें लागू किया गया है। वीट, बार्ली, ग्राम, लेंटिल्स, रेपसीड, मसूर, मस्टर्ड और सेफ्लावर, इन सब के लिए जो प्रोडक्शन कॉस्ट है उससे कम से कम 50% ज्यादा रखी गई है MSP।
0: कुसुम के लिए सबसे अधिक 675 रुपए प्रति क्विंटल की वृद्धि की गई। सरसों और खसखस का मूल्य 413 रुपए प्रति क्विंटल बढ़ाया गया है। श्री वैष्णव ने बताया कि मसूर के लिए 390 रुपए, जौ के लिए 136 रुपए, चने के लिए 83 रुपए और गेहूं में 25 रुपए प्रति क्विंटल की वृद्धि की गई। सरकार ने उत्तर प्रदेश, कर्नाटक और तेलंगाना में वर्तमान खरीफ मौसम के लिए प्रमुख दलहन और तिलहनों की खरीद के लिए 5,548 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है। श्री वैष्णव ने कहा कि मंत्रिमंडल ने दिल्ली पुलिस के 1,789 करोड़ रुपए से अधिक की अनुमानित लागत वाली अत्याधुनिक यातायात प्रबंधन प्रणाली के कार्यान्वयन को भी मंजूरी दी।
1: ITMS में ऑब्जेक्टिव है कि जो 1,529 ट्रैफिक सिग्नल्स है, ये सारे अभी फिक्स टाइमिंग्स में ट्रैफिक पे अगर इस तरह की कैपेबिलिटी हो लाइट में कि जिस तरफ से ज्यादा ट्रैफिक आ रहा है, ज्यादा बिल्डअप हो रहा है, वहाँ पे रेड लाइट कम ड्यूरेशन के लिए रहे और जिस तरफ खाली है उस तरफ रेड लाइट ज्यादा ड्यूरेशन, ये पॉसिबल है ITMS से। इंटेलिजेंट ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम बहुत ही इंपॉर्टेंट है, स्पेशली फॉर अ मेगा सिटी लाइक दिल्ली।
0: श्री वैष्णव ने बताया कि मंत्रिमंडल ने हरित ऊर्जा गलियारे के तीसरे चरण को भी स्वीकृति दे दी है। उन्होंने कहा कि इस ऐतिहासिक पहल से भारत की अंतरराज्यीय पारेषण प्रणाली मजबूत होगी।
1: इसलिए 1,86,000 करोड़ रुपीस का ये पूरा प्रोग्राम बनाया गया है। इस प्रोग्राम में 135 गीगावाट को रिन्यूएबल एनर्जी को, बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम, स्टेट की जो ट्रांसमिशन यूटिलिटीज है उनको अपग्रेड करना और नई ग्रीन फील्ड लाइन्स को बनाकर इसको और एग्जिस्टिंग लाइन्स को अपग्रेड करना, इन सब को ध्यान में रखते हुए इस प्रोग्राम को इम्प्लीमेंट किया जाएगा। इस प्रोग्राम के इम्प्लीमेंटेशन में MNRE का रोल रहेगा, पावर ग्रिड का रोल रहेगा, मिनिस्ट्री ऑफ पावर का रोल रहेगा और बहुत सारा रोल रहेगा स्टेट गवर्नमेंट्स के साथ मिलकर इसको इम्प्लीमेंट करेंगे।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सरकार देश भर के किसानों की आय बढ़ाने के साथ उनके हितों की रक्षा के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। श्री मोदी ने कहा कि सरकार ने वर्ष 2027-28 के लिए रबी फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में वृद्धि की स्वीकृति दी है। प्रधानमंत्री ने हरित ऊर्जा गलियारे के तीसरे चरण पर मंत्रिमंडल के फैसले का स्वागत किया। श्री मोदी ने कहा कि ये पहल 2035 तक 900 गीगावाट गैर जीवाश्म ईंधन आधारित क्षमता हासिल करने की दिशा में प्रोत्साहन देगी। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि गुजरात आतंकरोधी दस्ते, भारतीय तटरक्षक बल और केंद्रीय खुफिया एजेंसियों के संयुक्त अभियान में एक ईरानी नौका से 5 पाकिस्तानी नागरिकों को गिरफ्तार किया गया है। अभियान के दौरान भारत के

0: विशिष्ट आर्थिक क्षेत्र में मौजूद नौका से 526 किलोग्राम मादक पदार्थ जब्त किए गए। श्री शाह ने कहा कि मोदी सरकार युवाओं को नशे की लत से बचाने के लिए प्रतिबद्ध है। गृह मंत्रालय ने कहा है कि जम्मू कश्मीर के बडगाम में सुरक्षा बलों ने लश्कर ए तैयबा के कमांडर मूसा उर्फ आसिफ फौजी को मार गिराया है। ये कार्रवाई आतंकी नेटवर्क के लिए बहुत बड़ा झटका है। मंत्रालय ने कहा कि मूसा के मारे जाने के साथ ही 2022 से जम्मू कश्मीर में सक्रिय लश्कर ए तैयबा के सभी 4 कमांडरों को मार गिराया जा चुका है। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि पंजाब को वर्ष 2029 के अंत तक नशा मुक्त बनाया जाएगा। जलंधर में आज नशा मुक्त पंजाब रैली में श्री शाह ने कहा कि आगामी विधानसभा चुनाव में भाजपा पंजाब को नशा मुक्त बनाने के मुद्दे पर चुनाव लड़ेगी।
1: पंजाब का विकास तब तक नहीं हो सकता जब तक पंजाब का युवा नशे के मुक्त नहीं हो। ये नशा हमारी आने वाली पीढ़ियों को बर्बाद करता है। पंजाब के युवाओं को नशा न मिले ऐसे सख्त तंत्र की रचना केवल और केवल नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी कर सकती है, कोई और नहीं कर सकता।
0: श्री शाह ने कहा कि जम्मू कश्मीर में आतंकवाद और पूर्वोत्तर में उग्रवाद की समस्या से निपटने के बाद अब पंजाब को नशा मुक्त बनाने पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। उन्होंने किसानों की समस्याओं के समाधान, पंजाब में उद्योगों को फिर से बढ़ावा देने और युवाओं के लिए रोजगार के अवसर सृजित करने का भी आश्वासन दिया। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
2: और ज्यादा खबरों के लिए expert@AIRNewsHindi को फॉलो करें और YouTube पर न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल को सब्सक्राइब करें।
0: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने आज टेलीफोन पर बातचीत में व्यापार, रक्षा, ऊर्जा और महत्वपूर्ण प्रौद्योगिकियों सहित अन्य क्षेत्रों में आपसी सहयोग की समीक्षा की। प्रधानमंत्री ने कहा कि दोनों नेताओं ने वैश्विक शांति और सुरक्षा के लिए जारी प्रयासों सहित क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर भी विचार विमर्श किया। दोनों नेता व्यापक वैश्विक रणनीतिक साझेदारी और मजबूत करने के लिए सहयोग जारी रखने पर सहमत हुए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल नई दिल्ली के भारत मंडपम में संघ लोक सेवा आयोग के शताब्दी समारोह में शामिल होंगे। प्रधानमंत्री इस अवसर पर लोगों को संबोधित भी करेंगे। श्री मोदी यूपीएससी के शताब्दी समारोह का स्मारक सिक्का, स्मारक डाक टिकट और 100 लैंडमार्क जजमेंट्स शेपिंग द पॉलिसीज ऑफ यूपीएससी एंड पब्लिक सर्विस कमीशन इन इंडिया नाम की एक पुस्तक भी जारी करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनसेवा में 25 वर्ष पूरे कर रहे हैं। उनकी यात्रा जनसेवा से देश सेवा के संकल्प और निरंतर जनसेवा की भावना से प्रेरित रही है। इसी सेवा और सुशासन की सोच के साथ सरकार वर्ष 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य की दिशा में कार्य कर रही है। समावेशी विकास और सामाजिक सशक्तिकरण के माध्यम से सरकार की इन पहलों से लोगों के जीवन में सकारात्मक बदलाव आ रहा है। आज हमारी विशेष श्रृंखला में हम बात करेंगे कि कैसे आत्मनिर्भर भारत के माध्यम से इस सपने को वास्तविकता में बदला गया है।
3: आत्मनिर्भर भारत केंद्र सरकार की एक प्रमुख पहल है जिसकी शुरुआत साल 2020 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की थी। इसका उद्देश्य देश में उत्पादन को बढ़ावा देना, आयात पर निर्भरता कम करना और भारत को हर क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाना है। उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन योजना PLI, कृषि अवसंरचना कोष मेक इन इंडिया और सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यमों को सहायता जैसी योजनाओं के जरिए देश की उत्पादन क्षमता को बढ़ाया जा रहा है। स्वतंत्रता दिवस पर पिछले साल राष्ट्र को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था कि आत्मनिर्भरता विकसित भारत की नींव है।
4: एक राष्ट्र के लिए आत्मसम्मान की सबसे बड़ी कसौटी आज भी उसकी आत्मनिर्भरता है। और मेरे प्यारे देशवासियों, विकसित भारत का आधार भी है आत्मनिर्भर भारत। आत्मनिर्भरता का नाता हमारे सामर्थ्य से जुड़ा हुआ, और जब आत्मनिर्भरता खत्म होने लगती है तो सामर्थ्य भी निरंतर क्षीण होता जाता है। और इसलिए हमारे सामर्थ्य को बचाए रखने, बनाए रखने और बढ़ाए रखने के लिए आत्मनिर्भर होना बहुत अनिवार्य है।
3: आकाशवाणी समाचार से बात करते हुए सेवानिवृत्त कमोडोर श्रीकांत केसनूर ने कहा कि रक्षा के क्षेत्र में भारत ने बड़ी प्रगति की है। पहले भारत रक्षा उपकरणों का बहुत बड़ा आयातक था, लेकिन आज यह एक उभरता हुआ

0: निर्यातक बन रहा है।
1: मैं समझता हूं कि पिछले 10-12 साल में बहुत बढ़ावा मिला है आत्मनिर्भरता को, डिफेंस सेक्टर में, डिफेंस प्रोडक्शन में और इंडिजिनाइजेशन में। जहां पे हम आर्म्स को इंपोर्ट करते थे, अभी हम एक्सपोर्ट करते हैं।
0: आत्मनिर्भर भारत का उद्देश्य एक मजबूत, सक्षम और संकटों का सामना करने वाली अर्थव्यवस्था बनाना है, ताकि वह अपनी जरूरतों को खुद पूरा कर सके और 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य को हासिल कर सके। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
2: भारतीय जनता पार्टी ने दावा किया है कि आज नई दिल्ली में आयोजित INDIA गठबंधन की बैठक में कई नेताओं के शामिल न होने के बाद गठबंधन को आंतरिक मतभेदों का सामना करना पड़ रहा है। नई दिल्ली में आज पार्टी के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि DMK, समाजवादी पार्टी और आम आदमी पार्टी सहित कई दलों के नेता इस बैठक में शामिल नहीं हुए।
3: लगातार कांग्रेस अपनी गलतियों पर माफी मांगने के बजाय भ्रम फैला रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं, मनगढ़ंत आरोप लगा रहे हैं। आज इंडी गठबंधन की बैठक थी, लेकिन बैठक के पहले ही गठबंधन बिखर गया। और सच बात तो यह है कि इंडी गठबंधन राहुल को नेता मानने के लिए तैयार नहीं है।
2: समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार प्रोफेसर रामगोपाल यादव और धनराज परिमल नथवानी ने उत्तर प्रदेश से आगामी राज्यसभा चुनावों के लिए लखनऊ में अपना नामांकन पत्र दाखिल किया है। उत्तर प्रदेश की 10 राज्यसभा सीटों के लिए मतदान 16 अक्टूबर को होगा। नामांकन दाखिल करने की अंतिम तिथि 6 अक्टूबर है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह कल नई दिल्ली में रक्षा लेखा विभाग के 279वें स्थापना दिवस समारोह में शामिल होंगे। इस अवसर पर वे रक्षा लेखा विभाग की विभिन्न सूचना प्रौद्योगिकी पहलों का शुभारंभ करेंगे। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है और अब खेल जगत की खबरों के साथ हैं प्रशांत कुमार।
4: जापान एशियाई खेलों में भारत ने आज तीरंदाजी में 3 और निशानेबाजी में 1 स्वर्ण सहित कुल 4 स्वर्ण पदक जीत लिए हैं। तीरंदाजी में पुरुष कंपाउंड टीम ने चीन को, मिक्स कंपाउंड टीम ने कोरिया को और महिला कंपाउंड टीम ने चीन को हराकर स्वर्ण पदक जीता। निशानेबाजी में नीरू ढांडा और किनान चिनाई की भारतीय जोड़ी ने ट्रैप मिक्स टीम स्पर्धा में स्वर्ण पदक हासिल किया। वहीं भारतीय महिला हॉकी टीम ने दक्षिण कोरिया को हराकर फाइनल में जगह बना ली है। मुक्केबाजी में लवलीना बोरगोहेन ने फाइनल में प्रवेश किया। वहीं प्रिया घंगास और कपिल पोखरिया ने कांस्य पदक जीते। पदक तालिका में भारत 10 स्वर्ण, 21 रजत और 29 कांस्य सहित कुल 60 पदकों के साथ 8वें स्थान पर पहुंच गया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने पदक विजेताओं को बधाई दी है। गुवाहाटी में दूसरे एक दिवसीय क्रिकेट मैच में वेस्टइंडीज ने भारत को 406 रन का लक्ष्य दिया है। जवाब में ताजा समाचार मिलने तक भारत ने 27 ओवर में 1 विकेट पर 262 रन बना लिए हैं। कप्तान शुभमन गिल और रोहित शर्मा ने शतकीय पारी खेली। 3 मैचों की श्रृंखला में भारत 1-0 से आगे है।
2: और अब खेल जगत और अब आर्थिक जगत की खबरों के साथ हैं निखिल कुमार।
5: घरेलू शेयर बाजार के मुख्य सूचकांकों में लगातार तीसरे दिन भी आज गिरावट देखी गई। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स लगभग सपाट कारोबार करता रहा और अंत में 49 अंक गिरकर 72,480 पर बंद हुआ। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 96 अंक नीचे आकर 22,620 पर पहुंच गया। विदेशी मुद्रा बाजार में रुपया आज अमरीकी डॉलर के मुकाबले 16 पैसे मजबूत होकर 95.83 रुपए पर बंद हुआ।
2: मौसम विभाग ने कल तटीय कर्नाटक, केरलम, माहे, कर्नाटक के अंदरूनी क्षेत्रों, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकाल में तेज वर्षा के साथ साथ आंधी तूफान और बिजली गिरने का अनुमान व्यक्त किया है। नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में भी ऐसी ही स्थिति रहने की संभावना है। रायलसीमा, उड़ीसा, अरुणाचल प्रदेश, असम और मेघालय में तेज हवाएं चल सकती हैं। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्र ने वर्ष 2027-28 के दौरान सभी रबी फसलों की न्यूनतम समर्थन मूल्य में वृद्धि को स्वीकृति दी। उत्तर प्रदेश, कर्नाटक और तेलंगाना में वर्तमान खरीफ मौसम में दलहन और तिलहन की खरीद के लिए 5,548 करोड़ रुपए की मंजूरी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, सरकार किसानों के हितों की रक्षा के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। मंत्रिमंडल की अंतर्राज्यीय विद्युत पारेषण नेटवर्क मजबूत करने के लिए हरित ऊर्जा गलियारे के तीसरे चरण की स्वीकृति। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने टेलीफोन पर बातचीत में व्यापार, रक्षा और ऊर्जा समेत आपसी सहयोग की समीक्षा की। गुजरात आतंकरोधी दस्ता, भारतीय तटरक्षक बल और केंद्रीय खुफिया एजेंसियों के संयुक्त अभियान में 5 पाकिस्तानी नागरिक गिरफ्तार। इसके साथ ही समाचार संध्या का यंग समाप्त हुआ। नमस्कार।

बैंग बैंग फिल्म से आप सुन रहे थे ऐश किंग शिल्पा राव और शेखर अफजियानी की आवाज़ में गाना, अन्विता दत्त के बोल कुमार के साथ और विशाल शेखर का संगीत। अगला गाना पटियाला हाउस से विशाल ददलानी की आवाज़ में, अन्विता दत्त के बोल और शंकर एहसान लॉय का संगीत।

आपके लिए कार्यक्रम का अगला गाना लैला मजनू फिल्म से अरिजीत सिंह और जॉनिता गांधी की आवाज़ों में इरशाद कामिल के बोल, नीलाद्री कुमार का संगीत।

आपके लिए कार्यक्रम का अगला गाना आजा नचले इस फिल्म से सोनू निगम और श्रेया घोषाल की आवाजों में, जयदीप सहानी के बोल और म्यूजिक है सलीम सुलेमान का।

इसी गीत के साथ आज का आपके लिए कार्यक्रम संपन्न होता है। दीजिए सुदक्षिणा को इजाजत अगली मुलाकात के वादे के साथ। सुनते रहिए विविध भारती, देश की सुरीली धड़कन।

दोस्तों नमस्ते, मैं हूं अमरकांत और आज का हमारा ये कार्यक्रम समर्पित है प्रोड्यूसर डायरेक्टर और एडिटर ऋषिकेश मुखर्जी को।

0: स्नेह दर्शकों के लिए ऋषिकेश मुखर्जी का मतलब है साफ सुथरी पारिवारिक फिल्में, जिनमें हास्य भी होता है, मनोरंजन भी और कोई सार्थक संदेश भी।
1: मैंने तेरे

आम लोगों के लिए फिल्में सपनों का एक संसार होती हैं और इस स्वप्न संसार को अलग अलग रंगों से रंगना, कुछ नया करके दर्शकों के सामने पेश करना, यही सपना देखा था तब के कलकत्ता और आज के कोलकाता में जन्मे ऋषिकेश मुखोपाध्याय ने। साइंस ग्रेजुएट ऋषि दा ने अपने शुरुआती दिनों में गणित और विज्ञान विषय में अध्यापन भी किया, जिन्हें ऋषि दा के नाम से पुकारा जाता रहा है। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत की बीएन सरकार के न्यू थिएटर्स के साथ, जबकि वो पहले कैमरामैन और बाद में फिल्म एडिटर बने। ये बात है लेट 40s की। उसके बाद वो मुंबई आ गए और यहां आकर निर्देशक बिमल रॉय के साथ बतौर सहायक निर्देशक और एडिटर जुड़ गए। हम बात कर रहे हैं अब 1951 की। उस दौरान उन्होंने बिमल रॉय की माइलस्टोन फिल्म्स दो बीघा जमीन और देवदास के लिए भी काम किया।

करियर में लगभग 42 फिल्मों का निर्देशन किया। ऋषिदा को फिल्म फेयर ने 7 बार अपने अवार्ड से सम्मानित किया। 1956 बेस्ट एडिटिंग अवार्ड नौकरी, 1959 बेस्ट एडिटिंग अवार्ड मधुमती।

1970 बेस्ट स्क्रीन प्ले अनोखी रात, 1972 बेस्ट एडिटिंग आनंद, 1972 बेस्ट स्टोरी आनंद, 1981 बेस्ट मूवी अवार्ड खूबसूरत, 1972 बेस्ट फिल्म आनंद।

ऋषि दा ने अपनी फिल्मों में हमेशा कहानी को और पात्रों को महत्व दिया। यही नहीं, उन्होंने हमेशा ही नए नए कलाकारों को अपनी फिल्मों में मौका दिया। जया भादुरी, अमिताभ बच्चन, अमोल पालेकर, इन जैसे कलाकारों ने उनके साथ काम करके अपनी उत्कृष्ट कला पेश की।

0: रिशिदा की फिल्मों में से कौन सी फिल्म छोड़ दी जाए, किसका जिक्र किया जाए, ये तय कर पाना बड़ा मुश्किल काम है। हिंदी सिने संसार में रिशिदा का जो योगदान रहा है, उसके लिए सन 2001 में भारत सरकार ने रिशिदा को पद्म विभूषण से सम्मानित किया। 1960 में प्रेसिडेंट सिल्वर मेडल मिला फिल्म अनाड़ी को। 1961 में नेशनल फिल्म अवार्ड फॉर बेस्ट फीचर फिल्म अनुराधा। 1961 में ही गोल्डन बियर अवार्ड के लिए बर्लिन इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में नॉमिनेट हुई फिल्म अनुराधा। और 1999 में रिशिदा सम्मानित हुए दादा साहेब फाल्के अवार्ड से।
1: मैंने

0: ऋषिदा का पूरा जीवन फिल्मों के लिए ही समर्पित था। उन्होंने सदा ही अपने दर्शकों के लिए साफ सुथरी, स्वस्थ, मनोरंजन से भरी फिल्में बनाई और अपने चाहने वालों के बीच सदा के लिए अपनी जगह बना ली। 27 अगस्त सन 2006 इस दिन लंबी बीमारी के बाद ऋषिदा का मुंबई में निधन हो गया।
1: तो भी देखो मन नहीं जागे, पीछे पीछे सपनों के भागे।

0: सब तो हंसाए, कभी ये रुलाए।
1: साथियों, ये था निर्माता, निर्देशक और एडिटर ऋषिकेश मुखर्जी को समर्पित आज के फनकार कार्यक्रम। रमेश गोखले द्वारा प्रस्तुत इस कार्यक्रम के लिए आलेख और स्वर अमरकांत का था। अब नमस्ते।
2: आज के फनकार।

0: छाया गीत
1: लग जा गले।
0: हिंदी फिल्म संगीत के स्वर्णिम युग की एक संगीतमय यात्रा।
2: तेरे मेरे सपने अब
0: पुराने दिनों की मनमोहक धुनों में गोता लगाएं, सुरों के पंख लगाकर आसमां में उड़ उड़ जाएं।
2: भीगी भीगी रातों में मीठी मीठी बातों में।
0: याद रहे, ये वो कैप्सूल है जो धुनों को, आवाज को और यादों को जीवंत रखता है।

0: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन छाया गीत कार्यक्रम बस थोड़ी ही देर में।
1: इस प्रोग्राम के प्रायोजक वीको वज्रदंती भारत का गम एक्सपर्ट।

प्रस्तुत है छाया गीत। सुनने वालों को मंदाकिनी जोशी का प्यार भरा नमस्कार। सामिन, कभी कभी किसी के चले जाने से सिर्फ एक रिश्ता खत्म नहीं होता, हमारे भीतर बसा हुआ एक पूरा संसार जैसे अचानक खामोश हो जाता है, जिसे अपना समझकर जीवन की सबसे खूबसूरत उम्मीदें सौंप दी थी, वही जब बिना पीछे देखे चला जाए तो सवाल सिर्फ उसके जाने का नहीं रहता, सवाल ये होता है कि उसके साथ हम अपने भीतर का कितना कुछ खो आए हैं।

यादें इतनी आसानी से कहाँ जाती हैं। कभी उसकी कही हुई कोई बात अचानक कानों में पड़ती है, कभी किसी रास्ते से गुजरते हुए पुराने दिनों की आहट मिलती है। दिल एक पल को सोचता है, शायद वह लौट आए, शायद बीती हुई बातों का कोई अर्थ अब भी बाकी हो। शायद इसी कारण आज भी उसकी आंखें किसी लौटते हुए कदम की आहट नहीं, बल्कि उस बीते हुए प्रेम की कोई आखिरी निशानी तलाशती है। हाँ, हर रोज़

रात के सन्नाटे में जब दुनिया सो जाती है तब यादें जागती हैं, वह भी जागती है और अपने बीते हुए प्रेम के साथ थोड़ी देर बैठती है। हाँ, कहते हैं रिश्ते कभी कभी खत्म हो जाते हैं, मगर उनसे निकली हुई धुन बहुत देर तक हमारे भीतर बजती रहती है।

इस अंतराल के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। इतने वर्षों बाद भी मेरे भीतर तुम्हारे लिए कुछ बचा हुआ है। हाँ, कुछ बचा हुआ है। मैं उसे प्रेम कहूँ, कमजोरी, आदत या कुछ और, मैं आज भी इसका उत्तर नहीं जानती। हाँ, ये सच है, शायद कुछ प्रश्नों के उत्तर नहीं होते, वे बस हमारे साथ उम्र भर चलते रहते हैं, चलते रहते हैं।

कुछ रिश्ते समय के साथ खत्म नहीं होते, वे बस अपनी आवाज खो देते हैं। दो लोग अलग हो जाते हैं, रास्ते बदल जाते हैं, मगर किसी एक के भीतर वो कहानी वहीं ठहर जाती है, उसी मोड़ पर, किसी किताब के खुले पन्ने में, किसी पुराने गीत में, हाँ खिड़की से आती उस हवा में भी। तो यकीनन उसने उसे खो दिया है, लेकिन अपने भीतर उस प्रेम को खोना नहीं चाहती वो। हाँ उस प्रेम को कभी खोना नहीं चाहती वो।

हाँ, अब जो बचा है वो है एक लंबी खामोशी। विरह धीरे धीरे आंसुओं से निकलकर एक मौन स्वीकृति बन गया है। अब किरदार या

कहूं मुख्य किरदार चला गया है मेरी प्रेम कहानी का, और कहानी दिल में वहीं ठहर गई है। शायद प्रेम में सबसे गहरी प्रतीक्षा वही होती है जिसमें इंसान जानता है कि वो नहीं आएगा, फिर भी दरवाजा बंद नहीं करता। हाँ, फिर भी दरवाजा बंद नहीं करता।

0: और अब छाया गीत से मंदाकिनी जोशी को दें इजाजत, फिर मिलेंगे, नमस्कार।
1: इस प्रोग्राम के प्रायोजक थे वीको वज्रदंती, भारत का गम एक्सपर्ट।

0: अपनी त्वचा के लिए मैं चुनती हूँ वही जो है सबसे सही। वीको टर्मरिक क्रीम मेरी त्वचा का पोषण करे, उसे कोमल, सौम्य और उज्जवल बनाए। वीको टर्मरिक क्रीम, मैंने चुनी खूबसूरती।
1: वही मोनो, तू आजकल सोशल मीडिया ते बहुत स्टोरियां, स्टेटस ते ज्ञान वंडदा।
2: ओ मैं ता समझदारी बहुत आ, बस कदे मान जानी कीता।
1: अच्छा, फिर एक गल दा जवाब दे, HIV किवें फैलदा है?
2: HIV
1: नहीं पता ना, समझदार वीरे, ता सुन, HIV किवें संक्रमित सुई सिरिंज सांझा करन नाल संक्रमित व्यक्ति दे नाल असुरक्षित यौन संबंध बनाउन नाल संक्रमित खून जा खून दे उत्पादां दी वरतों नाल संक्रमित गर्भवती मां तों उस दे होण वाले बच्चे नूं HIV दी बीमारी हो सकदी है।
3: वधेरे जानकारी लई टोल फ्री एड्स हेल्पलाइन नंबर 1097 ते कॉल करो। पंजाब स्टेट एड्स कंट्रोल सोसाइटी द्वारा जनहित विच जारी।
4: FM 107.2 MHz ते ए आकाशवाणी है ते तुसी सुन रहे हो विविध भारती दा चंडीगढ़ केंद्र। पेश ने मुख प्रदेशक खबरां। केंद्रीय कैबिनेट दी आर्थिक मामलों दी कमेटी ने 2027-28 दे खरीद सीजन लई हाड़ी दियां फसलां लई घट्टो घट समर्थन मुल MSP विच वाधे नूं मंजूरी दे दी।

0: हाँ, ये हेलमेट अच्छा है, सेफ है क्या?
1: चिंता मत कीजिए, इस हेलमेट पर ISI मार्क है।
0: और मुझे कैसे पता चलेगा कि ये असली है?
1: BIS केयर ऐप से, जहाँ आपको ये इम्पोर्टेंट डिटेल एक ही क्लिक में मिल जाएगी।
2: बनिए जागरूक ग्राहक और कोई भी प्रोडक्ट खरीदने से पहले उसकी प्रामाणिकता चेक करने के लिए आज ही डाउनलोड करें BIS केयर ऐप।
3: आज फिर लेट हो गए?
4: अरे यार, वो रवि मिल गया था, फिर बाहर ही बैठ गए थे।
3: क्यों बैठे थे बाहर?
4: क्यों ना बैठूं? बस इसीलिए क्योंकि उसे एड्स है। एड्स गले मिलने, साथ बैठने से और एक साथ खाना खाने से नहीं फैलता।
3: मुझे पता है, HIV एड्स असुरक्षित संबंध, संक्रमित सुई या संक्रमित महिला से उसके बच्चे को होता है, इसीलिए तो कह रही हूं। बाहर क्यों बैठे थे? रवि भैया को घर ही ले आते।
4: एड्स से पीड़ित व्यक्ति को दूर नहीं, हमारे साथ ही जरूरत है। इसलिए ध्यान रखें और याद रखें कि एड्स छूने से, बात करने से, एक साथ खाना खाने से बिल्कुल नहीं फैलता। एड्स से जुड़ी अधिक जानकारी के लिए 1097 पर कॉल करें। हरियाणा स्टेट एड्स कंट्रोल सोसाइटी द्वारा जनहित में जारी।
5: श्रोतियों, ब्रेक ते जान तो पहला असीस कौर दा गीत असी तुहानू सुनवाया। एही प्रोग्राम दी पहली पेशकश सी। रुक कर रहे हैं अगले गीत वल। गिप्पी गरेवाल ते शिप्रा गोयल ने गीत नू निभाया, संगीत नाल सजाया JK ने।

बात तो ये जो तू टिकटॉक टिकटॉक चलती है, माना ये सारी तेरी हाई हील्स की गलती है। रुक तो जा तू है कौन, ये तो बता तू है कौन, कहां से आई है कहां को जाएगी, पागल लड़की मुझे मरवाएगी।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मोहम्मद जुबैर। केंद्रीय मंत्रिमंडल की आर्थिक कार्य समिति ने विपणन सत्र 2027-28 के लिए सभी अनिवार्य रबी फसल के न्यूनतम समर्थन मूल्य में वृद्धि को मंजूरी दे दी है। नई दिल्ली में आज मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि ये निर्णय किसानों की उपज का लाभदायक मूल्य सुनिश्चित करने के लिए लिया गया है।
1: सबसे पहला फैसला लिया गया रबी क्रॉप्स के लिए MSP तय करना। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने अपने कार्यकाल के आरंभ से ही MSP में 50% प्रॉफिट देना वो तय किया था, उस फैसले को इसमें लागू किया गया है। वीट, बार्ली, ग्राम, लेंटिल्स, रेपसीड, मसूर, मस्टर्ड और सेफ्लावर, इन सब के लिए जो प्रोडक्शन कॉस्ट है उससे कम से कम 50% ज्यादा रखी गई है MSP।
0: कुसुम के लिए सबसे अधिक 675 रुपये प्रति क्विंटल वृद्धि की गई है। सरसों और खसखस का मूल्य

0: 413 रुपये प्रति क्विंटल बढ़ाया गया है। श्री वैष्णव ने बताया कि मसूर के लिए 390 रुपये, जौ के लिए 136 रुपये, चने के लिए 83 रुपये और गेहूं की कीमत में 25 रुपये प्रति क्विंटल की वृद्धि की गई है। सरकार ने उत्तर प्रदेश, कर्नाटका और तेलंगाना में वर्तमान खरीफ सत्र के लिए प्रमुख दालों और तिलहनों की MSP पर खरीद के लिए 5548 करोड़ रुपए की मंजूरी दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सरकार देश भर के किसानों की आय बढ़ाने के साथ उनके हितों की रक्षा के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। श्री मोदी ने कहा है कि सरकार ने वर्ष 2027-28 के लिए रबी फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP में बढ़ोतरी को स्वीकृति दे दी है। प्रधानमंत्री ने हरित ऊर्जा गलियारे के तीसरे चरण पर मंत्रिमंडल के फैसले का स्वागत किया है। श्री मोदी ने कहा है कि ये पहल वर्ष 2035 तक 900 GW गैर जीवाश्म ईंधन आधारित क्षमता हासिल करने की दिशा में प्रोत्साहन देगी। प्रधानमंत्री मोदी कल नई दिल्ली के भारत मंडपम में संघ लोक सेवा आयोग UPSC के शताब्दी समारोह में शामिल होंगे। प्रधानमंत्री इस अवसर पर लोगों को संबोधित भी करेंगे। श्री मोदी UPSC के शताब्दी समारोह का स्मारक सिक्का, स्मारक डाक टिकट और 100 लैंडमार्क जजमेंट शेपिंग द पॉलिसीज ऑफ UPSC एंड पब्लिक सर्विस कमीशन इन इंडिया नाम की एक पुस्तक भी जारी करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने आज टेलीफोन पर बातचीत में व्यापार, रक्षा, ऊर्जा और महत्वपूर्ण प्रौद्योगिकियों सहित अन्य क्षेत्रों में आपसी सहयोग की समीक्षा की। प्रधानमंत्री ने कहा है कि दोनों नेताओं ने वैश्विक शांति और सुरक्षा के लिए जारी प्रयासों सहित क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर भी विचार विमर्श किया। दोनों नेता व्यापक वैश्विक रणनीतिक साझेदारी और मजबूत करने के लिए सहयोग जारी रखने पर सहमत हुए। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि गुजरात आतंक रोधी दस्ते, भारतीय तटरक्षक बल और केंद्रीय खुफिया एजेंसियों के संयुक्त अभियान में एक ईरानी नौका से 5 पाकिस्तानी नागरिकों को गिरफ्तार किया गया है। अभियान के दौरान भारत के विशिष्ट आर्थिक क्षेत्र में मौजूद नौका से 526 किलोग्राम मादक पदार्थ जब्त किए गए। श्री शाह ने कहा कि मोदी सरकार युवाओं को नशे की लत से बचाने के लिए प्रतिबद्ध है। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने आज नई दिल्ली में सफाई मित्र सुरक्षा एवं सम्मान शिविर का आयोजन किया। ये कार्यक्रम स्वच्छता ही सेवा 2026 अभियान के तहत आयोजित किया गया। कार्यक्रम में सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र कुमार ने कहा कि नमस्ते योजना का उद्देश्य केवल सहायता देना नहीं बल्कि सफाई कर्मचारियों की सुरक्षा, सम्मान और सामाजिक आर्थिक समावेशन सुनिश्चित करना है। जापान एशियाई खेलों में भारत ने आज तीरंदाजी में 3 और निशानेबाजी में 1 स्वर्ण सहित कुल 4 स्वर्ण पदक जीत लिए हैं। तीरंदाजी में पुरुष कंपाउंड टीम ने चीन को, मिक्स्ड कंपाउंड टीम ने कोरिया को और महिला कंपाउंड टीम ने चीन को हराकर स्वर्ण पदक जीता। निशानेबाजी में नीरू ढांडा और किनान चेनाई की भारतीय जोड़ी ने ट्रैप मिक्स्ड टीम स्पर्धा में स्वर्ण पदक हासिल किया। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एशियाई खेलों में शानदार प्रदर्शन करने वाले भारतीय खिलाड़ियों को बधाई दी है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: FM 107.2 MHz ते ए आकाशवाणी है ते तुसी सुन रहे हो विविध भारती दा चंडीगढ़ केंद्र। रात दे 11:05 होए ने। हुण साढ़े केंद्र तो अज दे प्रोग्रामां दा प्रसारण समाप्त हुंदा है। कल सवेरे 5:55 ते तुहाडी सेवा विच फिर हाजिर होवांगे। तद तक लई सानू इजाजत दिओ। जय हिंद।